ओम शांति। संसार में कई लोग कहते हैं कि भाग्य हमारे हाथ में है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य प्राप्त होगा। परंतु कुछ लोग ये भी अनुभव करते हैं कि अनेक बार हम भाग्य के हाथ में होते हैं। हम चाहे कर्म कितने भी अच्छे करें, चाहे पुरुषार्थ कितना भी दृढ़तापूर्वक करें, परंतु सफलता हमें नहीं मिलती। तब लोग कहते हैं हमारा भाग्य हमें साथ नहीं दे रहा है। इस रहस्य को हम सभी जान लें कि संगम युग पर भाग्य और भाग्य विधाता हमारे हाथ में आ गए हैं। हमारा बाप ही भाग्य विधाता है, तो हमारे पास भाग्य की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा जन्म ही बहुत बड़े भाग्य के साथ शुरू हुआ है। जैसे किसी ने राजाई घर में जन्म लिया हो तो जन्मते ही लोग कहेंगे बड़ा भाग्यवान बच्चा है जिसने राज कुल में जन्म लिया। हमने जन्म लिया भाग्य विधाता के कुल में, हमने जन्म लिया भगवान के परिवार में। हमें जन्म देने वाले स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा और परमपिता शिव, तो हम कितने महान हो गए, हमारा भाग्य भी कितना महान हो गया। अब है कि संगम युग पर भाग्य विधाता और भाग्य हमारे हाथ में है, और शेष चारों युगों में हम भाग्य के हाथ में होंगे। यद्यपि द्वापर युग के बाद कर्म करके हम अपने नए भाग्य का निर्माण भी करेंगे, हमारा संगम युग का भाग्य दो युग की प्रारब्ध समाप्त होने के साथ ही पूर्ण हो जाएगा। परंतु द्वापर युग के बाद पुनः हम अपने भाग्य का निर्माण करेंगे कर्म के आधार पर। परंतु हमारे कर्मों का आधार भी, हमारे संस्कारों का आधार भी संगम युग ही होगा। इसमें हमने स्वयं को जितना महान बनाया है, जितना सर्वगुण संपन्न बनाया है, जितना

शक्तिशाली बनाया है, जैसे डिवाइन संस्कार हमने स्वयं में धारण किए हैं, वे ही द्वापर युग से भी चलते रहेंगे। उस अनुसार हम द्वापर युग से अपना भाग्य पुनः निर्माण करते रहेंगे। तो मूल रूप से हम ये समझ लें, मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य के निर्माता हैं, उसके श्रेष्ठ संकल्प ही उसके भाग्य के निर्माता हैं। उसका दूसरों को सुख देना, परोपकार करना, कल्याण करना, दूसरों के काम आना, ये उसके श्रेष्ठ भाग्य के निर्माता हैं। तो आइए हम हर तरह से पूरा जोर लगाकर अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करें। देखिए, दुनिया में एक परिवार को पालने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करता है। एक विद्यार्थी अच्छी एजुकेशन लेने के लिए और फिर अच्छी नौकरी पाने के लिए रात दिन एक किए रखता है, अपने सब शौक भी छोड़कर, अपने सब इंटरेस्टेड को एक तरफ रखकर लग जाता है धुन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सोच लें, थोड़े से समय के लिए अच्छा भाग्य पाने के लिए भी हम क्या क्या करते हैं, और 4000 वर्ष तक के लिए हमें महान भाग्य मिलने वाला है, हम क्या कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सतयुग त्रेता युग में तो हमें कमाना ही नहीं पड़ेगा, कमाने की कोई चिंता ही नहीं होगी, मौज से सब प्राप्तियां होंगी, प्रकृति सब कुछ स्वतः ही प्रदान कर देगी। तो जरा चिंतन कर लें, ऐसा महान भाग्य पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें कुछ महान लगन है कि हमें बाबा से सर्वस्व प्राप्त कर लेना है। अपने चारों सब्जेक्ट के द्वारा हम भाग्य बना सकते हैं, ज्ञान लेकर देकर, योग लगाकर और दूसरों को प्रभु से मिलाकर, श्रेष्ठ धारणाएं करके और यज्ञ सेवा के द्वारा। तो आइए आज सारा दिन हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करें। सवेरे शाम बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बैठ जाएं आप शांत में और फिर देखें मेरा फरिश्ता स्वरूप इस देह को यहीं छोड़कर आगे की ओर चलता है, चला जाता है 50-100 फुट तक, हम देख रहे हैं। फिर वो फरिश्ता स्वरूप वापिस आता है, मुझ में प्रवेश कर लेता है, फिर निकल कर जाता है, फिर प्रवेश करता है। 5 बार बहुत अच्छी तरह ये ड्रिल करेंगे और अभ्यास करेंगे। मुझ पर फरिश्ते पर ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, बहुत लाइटनेस का अनुभव होगा, बहुत परमानंद की फीलिंग होगी। ओम शांति।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। आपकी उन्नति के रास्ते में आने वाली हर बाधा आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आगे बढ़ने वाली इन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए। इन बाधाओं से ही संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ता है। रुकावटों को दूर करना ही इंसान का लक्ष्य होता है। इंसान इनसे ही सीखता है। यह बात सदा याद रखो कि रास्ते की हर ठोकर इंसान को कोई न कोई नया पाठ पढ़ाती है। जो तैरने के लिए पानी में कूदते हैं, डूबते भी वही हैं, डूबकर उभरना भी उन्हें ही आता है। गिरते भी वही हैं, जो घोड़ों पर सवारी करना जानते हैं। डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। मन में दुर्बल भावनाएं लेकर युद्ध करने वाले कभी जीत कर नहीं आते। हाँ, जो लोग यह भावना लेकर युद्ध करते हैं कि हमें विजय प्राप्त करनी है, तो उन्हें हराना कठिन ही नहीं, असंभव हो।

जाता है। बाधाएं कभी अजेय नहीं हो सकती, वे अवश्य ही तुच्छ और कमजोर पड़ जाएंगी। यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति से भरे हैं तो बाधाओं को रोंदते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आप अपने मन के बादशाह हैं। जैसे ही आप मन के सिंहासन पर बैठते हैं तो आपके मन में यही भावना पैदा होती है कि कोई हुक्म दिया जाए। सब लोग आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु जब आप अपने को इन भावनाओं का दास बना लेते हैं तो आप राजा कैसे बन सकते हैं? फिर आप किसी को हुक्म कैसे दे सकते हैं? आपकी हालत तो उस समय भिखारी जैसी हो जाती है। आप अपने हर काम के लिए दूसरों के सहारे की तलाश करते हैं। आपका साहस दम तोड़ देता है। ऐसी हालत में बाधाएं आप पर शासन करने लगती हैं। यदि आपको यह एहसास हो जाए कि आप मन के राजा हैं, आपका काम है शासन करना, यही जागृति आप में एक नया जोश भर देगी और यही बाधाएं उस समय आपको दुर्बल लगने लगेंगी। आप में एक नया उत्साह पैदा हो जाएगा।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आगे बढ़ो, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों अपनी असफलताओं का रोना रो रहे हो? रोने से कुछ नहीं बनता। यदि रोने से ही लोगों के दुख दूर हो सकते तो हमें कोई भी आदमी मजबूर और परेशान नजर नहीं आता। गरीब लोग तो सारी उम्र रोते रहते हैं, मगर उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। रोना धोना बंद करो, निराशाओं के बोझ को मन से उतार फेंको, हीन भावना को कुचल डालो और यह निर्णय कर लो कि मैंने जो सोचा है उसे पूरा करना है। जिस चीज की आशा की है उसे हर हाल में पाना है। असफलता को अपने पास भी नहीं आने देना है, केवल सफलता ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, मगर मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में अवसर होता है, लेकिन वे लोग उसे दूर से ही कल्पना की दृष्टि से देखते हैं। वे इसे भी नहीं देख सकते कि उनका भाग्य उनके अपने हाथ में है। कुछ लोग अपने भाग्य को बदलने के लिए दूसरे देशों और दूसरे नगरों की ओर भागते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हार मानी जाती है। इससे हम बुजदिली की संज्ञा दे सकते हैं। हारे हुए जुआरी जब जीते हुए जुआरी से उधार लेकर दांव लगाने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी हालत देखकर दया आती है, क्योंकि उधार की रकम लेकर जीत का चांस कहाँ रह जाता है। जुए का खेल तो हौसले और दिलेरी का है। जब आप उधार का धन लेकर खेलना शुरू करेंगे तो आपका सारा हौसला टूट चुका होगा। निराशा ने तो आपके मन को पहले से ही घेर रखा होगा कि हार न जाऊं। विजय की भावना लेकर ही शत्रु पर आक्रमण करने वाले विजय प्राप्त कर सकते हैं। पराजय को सामने रखकर यदि आपने बुजदिली से दांव लगा भी दिया तो जीत कैसे? जीतना है तो अपने शत्रु से उधार मत मांगो। धन से ही धन प्राप्त होता है, परंतु प्रश्न तो उत्साह का है, जीत की भावना का है। जीतने की प्रतिज्ञा करके दांव लगा दो, हार की बात को मन से निकाल दो। हार के डर से भागो नहीं, बल्कि भाग्य को बदलो। हो सकता है आपके उत्साहजनक प्रयत्न आपके लिए विजय के द्वार खोल दें।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदाई हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है।

इंसान के सामने कठिनाइयां उस समय पैदा होती हैं जब हम एकदम बहुत ऊंचा और बहुत दूर देखने लगते हैं और यह बात भूल जाते हैं कि सर्वोत्तम काम सबसे सरल होते हैं। कई बार हम लोग कमल के फूल की तलाश में गुलाब के फूलों को पांव तले रौंद डालते हैं। यह हमारी भूल का ही परिणाम है, क्योंकि उस समय हम ऊंचे उड़ रहे होते हैं, हम उन्हें आकाश में तलाश कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अपनी शक्ति से भी अधिक भरोसा, जो वास्तव में ही बहुत नुकसान देता है। कितने दुख की बात है कि हम आकाश की ओर तो उड़ने लगते हैं, मगर अपने मन की ओर नहीं देखते। काश एक नजर हमने अपने मन पर भी डाली होती और मन की आवाज सुनी होती। हम लोग कभी कभी बहुत बड़ी भूल का शिकार हो जाते हैं जब मन की बात नहीं सुनते। मन सदा पवित्र और शुद्ध रहता है, वह सदा सत्य का मार्ग दिखाता है। आपके पास ही खड़ा एक मनुष्य आपकी भावनाओं को समझता है और आपके विचारों को पूरी तरह जान लेता है। यदि उसे वही अवसर मिल जाता है तो वह अपनी लगन और इच्छा शक्ति के सहारे हर काम कर दिखाता है जो शायद आप सोचकर भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? एक साधारण आदमी आपसे बाजी मारकर कैसे ले गया? जरा सोचो। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, उस व्यक्ति में काम करने की लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने की भावना।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन

ऐसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा पाने से इसलिए वंचित रहते हैं क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है। उनके माँ बाप उनकी उच्च शिक्षा का खर्च उठाने से मजबूर हैं। लेकिन यदि उन बच्चों के मन में यह भावना है कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो वे पुस्तकालयों से पुस्तकें ले लेकर घर पर ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जिन्हें पढ़ाई करने का व उच्च शिक्षा प्राप्त करने का शौक होता है वे पढ़ते ही हैं, अवसर की तलाश नहीं करते, नहीं अवसर की प्रतीक्षा, बस जो काम करना होता है वह करते ही हैं। जिसकी लगन पढ़ने की होती है वह समय, धन और स्थान की प्रतीक्षा नहीं करता। पुस्तकालय में गया, पुस्तकें ली और पढ़ना शुरू कर दिया। वहां बैठने के लिए स्थान मिलेगा और पढ़ने के लिए पुस्तकें भी, फिर चिंता किस बात की। आप में से बहुत से लोग यही सोचते होंगे कि अवसर अवश्य ही महत्वपूर्ण और विलक्षण होना चाहिए, लेकिन यह बात भी सत्य है कि आप इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं वही आपका सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। यह वही अवसर है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अपने मिले हुए अवसर को पहचानिए और उस प्रकार कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम को ले आने के पीछे एक बहुत ही मजबूत वजह यह है कि हम स्वास्थ्य को सिर्फ अस्पतालों में न ढूंढें, स्वास्थ्य को सिर्फ दवाइयों में न ढूंढें, स्वास्थ्य को सिर्फ चिकित्सकों या चिकित्सा कर्मियों के पास न ढूंढकर स्वास्थ्य की शुरुआत हमारे अपने घर से, हमारे अपने हाथों से और हमारे अपने ध्यान रखने के क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, यहां से शुरुआत करने के लिए की गई है, ताकि स्वास्थ्य के प्रति हम स्वयं की जिम्मेदारी को समझें। जब भी स्वास्थ्य की बात कही जाती है तो प्रायः हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो यही है कि अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, इंजेक्शंस, किसी न किसी प्रकार के हम औषधियों के बारे में सोचते हैं। मगर क्या स्वास्थ्य औषधि और इन्हीं सारी चीजों का नाम है या कुछ और भी चीज है, ये सब समझने की कोशिश हम करते जा रहे हैं। आज स्वास्थ्य के विषय पर कुछ ऐसी ही ताजा जानकारियां हासिल करते हैं। हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य जगत के ही एक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं, जो भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, साथ ही स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात, जब स्वास्थ्य कहा जाता है तो प्रायः मन में जो ख्याल उठता है, जो चित्र बनता है, वो यही है कि स्वास्थ्य लाभ कहते हुए या स्वास्थ्य कहते हुए लोगों को या तो वैद्य या चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी, अस्पताल या किसी प्रकार की दवाइयां, औषधियां, यही सारी चीजें याद आती हैं। क्या ये स्वास्थ्य कहते ही जो हमारे मानस पटल पे जो चित्र बन रहा है, क्या वो इमेज ये सही इमेज है या कोई और इमेज होना चाहिए?
1: श्री भैया, मैं इस इमेज को या इस पिक्चर को या इस चित्र को तोड़ना चाहूंगा। क्यों नहीं हमको स्वास्थ्य की बात सोचते ही

0: एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन समझ में आता है। क्यों नहीं हमको स्वास्थ्य की बात सोचते ही खुला वातावरण दिखाई देने लगता है? क्यों नहीं हमको स्वास्थ्य की फोटो या इमेज हमारे मन में आती है तो हमको फल, तरकारी, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य हितकर भोजन समझ में आता है? हमको क्यों नहीं व्यायाम करते हुए लोग दिखते हैं? हमको क्यों नहीं सवेरे उठ के घूमते टहलते लोग दिखते हैं? क्यों हमको स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ अस्पताल, डॉक्टर, बीमार व्यक्ति ही नजर में आता है? मैं सबसे बोलता हूं ना कि एक बड़ा पुरानी कहानी है कि एक बार एक बुद्धिस्ट मंक से किसी ने पूछा कि कैन यू हेल्प मी इन समथिंग। तो जो बुद्धिस्ट व्यक्ति थे तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए तुमको, तो उन्होंने बोला आई वॉन्ट पीस। तो उन्होंने बोला आई मतलब मैं, अपने आप को तो अहम हटा दीजिए, आई वॉन्ट मतलब चाहत, उसको हटा दीजिए। तो कहा जब आपने अहम और चाहत दोनों को हटा दिया तो पीस तो आपके अंदर है। ये सेम चीज स्वास्थ्य के साथ है। हम स्वास्थ्य को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हम अपने ऊपर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने साथ नहीं ढूंढ रहे हैं उसको। ये जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उसमें बहुत से लोग ब्रह्म कुमारी के आश्रम में या उनके किसी न किसी प्रोग्राम में आ चुके होंगे, लोकल लेवल पे या माउंट आबू में आ चुके होंगे। आप देखिए कि आपको क्या कराया जा रहा है। बड़ी पुरानी इंग्लिश कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपको अर्ली उठाया जा रहा है। आपका नाश्ता, लंच और डिनर तीनों सात्विक है। आपको अंकुरित मिलता है, आपको फल मिलता है, आपको बिना प्याज लहसुन का भोजन मिलता है, थोड़ा थोड़ा मीठा भी मिलता है, मगर आपको एक नॉर्मल सी जो रूटीन है, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन मिलता है। आपको सवेरे जब 4 बजे मेडिटेशन के लिए उठाया जा रहा है, इसका मतलब 4 बजे का नहीं है, आप 3:15 उठ रहे हैं, आप फ्रेश हो रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं, नहा धो ले रहे हैं, पूरा दिन आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। और मैं सबको एक बात बोलता हूं कि आप अगर दिन में 12 बजे से जितने जल्दी उठेंगे, आइडियल टाइम लोगों ने 4 या 5 बोला, मैं 6 तक की बात बोल रहा हूं, अगर आप उठ जाएंगे तो आधा दिन आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा काम करने को, और वो आधा दिन आपको अपने शरीर पे इन्वेस्ट करना है। और अगर आपने ये कह दिया तो आपको स्वास्थ्य ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपके अपने अंदर है, आपकी अपनी दिनचर्या में है, आपके अपने भोजन में है। एक बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल, मेरे आरोग्य मंदिर में एक कलकत्ता से रेलवे के बहुत बड़े ऑफिसर आते हैं, हर साल आते हैं। इस साल वो आए और वो तीसरे दिन उनको बुखार हुआ। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब 22 साल बाद मुझे बुखार हुआ है, और मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि क्यों मुझे आरोग्य मंदिर में 22 साल बाद बुखार हुआ, जबकि यहां तो मैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आया हूं। और वो उपवास छोटा कर पाते थे, 2 दिन 3 दिन। इस बार पहली बार उन्होंने 7 दिन का उपवास किया और वो बहुत फ्रेश फील किया। और आज वो हमारे चिकित्सालय से डिस्चार्ज होके गए तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इतना तरोताजा तो मैं बहुत दिनों बाद फील कर रहा हूं। तो बीमार पड़ना भी एक पॉजिटिव चीज है, जो शरीर के अंदर के सारे कीटाणु, सारे विषाणु, सारे गंदगी को जला के खत्म कर देती है और आप अपने शरीर को और ज्यादा साफ कर पाते हैं। तो मेरा सबसे सविनय निवेदन है कि जब भी स्वास्थ्य की बात हो तो योग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम, पिलाटीज, जुम्बा, डांस, रनिंग, स्किपिंग, किसी भी चीज को सोचिए, स्पोर्ट्स को सोचिए, बैडमिंटन को, टेबल टेनिस को, लॉन टेनिस को, क्रिकेट को, फुटबॉल को, न कि कहीं बीमार पड़े हुए बेचारे के रूप में एक व्यक्ति जिसमें हाथ में और मुंह पे मास्क लगा हो, हाथ में कुछ उसके इंजेक्शन लग रहा हो, गोलियां उसके अगल बगल पड़ी हो, कि ऐसा काम ना मत करिए। अपने आप को स्वस्थ देखिए और स्वस्थ सोचिए।
1: आपने बहुत ही मजेदार बात कही कि हम अपने आप को स्वस्थ देखें। आज स्वस्थ देखने की कामना भी जब कही जाती है तो हमको लगता है कि हम जो चाहे वो खाएं तो हम स्वस्थ हैं, या हम जितनी देर सोना चाहें वो हमारा स्वास्थ्य है। हम ये सोचते हैं कि अरे भाई आज तो संडे, हम जितने बजे चाहे उठना चाहे उठ सकते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक्चुअल में कंफर्ट है और ये एक प्रिविलेज के रूप में हम देखते हैं, मगर पता चल रहा है कि स्वास्थ्य के लिए जो दिनचर्या बनी हुई है वो दिनचर्या को फॉलो करना वो हमें हेल्दी बनाता है, वो चीज हमें स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। एक चीज जो प्राय स्वास्थ्य के साथ जोड़ी जाती है वो है बीमारी। लोग ये कहते हैं कि भाई बीमार पड़ गए, अरे उनको बीमारी हो गई, अरे वो अचानक वो बीमार हो गए ऐसे। और जब भी खासकर आम बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मौसम बदल गया उसकी वजह से सर्दी खांसी हो गई, ये बात कहते हैं। फिर लोग ये कहते हैं कि भाई उनको इन्फेक्शन हो गया, वो बाहर गए थे घूमने गए थे तो उनको कोई बीमारी उसने पकड़ लिया। और आज हम क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बीमारियों को समझने लगे हैं तो हम कहते हैं कि भाई इनको वायरल हो गया ये कह देते हैं, कभी कभार हम कह देते हैं कि इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में इन्फेक्शन हो गया। तो हम इन जीवाणुओं की बात करते हैं जो बीमारी ले आते हैं ऐसा हम समझते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: भैया अगर मैं कहूं कि अगर 1, 2, 3, 4 या 5, 6 जीवाणु न है या 1 लाख 2 लाख जीवाणु है, 1 करोड़ या 2 करोड़ जीवाणु है, हम गिनती नहीं कर सकते कि हमें जो जीवाणु है वो कितने हैं इस पूरे विश्व में। हर क्षेत्र में एक अलग तरह के जीवाणु हैं, हर वातावरण में एक अलग तरह के जीवाणु हैं। मतलब जैसे हमारा शहर अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, वैसे ही हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे त्वचा पे, हमारे वातावरण में, हमारे कमरे में करोड़ों अरबों जीवाणु घूम रहे हैं। और उन जीवाणुओं में से 80% हमको बीमार करने की क्षमता रखते हैं। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझा जाए कि एक राज्य है, उसका राजा बहुत मजबूत है, उसकी सेना बहुत मजबूत है, उस राज्य पे कोई भी आंख उठा के नहीं देख पा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक राज्य देखा जाए जहां की सेना कमजोर है, राजा कमजोर है, राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख रहा है, तो वहीं फूट हो जाएगी और उस राज्य पर बाहरियों का आक्रमण हो जाएगा और राज को अधीन कर लिया जाएगा। हम एक बड़ी सीधी बात ये समझें कि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो जो कमजोर पड़ेगा उसको हरा दिया जाएगा। या हम लोग ये देखते हैं कि बराबरी में अगर कोई 2 लोग लड़ रहे हैं तो ये देखा रही यार इनकी लड़ाई छुटवाओ, क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, इसका कुछ कुछ नतीजा नहीं निकलना है। वहीं कोई कमजोर होता है तो कहते हैं अरे बैठाओ उसको, खत्म करो, हाँ तुम हार स्वीकार करो, अपने शांति से बैठ जाओ। वही चीज हमारे साथ है। हमारा शरीर ऐसे जीवाणुओं से रोज लड़ रहा है और हर समय लड़ रहा है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो हर समय हमारा शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है बाहर से होने वाले हमलों से। जैसे किसी की हड्डी टूट गई और वो सड़क पे जा रहा था और उसके वाहन का किसी दूसरे वाहन से एक्सीडेंट हुआ तो हमें दिखाई दिया कि सामने आ रहे वाहन ने हमें टक्कर मारी तो हम गिर गए, उसी के उपरांत हमारी हड्डी टूट गई। पर जो छोटे जीवाणु हैं वो हमको दिखाई नहीं देते। और अभी तो हम सब जितने लोग इस रेडियो को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो COVID-19 के उस महामारी से बच के बाहर आए। COVID-19 भी एक बहुत छोटे वायरस जिसको हम नहीं देख सकते, इवन जब तक बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना हो वो उसको देखने की क्षमता रखते हैं। जो ये लोग बहुत समझ पा रहे हैं कि दूरबीन से उसे देख लेंगे या माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से और नॉर्मल जो बाजार में अस्पतालों में मिल रहे हैं उससे भी उसको नहीं देखा। इतना छोटा जीवाणु था मगर उसमें इतनी ताकत थी कि वो हम 5 फुट 10 इंच या नॉर्मल 5 फुट 5 इंच के जो हम भारतीयों की लंबाई है उस कद काठी को भी उसने इतना, उस छोटे जीवाणु ने बीमार कर दिया कि वैसे हम लोग उतने लंबे लोग बिस्तर पे लेट गए। तो जीवाणुओं में बहुत ताकत है हमको बीमार करने की, मगर अगर हम मजबूत होंगे, हमारी जीवनी शक्ति मजबूत होगी, अंग्रेजी में कहें हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी, तो हम उस बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। पुराने जमाने में जब बात की जाती थी कि अरे इसको ये बीमारी हो गई मर गया, या अरे हैजा फैल गया, अरे कॉलरा फैल गया, अरे चूहों ने प्लेग फैला दिया, वो सारी देखिए चीजें एकदम अब सुनने में नहीं आ रही थी। तभी एकाएक एक दिन COVID-19 का एक ऐसा बड़ा बीमारी है जिसने भारत नहीं पूरे विश्व को बंद कर दिया। हम लोग ने सुना नहीं था, कल्पना नहीं थी। अरे डॉक्टर छोड़िए, अधिकारी छोड़िए, नेता हुए, बुद्धिजीवी हुए, जिन्होंने 70-80 साल का जिनका जीवन, उन्होंने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा था कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज होगी। जो चीज जहां है वहीं रह जाएगी। बाप रे, ये तो किसी ने नहीं सोचा था भाई, और ये हो गया। हम सब लोग रोक दिए गए, हम सब लोग खड़ा कर दिया गया। और किसने खड़ा किया? एक ऐसा जीवाणु जिसको हम देख भी नहीं सकते। मतलब लोग कहा जाता है ना, महाभारत ने, कौरवों ने कहा नाम सुई की नोक के हिसाब की बड़ी जमीन, उस सुई की नोक से भी छोटा था भाई। और सोचिए उस सुई की नोक से भी छोटे जीवाणु ने हम सबको खड़ा कर दिया जहां हम थे, यथ स्थिति में खड़े। तो जीवाणुओं में बहुत ताकत है, पर वो ताकत एक स्वस्थ शरीर के सामने कुछ भी नहीं है। और अधिकतर वही लोग बचे जो स्वस्थ थे, जिनकी फिटनेस बेटर थी। कुछ लोग उसके अपवाद हो सकते हैं, पर अधिकतर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वही लोग इससे बचे।
1: ये बात समझ में आती है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर महामारियों की संख्या कम होती आई है, और विज्ञान की प्रगति के कारण हमने बहुत सारे वैक्सीन्स निकाल लिए, बहुत सारे ऐसे टीके लगवाए जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित हैं। और ये जो उदाहरण आपने कोविड का भी अभी दिया, उससे हमें पता चलता है कि कोई भी नई चीज प्रकृति में ऐसी आ सकती है और वो हम पर हावी हो सकती है अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा है, हम अंदर से अपनी इम्यूनिटी को, अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को हमने ठीक नहीं रखा है, तो फिर हम बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं और ऐसा कोई भी जीवाणु हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और हम इस आक्रमण को झेल नहीं पाएंगे, फिर हमारी हार हो जाएगी, यानी हम अपने स्वास्थ्य को खो देंगे, अपनी जीवन से भी व्यक्ति हाथ धो बैठता है। और कोविड में हमने ये चीजें देखी। अब ये चीज समझने की है कि क्या चीजें एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाती हैं, क्या चीजें उसके रोग प्रतिरोधक शक्ति को, उसकी जीवनी शक्ति को बेहतर बनाए रखती है ताकि वो ताकतवर बना रहे।
0: अगर बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छी एक्सरसाइज, मतलब अच्छा व्यायाम, अच्छा भोजन और अच्छी नींद, ये तीन चीज अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। गोरखपुर में एक प्रेस है जिसका नाम है गीता प्रेस, और वो हमारे हिंदू साहित्य के लिए बहुत सारी किताबें छापता है, और महावीर प्रसाद पोद्दार जी ने उसकी स्थापना की। और गीता प्रेस, उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर श्रद्धेय विट्ठल दास मोदी जी की लिखी हुई किताब रोगों की सरल चिकित्सा, जो कि नेचुरोपैथी में सबसे ज्यादा बिकने वाली हिंदी में पत्रिका है, इसको इंग्लिश में नेचर क्योर फॉर कॉमन डिजीजेस के नाम से इसका ट्रांसलेशन भी हुआ, और ये विभिन्न भाषाओं में, इसका करीब 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। उन्होंने और मेरे बाबूजी ने एक बार परिचर्चा में कुछ पॉइंट्स लिखे कि मनुष्य बीमार पड़ता है और नित्य की मतलब और जो चीजें उसको बीमार करती हैं वो उसको कुछ पॉइंट्स में लिखा, तो मैं वो पढ़ना चाहूंगा हमारे श्रोताओं के लिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है उसमें है, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, हम नहीं जानते कि हमें कितना खाना चाहिए। सबसे पहली बात। फिर भोजन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, ये बात आज नहीं लिखी गई है, ये बात 1960 में लिखी गई थी। और 1960 में देखिए दो व्यक्तियों ने भोजन के बारे में बातचीत की, और आज हम अब 2025 में डाइट, फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। और लोगों ने इसको बहुत पहले लिखी और एक सिंपल बात लिखी, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, हम गलत चीजें खाते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं। इसका मतलब फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हम कम खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं। हम किसी के घर गए, अरे आप क्या लेंगे, चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ नाश्ता करेंगे, वो खाना खाने का या लंच का या इवनिंग टी का टाइम नहीं, बट हम खा रहे हैं, बेमेल चीज खाते हैं, चबा कर नहीं खाते, दांतों से पूरा काम नहीं लेते हैं। हम लोग ने पहले भी भैया बात की कि अगर हम लोग चबा के खा ले तो हम लोग की आंतों का काम आधा हो जाएगा। जितना चाहिए उतना पानी नहीं पीते हैं, पूरा का पूरा भैया एक लेक्चर, मतलब कितने एपिसोड्स हमने आपने किए पानी को लेकर कि हमें पानी पीना चाहिए। आवश्यक श्रम नहीं करते हैं अथवा जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से श्रम कर बैठते हैं। इसको एक सिंपल वे में कहा जाए कि हम जिम जाते नहीं, मगर कोई दोस्त अगर हमको लेके गया तो उस दिन हम खूब वजन उठा लेते हैं, आई अजब, या आज चलो दौड़ कराते हैं, आज कहीं देखा बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ले लिया, खूब खेला उस दिन, उस दिन खूब खेला कि पूरे शरीर में दर्द हो गया और अगले दिन कुछ नहीं खेला। तो एक मतलब कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। खुली हवा और धूप का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक से नहाते नहीं है, पूरी लंबी सांस नहीं लेते हैं, गंदी हवा और गंदे वातावरण में रहते हैं, व्यर्थ की चिंताओं और कामनाओं से मन को परेशान रखते हैं। वांट और नीड, जिस दिन हम वांट और नीड मतलब हमें क्या चाहिए और हमें क्या जरूरत है, इसमें अगर हम बैलेंस, या मुझे भाई अच्छे से याद है हमारे एक लेक्चर में जब हम मैं बाउंड टाबू वाले उस फंक्शन में आया था तो एक स्पीकर ने सबसे पहले ये बात बोला था, कंट्रोल योर वांट एंड आइडेंटिफाई योर नीड्स। इफ यू विल आइडेंटिफाई मींस मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं। फिर उन्होंने कहा था मुझे एक महंगी गाड़ी चाहिए, ये बात फिर वांट पे आ जाती है, नीड से ऊपर उठ जाती है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों का उपयोग ठीक से ना करना, कोई ना कोई नशा अथवा दूसरों की कोई बुरी आदत अपने पीछे लगाए रख। सोचिए भैया इतनी बातों में उन्होंने पूरे हेल्थ को समेट के रख दिया, जिसमें नहाने से, ठीक से नींद से, अपने मन को कंट्रोल करने से, भोजन से। अब अगर हम ये सब ठीक कर लें तो हम शायद बीमार कभी ना पड़े।
1: ये बहुत ही सुंदर बिंदु हैं जो उन्होंने सागर को गागर में भर के, सिंधु को बिंदु में समा कर हमारे सामने रखे हैं। और मैं समझता हूं अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति अपने आप को उस सशक्त राजा की तरह बना सकता है जिसकी सेना शक्तिशाली हो, जो स्वयं शक्तिशाली हो, जिस पर कोई भी रोग आक्रमण नहीं करेगा। दोस्तों आज की बातचीत में घड़ी इशारा करती है कि यहां रुकना होगा, मगर बहुत ही सुंदर आज की ये चर्चा रही है। और मैं समझता हूं कि आज अपने स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो धारणा है, स्वास्थ्य कहते ही मन में जो चित्र उभर कर आता है, उसे बदलने की भी जरूरत हमें आज महसूस हुई है। और आशा करता हूं कि आप सभी उस पर कार्य भी करेंगे। आज हमारे प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।

0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में इस बात को समझा है कि रोग कहां से उत्पन्न होते हैं। रोगों के लिए तो अनेक कीटाणु हैं, अनेक जीवाणु हैं जो हम पर आक्रमण करते ही हैं और शरीर उनसे लड़ता भी है। मगर अगर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी या हमारी जीवनी शक्ति अगर कमजोर हो जाए तो फिर ये रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। ये रोग ज्यादा दिनों तक हमसे लड़ते रहते हैं और इसके कारण हम बीमार पड़े रहते हैं। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अपने आप को शक्तिशाली, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, ये भी बात समझा। बिना भूख के खाना नहीं है, जितना खाना है उतना ही खाना है, बेसमय नहीं खाना है, बेमेल चीजें नहीं खानी है, अपने आबो हवा के बारे में ध्यान रखना, ये सारी चीजें स्पष्टता से आज समझ में आई हैं। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आज फिर आप सबका स्वागत है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में। याद होगा पिछली कड़ी में हमने एक भयावह सच को देखा था, एक ऐसे अक्स को देखा था, एक ऐसे चित्र को देखा था जो हमारे आसपास हो रहा है, हमारे समाज में, हमारे आसपास पर्यावरण में हो रहा है, और वो सच काफी डरावना था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब हमारी बातचीत हो रही थी तब हमें ये पता चला था कि धरती या हमारे समाज का, हमारी पूरी जो दुनिया है, उसका विनाश नहीं होगा बल्कि परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन की तरफ ही हम अग्रसर है। क्या होगा ये परिवर्तन, आने वाला वक्त कैसा होगा, इसी पर कुछ और बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हर बार की तरह इस सफर में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: एक सच को हमने देखा था, काफी भयावह था सिस्टर शिवानी। ऐसा लग रहा था कि सचमुच सब खत्म होने वाला है। हम में से हर कोई शायद आज इस बात पर खड़ा है कि पता नहीं अगला पल क्या होगा, लेकिन आपने एक आश्वासन दिया था कि परिवर्तन होगा, और परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है, ये कहा जाता है। क्या होगा वो परिवर्तन, आने वाला वक्त क्या कह रहा है?
2: आने वाले वक्त को समझने के लिए हमें समय को समझना पड़ता है कि टाइम, हाउ डज टाइम रियली मूव एंड व्हाट इज टाइम, यू नो, बिकॉज समय के बारे में, क्रिएशन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज मानी जाती हैं, बहुत सारी थ्योरीज को अभी भी कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट टाइम, देन वी विल अंडरस्टैंड के जो बीता वो क्या था और जो आने वाला है वो क्या है, और जो अभी चल रहा है वो कैसे बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दिस विल गेट इंटीग्रेटेड वेरी नाइसली। टाइम अगर हम देखें तो इट्स बेसिकली जस्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, यू नो, या दो इवेंट्स के बीच का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो टाइम है, समय जो बीत गया। एक बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो हम मेजर करते हैं वो एक डे है, अ साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, 24 आवर्स। फिजिकल नेचर में जितना भी हम परिवर्तन देखते हैं समय के अनुसार वो सब साइक्लिक है, यू नो, दिन और रात का चक्र, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद फिर से सुबह। अब इसी को बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा साइकिल को, तो वी टेक द साइकिल ऑफ हाउ डज वन ईयर, तो एक साल भी चार स्टेजेस से गुजरता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर।
1: ऋतुओं की बात अगर हम करें
2: तो विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग। देयर इज नो एवर एनी क्वेश्चन कि इसके बाद अब क्या होने वाला है। रात के बाद कभी ये क्वेश्चन नहीं आता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इन साइकिल्स को हम हमेशा देखते आए हैं। तो सारे जो प्रकृति में समय का परिवर्तन है वो सब कुछ साइक्लिक है,
1: बहुत फिक्स्ड है, एक्चुअली
2: फिक्स्ड है, और बहुत एक्यूरेटली वो साइकिल मूव ही करता जाता है। अब इसमें हम कहें कि ये शुरू कब हुआ, क्योंकि अगर कभी शुरू होगा तो इसका मतलब वो एंड भी होगा। तो एक साइकिल का भाव ही ये है कि टू अ साइकिल देयर इज नेवर एनी बिगिनिंग और एनी एंड, क्योंकि हर पॉइंट को जाकर इट्स इटर्नल। The world drama, it never gets created and never gets destroyed. It's cyclic. लेकिन जहाँ समय की बात on a bigger circle, you know, एक दिन का चक्र हमने देखा, फिर एक वर्ष का भी चक्र हमने देखा, अब इसी को डिटैच होकर और बड़ा पिक्चर देखें कि the world cycle, how would that move? That will also be cyclic. लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान अभी भी उसको linear fashion में लेता है कि the earth was created. And that's why today we are talking of the earth getting destroyed.
1: नहीं तो वो जो बिग बैंग थ्योरी है या जो बात ये कही गई है कि किस तरह से पृथ्वी का जन्म हुआ था,
2: राइट,
1: तो वैसे नहीं जन्मी थी।
2: सी अगेन वी आर नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, लेकिन साइंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले हमें बताया गया था कि पृथ्वी फ्लैट है, राइट, और कितना समय तो यही सोच के चलते रहे ना कि द अर्थ इज फ्लैट। फिर साइंस ने एक दिन बताया द अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज सर्कुलर। तो इसी तरह टाइम इज साइक्लिक, इसके ऊपर बहुत सारी थियोरीज हुई, बिग बैंग थ्योरी जैसे हुई, लेकिन इन थ्योरीज को भी अभी भी कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है, और वो भी साइंटिस्ट से कर रहे हैं, बिकॉज साइंस इज अ कंटिन्यूस रिसर्च प्रोसेस। तो हर थोड़े समय के बाद आप जो रिसर्च करेंगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए एविडेंस मिलेगी, जिससे आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगेगा. इनफैक्ट रिसेंटली ही इन द ईयर 2002 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दो साइंटिस्ट हैं, पॉल स्टिनहर्ड एंड नील ट्यूरोक, जिन्होंने ये बिग बैंग थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, उसको चैलेंज किया है. एंड दे से टाइम इज इटर्नल, इट इज एन इटर्नल साइकिल ऑफ एक्सपेंशन एंड रीबर्थ. वो कोई ना क्रिएट हुआ था ना कभी फिनिश होगा, इट इज एन इटर्नल साइकिल ऑफ रीबर्थ. तो वी नीड टू नाउ लुक एट इट इन अ बिगर पिक्चर, कि जैसे दिन और रात का साइकिल, ऋतुओं का साइकिल, वैसे ही एक थोड़ा उससे बड़ा साइकिल, यू नो, ये विश्व, ये कब शुरू हुआ, या क्या ये कभी शुरू भी हुआ था, या क्या ये कभी खत्म होने वाला है, या ये भी एक साइकिल ही है, क्योंकि समय का ही तो खेल है ना सारा. कल आज और कल हम कहते हैं, तो कल क्या था, आज क्या है, और कल क्या होने वाला है. ये क्वेश्चंस जब आंसर हो जाते हैं तो भय, जितना भी हमने देखा पिछली बार कि इतना सारा जो भय जो क्रिएट हो जाता है वो सारा फिनिश हो जाता है.
1: नहीं, तो अल्टीमेटली आंसर इज दैट ना ये कभी क्रिएट हुआ.
2: सी, टाइम इज इटर्नल, इट्स अ साइकिल. और ये तो जो डायरेक्टर है इस ड्रामा का, या जो इस ड्रामा से डिटैच होकर पूरे ड्रामा को देख रहा है, निराकार परमात्मा, जिसे हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो स्वयं हमें इस समय का परिचय देते हैं कि ये समय भी एक चक्र है, जिसको हम आज दिन तक काल चक्र कहते आए. यू नो, द वर्ल्ड इज अ ड्रामा. जैसे साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी भी तो एक एक्सपेरिमेंट है. एंड सारा कुछ क्योंकि यहाँ रिकॉर्डेड है, आत्मा ने कल भी देखा था, आज भी देख रहा है, और जो कल आने वाला है वो भी देखा हुआ है. इट्स होल थिंग इज अ साइकिल,
1: इट्स साइक्लिक. और इसलिए, हाँ,
2: इसलिए सारा कुछ यहाँ है. तो रिसर्च हम क्या करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, द माइंड विल स्लो डाउन एंड धीरे धीरे खुद से ही ये सारे आंसर्स मिलते हैं, दैट यस, आई कैन सी हाउ आई हैव ट्रेवल्ड ऑन दिस होल जर्नी, देन आई डू नॉट नीड एनी कॉन्सेप्ट, then I do not need any belief system. So time cyclic hai, and this even science has now started exploring, you know, that the world on a bigger level is also just a cycle of time. So cycle hai, isliye na uski kabhi shuruaat hai, aur na hi uska kabhi ant hai. It is a continuous interplay of energies. Neither gets created, nor gets destroyed. So usse hume ek constant factor ye mil jata hai, ki atma ना क्रिएट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है. इट्स अ फिक्स्ड नंबर, सो इट्स बेसिकली अ क्लोज्ड सिस्टम. अब ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, इसके ऊपर एनर्जी है ये, तो इसके ऊपर कुछ लॉज भी वर्क करते हैं, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट एनर्जी
1: कैन ईदर बी क्रिएटेड
2: नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो इट्स अ कॉन्स्टेंट. और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि वेन एवर देर इज मूवमेंट, तो एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड from a higher state to a lower state. और ये हम प्रकृति में भी हर तरफ देखते हैं, एक potential energy या एक state of stillness जो है, और उससे जब हम movement या action में आते हैं तो energy gets converted from potential energy to kinetic energy, and धीरे धीरे धीरे वो potential energy finish हो जाती है. इसको second law of thermodynamics बोलते हैं, या इसको हम law of entropy भी बोलते हैं, जो हमें ये एक और चीज बताती है कि everything is in a state of order, फिर धीरे धीरे वो order से chaos में जाती है. First is it is in a state of order, तो it's potential energy.
1: हाँ, जो still है, जो
2: still है, तो it is in an ordered state. फिर movement, action में आने से वो ordered state से chaos में जाती है, until it is replenished or recharged by an external source of energy, which is not a part of that system. मतलब कोई भी चीज जब एक सुषुप्त अवस्था में है, एक पोटेंशियल स्टेट में है, जब वो हलचल में आएगी या वो कर्म में आएगी, वो मूवमेंट में आएगी, एक्शन में आएगी, तो धीरे धीरे उसकी जो ऑर्डर्ड स्टेट है वो केओस में जाती जाएगी, डिसऑर्डर होता जाएगा. और फिर जब उसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो उसको रिचार्ज करेगी, तो फिर वो केओस की स्टेट से वापस ऑर्डर की स्टेट की तरफ चली जाती है. जैसे सूर्य की शक्ति है, सूर्य की शक्ति एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो इस पृथ्वी को हर रोज रिप्लेनिश करती है, रिचार्ज करती है. इट्स द सन्स एनर्जी विच रिचार्जेस एंड रिन्यूज ऑल आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स. तो इसी तरह ये भी एक सिस्टम है. अब इसको हम अगर बड़े लेवल पर देखें तो जैसे बैटरीज होती है, नो रिचार्जेबल बैटरी, इनिशियली इट इज इन अ स्टेबल स्टेट, बैटरी को आप यूज करते जाइए तो धीरे धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए, वो फिर रिचार्ज हो जाती है. तो जब हम ये दो लॉज को देखते हैं इस सृष्टि पर वर्क करते हुए, नीदर गेट्स क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड दूसरा व्हेन इट कम्स इनटू मोशन इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट. तो ये दो लॉज से हमें इस वर्ल्ड ड्रामा की पूरी नॉलेज मिलती है कि एक तो ये जो क्रिएशन है ये क्लोज्ड सिस्टम है, सोल्स एंड मैटर, आत्मा और प्रकृति, इसमें कभी कम और ज्यादा नहीं हो सकता. जितनी आत्माएं टोटल है वो उतनी ही टोटल है. इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाली है. सेकंड, जब ये आत्माएं मूवमेंट या एक्शन में आती है, जब ये अपनी हाईएस्ट स्टेज में है,
1: जब वो स्टिल
2: स्टिल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, यू आर नॉट इन मूवमेंट, सो यू आर इन द हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्योरिटी. और इसलिए हमने कहा परम धाम में आत्मा परफेक्ट, 100% प्योर, 100% पीसफुल. सृष्टि पर आई, शरीर लिया, जैसे ही शरीर लिया कर्म करना शुरू कर दिया, मूवमेंट आई. सो देन दैट एनर्जी वंस इट कम्स इनटू मूवमेंट, तो धीरे धीरे धीरे इट इज मूविंग फ्रॉम अ ऑर्डर्ड स्टेट टू अ क्योटिक स्टेट, एंड क्योटिक खत्म होने से पहले इट विल हैव टू बी
1: रिप्लेनिश्ड.
2: अगर उसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो वो वीकर एंड वीकर होता जाएगा, उसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से वापस क्योटिक स्टेट से ऑर्डर्ड स्टेट में लाना पड़ेगा. और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें फिर ये समझ में आता है कि जो इस समय की शुरुआत थी, वैसे तो कोई आदि और अंत नहीं है, लेकिन अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट दे साइकिल को कि अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी टेकन एज दैट पॉइंट व्हेन द सोल इज इट एट इट्स एब्सोल्यूट
1: स्टिल
2: हाईएस्ट एनर्जी. और एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा?
1: जब होल ऑफ द एनर्जी इज फिनिश्ड. एक्चुअली
2: इट विल नॉट फिनिश टोटली, बट वो उस स्टेज पर पहुंच जाएगी जब उसको आवश्यकता होगी.
1: हाँ, बाहरी एनर्जी की. तो हम, मुझे लगता है उस लेवल पे पहुंच गए हैं.
2: राइट. तो जो आप जैसे कह रहे थे ना उस दिन कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका आगे क्या सोल्यूशन है, इट इज ओनली बिकॉज वी आर रीचिंग टुवर्ड्स दैट और वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर, जो वो केओटिक स्टेज है. हम शुरू हुए थे, सृष्टि चक्र शुरू हुआ था बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज से, लेकिन वो लॉ ऑफ एंट्रोपी वर्क करते करते इट इज रीच्ड दैट इज एब्सोल्यूट लोएस्ट स्टेज, एंड उसका असर चारों तरफ दिखाई दे रहा है. मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, प्राकृतिक.
1: इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली द सोल, सोल एनर्जी जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक एनवायरनमेंट, मैटर एनर्जी,
2: बिकॉज सोल का प्रभाव एनवायरनमेंट पे पड़ता है. सोल का प्रभाव ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट पे पड़ता है. आप देखो जब सोल वीक हो जाती है तभी तो प्रकृति को एक्सप्लॉइट करती है ना. अब जब सोल वापस रिचार्ज हो जाएगी तो प्रकृति तो ऑटोमेटिकली प्योरिफाई हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाई वी अंडरस्टैंड कि हमें बाहर कुछ बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है. यू नो द चार्जिंग हैज टू बी डन हियर, द प्योरिफिकेशन हैज टू बी डन हियर, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो इफ वी सी दिस साइकिल, तो स्टार्टिंग ऑफ दिस साइकिल, रेफरेंस पॉइंट नॉट एक्चुअल स्टार्टिंग, वो होगा जब आत्मा बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज में है. एंड सो कॉल्ड एंड ऑफ द साइकिल, वो वाला समय होगा जब वो हायर सोर्स को
1: जरूरत
2: इंटरवीन करना पड़ेगा. इस वर्ल्ड ड्रामा में इंटरवीन करना पड़ेगा, फिर से वो आत्माएं जो कमजोर हो गई है उनको फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए. और ये हायर सोर्स क्या होगा जो इंटरवीन करेगा? ये वो सन नहीं हो सकता,
1: ये तो परमात्मा जिनकी हम बात कर रहे हैं. अगर हमने इवन सोल्स की भी बात की है, जो पूरी बातचीत की है उसमें हम हर बार ये कहते हैं ना कि आप ये कहती आ रही हैं कि बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो यू टेक द एनर्जी फ्रॉम द सुप्रीम सोल.
2: व्हाई गॉड, परमात्मा वो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि वो कभी मूवमेंट में नहीं आते हैं
1: तो उनके वो रिटेन रहे हैं.

0: शरीर नहीं लेते हैं, हम आत्माएं शरीर लेती हैं, तो हम अपनी ओरिजिनल स्टेट ऑफ एनर्जी से क्योटिक स्टेज तक आ गई, लेकिन परमात्मा वो शरीर नहीं लेते, तो ही रिटेन्स हिज इंट्रेंसिक बेसिक एनर्जी लेवल एंड दैट एनर्जी विल देन कम एंड और नाउ कम्स एंड रिचार्जेस अस. सो दैट इज द बिगर साइकिल कि हम थे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर, थे काम करते करते करते करते लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर आ गए हैं, हायर सोर्स ऑफ एनर्जी अब इस क्लोज्ड सिस्टम में इंटरवीन करते हैं, सोल को दोबारा से चार्ज करते हैं, और जैसे ही सोल दोबारा से चार्ज होगी तो क्या हो जाएगा,
1: अगेन वी विल गो बैक टू दैट हायर लेवल,
0: अगेन वी विल गो बैक टू द हायर लेवल.
1: नो, बिकॉज़ द साइकिल आल्सो, यू नो, इफ वी लुक एट इट, द नाउ द नेक्स्ट स्टेप शुड बी दैट हायर लेवल, द जहां से हमने शुरू किया था.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि द हायर सोर्स इज इंटरवीन्ड नाउ ना, तो ऑर्डर्ड स्टेट से कियोटिक स्टेज में आए, क्योंकि हर चीज नई से पुरानी, अब
1: पुरानी से फिर नई पे जाएंगे,
0: अब कियोटिक स्टेज से वापस ऑर्डर्ड स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि वो हायर सोर्स ने इंटरवीन कर दिया. सो देन वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड साइकिल वेरी एक्यूरेटली कि क्या समय था, वो हाईएस्ट स्टेज एक समय पे थी, अब कियोटिक स्टेज आ गई है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है. ये तो
1: यहाँ एक्चुअली सिस्टर शिवानी, इंडिविजुअल तक जब हम बात कर रहे थे तब तो इट वाज वेरी क्लियर, यू नो, लाइक आई कुड मेक इट आउट दैट ईच इंडिविजुअल हाउ वी, मी, यू कैन हैव अ कनेक्शन विद परमात्मा एंड हाउ वी कैन एक्चुअली रिचार्ज इंडिविजुअलिस्टिकली. बट इन द लॉन्गर रन, यू नो, इन द लार्जर पर्सपेक्टिव व्हेन वी लुक एट इट, हाउ इज ही गोना इंटरवीन, लाइक, यू नो, इतना कियोटिक, पूरा जो समाज का ढांचा इतना बुरे हालात में है, वो कैसे इंटरवेंशन?
0: तो समाज का ढांचा किसने बनाया इस तरह से?
1: हाँ, हम ही ने,
0: आत्माओं ने. वो परमात्मा आकर रिचार्ज किसको करते हैं?
1: आत्मा को.
0: आत्मा को. उन्हें कोई फिजिकली चेंज नहीं करने की जरूरत है किसी भी चीज को. सोसाइटी इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सोल. हम हाईएस्ट स्टेज पे थे, यूज करते करते कियोटिक स्टेज पर आए, सोर्स ऑफ एनर्जी ने इंटरवीन किया, चार्ज किया, सो वी आर अगेन एट अ पॉइंट जहाँ वो हाईएस्ट स्टेज या वो ऑर्डर स्टेज फिर से घूमनी शुरू हो जाएगी. तो वी अंडरस्टैंड कि ये साइकिल भी एक बिगर साइकिल है,
1: repeated.
0: और इस साइकिल को अनेक सिविलाइजेशंस में, हमारे शास्त्रों में भी, हर एक स्क्रिप्चर में भी इसे एक्सेप्ट किया गया कि टाइम इज साइक्लिक. एक ऐसा समय था जिसको हम पैराडाइज कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बहिश्त कहते हैं, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, कितने शब्दों से उसको याद किया. वो क्या समय था? पैराडाइज हम किसको कहेंगे? वेर एवरीथिंग वॉज इन इट्स हाईएस्ट स्टेट. तो वो एक समय था, और हर धर्मशास्त्र हमें ये भी बताता है कि ऐसा वाला समय फिर से
1: आएगा,
0: फिर से आने वाला है. तो अब हम उस समय के एज पर आकर खड़े हो गए हैं. तो जैसे हमने देखा कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, साइकिल में घूमा, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, साइकिल. सिमिलरली ऑन अ बिगर पिक्चर, सतयुग, आपने उस दिन जब हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग और ये सब हो रहा है, तो आपने कहा सच में ऐसा लगता है कि कलयुग चल रहा है. युग मतलब समय, कलयुग, ये हमें किसने कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये कलयुग चल रहा है, फिर भी आत्मा के अंदर से कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि ये कलयुग चल रहा है. तो कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग, जहां दुख, अशांति, भ्रष्टाचार चारों तरफ है. तो ये वो रात्रि का समय है, इसलिए हम इसको कलयुग कहते हैं. तो सृष्टि का जो चक्र है वो भी इसी तरह चार स्टेजेस से गुजरता है. सतयुग, सत्यता का युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. और अब हम जहां आकर पहुंचे हैं वो कलयुग की भी अति, जो आपने कहा अति हो चुकी है, हर चीज की अति हो चुकी है. तो अति के बाद
1: अंत होगा,
0: तो अंत नहीं होगा ना, क्योंकि साइकिल है. तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इसी तरह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद
1: सतयुग. तो हमारी, हमने ही, यानी मैं या आप या जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम सब वो ट्रैवल करके आए हैं चारों युग.
0: इसीलिए तो उसको याद करते हैं ना. इसीलिए तो वो सुख की दुनिया याद आती है. जिसने सुख देखा नहीं होगा, देखो परम धाम क्यों याद आता है.
1: बिकॉज यू यू टोल्ड अस कि वहां आप हम रहे हुए हैं,
0: तो हम रहे हुए हैं इसलिए वो याद आता है. याद हर एक को क्या आएगा, सिर्फ जो सीन उन्होंने
1: देखा
0: होगा. जो सीन देखा ही नहीं है अगर,
1: यू कांट इमेजिन, यू कैन जस्ट इमेजिन,
0: आपको कभी याद ही नहीं आएगा. यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, यू विल नॉट लुक फॉर इट, यू विल नॉट वॉन्ट इट,
1: यू विल नॉट नो इट.
0: यस, क्योंकि आत्मा ने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो उसकी लाइफ में वो एपिसोड ही नहीं है, तो इसलिए वो वाला एपिसोड उसको पता ही नहीं चलेगा, उसने उसमें रोल प्ले ही नहीं किया था.
1: और इतनी शिद्दत से हम उसे याद करते हैं बिकॉज वी हैव, वी मस्ट हैव रियली एंजॉयड इट.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि हम कहते हैं ना सुख की दुनिया थी, तो उसको ऑब्वियसली याद किया था. तो इसीलिए जैसे हम लोग कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी हम ऐसे समय पर आकर पहुंच गए हैं जहां हम खेलते खेलते थक गए हैं. मुक्ति भी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा को ये याद है कि ऐसे समय पर जब हम खेलते खेलते थक गए थे, तब हम थोड़ी देर के लिए घर गए थे, तो इसलिए आत्मा उस घर को याद करना अब फिर से शुरू कर रही है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड यहाँ है. तो बच्चा नीचे खेलने के लिए आया था, 4-5 घंटे अच्छी तरह से खेला, लेकिन खेलते खेलते
1: थक गया.
0: थका. पहले शुरू का खेल कैसा था?
1: वेरी इंटरेस्टिंग,
0: वेरी इंटरेस्टिंग,
1: बहुत अच्छा.
0: तो इसलिए जैसे कई बार लोग कहते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों, इतना दुख होना था, इतनी अशांति थी. बट वो तो सिर्फ अभी का पाठ है, क्योंकि हम ड्रामा को कितने पाठ में देख रहे हैं, सिर्फ
1: जो हमारे हो रहा है.
0: क्योंकि हम बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में है. जब हम सोल कॉन्शियसनेस में जाएंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि वी हैड अ गुड टाइम, हमने बहुत अच्छा पीरियड एंजॉय किया है सारा. अब इतनी देर खेलते खेलते तो थकेंगे ही ना. क्या ये हो सकता है कि हम थके ही ना इसलिए हम खेलेंगे ही नहीं? कि नहीं, इससे अच्छा तो हम ऊपर ही बैठे रहते, अगर इतना ही दुख फिर से देखना था, इससे अच्छा हम आते ही नहीं. तो नहीं, हम सृष्टि पर आते हैं, बहुत अच्छा खेल खेलते हैं. 4 घंटे, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग.
1: लेकिन अब हम वापस जाएं, क्योंकि आपने बीच में एक बार कहा था कि इस शरीर को छोड़ के जो सोल है वो वापस नहीं जाती है,
0: right.
1: वो दूसरी बॉडी ले लेती है.
0: एंड आई सेड टिल वन पर्टिकुलर टाइम.
1: हाँ, सो दैट पर्टिकुलर टाइम हैज कम.
0: टिल वन पर्टिकुलर टाइम, इट्स लाइक सेइंग के यू नो, एक ड्रामा है, स्टेज पर चलता है, हम सब एक्टर्स बैक स्टेज है, ठीक है. अपने अपने रोल के अनुसार जब हमें क्यू दिया जाता है, हम बैक स्टेज से फ्रंट पे आ जाते हैं स्टेज पर. और ये ड्रामा ऐसा है कि एक बार एक्टर स्टेज पर आते हैं, फिर उनका रोल स्टेज पर ही है टिल द एंड ऑफ द शो.
1: सो नाउ द एंड ऑफ द शो इज कमिंग.
0: एंड ऑफ द शो तब होता है जब सारे एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं. एंड ऑफ द शो इज कमिंग, नो दैट यू विल हैव टू आंसर नाउ. We just discussed in the last episode that the end of the show is...
1: I think it looks like that,
0: yeah,
1: end of the show...
0: Yeah, it's not the end of the show. It's the beginning of the next show.
1: So, but for that, all of us will have to go
0: back... इसीलिए तो population देखो कितनी drastically बढ़ रही है. जो हमने देखा कि 150 वर्ष पहले सिर्फ 100 करोड़ population थी. आज 650 करोड़ population सिर्फ 150 वर्ष में बढ़ी है. Just 150 years... 150 वर्ष पहले इस सृष्टि के ऊपर सिर्फ सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसका बेसिक रीजन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन
1: बिकॉज़ द नीड टू डेवलप न्यू
0: रिसोर्सेज उतने ही है ना. आपकी पृथ्वी उतनी है, पानी उतना ही है, हरियाली उतनी ही है, और आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से 650 करोड़ हो गई. तो ये तो वैसे ही हुआ कि घर में खाना तो उतना ही है, 4 लोगों की जगह 40 लोग हो गए. खाना तो कम पड़ेगा ही. और फिर जब खाना कम पड़ा, तो हमने एक दूसरे की थाली से छीनना शुरू कर दिया. जब हम 4 लोग थे, तब हम एक दूसरे की थाली से छीनते नहीं थे, तब हम आपस में बहुत प्यार से रहते थे. लेकिन जब 40 लोग आ गए उसी घर के अंदर, तो घर का वायुमंडल कैसा हो जाएगा?
1: Definitely.
0: हर बात में खींचतानी हो जाएगी, और हर एक के अंदर ये डर बना रहेगा कि खाना तो इतना ही है, अब इनके खाने से पहले मैं ले लूं, तो क्या ये घर में सत्ययुग से कलयुग नहीं बन गया? जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड. तो 150 वर्ष पहले अगर हम चले जाएं, तो इस सृष्टि के ऊपर सिर्फ 100 करोड़ पॉपुलेशन थी. व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बस बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सो ऑल दिस थकावट वाला पीरियड, जो चीटिंग एंड थकना वो कब हुआ, वो तो सिर्फ अभी अभी में हुआ।

0: नहीं होती
1: कम
0: है,
1: नहीं होती है।
0: लेकिन वो जो ज्यादा होती है, इट मीन्स सत्ययुग में जितने लोग थे
1: हाँ
0: तो वो बीच बीच में और आते गए।
1: हाँ इसीलिए तो अभी तो हमने देखा कि 150 वर्ष पहले ही 100 करोड़ पॉपुलेशन
0: नो
1: थी
0: बट देन इट मीन्स देवर ऑल देवर देयर इन परम धाम ऑल दैट टाइम इन ऑल
1: एंड दे
0: दीज थ्री
1: कम डाउन।
0: युग्स
1: हाँ
0: एंड देन कलयुग में आते ही दे
1: बिल्कुल,
0: ऑल कम।
1: जो 550 करोड़ आत्माएं सिर्फ इस 150 साल के अंदर आई है, तो वो 550 करोड़ आत्माएं कहाँ होंगे?
0: वो परम धाम में
1: परम
0: थे।
1: धाम में। तो हर आत्मा अपने, इसीलिए बैक स्टेज, क्योंकि हर आत्मा का डिफरेंट रोल है।
0: ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है अगेन, यू नो लाइक इसको एक्सेप्ट करने में भी अगेन अनुभव के बाद ही हम, और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही, खुद अपने अंदर सोचने के बाद, खंगालने के बाद ही इसे स्वीकारते हैं हम हर बार की तरह। बस सिस्टर शिवानी, ये एक अच्छी आपने हमें बात बताई कि एटलीस्ट अभी भी वक्त है और एक साइकिल है, एक चक्र है, काल चक्र की जिसे हम बात करते आ रहे हैं। तो वक्त है कि एक सुंदर युग इंतजार कर रहा है।
1: और उसको हम देखें कि क्या वो क्या
0: हाँ,
1: है।
0: आगे क्या होगा, क्या है वो सुंदर युग और कौन कौन वहां तक पहुंचेगा ये भी एक नई बात हमारे सामने आई है। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। समय चक्र, सदियों से सुनते आ रहे थे इस शब्द को, कब से काल चक्र की बात।
2: अभी बजे हैं सुबह के 8। स्वयं के प्रति 1 मिनट का समय दें।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग राजस्थान जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं। तो नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आशा करूंगा कल का रविवार का दिन आपने बहुत ही अच्छा बिताया होगा। और आज सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, तो पूरे हफ्ते के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे मित्र कल जैसे कि गुड मॉर्निंग आबू में आप सभी ने बड़े प्यार से बात किया था, तो आज भी हम चाहेंगे कि जिस तरह से कल का दिन आपका बेहतर बीता है, आज का दिन भी और सुंदर और बेहतर बीते, ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए। आज जैसे कि हमने कल बात की थी डॉटर्स डे के रूप में, पुत्री दिवस के रूप में, और कल काफ़ी गीत भी आपको सुनाए थे। कल की बातें इसलिए याद कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर आप सच्चे दिल से अच्छी चीज़ों को याद करते हैं तो वो आगे भी क्या होता है, फॉरवर्ड होते रहता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छी चीज़ों को याद करते रहे और अपने जीवन को और सुंदर बेहतर बनाते रहे। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है और वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ सदियों तक हमारे साथ रहेगी। उनके उपस्थित होने का, उनके होने का एहसास दिलाती रहेगी। तो आइए आज के इस खूबसूरत दिन को याद करते हुए भारत की भारत रत्न सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका, जिनकी आवाज़ ने 6 दशक से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आँख

आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को संबल मिला। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें विरले ही जन्म लेती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो चलिए आज शुरू करते हैं, लता जी के खूबसूरत गीतों का आनंद देते हैं आपको। और मैं चाहूँगा कि आप भी, अगर उनकी कुछ यादें आपके जहन में ताज़ा हैं तो हमें बताइए, हमें खुशी होगी और आप सभी को भी उतनी ही खुशी होगी, है ना। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत समा बांधने वाला खूबसूरत गानों का आनंद आपके लिए। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। लता जी के खूबसूरत नगमे आप सुन रहे थे और बड़ा ही जो कशिश है वो भी हो रहा है, तो चलिए उनके बारे में बातें करते हैं, उनके जीवन के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 28 सितंबर यानी आज ही के दिन 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर का नाम विश्व के सबसे जाने माने लोगों में आता है। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक बहुत ही पॉपुलर संगीत रंगमंची गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमन अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। विशेषताओं के कारण उनके इस प्रतिभा को बहुत जल्दी ही पहचान मिल गई, लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही उनको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। लता जी का नाम पहले हेमा था, लेकिन जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने नाम बदलकर लता रख दिया था। तो हेमा से बनी लता आप ।1942 में ऐसा हुआ उनके जीवन में, पिताजी बीमार चल रहे थे और 1942 में हार्ट अटैक के कारण उनके पिता का देहांत हो गया और 13 वर्ष की अल्पायु में ही लता जी को परिवार की सारी जिम्मेवारियां अपने नाजुक कंधों पर उठानी पड़ी। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 1942 से ही हिंदी और मराठी के करीबन 8 फिल्मों में उन्होंने काम किया। इनसे कुछ के नाम पहली मंगोरकर, मांझेवाल, गजाबाओ, चिमुकला संसार, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी, इस तरह के जो फिल्में हैं उसमें उन्होंने काम किया। लेकिन अपनी मंजिल तो संगीत ही थी और उनके गायन की शुरुआत 1942 की मराठी फिल्म किति हसला से हुई और दुर्भाग्यवश ये गीत काट दिया गया था और फिल्म में शामिल भी नहीं किया गया था। तो कभी कभी जीवन में इस तरह की सफलताओं को, असफलताओं को अपने साथ समझने के बाद ही जीवन की सही समझ आ जाती है। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सूरज जी बोलता हूं, जताना
0: सर। सूरज जी स्वागत है आपका, ढेर सारी खुशियां
1: जी आपको भी सर। और बस आज लता मंगेशकर जी की बात हो रही है तो अच्छे अच्छे गाने थे हमने सुन लिए, बहुत मीठी आवाज में। ये कहते हैं कि लता जी की आवाज तो कोई नहीं निकाल सकता है और वो तो कहते हैं कि वो एक दुनिया की अजब अजायबी जो हम बोले जाते हैं।
0: जी जी जी,
1: और आवाज भी इसका क्वायल जैसा है। तो लता जी को भी हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं क्योंकि कई सारे गाने गाए हैं और कितने मीठे गाने हम रात को मधुर आवाज में सुनते हैं तो भी एक हमारा आनंद भी हो जाता है रात को। तो सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं सर। हफ्ते की शुरुआत है, सोमवार है, तो सभी मित्रों को आज को भले बाबा की कृपा बनी रहे, सभी अच्छे रहे। और बस एक गाना भी हमने सुना है कि माही मंदिर माही पूजा माही, एक गाना है ना भले बाबा।
0: जी जी जी,
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर और लता जी के खूबसूरत गाने हम प्ले कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप भी लता जी के कुछ खूबसूरत गाने आपको याद हो तो ज़रूर हमें बताइए और हम सब इसका आनंद उठाएंगे। और जैसे कि बात आती है 1945 में, छोटी छोटी फिल्मों में उस समय तक तो काम करती रही, उससे उनका काम चला। फिर किति हसला ये एक मराठी फिल्म से उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उसके बाद सफलता की जो नई राह है वो बिल्कुल आसान नहीं थी लता जी के लिए भी। लेकिन अपना स्थान बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें, और उन्होंने उन मुश्किलों का सामना भी किया। कई संगीतकारों ने तो आपको लता जी को शुरू शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की गायिका नूरजान के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने छोटे छोटे काम लेने शुरू किए, और फिर 1942 में पहली बार गाने का अनुभव, और फिर 1943 में एक हिंदी गाना उनको मिला। उसके बाद 1947 में हिंदी फिल्मों में आपकी सेवा के रूप में पहला गीत इनका रिलीज़ हुआ, और फिर बाद में फिल्म बरसात, अंदाज, दुलारी और महल, ये गाने धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, और 50 में वो फिल्म में से सबसे ताकतवर महिला बन गई। 1943 से लेकर 50 यानी 7 साल का वो एक तपस्या उनका जो है रंग लाया, और आखिर नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है घर याद रहे, ये गीत लोगों को अभी भी भूले नहीं भूलता, और लता जी का व्यक्तित्व भी इस गीत में झलकता है। भले ही नाम गुम जाए, चेहरा बदल जाए, लेकिन उनकी आवाज़ कभी नहीं भूल सकता। लता जी की अद्भुत कामयाबी के लता जी को फिल्मी जगत में एक सबसे मजबूत महिला बना दिया, और लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का गौरव भी प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूब उन्होंने गाए। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो अपनी जगत में, फिल्मी जगत में उनका नाम पूरी तरह से छा गया। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीत जैसे कि जिसका आपका शाहकारी गीत कहा जाता है 1949 में ये गाया गया, आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी, और इस बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल बिस्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र, इन सभी संगीतकारों के साथ आपने अपनी जोड़ी, अपनी जो है कोलाब्रेशन, पार्टनरशिप अच्छी बनाई। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत जो अभी श्रेय जी ने याद किया है आपके लिए। सुनते रहो मुस्कुरा।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बड़ा प्यारा सा ममता भरा गीत आपने सुना। आइए, इसके साथ ही मैं आप सभी को फिर जोड़ना चाहूँगा लता जी की जीवन कहानी से। वैसे कि जैसे ही 1950 में उनका आवाज़ का जादू बोलने लगा, लता जी ने दो आंखें बारह हाथ दो बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों के लिए गाने गाए, महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू ने इन फिल्मों की लोकप्रियता, जो पॉपुलैरिटी है, उसमें चार चांद लगा दिए। इस दौरान कुछ प्रसिद्ध गीत थे, हो साजन बरका बहार आई, आजारे परदेशी, इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा, अल्लाह तेरा नाम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये समा, इस तरह के जो गीत हैं वो लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर हुए कि लोग इन्हीं गानों को सुनना पसंद करते थे। फिर इसके बाद शुरू हुआ 1960 से भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। इस समारोह में लता जी के द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए। पंडित नेहरू की आंखें भी भर आई थी, ऐसा था आपका भावपूर्ण मर्मस्पर्शी स्वर। आज भी जब देश के गीतों की बात चलती है तो सबसे पहले इसी उदाहरण को लोग याद रखते हैं। अपने आवाज़ का जो जादू है पूरी दुनिया में आपने फैला दिया। गीत, गजल, भजन, संगीत के हर क्षेत्र में अपनी कला बिखेरते हुए, गीत चाहे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो या फिर पाश्चात्य धुन पर आधारित हो, फिर लोक धुन की खुशबू में रचा बसा हो, हर गीत को लता जी अपनी आवाज़ के जादू से एक ऐसे जीवंत रूप पेश करती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाता है, हो जाते रहे। और लता जी ने ये जो ड्वेल गीत या युगल गीत कह सकते हैं, उसमें भी बखूबी अपना साथ निभाया। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर आदि के साथ अपने दिग्गज शास्त्रीय गायकों पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज जी इत्यादि के साथ भी आपने काफ़ी गीत गाए। जगदीश सिंह के साथ भी आपका एल्बम सजदा बहुत ज़्यादा लोकप्रियता को हासिल किया। तो आइए सजदा, इस एल्बम के कुछ खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाऊंगा, थोड़ा सा हटके, क्योंकि जब भी आप लता जी के तो गीत सुनते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे एवरग्रीन गज़ल्स जो है वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो जगजीत सिंह के साथ उनके गाए हैं। तो लीजिए, ये पहला सजदा एल्बम का गीत आपके नाम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सजदा एल्बम जो बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन एल्बम इसको कहते हैं, जिसमें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह का जो है खूबसूरत कॉम्बिनेशन का ये जो है एक ऐसा ब्लेंड एल्बम है जो कभी भी आप कहीं भी सुन सकते हैं। और मुंबई शहर में लोग जो है इसे अपने कार में लगा के आराम से सुनते रहते हैं, और ख़ास होटलों में भी इस गाने को बजाया जाता है। तो चलिए, ये थी कुछ ख़ास बातें सजदा एल्बम के बारे में, और ये लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था उस समय। तो अब ये दोनों शख्सियतों की आवाज़ें रह गई हैं, लेकिन दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। न जगजीत सिंह है, न लता मंगेशकर है, लेकिन फिर भी सजदा एल्बम के द्वारा उनकी यादें हमेशा इस संसार में बनी रहेंगी। आइए, बात कर रहे थे हम लोग लता मंगेशकर जी के बारे में। फिल्मकार, संगीतकार, इनके साथ लता मंगेशकर जी की जो बातें हैं वो किस तरह की, कुछ किस्से हैं। फिल्मकार श्याम बेनेगल कहते हैं कि लता मंगेशकर ने जैसा कोई और हुआ ही नहीं है, एक मिस्र की उनमें कुलसुम थी और एक लता है। पंडित हरिप्रसाद चौरासिया कहते हैं लता जी के बारे में कि कभी कभार गलती से ऐसा कलाकार पैदा हो जाता है। और राइटर गीतकार जावेद अख्तर ने लता जी के लिए कहा, कई लाजवाब और दिल को छू लेने वाले गीत लिखे हैं। वो कहते हैं हमारे पास एक चांद है, एक सूरज है, तो एक लता मंगेशकर भी है। अपने समय के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता दिलीप कुमार कहते हैं लता जी की आवाज़ एक रोशनी है जो सारे आलम को गोशो गोशो में मौसिकी का उजाला फैलाती है। उनकी आवाज़ एक करिश्मा है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कहते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज़ इस सदी की आवाज़ है। मशहूर नाटककार विजय तेंदुलकर कहते हैं, इस दुनिया में लोग बहुत व्यावसायिक होते हैं, पर लता जी की गीत रोज़ सुनते हैं, उससे किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन सुने जा रहे हैं पागलों की तरह। शास्त्रीय गायक उस्ताद अमीर खां कहते हैं कि हम शास्त्रीय संगीतकारों को जिसे पूरा करने में 3 से 1.5 घंटे लगते हैं, लता जी वो 3 मिनट में पूरा कर देती हैं। प्रसिद्ध संगीतकार एस जी बर्मन ने एक बार कहा था कि जब तक लता है तब तक हम संगीतकार सुरक्षित हैं। प्रसिद्ध गीत गायक, गजल गायक जगजीत सिंह ने कहा था कि 20वीं सदी की 3 बातें याद रखने लायक है, एक चांद पर आदमी की जीत, दूसरा बर्लिन की दीवार का टूटना, और तीसरा लता का जन्म। अभिनेता शाहरुख खान कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी अभिनेत्री की भूमिका निभाऊं और मुझे पर्दे पर लता जी की आवाज़ पर अभिनय करने का मौका मिले। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत पॉपुलर गीत, हर तरफ हर जगह आदमी ही आदमी। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये गीत तो आपने सुना। चलिए एक और खूबसूरत गजल आपके नाम, अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आइए, बहुत ही प्यारा सा गजल आप सुन रहे थे अभी, और इसी के साथ चलिए लता मंगेशकर जी के साथ जिन्होंने समय बिताया है, जिन्होंने उनके बारे में कहा है, उनकी बातें हमने आपको शेयर की और उनके पुरस्कारों की एक लंबी लिस्ट है, आप सभी भी जानते हैं, फिर भी कुछ नाम चिन्ह जो पुरस्कार हैं उनके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। 1958 से लेकर 94 तक बहुत सारे फिल्म फेयर पुरस्कार इनको मिले, और 1972 से 75 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले, और फिर महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 67 में मिला। उसके बाद 1969 में 1969 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया, और फिर फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में 1989 में दिया गया। 1993 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से स्क्रीन ने उनको सम्मानित किया 1996 में, फिर राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1997 में, पद्म विभूषण एनटीआर और जी सिने के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया, और 2000 में आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद 2001 में स्टार डस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इनके नाम है, और 2001 में भारत सरकार ने आपकी उपलब्धियों को सम्मान देते हुए सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी आपको विभूषित किया। तो ये थी कुछ उनके सम्मान में दिए गए उनको अवार्ड के बारे में, जो अपने आप ही उनके आवाज़ का जादू ने इन सारी चीज़ों को आकर्षित किया। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन 22 फरवरी 2022 को हुआ। उनका 29 दिनों में मुंबई के ब्रिश कैंडी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 8:12 होने पर उन्होंने आखिरी सांसें ली, और पीएम नरेंद्र मोदी ने लता जी के निधन पर शोक जताया था। ट्वीट पर उन्होंने लिखा था, लता जी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा, उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्म से परे वो हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी, वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। तो इस तरह से उनके बारे में बड़ा प्रधान ने लिखा था, और चलिए उनकी कुछ और यादें थोड़ी देर में साझा करते हैं, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं एक और खूबसूरत गजल की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए वक्त हो गया समाचारों का, सीधे समाचारों की तरफ चलते हैं। दिल्ली आपके लिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी

0: बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
5: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
6: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
7: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मास्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।

0: अस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोभ्यं क्षुभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। ओम शांति शांति शांति।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता है ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और लता जी के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमने आपसे शेयर किया और अभी आपको ले चलते हैं एक और सुंदर जो अनुभव है। जीवन में बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं लेकिन कुछ लोगों की जीवन हम सभी को प्रेरित करती रहती है, तो ऐसे ही मैं आपको कुछ आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जिनका जन्मदिन आज है। तो आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर नई किरण, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ

राजेंद्र मल लोढ़ा ये भी एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने अपने जीवन काल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने। इस पद पर सुशोभित होने वाले ये 41वें न्यायाधीश थे। इनसे पूर्व इस पद पर पी सत्यशिवम आसीन थे। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में राजेंद्र मल लोढ़ा को 27 अप्रैल 2014 को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी। जस्टिस लोढ़ा 5 महीने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे, इसलिए 27 सितंबर 2014 को अवकाश प्राप्त किया उन्होंने। तो राजेंद्र मल लोढ़ा का जन्म आज ही के दिन 1949 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ। उनके पिता एसके मल लोढ़ा भी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश ही थे और राजेंद्र मल लोढ़ा ने अपनी बीएससी तथा एलएलबी की डिग्री जोधपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान से प्राप्त की थी। और लोढ़ा जी ने फरवरी 1973 में बतौर एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। राजेंद्र मल लोढ़ा ने संवैधानिक मामलों से लेकर क्रिमिनल और सिविल मामलों तक को देखा है। उल्लेखनीय तत्व ये है कि न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा के संबंध में कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार है। और 1973 को राजेंद्र मल लोढ़ा राजस्थान बार काउंसिल के पंजीकृत हुए। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की। संवैधानिक दीवानी कंपनी फौजदार टैक्स श्रम इत्यादि क्षेत्रों में उन्हें वकालत का विशेष अनुभव प्राप्त है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में भी इनका स्थानांतरण हुआ। वहां 16 फरवरी 1994 को इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो ये कुछ खास बातें उनके जीवन से जुड़ी। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र मल लोढ़ा जी रहे। उच्चतम न्यायालय के माध्यम से विधि सहायता समाज का अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया था और उनको विशेष रूप से सम्मान दिया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें राजेंद्र मल लोढ़ा के बारे में। आप सुनाए हैं रीडवाद 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ लता जी के कुछ और खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाला हूँ और ओल्ड मेलोडीज़ में से कुछ गाने जो आपको बेहद सुकून देने वाले कुछ खूबसूरत गीत अभी आपके लिए। जी, एक ये गीत ये मुलाकात एक बहाना है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर के खूबसूरत गानों का आनंद आपने आज लिया है। तो चलिए आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। 28 सितंबर को जन्मे उन लोगों के बारे में तो बातें करें तो आज 28 सितंबर एक खास दिन भी है जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं पर अगर नज़र डालें तो सिडनी ओलंपिक में 2000 मीटर की दौड़ के स्वर्ण पदक का खिताब मोरियाना जोस तथा कोटनिस ने जीता था 2000 में। आज ही के दिन अमेरिका व ब्रिटिश सेना एवं सहयोगियों ने ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम आरंभ किया था 2001 में। आज ही के दिन यान रूस की धरती पर सुरक्षित उतरा था 2003 में। आज ही के दिन विश्व बैंक ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा था 2004 में। आज ही के दिन जापान के नव निर्वाचित एवं 90वें प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो एबे ने शपथ ली थी। आज ही के दिन 2006 को मैक्सिको के तटीय क्षेत्रों में चक्रवर्ती तूफान आने के कारण भारी तबाही मची थी। आज ही के दिन 2007 में स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा पैन पैसिफिक ओपन के पहले राउंड में हार के बाद बाहर हुई थी। आज ही के दिन 2009 में। तो ये थी कुछ खास बातें इतिहास के पन्नों से आज के दिन की 28 सितंबर की बातें आपको सुनाया मैंने। इसके साथ ही चलिए बात करते हैं आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में, सितंबर 28 को जन्मे उन लोगों के बारे में। चीन के दार्शनिक कम्युनिस्ट का जन्म ईसा पूर्व आज ही के दिन 551 में बताया गया, एक इतिहास दिखाया दे रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ही श्री नारायण चतुर्वेदी हिंदी के साहित्यकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक, इनका भी जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर को 1885 में हुआ था। आध्यात्मिक गुरु और शिरडी के साईं बाबा 1836 में आज ही के दिन इनका जन्म बताया गया है। और महान आज़ादी के दीवाने भगत सिंह 1907 में 28 सितंबर को ही इनका जन्म हुआ था। भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा का भी जन्मदिन आज ही के दिन 1949 को हुआ था। ख्याति प्राप्त भारतीय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म भी आज ही के दिन 1929 को हुआ था। प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक, साहित्य आलोचक और समाज सुधारक कल्याण मल लोढ़ा का जन्म भी आज ही के दिन 1921 को हुआ था। दाजी के नाम से प्रसिद्ध आत्म प्रबंधन, व्यवहारिक साधना और सार्वभौमिक मूल्यों से परिचित कराने में विश्वास रखते हैं कमलेश डी पटेल, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1956 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का जन्म भी आज ही के दिन 1982 हुआ। बॉलीवुड के अभिनेता रणबीर कपूर का भी जन्मदिन आज ही के दिन 1982 को हुआ। 20वीं सदी के हिंदी के सबसे प्रसिद्ध लेखिका में से एक क्रांति त्रिवेदी का जन्म भी आज ही के दिन 1930 को हुआ। अभिनेता पी जयराज जी का जन्म आज ही के दिन 1909 को हुआ। और अंग्रेज प्राच्य विद्या पंडित और विधि शास्त्री तथा प्राचीन भारत संबंधित संस्कृति अनुसंधानों के शुरुआतकर्ता विलियम जोस का जन्मदिन भी आज ही के दिन 1746 को हुआ। और अपने समय के जाने माने पत्रकार और क्रांतिकारी भावनाओं के व्यक्ति थे राम हरक सिंह सहगल, 1896 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते लता जी के खूबसूरत गाने, लता जी और आशा जी का कॉम्बिनेशन गीत आपको सुनाने वाला हूँ बैक टू बैक। सुनते रहो, मुस्कराते रहो, और इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी, हेलो चलिए, कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। तो बैक टू बैक आपके लिए लता जी के गाने छोड़े जा रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

सुनने जा रहे हो ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के कार्यक्रम की जानकारी आप सभी को देना चाहूंगी। आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार चलेंगे। सबसे पहले तो आपको एक सुंदर सा विचार सुनाएंगे, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे सविता जी के साथ, और नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही। लेकिन आज मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, मैं एक मेहमान से मिलूंगी, वो आपको सिखाएंगे कि आज की रेसिपी क्या है, और सामान्य जानकारी तो जरूर देंगे। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक सुंदर और श्रेष्ठ विचार के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज का विचार इस प्रकार है, आत्मा है शरीर रूपी साइन बोर्ड में गुप्त ट्यूब। आत्मा है शरीर रूपी साइन बोर्ड में गुप्त ट्यूब। आइए आज के विचार का विस्तार करते हैं। शरीर और इसके अंगों का तेज और आकर्षण आत्मा की उपस्थिति के कारण है। आत्मा गुप्त रहकर भी एक बल्ब या ट्यूब की तरह अंगों को प्रकाशित करती है। हम रात के अंधेरे में दुकान पर जगमगाते साइन बोर्ड देखते हैं। उनकी सुंदरता हमारा ध्यान खींचती है और उन पर लिखे अक्षरों को हम पढ़ पाते हैं। इसका कारण यह होता है कि साइन बोर्ड के पीछे ट्यूब जल रही होती है, उसी की रोशनी बोर्ड के डिजाइन और अक्षरों को आकर्षक बनाए होती है। इसी तरह आत्मा भी शरीर रूपी साइन बोर्ड में गुप्त रूप से रोशन ट्यूब या बल्ब, जिसको हम अदृश्य और सूक्ष्म भी कह सकते हैं, तो है, जो इसके हर अंग को, हर इंद्रिय को आकर्षण बनाए हुए है। तो ये तो हुआ आज का विचार। चलिए सुन लीजिए अब प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेखटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए, अब आपको घरेलू नुस्खे देते हैं। अगर टीबी की समस्या हो जाए तो क्या करेंगे, आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़े से परिचय दे रही हूँ कि टीबी के लक्षण थोड़े बता रही हूँ कि फेफड़ों की टीबी में खांसी, बलगम आना। टीबी भी देखिए कितनी तरह की होती है। सबसे अधिक टीबी का असर फेफड़ों पर होता है, फिर अन्य प्रभावित होने वाले अंगों में हड्डियां, आंते, टॉन्सिल्स, चमड़ी, गुर्दे व प्रजनन अंग सम्मिलित है। चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो, सामान्य लक्षण एक से होते हैं। हरारत, हल्का सायंकालीन बुखार, भूख कम लगना, वजन गिरना टीबी के ये सामान्य लक्षण है। तो चलिए इस कंडीशन में मैं आपको नुस्खे दे रही हूँ। एक गिलास दूध में 5 पीपल डाल करके उबालिए, ठीक है, और फिर उसको ठंडा होने पर शक्कर डाल करके रोज सुबह शाम पीजिए। इससे खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी, आरंभिक टीबी के लक्षण, इन सभी में लाभ होगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान से सुनेंगे। एक गिलास दूध में 5 पीपल डाल करके उबालना है, ठीक है, फिर ठंडा होने पर शक्कर डाल देनी है, मिक्स करके सुबह शाम इस तरह पीना है। इससे खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी और जो शुरुआत में टीबी के लक्षण होते हैं ना, तो इन सभी में लाभ होगा। टीबी होने वाली होती है तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो इन सभी में लाभ होगा, इसलिए आप इस नुस्खे को आजमाइएगा। अगला नुस्खा भी ध्यान से सुनेंगे। यक्ष्मा रोग में मक्खन मिश्री में घी मिलाकर खाइए, इससे क्षय रोग का नाश होकर के बल मिलता है। यक्ष्मा रोग में मक्खन मिश्री में घी मिलाकर के खाइए, इससे क्षय रोग का नाश होकर हिम्मत मिलेगी। लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। यक्ष्मा में जिन्हें लगातार ज्वर रहता है, उन्हें 11 पत्ती तुलसी, नमक, जीरा, हींग, 1 गिलास गर्म पानी में नींबू का रस 25 ग्राम मिलाकर 3 बार कुछ दिन पीना चाहिए। यक्ष्मा में जिन्हें लगातार बुखार रहता हो, उन्हें 11 पत्ती तुलसी, ठीक है, फिर नमक, जीरा, हींग थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, और ये सभी 1 गिलास गर्म पानी में नींबू का रस 25 ग्राम मिलाकर 3 बार कुछ दिन तक पीना चाहिए। सुबह, दोपहर और शाम को इस तरह पूरे दिन में 3 बार पीना चाहिए, इससे काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये तो हुए घरेलू नुस्खे। अब सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। हमारी सखी सविता जी आज भी आप सभी के सामने है। सविता जी, आपका स्वागत है आशियाना में।
2: नमस्कार रेडियो मधुबन के श्रोताओं को, और रेडियो मधुबन को भी बहुत सारा प्यार।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता बंधु भी आपको याद करते रहते हैं और आपकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं। तो सविता जी, आपने जैसे कि देने लेने की बात कही है, उसी से मुझे याद आया कि कहीं कहीं मतलब इतना अहंकार होता है लोगों में कि एक दूसरे को नीचे गिराने की भावनाएं ज्यादा रहती है। जैसे फ्रेंड्स को ही समझ लीजिए, जब पढ़ाई करते हैं तो अच्छी फ्रेंडशिप होती है, फिर जैसे कि बहुत समय के लिए शादी हो जाती है या फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं ना, तो सब जैसे अपने फ्रेंड को देख करके उसको लगता है कि अरे ये क्या थी, क्या हो गई, और उससे अगर उसका स्टेटस हाई फाई हो गया तो फिर वो अहंकार झाड़ेगी कि अपनी फ्रेंड्स के साथ एक तो बहुत समय के बाद मिले और देख लिया कि हाँ मेरी फ्रेंड की कंडीशन, क्योंकि इंसान के कपड़ों से तरीकों से पता चल जाता है कि इसका स्टेटस कहाँ तक है, तो फिर इस तरह का अहंकार झाड़ने लगते हैं। इससे फ्रेंडशिप में दरार भी पड़ती है और वो फ्रेंडशिप टिक नहीं पाती है, क्या कहेंगे
2: जी? बहुत अच्छी बात की। वैसे दोस्ती की बात चली तो दोस्ती में स्वार्थ, अहंकार या दिखावा या नीचा किसी को गिराना, ये भावना होनी नहीं चाहिए। और ये सत्य कि जब हम छोटे होते स्कूल में पढ़ते हैं साथ में, तो हम वहाँ ये नहीं सोचते कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका क्या स्टेटस है, लेकिन बहुत प्यार से बच्चे सभी खेलते हैं। लेकिन ये बात भी मैंने देखा है कि जब बड़े हो जाते हैं हम लोग,
1: हाँ जी,
2: तो सच में जब शादी होने के बाद जो चेंज आता है लाइफ में, आना तो चाहिए अच्छा ही चेंज, लेकिन जो चेंज आता है लाइफ में तो उसके दरमियान ऐसा होता है कि कोई ऊपर चला जाता है, कोई थोड़ा नीचे हो जाता है। दुनिया के दिखावे में जो आज माना गया है कि धन से ऊंचा और नीचा माना गया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मानव का जो गुण है वो उसका असली स्टेटस है और वो ही उसकी ऊंचाई और नीचाई को प्रदर्शित करता है। लेकिन आज जो समाज में जो हम देख रहे हैं, जैसे एक चेंज आ गया है कि हाँ वास्तव में जिसके पास धन है, शोहरत है, अच्छी पोस्ट है, उसका वैल्यू बढ़ गया है। तो वहीं पर अगर कोई सहेली है और उसके हस्बैंड, मान लीजिए किसी के हस्बैंड थोड़ा नीची पोस्ट पे, किसी के ऊंची पोस्ट पे, तो आ जाता है। जब दो सहेलियां मिलती हैं तो पहले तो थोड़ा लगता है इतने साल हम बाद मिले हैं, तो बहुत खुशी भी होती है, लेकिन उसी में खुशी थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, क्योंकि फिर वही बात आ गई, कपड़े लत्ते से पता ही चल जाता है
1: वो। और फिर एक दूसरे के घर पर आना जाना होता है, उसके बाद
2: शुरुआत हो जाती है। हाँ, किसी के पास गहने ज्यादा है तो किसी के पास कम है, किसी की साड़ियों का अहंकार, तो ये जो है ना ये होना नहीं चाहिए। दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए जैसे भी कृष्ण सुदामा की दोस्ती कितनी अच्छी, कहाँ द्वारकाधीश
1: जी
2: और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। तो हमारे जो दोस्ती है, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो या कहीं भी हो, जो प्रेम है वो उसके बीच में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। धन, वस्तु, वैभव, ये आना ही नहीं चाहिए। जैसा हमारा पहले प्यार था बचपन में आपस में सहेलियों में, वैसे ही बना रहना चाहिए। और ये सिर्फ क्षण भर की बात है, उसके बाद तो फिर एकदम बेकार ही हो जाएगा। तो हम इस चीज का क्या अहंकार दिखाएं, आज है कल चला भी जा सकता है। और धन तो ऐसा है कि कुछ कहा जा सकता है कि रातों रात अमीर से गरीब और गरीब से अमीर हो जाएंगे।
1: वो तो राई का रंग को रंग का राई बनने में समय नहीं लगता है, लेकिन जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं
2: जी।
1: और वो सामने वाले को जैसे तुच्छ नजर से देखता है। जैसे आपने सहेलियों की बात कही है, तो बस मैंने भी देखा है कि जब एक ज्यादा पैसे वाली है तो वो हर चीज में अपने खुद का बड़ा चढ़ा करके बताएगी, अरे तुम्हारे ये चीज है, मुझे तो लोकल चीज पसंद ही नहीं, मैं तो ब्रांडेड यूज करती हूँ।
2: भाई अपने अपना सिस्टम है, पसंद भी है, और सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। मान लीजिए बहुत हमारी इच्छा है कि हम ब्रांडेड चीज पहने, लेकिन हमारी क्षमता ही नहीं है पहनने की, तो क्या कर सकते हैं। हजार व्यक्ति वही होता है जो अपनी जैसी परिस्थिति रहे उस अनुसार ढल जाए, वो व्यक्ति अच्छा भी होता है, समझदार भी होता है, और उसी को कहते हैं जीतने वाला। अब अगर हमारी परिस्थिति उस लायक नहीं है और हम बहुत ज्यादा सोचे तो ये भी बेवकूफी है, जितनी चादर उतना ही पांव पसारिए कहा गया है।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि दूसरों का महल देख करके अपनी झोपड़ी नहीं तोड़नी चाहिए।
2: अपने चादर को देखकर ही हमें पांव फैलाना चाहिए। अगर हम उससे ज्यादा फैलाएंगे या तो चादर फट जाएगी या फिर हमारा पांव खुल जाएगा।
1: बिल्कुल सविता जी, मुझे इससे एक बात याद आ रही है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जैसे दो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा संबंध उनमें, दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और शुरू से जैसे एक लंगोटिया यार हम कह सकते हैं, इस तरह दोनों के अंदर अच्छी फ्रेंडशिप थी। और इसी तरह शादी के बाद एक की स्थिति डाउन और एक की अच्छी, तो जैसे एक दूसरे के यहाँ आना जाना हुआ क्योंकि दोनों के हस्बैंड सर्विस वाले थे और एक ही शहर में सर्विस हो गई, तो फोन कॉल से कभी कभी वो बात कर लिया करते थे, तो पता चला कि अच्छा एक ही शहर में है, तो फिर एक दूसरे के यहाँ स्वाभाविक है आना जाना। तो एक बार जिसकी की थोड़ी परिस्थिति कम है वो अपने उस सहेली के यहाँ गई जो ज्यादा पैसे वाली है, तो उसका सारा जो चकाचौंध देखा तो उसको तो लगा कि अरे हम दोनों ने साथ साथ में पढ़ाई की और इससे और मेरे 5 नंबर ज्यादा आते थे लेकिन कम नहीं, और आज देखो ये कितनी ठाट से रह रही है। तो वो घर पे आकर के अपने हस्बैंड से झगड़, वहां से मतलब देख करके आई और हस्बैंड से झगड़ने लगी कि तुम तो मतलब तुमको तो कुछ नहीं आता है, तुम तो बेकार हो, तुमने क्या किया इतने दिन एक ही पोस्ट पर टिके हुए हो, तुम्हारे परमिशन नहीं होता है। तो देखिए सविता जी ये भी बात गलत है।
2: नहीं ऐसा भी नहीं है, होना है ना, और सबका अलग अलग तरीका होता है, जरूरी नहीं कि सबकी पोस्ट सेम हो जाए। और यहाँ भी एक भाग्य की बात आती है, अब हर व्यक्ति का अलग अलग भाग्य होता है, हमें किसी को देख के ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए ना बराबरी करनी चाहिए।
1: जी क्योंकि गए तो वो दोनों साथ में थे, लेकिन अब इसमें तो सभी का देखो कहते हैं कि आप बरोबरी किस में करोगे, पढ़ाई में कर सकते हो,
2: अच्छाई में आप
1: बरोबरी कर सकते हो, लेकिन भाग्य में आप नहीं कर सकते हो। भाग्य किसी का देखो ये सब अपने अपने कर्मों का पुण्य होता है,
2: पिछले है ना, कुछ ऐसा
1: तो
2: होता है।
1: वो बहन इस तरह आए दिन फिर झगड़ा करने लगी तो उसका
2: परिवार कलह में,
1: बिल्कुल, तो उसका हस्बैंड टेंशन में आ गया कि इससे तो अच्छा है कि इनके फ्रेंड इस शहर में आती नहीं और उनके घर जाना ही नहीं होता। तो रोज का ये झगड़ा करते है। एक दिन फिर उसके हस्बैंड ने उन्हीं को जाके कहा जिनके घर पर कभी कभी आना जाना होता था ना उनके फ्रेंड के, फिर उनको बताया कि इस तरह आपका जब से इसने चकाचौंध देखा है आकर के हमेशा मुझे झगड़ती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितना पढ़ा हूँ उसके अनुसार ही मुझे सर्विस मिलेगी, प्रमोशन मेरा अभी नहीं हो सकता।
2: और कई बार इसी के
1: तो फिर उस सहेली ने उसको फिर प्यार से समझाया कि देख तू यहाँ सभी का भाग्य अलग अलग होता है, हमारे पहले बाप दादा का भी था और इनकी पोस्ट अच्छी है, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं करना है, और आज से तुम जीजाजी के साथ झगड़ा नहीं करोगी। बड़े प्यार से उसने समझाया तो फिर थोड़ा सा असर हुआ, पर कहने का मतलब यही है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब दूसरों के महलों को देखते हैं ना तो अपनी झोपड़ी से नफरत करते हैं, लेकिन रहना हमें उसी में है, तो नफरत नहीं करनी चाहिए। तो सविता जी चलिए अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, आपके साथ और भी बातचीत करेंगे, लेकिन सुना देते हैं एक गीत, तो सुनते रहिए
2: मुस्कुराते रहिए।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। सविता जी हमारे साथ हैं। सविता जी, गीत सुनाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह अहंकार के वश अच्छे संबंधों में भी दरार आ रही है ना।
2: हाँ, तो अभी हम पिछले लिंक में हम बात ही कर रहे थे उषा बहन कि वो झगड़ रही थी अपने हस्बैंड से अपने फ्रेंड को लेकर।
1: बिल्कुल।
2: अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है इस समय।
1: हाँ,
2: मैं
1: तो
2: कहानी भी अभी आपको थोड़ा सा दो मिनट के लिए सुनाऊंगी। और एक बात याद है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
1: हाँ,
2: जो हमारे देश में आज जो करप्शन इतना बढ़ा है जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार
1: जी।
2: आज हमारे प्रधानमंत्री इसको मिटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, कितने लोग इससे डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, लेकिन खैर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इसकी वजह से भी बहुत करप्शन बढ़ा, आपको बता दूं। जिसके पास कम रहते हैं ना, वो दूसरे पोस्ट वालों को देख के उनकी पत्नियां घर में पतियों को कभी कभी कहती हैं आप और लेके आओ, तो उनको कभी कभी गलत ढंग से धन कमाना पड़ता है।
1: जी, इस वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है
2: बहुत ज्यादा। मुझे तो लगता है शायद 90% यही चक्कर है।
1: जी बिल्कुल।
2: देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो 90% रीजन यही है,
1: एक दूसरे को
2: देखकर दूसरे से ऊपर जाना चाहता है, सिर्फ धन के मामले में
1: जी,
2: वैभव के मामले में, गुणों के मामले में नहीं जाना चाहता कि देखो भले हमारे पास पैसा कम है लेकिन क्वालिटी है। अभी दोस्त की बात चली तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई कि एक बार ऐसे ही था। हालांकि आपने जो अभी काम बताई कि उसकी सहेली ने उसे अच्छे से समझाया, ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि जो सहेलियां होती है ना समझाती नहीं बल्कि वो नीचे गिरा देती है
1: जी।
2: वो तो उसकी दोस्त अच्छी थी तो उसने उसको समझाया। तो ऐसी मिलते जुलते एक कहानी थी कि एक दो सहेलियां थी, वो भी बचपन से थी और बहुत आपस में प्यार था और उनकी भी ऐसी शादी हो गई जैसे आपने बताया, एक बहुत बड़े घर में और एक छोटे घर में। अच्छा, तो जो बड़े घर वाली थी उसके पास बहुत पैसा था और बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी और अच्छे घरों में रहती थी। तो जो थोड़ा नीचे घर में जिसकी शादी हुई थी वो बहुत सुंदर थी, तो उसे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था और वो सोचती थी कि मैं जो पहनूं वो कोई ना पहने। लेकिन उसके पति एक साधारण से मामूली क्लर्क थे जो कि घर का खर्चे बमुश्किल चलता था और किसी तरह से गुजारा होता था। तो एक बार उसके ऑफिस में कोई पार्टी थी, उसके पति के जो क्लर्क थे उनके ऑफिस में कोई पार्टी थी और कोई बड़े मिनिस्टर आने वाले थे। तो उसने पत्नी से कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, मतलब हमें जाना है पार्टी में। थोड़े दिन बाद थी पार्टी, तो बोला अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, हमें पार्टी में जाना। तो उसने अपने पति से झगड़ा किया कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, कुछ नहीं, मैं कैसे जाऊं। फिर उसने बहुत कहावा बोला, अगर कितने पैसे लगेंगे तुम्हें लिए साड़ी के लिए ये वो ऐसे पूछा। तो उसने बताया मुझे इतना अमाउंट चाहिए साड़ी और चप्पल और पर्स सब खरीदने के लिए बताया। पति ने किसी तरीके से अपना इधर उधर करके उसमें से थोड़े पैसे ऐसे अरेंज कर दिए तो उसका सब काम हो गया, पर ज्वेलरी का काम नहीं हो पाया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी काम नहीं हो पाया, मतलब पैसे कम थे उनके पास। तो उसने सोचा मेरी सहेली के पास तो बहुत सारे जेवर हैं, क्यों ना मैं मांग लूँ। और उसकी सहेली अच्छी भी थी, मतलब इस पर विश्वास करती तो देने के लिए राजी हो गई। फिर वो गई, उसने बहुत सारे सेट उसको दिखाए, दिखाती गई और अच्छे से अच्छा उसने चूज किया। उसने पूरा खजाना अपनी फ्रेंड के लिए, देखिए ऐसी भी एक दोस्त से खोल दिया,
1: होते हैं।
2: उसने बहुत महंगा, मतलब उसे लगा ये बहुत महंगा नेकलेस है और उसने लिया, पहना, पार्टी में गई, अच्छे से घूम फिर के आई, लोग उसको देख रहे थे क्योंकि बहुत सुंदर थी वो और ड्रेस भी उसकी अच्छी थी और ज्वेलरी भी अच्छी पहन रखी थी। लेकिन आते वक्त शायद कहीं हार गुम गया
1: जी।
2: और गुम गया तो उसके बाद उसे बहुत अफसोस हुआ, क्या करें। फिर उसके पति ने उसे बोला, ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर उसके पति पहले बेचारे गरीब थे, लेकिन अब चूंकि हम लाए हैं दूसरे का हार, हमें वापस भी करना है। तो ज्वेलर्स के पास गए और डिब्बा विब्बा दिखा के वैसे ही हार बनवाया जैसे खो गया था, वैसे बनवा के उन्होंने दिया। अब उसका बाद में जब दे दिया तो कई साल बाद, बहुत साल बीत गए, फिर ये लोग दोनों मिले तो जो जिसने हार गुम कर दिया था, गरीब वाली जो सहेली थी, और गरीब हो गई। तो जब उसकी बड़े घर वाली सहेली मिली बहुत दिन बाद, मतलब कई साल गुजर गए, तो उसने पूछा तुम इतनी गरीब कैसे हो गई, बल्कि और बढ़ना चाहिए। तो उसने बोला तुम्हारे कारण मैं गरीब हुई, तुम्हारा हार मुझसे गुम हो गया था लेकिन मुझे बनवा के देना पड़ा। तो इतने पैसे मेरे पति ने कर्ज लिए कि उसका लोन हम लोग आज तक भर रहे। तो उसने बोला अरे वो तो आर्टिफिशियल था और तुमने तो असली बनवा के मुझे दे दिया वो जेवर। अब अपनी इच्छा को नहीं दबा पाए या कंट्रोल नहीं कर पाए कि हम देखिए अपने को सुंदर दिखाने के लिए या अच्छी ज्वेलरी पहनने के चक्कर में हमने क्या किया, दूसरे का लिया,
3: ये भी गलत देना पड़ गया।
2: और लेकिन दिया क्या, उसने सोचा ये तो हमेशा असली पहनती बड़े घर की, लेकिन वो नेकलेस जो था वो नकली था, आर्टिफिशियल था, और इसने असली हीरो का बनवा के दिया। खैर उसकी फ्रेंड अच्छी थी, जब उसको इतने सालों बाद पता चला कि मेरी फ्रेंड परेशान और कर्जा अभी तक भर रहे हैं वो दोनों पति पत्नी, उसने वो नेकलेस वापस कर दिया। वरना कोई करता है उस समय
3: वो फिर तो बेईमानी आ जाती है।
2: लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड कितनी अच्छी थी।
3: जी बिल्कुल,
2: बताइए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि देखिए, एक तो पहली गलती थी कि किसी की चीजों को मांग कर अपनी इच्छा कभी नहीं पूरी।
3: कहते हैं कि संतुष्ट रहिए अपने आप से, जो है जितना है उसमें समाइए, उसी में रहिए।
2: बताइए,
3: कहते हैं कि हम चादर से बाहर जो पैर करेंगे ना तो फिर हवा लगेगी।
2: तो ये तनाव तो नेचुरली आएगा, सारा जीवन वो पति पत्नी तनाव में रहे, उन्होंने अपने बच्चे भी नहीं पैदा किए, लोन भरने में जीवन बिता दिया। बताइए,
3: देखिए
2: ऐसा होता है कई बार,
3: एक छोटी सी गलती का हमको कितनी बड़ी सजा मिलती है,
2: भुगतना पड़ा। इसलिए इच्छा कभी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे हम ना, बस एक जैसे हैं वैसे रहिए, उसमें बहुत आनंद आता है।
3: क्या दिखाना है, क्या दिखाना है लोगों को
2: दुनिया में।
3: वो कहते हैं कि जो भी हम पहनते हैं हमें तो नहीं दिखाई देता है ना, तो सामने वाले को दिखाने के लिए इतना मेकअप करना।
2: और उषा बहन कितनी भी बराबरी कर ले, हमसे भी ऊंचा कोई ना कोई है, हम यहाँ पहुंचेंगे फिर लगेगा अरे इससे भी ऊंचे जाए।
3: बिल्कुल,
2: कब तक हम ऐसा करते रहेंगे, कभी नहीं, कोई नहीं। सीमा नहीं है।
3: बस इससे अच्छा है कि स्वयं से, जब तक स्वयं से संतुष्ट नहीं रहेंगे हमारे मन में हलचल होती रहेगी, हमारा मन तनावग्रस्त रहेगा, और न हम खुश रह पाएंगे, न हम अपने परिवार को खुश रख सकेंगे, और जो भी हमारे संपर्क में आएंगे वो भी किनारा करने की कोशिश करेंगे कि ये तो हर वक्त फालतू की बातें करती रहती है, हर वक्त इसका मुंह फुला ही रहता है। तो बहुत अच्छा आपने बताया है।
2: कई बार बहनों में आदत होती साड़ियां से मांगेंगे, तो बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आदत अगर है किसी में तो इसको बिल्कुल खत्म कीजिए। हमारे पास जो है जितना है हम उसमें संतुष्ट रहे।
3: बिल्कुल, जैसे शादी ब्याह में जाते थे एक दूसरे की ज्वेलरी मांग के ले जाना, जैसे आपने कहा, बिल्कुल
2: गड़बड़ हो ही जाता है।
3: कपड़े हल्का सा कहीं खरोच या हल्का सा तार खींच गया तो दूसरों के कपड़ों को कितना संभाल के रहना पड़ता है, उसके बावजूद भी कहते हैं जितना संभालते ना ज्यादा कुछ न कुछ हो ही जाता है, कई दाग लग गए, धब्बे लग गए, तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा और फिर रिलेशन में भी थोड़ी दरार
2: आती है।
3: तो इससे अच्छा है जितना हो उसमें संतुष्ट रहिए और इसी के आधार पर खुश रह सकेंगे, बाकी जितना हम दिखावा करेंगे उतना ही हम तनाव में रहेंगे। तो चलिए सविता जी, अभी समय हो रहा है गीत सुनाने का, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने बताया है कि किस तरह हमको अपने आप में समेट कर रखना है, संतुष्ट रहना है। तो सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए
3: रेडियो मधुबन

0: गायक कलाकार रामशंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो चंदा जी पांडे, आप बिहार के रहने वाले हो और अभी वर्तमान में आबू तलेटी में रहते हैं, तो चंदा जी आज हमको बिहारी आइटम सिखाएंगे। चंदा जी आपका स्वागत है आशियाना में।
2: नमस्कार।
1: अच्छा चंदा जी, आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सिखाएंगे?
2: आज हम गाजर का मुरब्बा सिखाते हैं। हलवा तो सभी बनाते हैं।
1: हाँ जी,
2: लेकिन ये गाजर का मुरब्बा बिहार में ज्यादा, गाजर हो बेल हो, इसका हम लोग मुरब्बा ज्यादा बनाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, वैसे तो मुरब्बा सभी तरफ हाँ। खाते हैं, लेकिन सभी का अपना अपना अंदाज होता है बनाने का। तो बताइएगा सामग्री क्या क्या लेनी होगी मुरब्बा के लिए।
2: गाजर के मुरब्बा के लिए 1 किलो गाजर लेते हैं और 1 किलो चीनी और 1 गिलास पानी। अब इसको गाजर को साफ करके,
1: 1 किलो गाजर हाँ, और शक्कर कितनी लेनी है?
2: 1 किलो।
1: अच्छा, 1 किलो गाजर के अंदर 1 किलो ही शक्कर हाँ। और 1 गिलास पानी।
2: 1 गिलास
1: पानी तो चाशनी के लिए।
2: पानी चाशनी के लिए।
1: अच्छा, तो सामग्री बस इतनी सी है, खाली शक्कर और गाजर।
2: बस शक्कर और गाजर, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें।
1: जी, और इसको बनाएंगे कैसे?
2: इसकी बनाने की विधि है, गाजर को छिलकर साफ कर लेंगे पहले पानी से धोके, उसके छिलके भी उतार लेंगे और छोटे छोटे गोल गोल इसको काट लेंगे।
1: अच्छा, गाजर की धुलाई करके इसको स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके फिर इसका छिलके उतारने हैं।
2: हाँ, छिलके
1: उतार। छिलके उतार करके इसके गोल गोल पीस करने हैं।
2: हाँ, थोड़े छोटे छोटे ताकि चम्मच से उठाने के खाने में आए।
1: अच्छा, तो कोई इसे लंबी चीरी भी करनी चाहते हैं तो
2: अपने
1: कर सकते
2: हैं। हाँ, अपनी पसंद से।
1: तो लंबी चीरी भी कर सकते हैं, गोल पीस भी कर सकते हैं, या जैसे सब्जी काटते हैं वैसे भी काट सकते हैं।
2: अपने
1: वो आपकी इच्छा पर आधार है। तो प्यारे श्रोता बंधु, इस तरह आप मुरब्बा बनाने के लिए गाजर को आपकी इच्छा के अनुसार काट लीजिए, फिर
2: और फिर इसको हल्का से उबाल लीजिए 5 मिनट, ज्यादा नहीं गाजर को।
1: जी जी बिल्कुल, आप पानी का उबाला आए और गाजर डाल दीजिए और अच्छा उबाला लेने के बाद निकाल दीजिए। बस गाजर हल्की सी दब जानी चाहिए हाँ। इतनी सी बॉईल करनी है, ज्यादा सब्जी की तरह लचपच नहीं करनी है।
2: तो हाँ, फिर नहीं तो खराब हो जाएगा वो।
1: जी,
2: अब इसमें एक चीनी और पानी जो हमने पहले बताया उसको आप गैस पे चढ़ा दीजिए और फिर 2 तार की चाशनी हो जाएगी चीनी की।
1: अच्छा, तो शक्कर की 2 तार की चाशनी लेनी है, क्योंकि चाशनी बनाना भी आप सभी को सिखा चुके हैं। तो शक्कर डालिए, शक्कर के अंदर जितना पानी का समावेश हो उतना पानी डालिए, बस वो शक्कर डूब जानी चाहिए
2: इसलिए
1: 1 गिलास पानी डालिए। और शक्कर का मेल निकालने के लिए आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, जब हाँ। पानी उबलने लगे तो थोड़ा सा दूध डाल के जो चाशनी का मेल आता है उसको आप निकाल दीजिए और इस तरह 2 तार की चाशनी बनाइए। और चाशनी बनाने के बाद क्या करना
2: चाशनी
1: है?
2: चाशनी में जो हम गाजर पहले जो रखे हैं उसको छोटे छोटे काट के उबाल के रखे हैं, हल्का उबाल के, अब उसको छान के चीनी के चाशनी में डाल देंगे।
1: जी, उसके पानी को निकालना है इसलिए गाजर को छानना है, उबली हुई गाजर को, और फिर चाशनी में डाल देंगे।
2: चाशनी में डाल देंगे, 5 से 10 मिनट उबल जाएगा उसमें, गाजर बिल्कुल गल जाएगा, बिल्कुल हलवे की तरह नहीं होगा इसलिए उतना हो जाए, उसके बाद बस हो गया उसमें तो बस।
1: अच्छा, तो 2 तार की चाशनी हाँ। तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इधर गाजर जो हमने उबाली है ना उसका पानी निकाल दीजिए और गाजर को चाशनी में डाल करके आप गैस पर ही रखिए। जब गाजर का पानी जो हमने उबला हुआ था तो गाजर के अंदर थोड़ा सा पानी का रेसा रहता है, पानी बिल्कुल उसका खत्म हो जाए उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए और चाशनी में ही गाजर को रहने दीजिए। तो इस तरह मुरब्बा तैयार हो गया है
2: हाँ।
1: तो चंदा जी आपने तो बहुत ही अच्छा सिखाया है। मुरब्बा तो वैसे बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं और माताएं भी जल्दी से बच्चों के टिफिन बनाती है, तो हाँ, तो परोठे और रोटी के साथ मुरब्बा रखा और छुट्टी, सब्जी का इतना नहीं करना पड़ेगा लफड़ा। और वैसे गाजर पौष्टिक, वैसे गाजर पौष्टिक भी रहती है, तो बहुत ही अच्छी चीज चंदा जी आपने सिखाई है। जरूर हमारी बहनें बनाएगी, क्योंकि गाजर का सीजन चल रहा है तो जरूर मुरब्बा बना के रखेंगे और इसको हम लॉन्ग टाइम तक भी टिका सकते हैं
2: हाँ।
1: तो चलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, अभी तो आपने गाजर का मुरब्बा सीखा है, अब आपको गीत सुना रहे हैं। गीत सुनाने के बाद और भी आपको कुछ सिखाने वाले हैं, इसलिए बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो, और आशियाना के किचन में गीत सुनाने से पहले बन रहा था गाजर का मुरब्बा। आइए और भी चंदा जी कुछ सिखाने वाले हैं, तो चंदा जी और क्या सिखाने वाले हैं आप?
3: रुमाली रोटी सिखाने वाले हैं।
2: ओके, रुमाली रोटी। हाँ। अरे रुमाली रोटी से तो आज याद आया मुझे कि आज मैं ऑफिस में आई थी ना, तो मैंने अपना रुमाल टेबल के ऊपर ही रख रखा था कि जाते समय मैं पर्स और रुमाल लेके जाऊंगी, दोनों ही चीज भूल गई। तो चलिए, आपने रुमाली रोटी का नाम लिया तो मुझे अपना रुमाल याद आ गया। चलिए सुना दीजिए आप।
3: रुमाली रोटी के लिए एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा लेते हैं।
2: एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा। जी।
3: और आधा चम्मच नमक, ताकि वो नमकीन लगे।
2: जी जी।
3: हाँ। बस, और उसको पानी से गूंथ लेंगे, आटा छान लेंगे। हाँ, बस इतना ही चीज है।
2: जी।
3: एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा और थोड़ा आधा चम्मच नमक, और इसको पानी से गूंथ लेंगे, यही सामग्री में है।
2: गूंथना कैसे है, फिट या लूज?
3: फिट ही होते हैं।
2: अच्छा।
3: बाकी ऐसे नहीं कि वो उसमें आटे उटे डाल के बेलना नहीं पड़े, बिल्कुल सूखा सूखा बेलना चाहिए उसको
2: एकदम।
3: हाँ, एकदम फिट।
2: जी। शक्कर पाले का बांधते इस तरह का?
3: हाँ, इस तरह का। अभी आगे हम आपको विधि बता दें।
2: हाँ जी बिल्कुल, बता दीजिए।
3: मैदा और आटे को छान लीजिए, और छानने के बाद इसमें नमक डालते हैं, और डाल करके आटा फिट गूंथ लेना है। ये तो हम आपको पहले बता ही दिए हैं कि गूंथ लेने के लिए। और इसको पतली, बिल्कुल छोटी छोटी लोई करके एकदम पतली पतली रोटी बेलनी है,
2: खाखरे की तरह।
3: हाँ, जैसे खाखरे बनाते हैं खाखरे की तरह। और गैस ऑन करके तवा सीधा नहीं रखे, उल्टा रखना है।
2: और पीछे से काला होगा तो?
3: नहीं, पीछे से वो तो गैस पे बनाएंगे तो काला नहीं होगा तवा, अगर काला है तो पहले से धोके साफ कर लेंगे।
2: जी, वो तो मैंने मजाक किया, वो तो हमारी बहन नहीं, होशियार है।
3: तो अगर तवा हो तो उसको साफ कर लेंगे, उसको साफ करके उस पे पतली पतली रोटी

0: हमने बेल के रखी है उसके ऊपर रख देंगे तवा गर्म हो जाए तो
1: जी,
0: और इसे एक ही तरफ से सेकना होगा, दोनों तरफ नहीं सेकने के लिए।
1: अच्छा, एक तरफ
0: हाँ, एक ही तरफ इतनी पतली रोटी रहे कि दोनों तरफ ऑटोमेटिक सिक जाएगी।
1: जी जी
0: हाँ, और ये पतली पतली पतली सिकने के बाद उतार लेंगे इसको।
1: अच्छा, सेकते समय इसको दबाना है या कुछ नहीं करना?
0: नहीं, कुछ नहीं,
1: वो कुछ नहीं करना, अपने आप सिक जाएगी और उसको हटा दो बस।
0: हाँ, हटा लेंगे,
1: फिर दूसरी डाल दो।
0: हाँ, फिर दूसरी डाल दी। इसी तरह आप सारी रोटियां बना सकते हैं जितने भी आटा है।
1: अच्छा, तो इसको रुमाली रोटी कहते हैं।
0: और जब आप इसको रोटी हाथ में पकड़ेंगे बिल्कुल रुमाल की तरह आपको महसूस होगा, वो मैदा इसमें आटा जो गूंथते हैं ऐसे लगेगा आपने हाथ में रुमाल पकड़ रखे।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: हाँ,
1: तब तो मैं आज ही ट्राई कर लेती हूँ।
0: जरूर ट्राई कर लीजिए, आज ये ट्राई कर लीजिए और खा भी लीजिए आराम से।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जल्दी भी बन जाएगा
1: जी। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया है। रुमाली रोटी के लिए एक कप आटा और एक कप ही मैदा लेना है।
0: हाँ, मैदा लेना
1: और आधा चम्मच नमक लेना है और पानी से फिट बांध देना है, एकदम कठोर, जो हम शक्कर पाले का बांधते हैं ना, इस तरह कठोर गूंदना है और गूंद करके फिर इसको 10-15 मिनट गलाना है।
0: हाँ, 10 मिनट थोड़ी ढक के रख देंगे ताकि वो मूस आटा जो है ना मुलायम हो जाए।
1: जी बिल्कुल, तो स्वच्छ कपड़े से 10 मिनट के लिए गला के रख दीजिए ताकि रोटी सॉफ्ट बनेगी। फिर आप 10 मिनट के बाद छोटे छोटे लुए बनाइए और पतली पतली एकदम रोटी, जैसे हम खाकरा बनाते हैं ना, इस तरह पतली रोटी बनानी है। और क्या करना है, तवे को सीधा नहीं उल्टा रखना है। तो आप तवे को उल्टा रखिए और तवा गर्म हो जाए तो रोटी डाल दीजिए और थाल नहीं फेरनी है, ठीक है ना, पलटनी नहीं है रोटी को, एक ही तरफ से सिकने देनी है। सिकने के बाद आपकी इच्छा हो तो घी लगा दीजिए। हाँ, जिधर से हमने नहीं सेकी है उस साइड में घी लगा दीजिए। वैसे घी लगाने का राजस्थान में बहुत प्रचलन है, घी के बिना कोई रोटी नहीं खाते, फिर भी भाई बीमार व्यक्ति है तो उनको घी का, जिनको परहेज है वो ना लगाए, बाकी घी लगा करके फिर आप कोई भी अच्छी सी सब्जी के साथ खा सकते हैं। इसमें सब्जी रस्से वाली होनी चाहिए या सूखी सब्जी होनी चाहिए?
0: पसंद की आपकी रस्से वाली खाइए या कोई मीठा के साथ भी इसको खा लेते हैं,
1: तो वो आपकी इच्छा पर आधार है कि आप किस तरह खाते हैं। तो चलिए, रुमाली रोटी तो चंदा जी ने सिखाई दी है और गाजर का मुरब्बा, क्यों ना हम गाजर के मुरब्बे के साथ ही रुमाली रोटी खा ले, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली और थाली में आप एक तरफ रख दीजिए गाजर का मुरब्बा, एक तरफ रुमाली रोटी रख दीजिए और तुलसी पत्र भी रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से ढकिए स्वच्छ थाल पोश और आप अपने इष्ट देव को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आप अपने पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा रुमाली रोटी का, और साथ ही साथ चंदा जी को धन्यवाद देते हैं। चंदा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे रेसिपी सिखाई है हमारे श्रोता बंधुओं को।
0: धन्यवाद आप सभी को भी।
1: तो चलिए सुना देते हैं एक गीत, तो सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। हमारे शरीर में किन किन विटामिन्स की कितनी आवश्यकता रहती है और वो कहाँ से मिलेंगे, आज इस बारे में बताएंगे। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह आपकी हड्डियों, दांत, टिश्यू और त्वचा को मजबूत बनाता है। गाजर, तरबूज, कद्दू, टमाटर, अमरूद, ब्रोकली, पपीता, आड़ू, लाल मिर्च, पालक, दूध और फोर्टिफाइड अनाज में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी टू, यह शरीर की कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। इसकी कमी से होंठ और मुंह सूखने लगते हैं। इसकी कमी से गले में सूजन, त्वचा पर झुर्रियां, एनीमिया, थकावट, आंखों का भारी होना, नींद की कमी और कंपकंपी होने लगती है। विटामिन बी टू दूध और दूध से बनाई गई चीजें जैसे दही, पनीर, इन सभी में पाया जाता है। विटामिन सिक्स, मजबूत पाचन तंत्र के लिए विटामिन बी सिक्स जरूरी है। ये शरीर में हार्मोन्स और ब्रेन केमिकल बनाता है, जिससे आप डिप्रेशन, हृदय रोग और भूलने की बीमारी और जल्दी से थकने जैसी बीमारी से दूर रहते हैं। इसकी कमी आप अनाज, केले, दलिया, नट्स, बीज और किशमिश से पूरा कर सकते हैं। विटामिन बी नाइन, यह डीएनए संश्लेषण, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ब्रोकली, स्प्राउट्स, पालक, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, चना, ब्राउन ब्रेड, दूध और दूध से बने पदार्थ, चुकंदर, खजूर, इन सभी में अच्छे स्रोत है। विटामिन बी ट्वेल्व, यह विटामिन शरीर में भोजन से एनर्जी रिलीज करने का मुख्य स्रोत है। यह हमारे मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के कुछ तत्वों के निर्माण में भी सहायक है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, हीमोग्लोबिन बनाने और नर्वस सिस्टम में प्रोटीन की आपूर्ति कर स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, मावा विटामिन बी ट्वेल्व के अच्छे स्रोत है। तो इस तरह जिसमें भी जिस विटामिन की कमी है, वो आप विटामिन की पूर्ति इन चीजों के द्वारा करके स्वयं को स्वस्थ रखिए। चलिए अब आपको सुना देते हैं एक प्यारा सा गीत, तो सुन लीजिए। एक गीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलिए श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, चलिए मैं आपको अनमोल वचन सुना रही हूँ। आज के अनमोल वचन इस तरह है, एक बार अगर हम गलत राह पर चलना छोड़ देना तो सही राह अपने आप मिल जाती है। इसलिए गलत राह को छोड़ करके सही राह को अपनाइए। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी जो मेरा स्वरचित है, तो आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा गणी सा। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी, लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज विज।
1: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रीज रीज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
1: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
1: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: जाह्नवी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, वीर वीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
1: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, घूम घूम घूम तू कर।
3: घूम नहीं दादी, ग्रूव।
1: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही, अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
4: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना?
1: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन में एक निकाल के, आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
5: और हम क्या है दादी?
0: इस सवाल का जवाब है किसी के पास? पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौड़ शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे हैं, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
8: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
9: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
8: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
9: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
8: अच्छा आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
9: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
8: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
10: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
8: हे राम मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
10: कम उम्र?
4: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
8: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाई सा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
10: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
4: लो आ गए वो।
11: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा घर में। हाँ, चलो
12: हाँ, बढ़िया
11: चलो,
12: बढ़िया
11: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
12: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
11: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
13: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
11: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
13: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
12: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
11: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
13: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
14: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है।
13: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
14: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर पैसे कमा।
13: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
11: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
4: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
9: हाँ जाती हूँ।
4: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
9: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
4: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
9: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
4: इसी बात का तो डर है।
9: हा? कुछ कहा आपने?
4: नहीं नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
9: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
4: क्या?
9: अरे मजाक कर रही थी।
4: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
10: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
4: चल ठीक है अब नाश्ता करने चलें।
0: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया, और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
10: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
15: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
16: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं ऑल इन वन लुई।
2: अब्बा दूध में इतनी अच्छी खुशबू।
3: अरे अब्बा का स्पेशल डबल फार्मूला है ये दालचीनी और इलायची, बस गड़गड़ पी जाइयो। एल्मो और लुई चाचा आते ही होंगे, एक दो।
2: ये लो दूध का है अब।
4: शाहिन, आपकी दूध वाली मुच्छी तो एल्मो से भी लंबी है।
2: एल्मो, मैं अभी बैट बॉल निकालने ही वाली थी। आदाब लुई चाचा।
5: आदाब शाहीन, मुझे तो लगता है तुम दोनों आज काफी जबरदस्त मैच खेलने वाले हो।
4: हाँ, एल्मो भी तैयार है दूध पीकर।
2: अरे एक मिनट, एल्मो में जूते तो पहन लूं।
3: और कहो लुई भैया, भाभी बिना कैसी गुजर रही है?
5: सच पूछो तो एल्मो के संग वक्त तो आंख मीचते ही निकल जाता है, पर जब से मैं अपनी मम्मी से मिलने गाँव गई है, घर और दफ्तर की डबल ड्यूटी पर हूँ।
3: हाँ भाई, भाभी को घर वालों से मिले हुए हो भी तो अरसा गया ना।
5: बिल्कुल, घर जाना तो बनता है, पर उसके वापस आने तक तो चाय भी वैसे ही पीनी पड़ेगी जैसे हमारे बच्चे दूध पीते हैं।
3: मतलब घटा घट।
5: हाँ घटा घट, कभी दाल चढ़ाना तो कभी साफ सफाई, कभी दफ्तर तो कभी एल्मो। टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। बिजी रहने का भी अपना मजा है पर।
3: अरे मियाँ, माँ बाप की जिम्मेदारी तो कभी कभी इतनी भारी लगती है कि खली मियाँ भी ना उठा पाए।
5: हाँ भैया, ये सब एक ही दिन में करना ऐसा लगता है जैसे किसी टीवी सीरियल में ड्रेस बदल रहे हो।
3: थके हुए लग रहे हो, पहले हमारे हाथ की स्पेशल चाय पियो भैया तुम। तुमने आज हमें बिल्कुल अपने दादा जान की याद दिला दी।
5: मैंने तुम्हें दादा जान की याद दिलाई, वो कैसे?
3: हाँ, उनके जिस हाथ में सुबह पुलिस वाली सीटी होती थी उसी हाथ में शाम को बल्ला या कड़ची।
5: अच्छा।
3: हाँ, जब हम अपनी बिटिया शाहीन की उम्र के थे ना, तो हमारे घर में दादा जान भी रहते थे। हमारे इलाके के हवलदार थे, हवलदार फारूकी। अब हवलदार ठहरे, सभी उन्हें नाम से बुलाते थे, पहचानते थे। अपने कड़क मिजाज के लिए तो जाने जाते ही थे, मगर घर पर उनमें छुपा एक दूसरा शख्स भी नजर आता था।
5: कैसा शख्स?
3: वही हवलदार फारूकी से खानसामा खान या किससे बाज काका।
5: अच्छा। मतलब ऑल इन वन थे तुम्हारे दादा जान।
3: अरे हमसे पूछो तो अब्बू और अम्मी के साथ साथ मानो एक और इंसान ने हमारी परवरिश करी। उनके हाथ की कढ़ी चावल, ओए ओए ओए ओए ओए, आज तक उसका डुप्लीकेट नहीं बना पाए भाई साहब।
5: वाह।
3: और कितनी दफा हमें अपने हाथों से खिलाते थे, और कहीं ऊपर कोई खिलौना फंस जाता ना तो बस हम आवाज लगा देते, दद्दू सीढ़ी पकड़ाना, और दद्दू दौड़े दौड़े आते, हमें अपने कंधों पर चढ़ाकर खुद ही सीढ़ी बनकर वहां तक पहुंचा देते, पेड़ के तने से भी मजबूत।
5: सुनकर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं था जिसमें कड़क हवलदार फारूकी पीछे थे।
3: बल्कि मीलों आगे कहिए लुई भैया, ड्यूटी पर जैसे कड़क हवलदार, रौब वाली आवाज, और घर पर पेठे से भी नरम मीठे मीठे बोल, हर जिम्मेदारी के लिए 24 घंटे रेडी।
5: भाई क्या बात, वाह।
3: इसीलिए तो जब तुमने कहा कि इन दिनों तुम डबल ड्यूटी पर हो, तो मानो दद्दा जान की तरह ऑलराउंडर का काम कर रहे हो। गजब।
5: अरे इस तरह पहचाने जाना तो मेरे लिए काफी फक्र की बात होगी तौफीक भाई। पर हाँ, अपने बेटे की जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं चाहे कितना भी थक जाऊं, एक अलग सी खुशी महसूस होती है।
3: हम समझते हैं भैया, पहले पहले जब शाहीन ने होश संभाला तो हमें लगा कि बस अब बेगम और हम आपस में बच्ची संभालने की सारी जिम्मेदारी का बंटवारा कर लेंगे।
5: पर ऐसा हो नहीं पाया, क्यों?
3: भैया काम तो बांट सकते हैं, पर माँ सिर्फ रसोई में और घर के बाहर सारे काम बाप करे। अब वो जमाने तो गुजर ही गए, क्यों भैया?
5: हाँ, बात तो तुमने पते की है। मेरा भी तजुर्बा कुछ ऐसा ही रहा है। एल्मो की मम्मी बल्ब बदलने में उतनी ही माहिर है जितना मैं कपड़े धोने में।
3: अरे हाँ, बनाओ। भैया हमें लगता है बच्चों को बढ़ती उम्र में संभालने का भार दोनों तरफ बराबर होता है, अब्बा हो या अम्मी।
5: शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। इस तराजू पर पड़ले दोनों तरफ उतने ही हल्के या भारी होने चाहिए, क्यों तौफीक भाई?
3: देखा आपने मेरी चाय कैसी असर कर रही है आप पे? क्या गजब डायलॉग मारा है आपने, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी भारी तो जरूर है।
5: बिल्कुल,
3: पर सच तो ये भी है, बिना वजन के खली भी पहलवान कैसा। वैसे भैया एल्मो तो काफी होना रे, तो मेरी तरफ से एल्मो के डैडी हैं फर्स्ट क्लास, मान लो 9/10 नंबर।
5: हाँ देखो 10/10 कब मिलते हैं।
4: पापा, चाचा, देखो एल्मो ने ड्राइंग बनाई और शाहीन ने इसमें कलर भरे।
2: जल्दी एल्मो, नहीं तो पार्क में जगह नहीं मिलेगी।
5: देखें तो एल्मो ने क्या बनाया। वाह, ये तो कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है।
4: ये है टाटरा एल्मो के डैडी कूल, एक हाथ में बैट और दूसरे हाथ में करची।
3: हम ना कह रहे थे भैया, हमारे दद्दा जान के हूबहू कॉपी हो तुम।
5: शुक्रिया एल्मो, डैडी ने भी एल्मो से ही सीखा, क्योंकि एल्मो क्रिकेट भी खेलता है और ड्राइंग भी बनाता है।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और आज का कार्यक्रम दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब हम संगीत से प्यार की बात करते हैं तो उन सभी का धन्यवाद करते नहीं थकते जिन्होंने

0: विद्वानों की सराहना अर्जित की है। वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें या आगरा के ताज महोत्सव की, अनेक सम्मेलनों को उन्होंने अपने गीतों से सजाया है। वो राष्ट्रीय प्रसारण भी उनके कई गीतों का हुआ है, चाहे आकाशवाणी पर हो चाहे दूरदर्शन पर हो। और साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अनेक शोधार्थियों का सफलतापूर्वक उन्होंने PhD भी करवाया है। और आपके अगर जीवन की बात करें तो जैसे संगीत को आपने समर्पित कर दिया है अपना जीवन, तो ऐसी कलाकार हमारे समक्ष हैं। हम बेहद कृतज्ञ हैं कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पधारे। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मैं अमिता त्रिपाठी आगरा से आई हूँ और मैंने 42 वर्ष संगीत के शिक्षण का कार्य किया और सन 1981 में मैंने MA किया। उसके बाद ही मुझे तुरंत रिजल्ट मिलते ही मुझे
0: जी
1: शिक्षक का दायित्व निभाने का अवसर मिला
0: जी।
1: तो उस मामले में बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद है। और मेरे गुरुजी GN गुणे जी, ग्वालियर घराने के बहुत मूर्धन्य कलाकार थे, उन्होंने मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा दी और इस बात से वो अति प्रसन्न होते थे कि आप प्रवक्ता हो गई हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा पद मिल गया है, फिर भी आप संगीत सीखना चाहती हैं। तो मैंने उसके बाद 81 में उनसे संगीत का शिक्षकत्व आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया, क्योंकि संगीत डिग्री से नहीं आता है, साधना है। और उनके चरणों में बैठ के मैंने ग्वालियर घराने की तालीम ली।
0: क्या बात है।
1: हाँ, और मेरे विद्यार्थी दूर दूर तक, कोई प्राचार्य हैं, कोई कमिश्नर हैं और अच्छे अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ, जब मिलते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, तो अक्सर पूछती हूँ तो कहते हैं, मैम आपने हमको इतना अच्छे डांट से, प्यार से ना सिखाया होता तो शायद उन बंदिशों को हम याद ना कर पाते। तो संगीत में साधना के साथ साथ एक प्रेरणा, अच्छा मार्गदर्शक और ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं।
0: तो
1: शिष्याओं के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मैंने शायद उन्हें अच्छा रास्ता दिलाया कि आज भी अवकाश प्राप्त होने के बाद भी वो मुझे याद करती हैं। तो इस तरह से संगीत का सफर निरंतर, 8वीं क्लास में थी सन 19,
0: ये मैं जानना चाहती थी कि शुरू कैसे हुआ ये।
1: हाँ, 1973 से मैं संगीत से जुड़ी। मेरा जन्म 1961 में हुआ था फिरोजाबाद में। तो मेरे पिताजी को, जो मेरे फादर, उनको संगीत का बहुत शौक था। हाँ, उन्होंने मुझे जो भी बचपन से जो तालीम दिलवाई, जहाँ भी जो शिक्षक होते थे, इसके साथ साथ तबले का भी मैंने कोर्स किया, प्रभाकर विशारद, और डांस में भी मैंने पंचम वर्ष किया, सितार में भी पंचम वर्ष किया, क्योंकि वो संगीत की उस समय की उच्च कोटि सत्ताओं को समझते थे। उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम्हें अगर गाना गाना है तो उसके साथ ताल, लय और इन विद्याओं का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने मुझे उस समय सुविधाएं दी, जबकि घर से लड़की का निकलना बहुत मुश्किल होता था। मैं फिरोजाबाद से आगरा संगीत सीखने के लिए आती थी।
0: क्या बात है। आपके पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें।
1: मेरे पिताजी का बहुत योगदान है। उसके साथ ही उस समय, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। मेरे पति, मेरे दूसरे पिता जो मेरे ससुर साहब थे, वो मेरी संगीत की साधना में निरंतर मुझे उकसाते थे कि तुमको साधना करनी है, तुम हमारी बेटी हो तो मैं साधना करी थी। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बहुत भाग्यशाली थी और कि मुझे उसी तरह का वातावरण
0: मिला,
1: ससुराल में भी मिला।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी संगीत की शिक्षा में मेरे मायके पक्ष के साथ साथ ससुराल पक्ष का भी बहुत अदम्य योगदान है।
0: क्या बात।
1: मेरे ससुर साहब वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान,
0: अच्छा,
1: डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, जिनको की पढ़ाया जाता है।
0: वाह।
1: एक पिक्चर आई थी दिल्ली की पिक्चर में
0: जी,
1: पिताजी की किताब, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी किताब धर्मेंद्र लिए हुए हैं, उसमें उनका नाम भी है। जब आप देखेंगे दिल्ली की पिक्चर तो ध्यान से देखिएगा, धर्मेंद्र हेमा मालिनी के बीच में जो बातचीत होती है, उसमें जो पुस्तक लिए हैं संस्कृत की, उसमें मेरे ससुर साहब का नाम है। मायके पक्ष से भी मैं पत्रकारों के परिवार की बेटी हूँ
0: जी,
1: तो मेरे अंदर थोड़ा सा नेतृत्व के भी गुण थे। तो मैं अपनी शिक्षक, जो हमारी यूनियन होती थी, उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैंने नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की। तो संगीत की साधना एक प्रकार का नेतृत्व ही है। उसमें जब अनुशासन के साथ हम बैठक करते हैं,

0: ना करते हैं, गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ संगीत की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होता है और एक कोशिश रहती है कि आप निरंतर उसमें साधना में रत रहें।
1: जी,
0: और विद्यार्थियों को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि संगीत से के अनुशासन से जीवन में समग्र विकास होता है। संवेदनाओं की आवश्यकता बहुत है जो कि हमें संगीत कलाएं सिखाती हैं, और कलाओं को जब मंच मिलता है तो वो निश्चित रूप से प्रस्फुटित होती हैं।
1: क्या बात है अमिता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने अपने सफर की शुरुआत तो की, तो अमिता जी क्या हमारे श्रोताओं को कोई आपके ऐसी पंक्तियां हों या कोई भी ऐसे स्वर जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जिनको आप बहुत स्नेह से, वैसे तो आप सब कुछ गाते हैं, आपके पास बहुत खजाना है, लेकिन जो हमारे अगर श्रोताओं को कुछ अगर आप सुनाएं आज तो ये।
0: जी जरूर, कोशिश करती हूँ। मैं आपके समक्ष एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ जो कि राग यमन में है, और कोशिश करती हूँ कि आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेगी।
1: जी।

0: नमिता जी, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की ना नॉलेज हो तब भी शायद ऐसा लगेगा कि ये चलता रहे, हम सुनते रहे और इसमें जैसे खो गए थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। ये जैसा जो गीत था यमन कल्याण में
0: जी,
1: इसकी ताल भी एक ताल थी
0: जी,
1: हाँ, जिसके बोल होते हैं धिन धिन धागे त्रिकृतना कत्ता धागे त्रिकृतीना। तो ये इस लय में उस लय का कैसे गीत उसको बांधा गया था, ये मैंने अपने जीएन गुणे जी से, गुरु जी की इससे शिक्षा ली थी। तो मुझे उन्होंने कई बंदिशें सिखाई थी यमन कल्याण में, दस दस बारह बारह, कोई तीन ताल में, कोई एक ताल में, कोई रूपक में, वो विभिन्न तालों में सिखाते थे बंदिशें। तो उसमें से एक मुझे याद आ गई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिभूत हूँ कि आपको पसंद आई, थैंक यू।
0: बहुत सच में बहुत शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं ना, तो कई बार एक आज हम देखते हैं कई तरह के संगीत हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी है और बहुत पॉपुलर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जब सुनते हैं तो वो जो महसूसता होती है वो बयां करना बहुत मुश्किल होता है, वो
1: दिल की उच्चतम अनंत गहराइयों से जो अनहद नाद की अंदर से अनुभूति होती है। ऐसे ही मैं वहाँ ज्ञान सरोवर में अभी गई थी, वहाँ पूरे टाइम मुझे इतना आध्यात्मिक वातावरण आकर्षित किया, क्योंकि मेरे संगीत की साधना करती हूँ तो वो सब ओम की साधना, वो सब तो मुझे बहुत इतना अच्छा लगा उस आध्यात्मिक पवित्र प्रांगण समारोह में, कि मैं बहुत हृदय से अभिभूत हूँ। ऐसे कार्यक्रम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे निरंतर अक्सर बुलाते रहे, ये मुझे मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद होगा। बहुत नमन करती हूँ, ओम शांति।
0: अमिता जी, यहाँ पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी।
1: जी जरूर।
0: क्योंकि जब संगीत की शिक्षा की बात होती है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, तो आप जब शिक्षा ले रहे थे वो कैसा था, मतलब क्या दिनचर्या होती थी या कैसा वो रिश्ता होता था गुरु के साथ, क्या वहाँ का कुछ उस समय के बारे में कुछ बताएं?
1: जी जरूर बताऊँ। हम लोग सुबह उठते थे 4 बजे, हमारे फादर सुबह 4 बजे उठा देते थे, तो उस प्रकार से हम संगीत का रियाज करते थे। और हमारे गुरुजी का भी यही नियम था कि सुबह उठ के हमको 5 बजे स्वरों की साधना, स्वर गाते थे हम, फिर उसके बाद आकार ईकार उकार में स्वरों का अभ्यास करते थे, ओम की साधना करते थे, तो उससे स्वर पक्के होते हैं। और जितना आप, मैं अपने शिष्याओं को भी, मैंने अपने छात्राओं, अभी भी मैं एक विद्यालय से जुड़ी, मेरे गुरुजी का जो विद्यालय था वहां मैं जाती हूँ रिटायरमेंट के बाद शाम को 3 घंटे, और कोई पैसा नहीं लेती हूँ, निःशुल्क वहाँ अपनी सेवाएं देती हूँ, क्योंकि इतना हमने समाज से लिया है तो अब हमारा समय है कि हम समाज को दें, उन विद्यार्थियों के माध्यम से, और या जो भी और कोई उच्च शिक्षा कोई भी जानकारी जानना चाहे पीएचडी के मामले में कभी, तो मैं उसको जो भी हेल्प होती है, ये मेरा सौभाग्य है कि उन छात्राओं के, उन बच्चों के मैं काम आऊँ, समाज के काम आऊँ, तो मैं वहां जाती हूँ। तो नियमित जो एक विद्यार्थी और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो बिल्कुल माता पिता पुत्र पुत्री की भांति होता है, हाँ, और माता पिता गुरु, गुरु का स्थान भी समकक्ष ही होता है माता पिता की। तो उन बच्चों को बहुत जो सिखाना चाहिए हमको, बहुत प्यार से, लगन से, और जहाँ कुछ संचेतना उनको देनी हो वहाँ देनी भी चाहिए, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं तो हमको कहना पड़ेगा। तो पहले तो स्वयं अपने आचरण में गुरु को वो सब बातें लानी होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी संगीत तो सीखता है लेकिन बाकी चीजें स्वयं देख के गुरु के आचरण से सीखता है। ऐसे पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी बच्चे हम बहुत कुछ कह के नहीं सिखाते हैं, हम स्वयं आचरण करें, सुबह सुबह खुद जल्दी उठें, टेक्नोलॉजी का प्यार प्रयोग एक साधन के रूप में करें, उस पर एकदम डिपेंड ना हो जाएं कि पूरे दिन व्हाट्सअप, ऐसे आजकल वहां भी चर्चा चली थी जैसे कि, तो मुझे यही लगा कि जो भी हमारे यहाँ ये व्हाट्सअप है, ये सशक्त माध्यम है, उनको हम सीमित साधन की तरह यूज करें, एक माध्यम की तरह यूज करें, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, वो अपनी अनुशासन हम करेंगे तो हमारा विद्यार्थी, चाहे वो शिष्य हो, शिष्या हो या पुत्र पुत्री हो, वो हमें अनुकरण निश्चित रूप से करेंगे। तो ये बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है, जैसे माँ का बेटे बच्चे से होता है, उसी प्रकार से अपने विद्यार्थियों से वही रिश्ता होता है।
0: तो आपको लगता है अमिता जी कुछ बदलाव आया है या अभी भी ये वैसा ही है?
1: मैम, बदलाव तो आया है, और थोड़ा सा ये अपने संस्कार और व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, हम किस परंपरा से आए हैं, क्या हमने घर में अपने देखा है, उस प्रकार के गुरु हैं तो वो फिर वही, हमारे गुरुजी ने कभी हमसे कोई पैसा या तो नहीं हमसे ली, हम उनकी सेवा करते थे वो बात अलग है, लेकिन एक ऐसा पवित्र उन्होंने हमें वातावरण दिया, वैसे को नहीं देखना है। मैं कमाती थी, प्रवक्ता हो गई, फिर भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया। आप आती हैं, अमिता जी आती हैं, सबको बताते थे अमिता जी फिरोजाबाद से आती थी, क्योंकि मैं, मेरे गुरु जी आगरा में थे, मैं फिरोजाबाद से नियमित आगरा आती थी, 5 बजे से 7 बजे तक मुझे शिक्षण ग्रहण करती थी उनके चरणों में बैठकर, और फिर बस से अपने घर आती थी। अनमेरिड थी, अविवाहित थी, तो माताजी चिंता भी करती थी, लेकिन मेरे पिताजी का बहुत सहयोग था, मेरे को बहुत विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर, तो वो तालीम इस तरह चलती थी। और फिर जाके, क्योंकि मेरा जॉब 19 वर्ष में ही लग गया था।
0: अच्छा
1: जी, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि एक साथ मुझे चार चार जॉब मिले।
0: अच्छा,
1: जब मैं एमए पास किया तुरंत ही मेरे पास नौकरी, एक जगह लोंगरी रखती उस समय, एमए पास करके लग जाती थी एक तो। फिर थोड़ा सा मेरा इतना प्यार भरा रिश्ता रहा सबसे, जहां मैं पढ़ती थी वो मेरा इंतजार करते थे कब मैडम एमए करके आए, लड़की है तो हम इसको अपने विद्यालय में रख लेंगे। इस तरह से मुझे कॉलेज की जॉब 19 वर्ष पार किया था, मैंने 20वां लगा था सन 1981 में। मैं बरेली से मैंने अपना शिक्षक की यात्रा शुरू प्रारंभ की।
0: क्या बात है अमिता जी, मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगी कि हम जानते हैं आजकल बहुत से लोग हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, टेंशन है, जीवन में डिप्रेशन भी आ रहा है कई, तो क्या कोई आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ये सुने या इस प्रकार का संगीत सुने जो मदद कर सके, या कुछ अगर आप ऐसा सुनाएं हमारे श्रोताओं को जो आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार का अगर आप संगीत सुनेंगे तो आप अपनी स्थिति को भी बेहतर कर पाएंगे?
1: जी, कई बच्चे आते हैं हमारे पास, कुछ तकलीफ में होते हैं, परेशान में होते हैं, लेकिन संगीत का हम प्रारंभ सरगम से ही करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रांतीय लोक संगीत है, भक्ति संगीत है, वो छोटे छोटे गीत जो होते हैं, जैसे मैं एक जैसे कहूँ, बच्चे का कुछ नहीं जानते, बच्चे जैसे राम का सब जीवन चरित्र सब जानते हैं, छोटा सा एक हम छोटी छोटी हम बंदिशों में बताएं उनको, राम

0: सीधा सीधा है इस तरह से, ज्यादा उसको टेक्निकल ना, शुरू शुरू में प्रारंभ में अवसाद इन सब चीजों से निश्चित रूप से दूर होता है, भक्ति संगीत है और जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उसके छोटे छोटे गीत बनाकर उनको, और सरंगम के माध्यम, जैसा मतलब विद्यार्थी हो, विद्यार्थी किस लेवल का है, डिप्रेशन का शिकार है, और थोड़ी सी हम उसको एक गाइडेंस भी देते रहे, समझाते रहे उसके मन की बातों को
1: जी।
0: क्योंकि सारा कुछ मन में है और किस परिस्थिति से वो आहत है उसकी बात को पूरी सुननी चाहिए, सुनने के बाद फिर संगीत के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सुनना भी एक मैडम लर्निंग प्रोसेस है
1: जी।
0: श्रवण की एक क्रिया है, बहुत सशक्त क्रिया है। सुनेंगे जितना सीखने से नहीं आता, ये सुनने आता है। हमारे गुरु जी के विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ जो आधा घंटा सीखता है वो पहले एक घंटा सुनता है, तो उससे काफी हद तक बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके अवसाद दूर होते हैं, क्योंकि सुनेंगे हम, सुनने की धैर्यता ही तो खत्म हो रही है वर्तमान में
1: जी।
0: वो सहनशीलता, वो धैर्यता, बड़ों के प्रति थोड़ा आदर सम्मान, तो जब बैठने की प्रक्रिया से एक अनुशासन आता है
1: जी,
0: तो उस प्रक्रिया से जब सुनेंगे तो फिर उतनी देर उनको समझने का मौका मिलेगा
1: जी।
0: है ना, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ, कोशिश करती हूँ।
1: ये बहुत सुंदर आपने बात कही, एक घंटा सुनते हैं तो आधा घंटा फिर आप सीखते हैं, गाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो सुनना बहुत जरूरी है जीवन
0: उसमें,
1: में।
0: उसमें कई कई राग, उनको बच्चे डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, उन सबकी भी उनको समझ में आता है ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है, फिर इतना अच्छा गा रहा है, तो बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाती है,
1: प्रेरणा बन जाती
0: कि नहीं मुझे अपना धैर्य नहीं खोना है। हम धैर्य खो के ही तो अवसादग्रस्त हो रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो धैर्य, ये संगीत हमें बहुत धैर्यवान बताता है, हाँ, हमें संवेदनशील बनाता है संगीत की साधना,
1: संगीत से जुड़े
0: अनंत,
1: तो
0: हाँ बिल्कुल, संगीत वो सशक्त माध्यम है जो हर अवसाद और वेदना का जो पूर्ण करने में सहयोग, सशक्त माध्यम है,
1: सशक्त माध्यम है, बिल्कुल
0: सशक्त माध्यम है।
1: अमिता जी, मैं आपसे एक और, अगर कोई ऐसी, जैसे आपने अभी जो राग सुनाया, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो या रिक्वेस्ट करते हो सभी सुनने के लिए, कोई ऐसा गीत या कोई एक राग अगर हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं।
0: इस समय मुझे याद आ रहा है बस थोड़े उसके राग दरबारी की एक बंदिश याद आ रही है
1: जी।
0: जो अक्सर पसंद की जाती है, मान जा, दरबारी के स्वर में गाधानी कोमल लगता है और ये रात्रि के प्रथम मध्य रात्रि कालीन गाया है, आशा भरी थाट से उत्पन्न होता है, तो इसकी मैं बंदिश सुनाती हूँ आपको।

0: मुझे ऐसा लगता है जब आप गा रहे होते हैं तो उसके बाद कुछ ना बोलूं या कुछ ना पूछूं आपसे।
1: बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपको पसंद आया।
0: इसके बाद शायद कुछ भी कहना कम लगता है, कुछ भी सुनने का मन और नहीं करेगा। आपकी आवाज में सच में जादू है और दिल गदगद हो जाता है सुनकर। अमिता जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ महसूस करती हूँ कि आज मैं आपको लाइव यहाँ सुन पा रही हूँ।
1: थैंक यू सो मच। मैं समस्त ब्रह्मकारी का बहुत हृदय से, भाइयों और दीदियों का बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम आगरा से, ईदगाह से अंशुना दीदी हैं, उन्होंने हमको भेजा है और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ज्योति मैम के माध्यम से मैं आई। ज्योति खंडेलवाल आगरा से कथक नृत्य की डायरेक्टर हैं, वो मुझे लाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बहुत सारी सीख यहाँ से लेके, गाइडेंस लेके जा रही हूँ जिससे अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र में उनको वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।
0: अमिता जी, जाते जाते अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप ऐसे टिप्स या गाइडेंस उन्हें देना चाहें कि वो बेहतर गायक बन पाए, या जैसा आपने कहा कि गुरु से और भी चीजें सीखते हैं संगीत के अलावा, तो बेहतर इंसान भी बन पाए, बेहतर गायक भी बन पाए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं नए बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, एक तो उनको बहुत, जो भी मार्ग चुने उनके सामने खुला द्वार है। प्राचीन काल में जो हम लोग पढ़ते थे उससे पहले के काल में उतना साधन नहीं थे, आज तो बहुत अच्छे साधन हैं, इसलिए अपनी जो दिशाएं हैं वो स्वयं तय कर सकते हैं। एक उनके सामने खुला द्वार है, चाहे वो PhD करें, चाहे वो गायक बने, चाहे वो अच्छे कोरियोग्राफर बने, डांसर बने। तो आज तो बहुत ही ये बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो बच्चे अपना मार्ग आसानी से चुन सकते हैं अपनी टैलेंट के हिसाब से। बस वो अपने संस्कारों से बने रहे, जो घर का संस्कार है और जो गुरु से संस्कार लिया है उनसे विरत होकर कोई मार्ग ना चुने। और जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जब तबले का आया तो तबला करें। अब बच्चों को ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि मुझे तबला करना है, मुझे गाना करना है या कोई वाद्य करना है। जिस चीज की आपके अंदर अभिरुचि हो, अपने टैलेंट को, अपने गुणवत्ता को समझते हुए गुरु के निर्देशन में उस दिशा में अपने संलग्न होकर कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी।
0: जी, तो उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए या फिर क्या सीखना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई गाना गाना चाहते हैं तो वो गाना गाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: ये कहना चाहूंगी कि जो गाना है, कुछ भी आप गाइए, जड़ उसकी शास्त्रीय संगीत है। निश्चित रूप से उनको सरगम का अभ्यास करना पड़ेगा। सरगम का अभ्यास करने से जब स्वर पकड़ में होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के जो सरगमों का जो अभ्यास है वो बेसिक में वो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे विद्यालय में जो मैं जहाँ जाती हूँ वहां पर तानपुरे से गाते हैं सब लोग, नो हारमोनियम। हारमोनियम ध्यान भटकाता है, तो हारमोनियम को बहुत आगे जाके गए, तो विदेशी वाद्य है, शुशुर वाद्य है, लेकिन हम जो साधारण गाना गाते हैं उसमें हारमोनियम बहुत हमें सहायता करता है। लेकिन नींव में जाकर पहले तानपुरे से हमें स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। तानपुरा भी इलेक्ट्रिक तानपुरे चल गए आजकल तो, लेकिन वैसे उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा गुरु के सामने ही अभ्यास करें प्रारंभ में।
0: अच्छा,
1: फिर वो अच्छा लोकगीत भी गा सकते हैं, अच्छा फिल्मी संगीत भी गा सकते हैं, लेकिन स्वरों का अभ्यास गुरु के सामने बैठ के करें। जब पक्के हो जाए सरगम है उनकी, सारे रे गामा शुरू में, फिर ये डिफरेंट टाइप के हो गए, सारे गामा, इस तरह के जो छंद हैं, 3 के 2 के 4 के 5 के, तो उन छंदों में जब सशक्तता आ जाएगी, जब उनमें मौलिकता आ जाएगी, एक सुरीले हो जाएंगे वो, तब फिर जाके आगे उनको सीखना चाहिए। प्रारंभ में सरगम का अभ्यास करना चाहिए और गुरु के सामने करना चाहिए। ये तो बेसुरापन आ जाता है ना घर में, घर में भी अभ्यास करने का हम तभी अलाउ करते हैं जब उनका सामने स्वर अच्छा हो जाए।
0: अच्छा,
1: प्रैक्टिस सभी करनी चाहिए जब आपका गुरु कह दे कि दिस इज ओके, आपका सही हो गया है,
0: तब उसका अभ्यास करें।
1: अभ्यास तब तक नहीं करना चाहिए था जब आपके शिक्षक हैं या गुरु जो भी है वो आपको आदेश ना दें, क्योंकि आप फिर गलत कर लेंगे अभ्यास। तो प्रारंभ में उसको संगीत को सुरीला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्वर में गाने के लिए सरगम को और गुरु के सामने, शिक्षक है या गुरु है जो भी है, क्लास में पढ़े या अलग से पढ़े, उनके सामने ही अभ्यास करना चाहिए। जब पक्का हो जाए फिर आप अपना अभ्यास भी करें घर में और फिर गुरु को सुनाए। यह एक सही तरीका है मैम, कोई भी विधा गाएं आप।
0: जी,
1: क्लासिक, बल्कि वाद्य लोग बजाते हैं सितार और वायलिन और वीणा वगैरह जो बताते हैं, उनके लिए भी तंत्र वाद्यों के लिए, उसके लिए भी लोग पहले गाना सीखते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: NM राजन थी, इतनी अच्छी वायलिन वादिका, सब गाना बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, गाना सीखने से क्या होता है, वो मन में एक अंदर से तीन अवस्थाएं होती है ना सीखने में, चेतन अचेतन अवचेतन, उनमें संगीत जाता है तो वो फिर निकलने में भी उतना सुरीला निकलता है। तो गायन कला उच्च क्यों मानी गई, क्यों गायन कला सब चीजों की जननी है, गायन कला श्रेष्ठ है, तीनों कलाओं में गायन कला श्रेष्ठ क्यों है, कि हमें कोई साधन नहीं चाहिए, मैंने यहाँ बैठ के आपको गात्र वीणा से जो प्रभु ने मुझे दी है उस गात्र वीणा से मैंने आपको संगीत सुना दिया, मैं शब्दों को भी माध्यम ना बनाऊं फिर भी आकार के माध्यम से भी आपको, लता जी एक आकार लेती थी लोग गदगद हो जाते थे, तो हमें संगीत में गायन कला में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना तबला चाहिए ना हारमोनियम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी अपनी साधना कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गाना तो अपनी साधना के लिए होता है, वो ठीक है हम थोड़ा प्रदर्शन भी करते हैं क्योंकि मन की शांति के लिए, अपना अनहदनाथ अंदर का जगाने के लिए, आत्मा परमात्मा का पूजा करने के लिए, तो संगीत वो सशक्त साधना है जिसमें गायन कला बहुत उच्च कोटि की है, क्योंकि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है,
0: आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: माता जी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, आपके पसंदीदा?
1: मेरी फेवरेट सिंगर से तो फिल्मी में तो आशा जी है
0: जी।
1: और वैसे जो शास्त्रीय संगीत में मेरे गुरु जी के अलावा बहुत से कलाकार हैं जिनको मैंने सुना है, मुझे किशोरी मुनकर जी बहुत पसंद है, बेगम अख्तर जी बहुत पसंद है, ये अच्छी गजल गायिका थी बहुत अच्छी, किशोरी मुनजन के क्लासिकल गाना हे गोविंद हो गोपाल आंसू से ऐसे रुला देता था, बहुत भावुक गाना उनका था, ये मेरी पसंदीदा गायक है।
0: आपको गजल का भी शौक?
1: हाँ,
0: है
1: गजल का शौक है मुझे, शौक है तो बहुत ज्यादा नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ कोई अवसर आता है तो मुझे कोई कहे तो मैं कोशिश करती हूँ गाने की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वैसे तो मैं शास्त्रीय संगीत की कोशिश में रही हूँ, पर मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर शास्त्रीय संगीत हमने अच्छी विधि विधान से सीखा है तो हम कोई भी गाना कोशिश कर सकते हैं गाने की, तो मैं क्या नाचीज हूँ तिनका मात्र हूँ।
0: आपने इतनी जगह जो परफॉर्मेंस आपने दी, आगरा के ताज महोत्सव की बात करें या वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें, बहुत सारे राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, कोई जैसे आपने गजल की बात कही आपको शौक है, क्या तो पंक्तियां आप गुनगुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
1: थैंक यू, मैं गुनगुना कोशिश करती हूँ। अभी ये गजल का कार्यक्रम हुआ था आगरा में, आशा जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, तब भी मैंने उनके उनको गा के ही श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि संगीतकार की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि उन्होंने जो काम किया है अपनी जिंदगी में उसको गाकर हम उनको सम्मान दें। उनको उनकी प्राइवेट एल्बम से एक गजल मुझे याद आ रही है जो अभी मैंने आगरा में कुछ एक डेढ़ महीने पहले गाई, कोशिश की थी गाने की।

0: आपने श्रद्धांजलि दी और इस
1: श्रद्धांजलि मैंने दूसरे गाने को की।
0: अच्छा,
1: जैसे मैंने अभी गजल का परफॉर्मेंस हुआ था तो मैंने आशा जी की एल्बम से ये गजल गाई थी।
0: अच्छा जी, हाँ। जी।
1: वो उनका श्रद्धांजलि दूसरे से की थी, वो उनका बड़ा दर्द भरा गीत है जो मैंने गाया था। आप कहेंगे तो मैं दो लाइन सुनाऊंगी। उनका बहुत पसंदीदा, और जब वो बहुत तकलीफ में थी तब उन्होंने वो गाना गाया था जो मेरे दिल को छू गया। जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो उनका इतनी महान कलाकार को भी इतना कष्ट, कितना कष्ट उनको, पारिवारिक कष्ट उनको हुआ, तब उन्होंने वो गीत गाया था।
0: जी।

0: हमको कभी। आशा जी का बहुत दर्द भरा गीत है, और उसमें जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी मैंने तो आंखों से आंसू की धारा बैठी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके गीतों को और ध्यान से मैंने सुना, कितनी महान कलाकार को कितनी समस्याओं से गुजर के उन्होंने बहुत संघर्ष से संगीत को
1: संघर्ष किया है
0: सीखा सीखा
1: आपने।
0: बहुत,
1: जी जी
0: अपने
1: जी
0: को सेव करते हुए बचा के। कैसे एक लड़की का जीवन किस प्रकार के होता है, जब उनकी उस सब मैंने जीवन परिचय पढ़ा तो फिर मुझे याद आया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे परिवार ने हमको इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमको सहयोग किया हमारे फादर ने।
1: जी।
0: माता जी बहुत नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर को संभालने से मुझे जो सहयोग दिया, और पिता ने मुझे आगे, मेरे फॉर्म मेरे फादर भरते थे। तो
1: अच्छा
0: कितने, ये देख के मुझे लगा कि हम बहुत लकी हैं, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है, बाबा जी का बहुत आशीर्वाद है।
1: जी, ऐसे पिता, ऐसे माता पिता, ऐसे
0: जी
1: घर मिला। मुझे लगता है जैसा आपने कहा, आशा जी की बायोग्राफी शायद हम सबको पढ़नी
0: पढ़नी
1: चाहिए,
0: चाहिए, बहुत
1: बहुत
0: प्रेरक है,
1: प्रेरक है,
0: हर लड़की को तो पढ़नी ही चाहिए, सबको पढ़नी
1: सबको
0: चाहिए।
1: पढ़नी
0: जी
1: चाहिए। जी, जैसे कि अमिता जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी 19 साल की उम्र में ही आपने शिक्षा का क्षेत्र अपनाया, और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया। करीबन 40 से ज्यादा तो आपके शोध पत्र ही प्रकाशित हुए हैं। अनगिनत शोधार्थियों को आपने सफलतापूर्वक पीएचडी भी करवाई
0: जी
1: है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, किस प्रकार के शोध किए, किस प्रकार के टाइटल्स थे, या क्या अनुभव
0: जी जी
1: था आपका?
0: जी बहुत अच्छा। शोध कराने में, जब मैं 96 में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई तो जैसे ही डिग्री मेरे हाथ में आई या वो लेटर मिला तो विश्वविद्यालय ने कहा अब आपको शोध विशेषज्ञ बनना है, आपको गाइड बनना है। ये देखिए, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग कराते थे पीएचडी, तो बहुत विद्यार्थी मेरे पास, अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, एक से एक अच्छे कलाकार, एक आईटीसी से पढ़ी हुई थी डॉक्टर रूबी मलिक
1: जी
0: जो कि लताफत हुसैन खां की शिष्या थी। अब जब वो इतनी बड़ी कलाकार मेरे पास आई तो मुझे लगा मैं ही उनके आगे कुछ नहीं हूँ, पर कहती है नहीं मुझे आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने अपने गुरु जी के योगदान के ऊपर, जो कि आगरा घराने के विशिष्ट बहुत उमदा उच्च स्तरीय कलाकार भी थे और शोध मर्मक भी थे संगीत के, उनके ऊपर उन्होंने काम किया, लताफत हुसैन खां का संगीत में
1: जी
0: योगदान। मीडियम उनका इंग्लिश था तो बहुत अच्छे से काम किया। फिर उनको एक फेलोशिप मिली तो वो ट्रिनिटाड में चली गई थी जैसे
1: अच्छा
0: अवार्ड हुई,
1: जी
0: और फिर उनका यहाँ पर दाऊदयाल कॉलेज फिरोजाबाद में नियुक्ति में भी मैं ही विशेषज्ञ थी, मेरा ही पद था और मैं ही विशेषज्ञ थी। तो उनको, रूबी जी बहुत अच्छा गाती थी आगरा घराने की गायकी, शोध उनकी जो परख थी, गुरु के प्रति इतना समर्पण था, तो मुझसे बोली कि मैं इस तरह उनके ऊपर ही कुछ काम करना चाहती हूँ। उनकी जो विशिष्ट गायकी थी उनके ऊपर उन्होंने, उनकी विशेषज्ञता के परतों से शोध के निष्कर्ष निकाले उन्होंने, उनकी गायकी कैसी थी, उनकी बंदिशें कैसी थी, आधुनिक संदर्भ में उनकी क्या क्या और विशेषताएं परख हो सकती थी।
1: जी,
0: तो उन्होंने उनकी बंदिशों के ऊपर काम किया
1: क्या
0: अपने
1: बात
0: गुरु
1: है।
0: जी की गायकी के ऊपर, और बहुत अच्छा उनका काम हुआ, आगे जाके उनको फेलोशिप भी मिली और वो फिर ट्रिनिटाड में सेटल हो गई।
1: क्या बात है
0: जी अब तो रिटायर हो गई हैं, आ गई हैं।
1: जी।
0: दूसरा मुझे एक मिली शोभी माथुर है आगरा की, बहुत उच्च स्तरीय शोरमणि प्राप्त है उनको, कलाकार हैं, उन्होंने भी बंदिशों के ऊपर काम किया, बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें बनाती थी वो। तो
1: अच्छा
0: जिस विद्यार्थी के अंदर जो गुणवत्ता हो, आगरा कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत प्रोफेसर ने मेरे साथ काम किया, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे अच्छे विद्यार्थी मिले। कुछ ऐसे भी मिले जिनके साथ मैंने बहुत मेहनत की, एक ने किया संगीत के माध्यम से, मतलब मीडिया एक सशक्त माध्यम है
1: जी,
0: संगीत के प्रचार प्रसार में, उस
1: बिल्कुल
0: लड़की ने भी बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले। जैसे हम पहले कहते थे ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो संगीत से हर चीज बहुत आसानी से याद हो जाती थी, उसको कहने में, उसका प्रचार प्रसार करने में
1: जी,
0: एक सशक्त माध्यम था।
1: जी बिल्कुल।
0: और भी विद्यार्थी आए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तबले का योगदान पर काम
1: अच्छा,
0: किया, क्योंकि मैं तबले में भी मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो
1: बिल्कुल।
0: तबले के विद्यार्थी भी मेरे पास आए, क्योंकि संगीत में तीनों ही चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मैं प्रोफेसर हुई तो उसके बाद फिर मेरे पास तबले के भी विद्यार्थी आए, जिनको 5 विद्यार्थियों ने ऐसे किए जिनको नेट क्वालिफाइड थे, हाँ
1: अच्छा
0: उनको JRF मिलती थी।
1: जी,
0: हाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने काम किया, बहुत मेहनत की और अच्छा मुकाम हासिल किया। अभी एक का तो पीलीभीत में अपॉइंटमेंट हो गया है, नियुक्ति हुई है, एक रचना गुप्ता जी हैं, वो नवोदय विद्यालय हैं, उनका भी आगरा में कुंडों में एक जगह है, वहां उनका हुआ है।
1: क्या बात है।
0: तो और एक मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी जिंदगी में बहुत यादगार विद्यार्थी हैं,
1: जी,
0: विद्यार्थी मुझसे उम्र में बड़ी थी, वो चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र की डायरेक्टर हैं,
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी,
0: तो
1: क्या
0: काफी
1: बात,
0: ओल्ड है, और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक की डांसर है।
1: वाह।
0: वो जब मेरे पास आई तो मेरे मैंने कहा दीदी आप तो कितनी गुणी हैं, आपको क्या कुछ करना नहीं। अमिता जी मैंने सुना है पीएचडी तो आपके निर्देशन में करनी है, क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हैं, आपके अंडर में कोई विद्यार्थी कभी परेशान नहीं होता है। तो ये मेरी, मुझे उनके मुंह से सुन के लगा शायद मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ, कि इतनी दूर से चंडीगढ़ से आके उनको ये लगा कि मैं ही उनको करा सकती हूँ। तो ये मेरे, मुझे लगा शायद मेरा इस, मेरा जो मार्ग है वो ठीक चल रहा है, मेरा लोगों का जो स्नेह है, तो मैं उससे धन्य हुई और मैंने उनको फिर ग्रहण किया। रातों रात हम दोनों ने मिलकर सिनॉप्सिस बनाई और दीदी का काम किया उन्होंने, लोक पंजाब के लोक संगीत पर, उन्होंने कथक में
1: जी,
0: कथक की थी वो
1: जी,
0: डॉक्टर शोभा कौसर
1: जी।
0: हाँ, तो कथक की अंतरराष्ट्रीय ख्याति पर मॉरिशस वियतनाम सब जगह जाती थी प्रोग्राम देने, और बहुत अच्छा मुकाम है उनका कथक क्षेत्र में
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे अंडर में काम किया, तो तीन चार विद्यार्थी तो ऐसे लगे जिनको मुझे देख के ये लगता था ये तो खुद ही इतने अभीष्ट कलाकार हैं, इनको मैं क्या गाइडेंस दूंगी, लेकिन उनको लगा कि नहीं आपके साथ ही करना है। तो एक रिसर्च करते समय एक टॉपिक होता है शोध प्रविधि, है ना, शोध प्रविधि, और सेकंड में हम डालते हैं उपलब्ध साहित्य का सिंगालोकन, जो भी आपने टॉपिक लिया उससे संबंधित कितनी बुक्स पढ़ी आपने। अक्सर विद्यार्थी उनको छोड़ देते हैं, संगीत में खास तौर से जो रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजी और इनका वो ऐसे विवरणात्मक ज्यादा टॉपिक होते हैं, क्योंकि संगीत में अभी रिसर्च का मार्ग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि कोई कराता नहीं था, होते थे आप देखें गिने चुने होते थे और विवरणात्मक ज्यादा लिख देते थे, उसमें विवेचनात्मक या रिसर्च मेथोलॉजी डाल के उसके अच्छे शोध की संभावनाएं क्या है, वो उस तरह की तुलनात्मक। तो रिसर्च का मतलब तो ये होता है, मतलब रिसर्च जो सर्चेज हुई है उनको हमें फिर से पढ़ के कुछ नए मार्ग लोगों के सामने प्रशस्त करने होते हैं। तो इस तरह की रिसर्च मुझे कराने का मुझे मौका मिला, जिसमें विद्यार्थी का भी बहुत सहयोग होता है और मेहनत तो गाइड को ज्यादा करनी पड़ती है,
1: गाइड की बहुत मेहनत होती है। ये रिसर्च फील्ड में कहते हैं अगर आपको अच्छा गाइड मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाता है।
0: सही कह रही, ये तीनों लोग इसीलिए आए थे, अच्छा गाइड का मतलब है कोई सहयोग भी करे कोई व्यपना। आजकल गाइड का आप जानती हैं जैसा है वातावरण, तो वो तो उस मामले में मुझे सुन के ये अच्छा लगता था कि पैसा सब चीज नहीं होती, वैल्यूज भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले काम करने के, और अभी मैंने जो मेरे अंडर में जमा हुई है दिव्यांगता के ऊपर, दिव्यांग बच्चों के ऊपर मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कराए। तो उस बच्ची को मैंने संगीत के माध्यम से दिव्यांगता की भागीदारी, एक सशक्त माध्यम, दिव्यांग है
1: जी,
0: और उसने संगीत सीखा है
1: जी, जी।
0: तो उस माध्यम से वो अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं, नहीं तो कोई कहता अरे ये ऐसे है वैसे, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने दिव्यांग शब्द जो दिया उससे बड़ी इज्जत मिलती है। तो उसमें काम किया उस लड़की ने कि संगीत के माध्यम से क्या उनकी भागीदारी कितनी निश्चित है, कितना उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त है समाज में।
1: पीएचडी की
0: टॉपिक है जी जी,
1: क्या बात,
0: रेयर टॉपिक, अनुभव हुए इसमें। जितने भी आर्टिस्ट मंच पे आते थे तो हम ढूंढते थे दिव्यांग है, उनके अनुभव लेना, उनकी फिर डाटा निकाला वहां से, जो एक सूरकुटी है आगरा में
1: जी जी,
0: वहां से डाटा निकाल के फिर काम किया इस तरह।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और बच्ची ने भी बहुत मन से किया, हालांकि मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ उस काम से, क्योंकि लड़कियों के साथ ये होता है कि उतना हर छात्रा उतनी लगनशील नहीं होती है, तो मैं उतना उसको अच्छे से गाइड करूँ, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम है, उसने जमा कर दिया उसको। अब देखते हैं आगे एक और वाइवा होगा तो उसमें भी कुछ और अच्छी गाइडेंस देकर उसको परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे।
1: मतलब संगीत के क्षेत्र के अलग अलग जो
0: आयाम है,
1: हाँ, और बहुत ही विभिन्न, मतलब ऐसे जो विषय है वो एक दूसरे से बड़े अलग है, और वैसे संगीत सागर है, कितने गोते लगाए जाए उसमें, लेकिन शोध का माध्यम बड़ा
0: ये होता है, विद्यार्थी सीख रहा, हम भी सीख रहे हैं, हम भी निरंतर सीखते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें शिक्षक का भी लाभ है, गुरु का भी लाभ है और विद्यार्थी। इससे पहले समय था उसमें ऊपर गायन शैली से ही गुणवत्ता मानी जाती थी, गौर कितना बड़ा कलाकार है, लेकिन वर्तमान समय में रिसर्च करें आप, पेपर लिखें आप अभ्यास भी करें, अच्छे कलाकार भी, एक अच्छे शास्त्रज्ञ भी बने, तो ये अलग अलग मार्ग हैं, इन सब में महारत हासिल करते हैं।
1: आपने शोध पत्र भी लिखे
0: जी,
1: 40 से ऊपर आपने शोध पत्र लिखे, उसमें किन विषयों पर आपने काम किया
0: जी? मैंने उसमें एक दो तीन पेपर निकाले थे, मीराबाई जो मध्यकालीन संगीतज्ञ थी, क्योंकि मेरे रिसर्च का टॉपिक मीराबाई थी, भक्ति गीत संगीत की परंपरा एवं मीराबाई, तो मैंने उनकी जो उनका संगीत तत्व था, मीराबाई का जीवन आपने देखा हो तो मीरा के भक्ति गीत संगीत के प्रयोग कैसे, कौन कौन से अभिनव प्रयोग थे, है ना, और ये मनोविज्ञान के ऊपर भी मैंने लिखा।
1: अच्छा।
0: संगीत और मनोविज्ञान जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं संगीत के शिक्षण प्रशिक्षण में, ये तीनों अवस्थाएं हमारी काम करती हैं मनोविज्ञान की, इस पर भी मैंने पेपर लिखे, कोशिश की। और मध्य काल में भक्ति संगीत के कौन कौन से प्रयोग हुए, मध्यकालीन कवियों ने संगीत को क्यों सशक्त माध्यम बनाया, संगीत को क्यों माध्यम बनाया, उसमें मीरा कैसे सबसे सशक्त हो गई, क्योंकि वो स्वयं प्रेयसी हो गई, उनके और प्रभु के बीच में कोई नहीं था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई माध्यम ही नहीं था, सूरदास जी ने उद्धव को माध्यम बनाया, लेकिन मीरा जी तो स्वयं प्रेयसी हो रही, तो ये कैसा समर्पण, एक लगन और कैसा प्रेम था अलौकिक, कि इसी एक लाइन से समझ आता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो मीरा एक सशक्त माध्यम थी, उन्होंने उस समय की नारी को एक जो नेतृत्व प्रदान किया, तो मीरा जी का जीवन मुझे बहुत अंदर से आकर्षित करता है, उनके नेतृत्व को देख के, उनके संगीत और समर्पण को देख के, उसमें त्याग तपस्या और बहुत कुछ था।
1: जी, समर्पण की बात आती है तो मेरा भाई का नाम ना लिया जाए ये तो संभव ही नहीं होता।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: थैंक यू
1: जी। क्या आप कोई ऐसा, जैसे आप भक्ति संगीत की बात कर रहे हैं, मीरा बाई जी की बात कर रहे हैं, तो क्या दो और पंक्तियां आप हमारे श्रोताओं को?
0: जी जरूर, थैंक यू मैम। सुनी हो मैं

हर भी दो लाइन में मैं एक आपको एक और उनका समर्पण का प्रेम जो गीत मैंने बताया उसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, वो छोटी सी ताल में है और बड़ा अच्छा, वो मैं ज्ञान सरोवर में गा के भी आई हूँ, पसंद आया सबको।

0: ये उनका बड़ा समर्पित गीत जो मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कोई है नहीं, तो कितना समर्पण, ये प्रेम की अभीष्ट पराकाष्ठा आप देखती हैं इसमें। और वर्तमान नारी के लिए भी उन्होंने एक संदेश भेजा कि जिस रिश्ते में रहो प्रेम, प्रेम सर्वोत्कृष्ट हर रिश्ते में, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, त्याग और उसमें बलिदान, तो ये रखेंगी भाव तो हर रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप भी आनंदित रहेंगे और आपके साथ जो रहेगा वो भी आनंदित रहेगा। जी, ये जीवन का, जीवन जीने की कला मैं वहां भी सीख के आई हूँ, यही और ज्यादा प्रबल हो गई और, तो मुझे वहां इसीलिए बहुत अच्छा लगा जी। आनंद, आनंद मतलब पराकाष्ठ आनंद, चंद्रकांता दीदी वगैरह सबका, सारी दीदियों का बहुत उत्प्रेरक। हालांकि मैं इतनी ऐसी हतप्रद हो गई वहां सुनकर, अभिभूत हो गई कि मैं वाणी, ऐसा लगा मैं निशब्द हो गई, आपके सामने मैं अच्छी बातचीत कर रही हूँ, ऐसा लगा मैं प्रेम में आनंदित हो गई, अभिभूत हो गई, निशब्द नहीं हो जाता है व्यक्ति, उस तरह का मुझे लगा।
1: हम अभी निशब्द हो गए आपको सुनकर, सच में मुझे लगता है हम और हमारे श्रोतागण सभी इस वक्त भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि हम आपको सुन पाए। आपकी आवाज है ये हमारे दिलों में बसाकर हम रखेंगे। मुझे लगता है
2: जैसा आपने कहा कि संगीत बहुत मदद करता है हमारे जीवन शैली में, आपने बताया डिप्रेशन या स्ट्रेस भी होता है तो संगीत किस प्रकार से हमें खींच कर बाहर निकाल लेता है, और हम सभी, मैं फिर से ये कहूंगी, बहुत भाग्यशाली है कि हम आनंदित होने का ये अवसर मिला, आपको सुनने का ये अवसर मिला। बहुत बहुत दिल से आभार है आपका अमिता जी।
0: थैंक यू, मैं भी बहुत आह्लादित हूँ आपसे, आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करके गायन के माध्यम से या अपनी जो भी जीवन की जो अनुभव था उससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सादर के साथ अंदर से अभिभूत हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। ओम शांति,
2: ओम शांति। तो दोस्तों आपने सुना प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी, उनकी साधना को जाना, उनके सुरों को अपने दिल में आज हमने समा लिया और एक प्रेरणा स्रोत हमें और मिले जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों अमिता जी का हम दिल से आभार तो व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ जो प्रेरणा मिली उसे जीवन में साथ लेकर चलते हैं ये वादा भी करेंगे। पर फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

आवाज दी दुनिया रा हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम ने सुनवाला सगला श्रोताओं ने कैसी चिनगर रहा घना घना राम राम गणी खम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहा हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुअन कार्यक्रम मायने आपो समाज में फैलोड़ी कुरुतियों में बारा में समाज लोगों की बात करो हूँ अन्य अलावा अपने समाज में कई समाज सेवी वे है उन्होंने भी अनुभव अन कार्यक्रम में शेयर करो हूँ अन्य अलावा अपने समाज में कई बुजुर्ग

0: भाई साहब बेटा है उन्हों भी स्वागत करो। बादशाह आपने रोम रोम है।
1: राम राम राम राम।
0: तो हमें महेंद्र जी रो परिचय ले रहे हो। महेंद्र जी आप डोंगरी गांव में कतरा साल थे अटे रह रहे हो।
2: 1968 थी मारे जन्म हुआ वनिश टाइम थी मु अटे रह रहा हो ने मारे 1986 में 10वीं मैट्रिक पास करे पे ने मु महाराष्ट्र तरफ प्रस्थान की दो 15 साल बॉम्बे में नौकरी की थी।
0: तो हमें आप बताओ कि आप क्यों मो जन्म थी अटे रह रही हूँ तो अंति पहला अन गांव में आपरे परिवार थी कौन आया।
2: मोरे अणी गांव में 4 पेढ़ी रे पहला नानोराड़ा गांव थी उठी मैं अटे डूंगरी गांव में वसिया था।
0: पर दादाजी आया था या आपरे पिताजी आए।
2: पर दादा दलाबाजी परिवार।
0: दलाबाजी परिवार मतलब पहला नानरवाड़ा में रहता।
2: नानरवाड़ा में रहता। अच्छा। वटाती
0: अटे आवारो कारण कर रही हो
2: अटे मोरे जगह थी। अच्छा। जगवण वास्ते एक भाई ने अटे मे लिया। अच्छा। रवण वास्ते ए अटे अपने आया परदादा।
0: परदादा आया तो अटे एक इस परिवार आया तो
2: एक इस परिवार
0: आज जो गांव में मैंने सुनवा में आया तो 40-50 घर है वह सब एक ही परिवार का मेंबर है।
2: 37 घर मोरे परिवार है। 3 घर उदेश परिवार है। अच्छा। अलग गोतर है। अच्छा। ने एक घर नहीं रहा है।
0: एक घर नहीं रहा।
2: हाँ जी
0: चलो ठीक है। मतलब एक दादा रा परिवार 37 घर है।
2: 37 घर है।
0: चलो ठीक है। ओए होबली तक अटो जो गांव है नशा मुक्त गांव है।
2: हाँ नशा मुक्त है। ओ मोरे ब्रह्म धाम आसोत्रा दिए जो धनाराम जी महाराज है तुलसाराम जी रे शिष्य वणोई मार्च महीना में आ घोषणा की थी कि पूरा राजपुरोही समाज नशा मुक्त री घोषणा की दी थी। अच्छा। वन्य सब ये पालना करें ये छाले रिया है। अच्छा। जो पूरा राजपुरोही समाज जो है यानी अखिल भारतीय अन वास्ते करीबन 5300 आसोत्रा ब्रह्म धाम में वहां पर पूरी सब सदस्य गया था वे सब प्रार्थना करें बाबजी सोगन दिरावेन भेजिया था वन में आ सब बाबजी घोषणा की दी ने वह ब्रह्मा जी भगवान ने पार पाड़ी।
0: सिरोही जिला रो पहलो गांव है जो नशा मुक्त है।
2: सिरोही जिला रो नहीं पूरा राजस्थान रो।
0: अच्छा।
2: पहला घोषणा की दीजिए को
0: पूरा राजस्थान में डोंगरी गांव है जो बनास में सिरोही जिला में है वो पूरा नशा मुक्त है। बहुत अच्छी बात है। तो कोई आदमी अटे नशो नहीं करता
2: ठीक है कोई वही तो चुपचाप कोई करता वही।
0: अच्छा।
2: बाकी कोई नहीं है न पूरा प्रयास है कि वो मोरे पूरी घोषणा न ब्रह्मधाम के आदेश हुआ बाद में कोई नहीं।
0: चलो ठीक और बातों कर रही हूँ अन्य बारे में। हमें आप बताओ आपरे पिताजी रो का नाम तो।
2: मारे पिताजी नाम गुलाबिंग जी।
0: गुलाबिंग जी। गुलाबिंग जी का काम करता।
2: गुलाबिंग जी खेती बाड़ी करता था। 2014 में वणोर स्वर्गास हुए गयो।
0: महेंद्र जी बचपन रे बारे में आप थोड़ा आपने पूछना चाहूँ आपरो बचपन केरो बीतियो अन्य बारे में थोड़ा सा।
2: मोरो बचपन सा यानी पिताजी खेती बाड़ी करता था। बहुत गरीबी थी नमे 6 भाई था तो पिताजी जीव करे सबने 6 भाइयों ने पढ़ाया।
0: 6 भाई में आप रो क्यों नंबर।
2: मारो 14 नंबर है।
0: 14 नंबर है। 6 भाइयों में आप थोड़ा थोड़ा नाम बताओ एक एक नाम सब।
2: सबसे मोटा हिम्मत भाई। बीजा नंबर किशोर भाई है। हिम्मत जी बॉम्बे सर्विस करे। किशोर भाई बॉम्बे दलाली करे। मगन भाई बॉम्बे सर्विस करे। मो खुद भिवंडी सर्विस करो। माती छोटो प्रकाश वो कलम्बोली नई मुंबई स्टील में नौकरी करे। ने माती छोटो है वो हमारे काका जी रे बच्चों आती सर्विस।
0: मतलब 6 भाई है सब ज्यादातर बॉम्बे साइड में रहे।
2: सही सर बॉम्बे में।
0: आप धंधा में की गन किया आप पढ़ाई नहीं की थी।
2: पढ़ाई नहीं पहला मोरे भाई साहब ने बीजा ने सब गियोड़ा था आगे वन जो ताऊ जी रे लड़का ने बीजा ने तो बॉम्बे में सब गए भाई नवा नवा कपड़ा पहरे ना आवे जो एक बार आप मुंबई जाओ के तो वे जी 10वीं 12वीं की थी।
0: अच्छा।
2: सीधा बॉम्बे से गया आई वन टाइम मैं तो नहीं है कि भाई मास्टर बढ़े तो अपने आखिर वो कोई दिमाग में नहीं तो क्या चलो बॉम्बे है तो हारे
0: परिवार में थे पहला कोई गया तो आपने लागो को मने जानो जी बॉम्बे।
2: हाँ
0: ठीक है।
2: हाँ वन वास्ते ही के भाई ये गियोड़ा है ना सब बॉम्बे में अच्छो अच्छो है ना चलो आपनो जीवन यापन बढ़िया वे रही है।
0: आप कटाउती पढ़ाई की थी।
2: मैं 10वीं पास मैट्रिक पास 1986 में।
0: आप एडमिशन अटे डूंगरी गांव में पढ़ाई हुई थी स्टार्ट में।
2: मोरे अटे सा अमार 2007 स्कूल पहली थी जो पौसी तक हुई है वरने पहला अटे स्कूल कोई नहीं थे।
0: आप कटे मनवा जाता।
2: वो आदर्श में 8वीं तक आदर्श की थी 9वीं ने 10वीं कोजरा।
0: ठीक है आपने जो पढ़ाई हुई तो पढ़ाई रे दौरान बताओ आपरा दोस्तों रे बारे में आपरा दोस्त जो टीम थी तो दोस्तों रे बारे में थोड़ी जानकारी दो आपरा क्या क्या दोस्त था।
2: मारे दोस्त मोरे मैं 4 पुरोहित था मैं पहली ती लगाड़ी दसवीं हाथी बनी।

0: मैं तीन दोस्त हूँ, सीताराम और जगदीश। कपड़ा रो काम भिवंडी में जगदीश रहे और सीताराम रहे मिठाई की दुकान है स्वरूपगंज हॉस्पिटल रे बांटे।
1: तीन दोस्त था,
0: तीन
1: चौथा दोस्त नहीं बनाया
0: ना, तीन था मेरे गाँव में, तीन था।
1: चलो अच्छा ठीक है, मैं आप बताओ कि आप जो दोस्ती है आज भी कायम है?
0: मैं एक दोस्त टूटो ना, छोड़े नहीं गियो, थोड़ा मन मोटा वे गया वन वास्ते। हाँ
1: एक बेचारी बात नहीं मोनी,
0: बात नहीं मोनी का
1: अरु नहीं पीता हाथी,
0: नशा मुक्त था अरु सावणी, मैंने ब्लैक मेलिंग की दो।
1: हमें आप बताओ, पढ़ाई तो आप क्योंकि दसवीं तक की थी, ठीक है, स्कूल में पढ़वा जाता तेरे मार साहब, आपने कोई मार साहब वेरे भाई जो आपने खूब लाड करता भाई, आपने फेवर करता भाई, आपने कोई मतलब प्रेरणा दी थी भाई कि आप बड़े थके पढ़ाई करो?
0: प्रेरणा तो ठीक है, बाकी पहली बीजी ने तीसरी में जो कोई मन याद आवे वे अपने एक अपने भगवान राम जी मीणा करें था वनोरो मारे माते विशेष यू एक वागेंद्र जी रावल आदर्श में वनोरो खूब प्यार तो आई यू के बेटा यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय।
1: चलो अच्छी बात है, तो आज भी आपने मार साहब आपने मिले तो आपने केरू लागे
0: खूब एकदम प्रेम थी आदर थी एकदम तो गुरु जी ने एकदम मोरे टाइम में जो गुरु जी जो कोई भावना थी के साइकिल माता हो के एक साइड में रे नमस्कार बीजा करना रहता, वह आज की स्थिति नहीं है। मार से याद उषा करे ना सूर्य याद उषा करे, नमस्ते जी का नमस्ते।
1: आज
0: रे टाइम में
1: आज बताओ पहला रो तालमेल और आज रो तालमेल गुरु और शिष्य रो कह रहे
0: हाँ मोरे टाइम रो आपने क्यों के ओरिजिनल जो कोई तो वो गुरु शिष्य रो वन टाइम में इस तो हमें तो वो सब का है थे दोस्त ने मेरी दोस्त क्योंकि वह स्थिति रही है नहीं है के छोटे वाजे समसम ने विद्या आवे गम गम वातो वात रही नहीं है कने मास्टर हाथ में लाकड़ी वेती है नहीं है लाकड़ी वेता सीधा जेल में जानू पड़े सोरा माँ बाप आवे रहो के भाई मोरा सोरन की मारियो।
1: आप बताओ आपने जीवन में कोई एरो पल बताओ जो आपने याद वे बचपन रो पल कोई एरी घटना वे बने बारा
0: बचपन रो तो पल बस घना है नदी आवती जी नाना था ने बीजा ने हार वन वास्ते के कितने पिताजी डांट पड़ी के रजगो वाड़वो है ना थोकटे गियो तो के नदी में झिलवार ने बीज ने बारिश रे माई वो ज्यादा अपने हाथी घटना करती
1: इस घटना देख मैं खूब
0: ना नावा धोवार ज्यादा तो क्या भाई नदी आई तो झिलवार तो पास हर कोम रो सब डिस्टर्ब हो जाता
1: बहन बापा रे मदद नहीं की दिया
0: ना खूब की दी वन वास्ते डांट पड़ते हैं आज कटे गो तो कणी वाड़ी नहीं थे घास कणी वाड़ी के
1: तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान जो महेंद्र जी है पुरोहित डूंगरी गांव में रह रिया है और पूरा गांव नशा मुक्त है और अनोरो पूरा समाज रो प्रयास है ऑल इंडिया में जो भी पुरोहित समाज है अनोरो प्रण है कि हर समाज रो बंधु नशा मुक्त हुए तो अनोरो जो एक गांव है डूंगरी एक दादा रो परिवार है अटेरे पसियो है और पूरा परिवार है जो जितना भी परिवार है सब नशा मुक्त है वास्ते प्रण लीदो है और सब नशा मुक्त एकदम परिवार है और पूरा राजस्थान रो एक नशा मुक्त गांव है तो डूंगरी गांव है तो अच्छी बात है। पर हमें एक छोटो सो ब्रेक लेना चाहूँ, ब्रेक थी पहला आप सब ती अपील है कि आपने माइती भी कोई अपना समाज रीति रिवाज अपना अनुभव बतावना चाहे तो रेडियो का नंबर माता जरूर मैसेज करजो। रेडियो का नंबर है 94 14 15 14 15। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: ब्रेक रे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुन वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है ना अपने मेहमान महेंद्र जी पुरोहित है उन्होंने भी रेडियो मधुबन में स्वागत है। तो महेंद्र जी आप बताओ स्कूल के बारे में बताया अपना बचपन के बारे में बताया हमें बताओ आपरे शादी क्या सन में हुई।
2: 8 जून 1988 में मारा विवाह हुआ।
1: आपरो विवाह बाल विवाह हुआ तो या नॉर्मल विवाह।
2: 18 साल में हाँ मारे वो 18 हुआ ने नॉर्मल 18 से बात ही नहीं।
1: तो पहला हाटा करता रिश्ता में रिश्ता करता तो आपरे नॉर्मल शादी हुई हाटा की
2: हाटा में मारे पति जी दी थी।
1: तो आज भी आपरे समाज में हाटा वे
2: हाटा रो सिस्टम है इसे
1: हाटा की दौड़ा रिश्ता यू नहीं है कई बार टूट भाग हो जाए एक परेशानी आए तो बीजी घरे आने बे फ्री तेरी परेशानी आप तो नहीं आई
2: ना नहीं कोई नहीं अपने तो कोई नहीं अपने तो कोई नहीं आई
3: बिल्कुल बराबर
2: बराबर रेडी एकदम।
1: चलो अच्छी बात है तो हाटा में देखा मतलब ज्यादातर के भाई टूट भाग हो जाए तो पे एक आवे घरे तो बीजी घरे आवे का फिर वे प्रॉब्लम ठीक है। मैं आप बताओ कि शादी हुई आपने बच्चा कतरा है
2: 3 बच्ची ने 1 बच्चा
1: तो बच्चा आप क्या करे
2: बच्चो भिवंडी सर्विस
1: वो भी आप बड़े ले गया मुंबई बच्चियों ने बनाई आप
2: बच्ची मोटी बच्ची बनी 10वीं पास उन्होंने शादी कराई हाँ। 1 बच्चा 1 बच्ची है हाँ। और सेकंड बच्ची 12वीं पास और लास्ट वारी है वा हमार 8 साल फाइनल एग्जाम दी।
1: तो आपने समाज में बच्चियों ने आज भी बना रही है
2: हमार 8 पोजीशन में हमारे सब टॉप एकदम इंजीनियर
1: मतलब कोई मतलब रुकावट नहीं समाज में मतलब
2: कोई रुकावट नहीं 1% रुकावट नहीं है 100%
1: बहुत अच्छी बात है। हमें आप बताओ आपने 3 बेटियां हैं तो आपने लागो नहीं कि आज गणित ठुकाने मन कह के मारे तो बेटियां हैं मुँह की कन पन्ना हूँ पोता हूँ करूँ तो आपने वो विचार नहीं आया कि मुँह की कन करूँ आजकल मन क्या करे कि बेटियों ने मारा अपनी गर्भ में कि बेटी की पालन पोषण करूँ तो आपने तो 3 बेटियां आप तीन ही बेटी खुश हो
2: तीन ही बेटी खुश है मुँह बनाती मुँह खुश हो ने एक लक्ष्मी रो वास है कदी दिमाग में नहीं आई हूँ कि मारे बेटी आई वन वास्ते के वहाँ पे कोई दुख के 1% कदी कोई ने बढ़िया कार्यक्रम ब्याह हुआ बच्चे और बच्चा ही हुआ न कदी कोई माता जी कर पाती कोई ठानी पड़ी हो अपने
1: रेडियो पर आपने खूब मनक हुने रिया है और आपने 3 बेटियां हैं तो आप वे माँ बाप ने आप कहो कि भाई जो माँ बाप बेटियों ने कोख में मारवा की कोशिश करे बेटी वे तो आप उन्होंने का सीख देनी चाहो
2: भारत रा प्रधानमंत्री आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रो नारा दीदो है हर परिवार ने हर माँ बाप ने मुँह सजेशन नहीं देखते प्रार्थना करे है को कि बेटी आपरे घर में है तो लक्ष्मी रो वास है कि बेटी सुख दुख में है ए बेटा बेटा सब ठीक है बढ़िया है एक रहना चीज है बाकी बेटी वास्ते तन मन धन थी आपरे एकदम और आज सरकार पूरा हाथ दे रही है कि जिनने घर में बेटी है वह पूरा सरकार हाथ दे रही है आप खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ वनरो भविष्य उज्जवल करो ये हमारी सबकी प्रार्थना है कि बेटी के बारे में कदी कोई गलत नहीं सोचे आज नम्र विनती है ने वनन एकदम अरज के बढ़िया एकदम के बेटी को खूब पढ़ाओ और लिखाओ वनरो कदी अपमान नहीं वेणो सही जाए मात्र शक्ति है तो अपने जीवन है
1: जी जी। चलो महेंद्र जी आपने बेटियों के बारे में अच्छा विचार बताया है कारण और 3 बेटियां पर तो भी खुश है क्योंकि बोले बेटियां हैं लक्ष्मी अवतार है घर में अपने तो बेटियों ने बचावनी जो जे आज जो मनक कोख में मारे रिया बेटियों ने तो उन्होंने अणोरे ऐस प्रार्थना है कि बेटियों ने बचाओ क्योंकि बेटी वेला तो वंश आलेला वगर बेटी वंश नहीं आले का तो अच्छी बात है। महेंद्र जी मुँह आपने पूछू हूँ आप बताओ आपने जीवन रमाए कोई खुशी रो पल बताओ जो आपने याद वे
2: खुशी रो पल तो हर समय भगवान ने इसके के खुश रहो तो अपने घर में खुशी से रहे रोता रहो तो वन में कोई माते हाथ फेरता नहीं है के ओपे अपने अपने जो कोई कोई एड़े वे के दुख है तो हमेशा खुशी से रहना चाहिए एड़ो कोई बने सब खुशी सुखी रहना आनंद
1: आपको हमेशा खुश रहना चाहिए तो घर में बेटा भी वे शादियों भी हुई वे तो कोई तो एरो पल वे जो आपने ज्यादा खुशी हुई
2: नहीं हमारे 2 बच्चियों की शादी की दी है 1 बच्ची ने 1 बच्चा बाकी है जी। तो खुशी से बढ़िया कोई तकलीफ नहीं है एकदम आनंद ही आनंद है।
1: चलो आपने जिंदगी में कोई दुख रो पल बताओ जो आप खूब दुखी हो गया होला
2: दुख रो पल तो 2014 में हमारे पिताजी ऑफ हुआ ना और उन्होंने थोड़ी बीमारी तकलीफ आई तो वन वास्ता थोड़ा अपसेट वे गया था। दो तीन महीना हमारी बीमारी रह साहब थी वो पल मारे तो ये मुझे दुखी रही
1: सब ती दुख रो पल वो आपने पिताजी शरीर छोड़ी जरा आपने खूब दुख लगा।
2: हाँ वो खूब दुख लगा
1: अच्छी बात है। और माँ बाप वास्ते तो हर इंसान ने हर बेटा ने दुख मैंने जूझी। ठीक है हमें आप बताओ आप शादी करें आया तो आपने धर्म पत्नी पढ़ी लिखी थी या
2: अनपढ़
1: आपने बच्चा तीन चारों ने बनाया हुआ साथ में आप तो कौम माते रहता बान धंधा ऊपर तो वने की कन मैनेज किया चार ही बच्चों ने बनाओ
2: कुछ तो अपने देखभाल आई क्या एक अनपढ़ वे तो करते ही चारों बच्चों ने पढ़ाया तो अंतिम मोटा मोड़ जो साक्षर वारो है उड़न क्यों के अपने बच्चों कभी अनपढ़ नहीं रहे के वन वन टाइम में यानी मारे अगले पिताजी ने वन टाइम ही मोन पढ़ाया तो मम्मी पापा बेहू भिड़ा नहीं था तो ही मोन सबने पढ़ाया दसवीं बारहवीं दसवीं बारहवीं जो कोई है तो अभी तो अतरा साक्षर हुआ तो सबने यू के सब ग्रेजुएट वेणो सही जाए ने अपनो पूरा भारत साक्षर वेणो सही जाए।
1: आपने धर्म पत्नी आपने जीवन में कतरो साथ दी दो
2: पूरो साथ एकदम सुख में दुख में कदी उठानी पड़ियो के मुका कमाइयो कानी कमाइयो सब रेडी एकदम कदी अपने मन में यू नहीं आई के भाई थे का की दुई
1: आज आपकी धर्म पत्नी आप रेडियो पर इंटरव्यू होने रही है आप उन्होंने क्या कहना चाहो
2: बस जो जिंदगी में मारा साथ दी दो है यू साथ देती रही वो इस मारे तमन्ना है
1: जन्म में मली भी जन्म
2: खाते जन्म सातो जन्म
1: मुझे भगवान ने कहूंगा आपने वो जोड़ो जन्म जन्म तक रहती। चलो हमें आप बताओ दुनिया में कई तरह की कुरीतियों समाज में वे है कनी टोकने देखवान मन मले है सबती मोटी एक बीमारी है जो को एक कुरूति कहो हो एक तो है लड़कियों अनुपात कम हुआ है तो वन्य कारण साटा प्रथा आले रही है या और को बीचो कारण
2: बस जो आप बताइए वो अनुपात कम रहे हिसाब तीस अण वास्ते के भाई वो मारे बच्चों में दीदी ने मारे बच्चों रह जाई तो वन वास्ते के भाई चलो साटा हमण में तो कम तो वही प्रो क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक करोड़पति है सामान्य घर है गरीबी रू घर है अण वास्ते ओ थोड़ो आले रही हमारे समाज में
1: करने साटो देवा ने नहीं वे तो फसवन कंडीशन में का
2: वे तो भगवान ने हाथ भी राते जो लेख लकी उड़ाए वे सब पार पाड़ है वो कोई कुआरो रह नहीं है सगे संबंधी भी अपनी सहायता कर ले वे अच्छा। और जो अपनी धरती माता है वे, वे, वे कोई कोई भाग्य सुनने नहीं वे अपने पत्नी नहीं लकी उड़े वे तो ये अलग बात है।
1: हाँ तो श्रोता बंधु और भी अपने मेहमान महेंद्र जी पुरोहित है उन्होंने बातों करी एक छोटो सो ब्रेक लो हो ब्रेक रहे बाद में फिर आप महेंद्र जी की बातों करी हो आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवाला सगला श्रोता और स्वागत है। अने अपने मेहमान महेंद्र जी पुरोहित है जो डूंगरी गांव में रह रिया है और अभी स्वागत है। तो महेंद्र जी मैं आपने पूछू हूँ समाज में एक और एक प्रथा एड़ी है कैन मृत्यु भोज और दूसरी प्रथा है गंगा जल प्रथा। तो आपने समाज में मृत्यु भोज कई ठिकाने आज बंद किया पर कोई खातो नहीं है तो आपने समाज में दो ही प्रथा चालू है और गंगा जल प्रथा रो कारण एरो है कि वन में खूब पिया खर्च हुए अतरा वे आदमी वन खर्चा में डूबे प्रो। तो आपने समाज में प्रथा हले रही है
2: गंगा जल जो आप प्रथा कह रही हो वो बिल्कुल हमारे बंद है
1: बंद की दिया।
2: बिल्कुल बंद है
1: मृत्यु भोज
2: में ठीक है का है सुबह 9 बजे थी लगाड़े हाड़ी दस उमदी कोई आवे जो खरमा ने दाल कोई वे बाकी वो तो कोई नहीं है और लास्ट में हाड़ी दस 11 बजे चाय पिलावे।
1: मतलब पूरे समाज में मतलब गंगा जल प्रथा बिल्कुल बंद की दी और मृत्यु भोज भी मतलब नहीं रहा बराबर है बस खाली मेहमान खानो खाया सादा खाना
2: बस सादा खाना एकदम और वो भी जो भी है जैसे मैं आज मेरा मैं बोलता हूँ कि मो कटे भी लोकाई जाऊ मेरी कोणी जाऊ खाणो यानी पौनी तकात नहीं बहुत से लोग नहीं लेते ये मेरा मैंने मुंह मारू बता रही हो कि मैं नहीं खाता हूँ तो हमारे वो मुंह कोई खाता नहीं है और ज्यादातर लोग कोई खाता नहीं है हमें सब समझदार रह गया है क्योंकि सब भाई की लोग है नवे आवे ने पचंग पाचा फट जाए पहला जमाना में तो क्या भाई चलो जाइए उन्हें आवे जितने पूरा दार निकली 2 घंटा में पटे।
1: आप डोंगरी गांव में एक ही परिवार पुरोहित परिवार है तो 17% बच्चा साक्षर हुआ है और आप पहला कम बढ़िया आप धंधा करवा बॉम्बे गया आज जो नवी पीढ़ी है उन्होंने आप पढ़वा वास्ते आप समाज रहा बच्चों ने क्या कहना चाहिए
2: पढ़ाई रो साक्षर में तो मोरे अटे हो टका है सब बढ़िया एकदम अच्छी साक्षरता है सब रेडी है न सब ने वही सर्ज करो कि भाई थे जितना ज्यादा ज्यादा पढ़े पराने कोई भी ऑफिसर बनो गवर्नमेंट में कर्मचारी बनो और वाइस मारे सबने विनती है ने कि भाई सुझाव है कि आप खूब पढ़ो।
1: बालिका शिक्षा ने बढ़ावा दिया वास्ते आपने समाज में आप भी का योगदान देना चाहो
2: मोरे वेलफेयर ट्रस्ट है राजपुरी समाज रा 2-4 वे हर समय साल में एक बार वणों ने कोई भी पारोतिशी के वणों उत्साह बढ़ावा वाते है हमारे फिलहाल मोरे ब्रह्मधाम आसोत्रा थी ध्यानाराम जी आया था जो ही ग्रेजुएशन हुआ है फर्स्ट क्लास पास हुआ है बच्चियों ने सब ने बैग वितरण प्रमाण पत्र वितरण हर साल कार्यक्रम हर एरिया वाइज ब्रह्मधाम आसोत्रा थी है ब्रह्मा जी है वो वही है।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है मतलब आप समाज रे में आप भी योगदान करो रियावन में और समाज में भी मतलब एक अच्छी सी सब पहल है जो बालिका शिक्षा ने महत्व दे रही है और समय समय ऊपर जो छात्र छात्रा सम्मान समारोह रखे रिया है। चलो अच्छी बात है हमें बताओ दहेज प्रथा समाज में एक बहुत बड़ी कुरूति है उड़ावड़ी मची आजकल बच्चियों ने माँ बाप खूब देव रो तो ही वन और पेट नहीं भरतो है कई बच्चियों वन्नी बलि चढ़ी पड़ी है तो आप समाज में दहेज प्रथा चलन है या नहीं और जर कटे आज समाज में वे रियो है तो वनों ने आपका कहना चाहो दहेज ने बंद करवास्ते
2: मोरे समाज में दहेज प्रथा बिल्कुल बंद है।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है
2: राजपुरी समाज री जो बात आवे वन में लोगों की धारणा है कि यह सब दहेज वाला है जहाँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट यानी मोरा जो 3 प्रगना है ना बिल्कुल दहेज नहीं है ने वसलो पटो
1: वसलो आबू रोड
2: नौंदरवाड़ा ने खाकरवाड़ा ने वीरवाड़ा से लगा करके आबू रोड अण में मोरा कोई दहेज प्रथा बिल्कुल बंद है कोई डिमांड नहीं है।
1: समाज में बेटियों ने बलि चढ़े रही खूब दहेज रे कारण वे रही हो तो दहेज नहीं दे वास्ते आपका प्रेरणा समाज रहा बीजा समाज रहा लोगों
2: मो पूरा यानी जो भी है जो दहेज देवा वाला है ने लेवा वाला है के अपनी बच्ची है वनों ने ध्यान वेणो से जाएगा अपनी बच्ची है थे ले रिया तो थोने देनो है अण वास्ते मो सब ने अरज हाथ जोड़े विनती कर रही हो के अणी कुरतीन आप एकदम बिल्कुल बंद करो ने बंद करो।
1: चलो अच्छी बात है हमें अपने पास में एक महेंद्र जी रे भाई साहब है अनोती भी जानकारी लो हों के ए कुछ अपने गांव रे बारे में कुछ बताना चाह रही है।
3: मारे गांव डूंगरी रे माए पहला बड़ा हुआ था जो डोकरा था वही खूब प्रेम थी रहता था ने खूब यूं आत्मीयता थी आपस में एक बेचारा दुख सुख बटावता रहता था ने लगभग हम ये मनीष टंकी में रह रिया समय रो कोई प्रभाव तो रही से थोड़ा थोड़ो तो वो असर रही। बाकी आज मैं प्रेम थी रोनिश ढंग थी अने वो जो नशा मुक्त रही अने भाई जो बताड़ियो वाकई सबसे पहला अगर बीड़ो उपाड़ियो तो डूंगरी गोमे उपाड़ियो अने नशा मुक्त रो बीड़ो उपाड़े अने खूब परेशानी आई क्योंकि वो कोई इतना मामूली काम नहीं तू कहने पार पाड़े हको। बाकी को वो कह के हाउ काम उपाड़ो तो एक पग आप मेला तो बीजो पग भगवान मेलावे तो हासी है भगवान के कर मेलावियो आ तो एक मतलब आश्चर्य की बात है क्योंकि मोरे जो ब्रह्मता मासोत्रा है वो मतलब खूब मोटा समाज रो मतलब एक केंद्र बिंदु है ने वटाती आ मोर लागवे के भाई नशा मुक्त अपने पूरा समाज वेवू सही जे ने वो डूंगरी में पहला कीधु ने वटाती मोर लागे मिस वाकई आ भगवान रिस मोर है वो यू मन ही लागू के मतलब हाउ काम करो तो भगवान मदद करे ने वो पार पड़ी ने गाड़ी आज दाड़ हम दिन आज लगभग हिंग ते बनवू ठीक है छोरी छुपे के कोई लेतो वे के कोई आदि वे तो वो तो धीरे धीरे रही धीरे धीरे वही बाकी लगभग समाज में ये मरे बनवू आ एक मोटी प्रभु की कृपा रही है। हमें इन बाद में गाँव रे विकास रे माए लगभग स्वाध्याय थी जुड़ियो रहे अने सबरे घरों ने माए जो पौणी आवे वो पौणी जो कोई धोवा धावा झीलवारू वे वो पौणी नालियम हिंग थे हर गाँव में यू वे प्रोने गंदगी करे तो स्वाध्याय परिवार वे बात यू लागू कि भाई हिंग थे पौणी रे कमी है तो पौणी रे कमी की कर अपने कम की दी जाए तो विचार की दो कि भाई यू करो कि वो पेज कोई वो पौणी फालतू नालियम जाए वाष्पीकरण वे जाए अने नोपे जतरू जमी थी लियो ने अपने कौन मैं ली दो कह रही वे को पास होनी माइन दियो तो वो सोखता खड्डो ने रूप में पोतारू जो कोई कौम में लीधो पौणी वे वो सोखता खड्डो ने रूप में हर घर में एरो आपस में मणिन तय कीधु के भाई खादरो खड़े पुरो ने सोखता खड्डा ने पौणी जमी में उतरे तो मैं तो अने हारू कीधु के भाई वो पौणी नीसू उतरी तो ओपरे लेवल बनी ओडू रही रिचार्ज भी अने साइड इफेक्ट ऑफ हुआ के भाई ये नाली बीजी नहीं बनावी ने गंदगी बन हुई तो बीमारी बन हुई और दवाई बीज लेवा करवारी आई माता फोड़ी मटी मोरे लगभग घना खरा अदरा स्वस्थ थे कई बच्चों तो एरो जो 8-10 साल रो हुए ने जे अस्पताल नहीं गो ये प्रभु की कृपा रही के मोरे माई ये विचार आवना थी अटक गंदगी रू बिल्कुल आप गाँव में माई कटी भी कहीं भी गली में जाए देखे आपने कटी गंदगी के नाले नहीं मड़े नाली सेंक्शन हुई तो नाली कैंसिल करावी हो बजट लैप्स करावे पर नाली एक एक कलीरे माई कटे नाले आपने नहीं मड़े तो एक तो मैं ओ मोटू कौम हर इन मणे कीधु हमें अन्य बाद में धुआं मुक्त है हर घर में गैस रू कनेक्शन है तो धुआं मुक्त रे रूप में वेवाती सब बहनों ने जो है वो स्वास्थ्य ठीक रहे क्योंकि धुआं थी मनन पालन नहीं पड़ता। अन्य बाद में हर घर में शौचालय बनावी हो वे पोता रे खर्चा दी बनावी हो गवर्नमेंट आवे क्योंकि भाई थोड़ा आने थी जो कोई पिया कोई बीज को मड़ी तो क्या हमारे को एक पैसा नहीं देना है लेना है हमने लिख करके दिया और एक पैसा भी शौचालय के नाम के खर्चे का जो भी सरकार से मिलता है वो नहीं लिया वो नहीं ली दू मैं पोता रहे हरेक घरे में शौचालय बनावी हूँ आ सुविधा ही है। अन्य बाद में वृक्षारोपण जो कोई कौम है वही एक को झाड़ घाले ने काल पड़ियो पोता रहे करती गोड ली दू वे जो पानी पाए ने मोटू कीधु ने आज आप जाए देखे हो तो स्कूल में आइए कम से कम हवा हो रहे करीब झाड़ स्कूल में ही वे गोवे वाले गाले मोटो की दो वे तालाब ही मतलब तालाब रे किनारे पर हर 20 फुट रे माते एक कुकू निबड़ा रु झाड़ गाले क्योंकि हिरोई जिला रे में निबड़ा रु झाड़ सरलता थी मोटू प्रवे तो वे गाले प्राणे बेउ तालाब ने किनारे माते निबड़ा रु झाड़ जो है वे मोटो की दो ने आज वे आबादी यूरो मैदान रे आखिरिया चौक में हर ठकोने जितने जरूरी तो वे हाँ झाड़ काले पर उन्हें मोटो की दो क्यों क्योंकि वृक्ष में वासुदेव है आ कल्पना करे पर उन्हें वने रे मैं जीकन भगवान ओपरे जीव रे माता अभिषेक करे जी ओपे उन्हें झाड़न पौनी पाए ने अभिषेक रूप माने पर ने वे झाड़ मोटो की दो ने आज वे बिल्कुल पेड़ बनियो रहे और वे प्राणवायु के रूप में कौमे आवे रही है तो वो वृक्षारोपण पर्यावरण रे बनाए गोवे वाले मलन हारी ने वो कौम की दो। बाकी लगभग मैं सब प्रेम ती रह रिया हूँ और ने गौमरु जो है वो दाड़े दाड़े विकास वे रही हूँ कोई पण आवे तो मोरो प्रेम भावने नो विकास देखे ने यू तो मन यू आत्मा थी खुशी वे के भाई ना चलो ठीक कर रिया हूँ।
1: तो श्रोता बंधुओं, आज अपन डोंगरी गांव में महेंद्र जी पुरोहित है अणोती अणोरे जीवन रा विचार लीदा पछे अणोरे गांव रे जो विकास रे बारे में कुछ बातों बताइए। सबसे पहला नंबर वन नशा मुक्त गांव, दूसरो प्रदूषण मुक्त गांव, नाली बिल्कुल नहीं है, नालियां मतलब बिल्कुल मतलब गंदगी नहीं गांव में, मतलब बिल्कुल नाली मुक्त है। हर घर में शौचालय है पर वो भी सरकार पियाती नहीं, स्वयं रा खर्चा ते बनाया पूरा गांव और अन गांव ने मतलब स्वच्छ रखवा की कोशिश की थी। अटारा गांव रे लोगों का कहना है कि अन गांव में बच्चों अगर 10 साल तक वे तो बीमार नहीं हुआ, आज तक हॉस्पिटल नहीं गयो, मतलब पूरा गांव में स्वस्थता है। प्रदूषण मुक्त गांव वो है पर्यावरण वन दृष्टि देखो तो अटे उन्होंने कहना है कि हर इंसान एक पेड़ लगाया है, वन पेड़ ने मतलब गोद ली दो है, वन हिसाब से वन पेड़ों ने मतलब पानी दे मोटा किया है, तो एक आभी अणोरे गांव भी अच्छी उपलब्धि है, मतलब एक एरो गांव मतलब आदर्श गांव कहवाए। तो अन आदर्श गांव रे पाक्ति से एक गांव है डूंगरी, तो मने तो खूब अच्छा लागो अन गांव ने आदर्श गांव कहवीजे तो को बहुत बढ़िया लागे। तो अन गांव रे लोगों ने धन्यवाद है और महेंद्र जी है पुरोहित है उन्होंने भी खूब खूब धन्यवाद है कि आज मने अणोरे गांव रे बारा में अणोरे कुदरत जीवन रे बारा में बातों करवा रो मौको मिलियो है। पर महेंद्र जी मु आपने हमें पूछना चाहूँ हूँ कि आज आपने रेडियो पर खूब मनक होने रिया है, आपने कह रहा लग रही
2: मारे जीवन रो पहला मैं एक जीव न्यूज मोरा अटे आया था जी, वन टाइम में मैं थोड़ो छोटो इंटरव्यू दी दो तो नेशन न्यूज ने हाँ। आज रेडियो माता मारी जिंदगी रो 50 साल रे महाराज कोई है स्वर्ण जयंती कोई के वन में मु मारे ओ मारो खुशी रो है कि मु आज रेडियो माते प्रसारण करे रही हो ने ओ आप रे वो आप रे है कि आप मने वो मौका दी दो अन वास्ते आप रे अन मधुबन ने बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप रे गांव में हमें आप और का विकास वास्ते हो चोरिया हो
2: मोरे अटे जुगोई विकास री जुगोई बात है, सड़क हुआ,
3: सब काम
2: हुआ, रोड लाइट हुआ, नल आया, जो कोई मार मोरा माती पैसा भी बताया यानी जो हमें मोरे जो कोई जितनी कोशिश रही हाँ। कहीं गौण ने स्वर्ग बनावनो लोग हाँ। देखवा आवे ने मोरे यह इच्छा है कि भारत रो प्रधानमंत्री एक बार मोरे गांव में आवे ने लोगों ने प्रेरणा दिए कि गांव बनाओ तो डूंगरी जेड़ू बनावो।
1: डूंगरी आ वास्ते थोड़ो सड़क थोड़ी साफ सुथरी वेजा आजू बाजू ती वहाँ थोड़ी परेशानी है, वह एक कमी है, तो आप गाँव वाला फूटे पड़े हो तो लाइटिंग वेजा थोड़ी सी गाँव में घुसवा वास्ते और एक 2 किलोमीटर एरियो तो आनंद मस्त अच्छो गांव में आप रहो और मने भी खुशी हुई अन गांव में आवाती अच्छो लागो। पर अन गांव में आवा वास्ते श्रेय जाए मोरे एक लिसनर है कुपा राम जी कोजरा गांव रा निवासी है, वे मारे फूटे पड़िया था घना दिन थी का के आप डूंगरी गांव हालो और वटे इंटरव्यू लेनो है। महेंद्र जी पुरोहित है तो वनोरे भाई साहब भी है एन वन गांव में जाल हाले एन आप इंटरव्यू लियो, तो आज मु आया हूँ और इंटरव्यू ली दो हूँ, बहुत खुशी की बात है। तो आप सब गांव वाले ने धन्यवाद है। तो 2-4 और भी बंधु बेटा है गांव रहा है तो वनोरे थोड़ा विचार ले लो। सबसे पहला एक बुजुर्ग मानस है अन गांव रहा वनोती बात करना चाहूँ, उन्होंने नाम पूछू आप नाम कहीं सा
4: जयराम जी जयराम
1: जयराम जी पुरोहित। जयराम जी आप अपने बारे में थोड़ा सी जानकारी।
4: मोहनी गांव में जन्म हुआ हमारो, हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में था और हम 3 भाई और 2 बहनें हैं और हमारे माँ बहुत देवलोक हुआ और ने बाद में मैं घनी दोरी मुश्किल थी मैं मोटा हुआ मारे पिताजी माते और भार हु खूब और वणी मनो मतलब मारो प्रेम दीदो और बाप रो स्नेह दीदो और बड़ी हाथे थी वणी बाटी के मनो खराब बनावे देता और हम धीमे धीमे मोटा हुआ और आज भगवान ने दया थी मैं वनवारे कृपा थी पिताजी रे मैं आज खुशहाल हूँ। और मारे जो भी भाई है बॉम्बे में अच्छो बिजनेस है मारू बटे बिजनेस है पहला मु रेलवे में तो और रेलवे थी पैसे मु रेलवे फॉरन में मिलियो और फॉरन में 3 साल रे पर पास आयो पैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट ली दू कुछ साल अटे रियो फिर भाई लोगों की भाई आप बटे बॉम्बे बिजनेस में आओ रहा तो मुँह पैसे हम बिजनेस में आते कुछ टाइम रियो फिर थोड़ा चुनावरा टाइम आई अटन और जिला परिषद रहो तो वन में लोगों आग्रह थी पैसे मैं चुनाव लड़ियो जिला परिषद सदस्य रहो बने बाद में जिला प्रमुख एक्सपायर हुआ थी उप जिला प्रमुख तो मुँह जिला प्रमुख रे पद माते काम की दो और मारो काम ठीक ठाक रही हो
1: नशा मुक्त बनी आपने केरो लग रही
4: है बहुत बढ़िया लागो अंतिम का मैं तो स्टेट थी नशा मुक्ति हूँ कुछ प्रभु की कृपा थी हमारे नशा मुक्ति हारू खूब जो है मारसा है ये बाबूलाल जी है माधुराम जी स्वयं टीचर हैं और वाकई ये बहुत समर्पित है गाँव में हारू मैं तो अक्सर बारे रहो पर कोई भी आवे करे ने मार्गदर्शन लोग दे उससे खुशी की बात है।
1: एक और बेटा है बुजुर्ग मानस वनवाते पूछो हूँ कि भाई के आप नाम बताओ पहला
5: मारो नाम माधुराम माधुराम
1: माधुराम जी पुरोहित
5: जी
1: आप बताओ कि आप डोंगरी गोमरा निवासी कतरा साल थे रहो
5: मो जन्म तीर
1: अच्छा माधुराम जी आप बताओ आप जो आप गाँव रे विकास से बारे में बात हुई थी आज तो आपने आप गाँव नशा मुक्त है तो आपने केरो फीलिंग वे
5: फीलिंग जबरदस्त हुई अच्छा ठीक
1: आप मतलब नौकरी करता पहला
5: जी
1: कानी नौकरी करता
5: मैं मास्टर था
1: अच्छा रिटायर हुआ आप जीवन केरो बीते रही सेवानिवृत्त रहे बाद में
5: मारा जीवन बहुत बढ़िया
1: अच्छा,
5: जी
1: आप गाँव में हमें कोई नशा नहीं करे
5: नहीं
1: नाम बोला आप
6: रमेश भाई पुरोहित
1: रमेश जी पुरोहित आप बताओ जो कि भाई के आज आप गाँव है नशा मुक्त वो है प्रदूषण मुक्त वो है पर्यावरण दृष्टि थी देखो हूँ आप गाँव वाला सब अत्री मेहनत की दी है तो आपने कह रो फीलिंग वेरी और सिरोही जिला में नीन राजस्थान में नंबर वन है नशा मुक्त हूँ तो आपने कह रो महसूस
6: बड़ी खुशी हो रही है हाँ। कि नशा मुक्त है ये पर्यावरण मुक्त है जगह जगह ये पेड़ पौधे लगाए उसके लिए हम बड़ी बड़ी शुभकामनाएं उनकी
1: चलो ठीक है हमें मैंने छुट्टी लेनी पड़ी ला गोमती गोमरा पंचोती और अपने जो महेंद्र जी पुरोहित है उन्होंने छुट्टी लेनी पड़ी ला कि भाई क्या मैं समय देखता खातर अपने महेंद्र जी ने खूब खूब आभार प्रकट करूँ रेडियो मधुबन रे तृप्ति कि आप मैंने आज समय दी दो अपने जीवन रे बारे में गांव रे बारे में जानकारी मिली बहुत अच्छी बात है और मु केसी जिनगर अपनी वाणी ने विराम देव हूँ और जो सबसे मोटो धन्यवाद एक लिसनर है कुपाराम जी है उन्होंने मोटो मोटो धन्यवाद है कारण गांव में लेन आया है तो खूब खूब धन्यवाद है कुपाराम जी नहीं हूँ केसी जिनगर अपनी वाणी ने विराम देव हूँ आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो

0: नमस्ते दोस्तों,
1: चलो चलो जल्दी मीना से मिलते हैं।
0: आप सब यही सोच रहे हैं ना कि आज मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ? भाई आज मुझे जाना है अपनी सीमा दीदी के घर। मेरे पड़ोस में रहती हैं सीमा दीदी। पता है वो अपने कॉलेज की परीक्षा में पहले नंबर पे आई हैं, इसलिए आज उनके यहाँ दावत है। देखा, लगा दिया ना मुझे बातों में। अब चलते हैं सीधा मीना से मिलने।
2: रोशनी थोड़ा जल्दी चलो, स्कूल का समय होने ही वाला है और आज तो बहन जी सब बच्चों से विज्ञान के पाठ से प्रश्न भी पूछेंगी।
3: मीना, मुझे तो पूरा पाठ अच्छी तरह से याद है। तुम देखना, मैं बहन जी के सभी प्रश्नों का फटाफट उत्तर दूंगी, फिर बहन जी पूरी क्लास से

0: नहीं बोलने देंगी, कुछ बोलने से पहले ही चुप कराकर बिठा देंगी वो तो।
1: तुम ठीक कह रही हो रोशनी। याद नहीं पिछली बार जब रजनी बहन जी ने हमारी क्लास को पढ़ाया था तो उन्होंने सिर्फ लड़कों से ही सभी सवाल पूछे थे, लड़कियों को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया था।
2: मौका ही नहीं दिया था, चुपचाप बिठा दिया था।
1: अरे आज तो रजनी बहन जी आएंगी, सब बच्चों के साथ एक सा बर्ताव नहीं कर। हमारी बहन जी तो छुट्टी पर गई हुई है ना। बहन जी आगे, चुप रहो चुप रहो।
3: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते नमस्ते। गोलू आज कौन सा पाठ पढ़ना था तुम लोगों को?
1: बहन जी वो शायद
0: रजनी बहन जी आज हमने विज्ञान का पाठ।
4: बैठ जाओ रोशनी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ।
5: सबसे पहले तुम बताओ।
4: हाँ, धरती हमें और हर चीज को अपनी ओर नीचे खींचती है। धरती की इस शक्ति को क्या कहते हैं? तुम बताओ मोनू।
6: वो बहन जी नहीं पता।
4: तुम्हें तो पता ही होगा गोलू।
1: धरती की शक्ति को कहते हैं धरती का बल।
2: धरती का बल, घास चलने गई अकल।
6: मैं बताऊं बहन जी?
4: बैठ जाओ रोशनी। दीपू तुम बताओ, धरती की उस शक्ति का नाम?
7: धरती की उस शक्ति को कहते हैं।
8: रोशनी जल्दी से बताओ ना, क्या है सही उत्तर?
1: गुरुत्वाकर्षण बल।
7: याद आ गया बहन जी, धरती की उस शक्ति को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल।
4: शाबाश दीपू।
1: रजनी बहन जी, दीपू ने ये जवाब रोशनी से पूछा।
4: बैठ जाओ सुमी।
1: जी बहन जी।
4: अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो, कल हमारे स्कूल में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आ रहे हैं। सब बच्चे साफ सुथरे बन के आएंगे, क्योंकि शिक्षा अधिकारी जी को जिस बच्चे की वर्दी कॉपी किताबें सबसे साफ सुथरी लगेंगी उस बच्चे को एक खास इनाम मिलेगा। एक बात और, हो सकता है कि वो तुमसे कुछ सवाल भी पूछे। दीपू सुनील मोनू गोलू तुम सब अच्छी तरह से तैयारी करके आना।
3: जी बहन जी।
1: बहन जी रानो सुमी चमेली मिली रोशनी और मैं भी पूरी तैयारी करके।
4: कोई जरूरत नहीं है।
9: और जब अगले दिन रजनी बहन जी ने शिक्षा अधिकारी जी से सभी लड़कों को मिलवाया।
4: आइए सर इनसे मिलिए, ये है दीपू गोलू मोनू और सुनील। नमस्ते करो बच्चों।
3: नमस्ते सर।
10: खुश रहो बच्चों। गोलू ये बताओ कि 26 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ था?
1: जी वो 26 जनवरी को, हाँ 26 जनवरी को हमारी छुट्टी होती है।
10: मोनू दीपू सुनील क्या तुम में से कोई बता सकता है?
6: मैं बताऊं सर?
4: मैंने कहा था ना रोशनी कोई बीच में नहीं बोलेगा।
10: अब बोलने दीजिए ना बहन जी। क्या नाम है तुम्हारा बेटी?
6: रोशनी।
10: हाँ तो बताओ रोशनी, 26 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ था?
6: 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था।
10: शाबाश।
4: चलो रोशनी अब बैठ जाओ। सर अगला सवाल अब मोनू से पूछिए।
10: ठीक है ठीक है। मोनू हमारे संविधान को बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी?
6: सर मैंने पढ़ा तो था लेकिन भूल गया।
1: मुझे पता है बहन जी, क्या मैं बताऊं?
4: मैंने तुम्हें।
10: बोलने दीजिए ना बहन जी। क्या नाम है तुम्हारा?
1: जी मीना।
10: तुम्हें पता है कि भारत के संविधान को बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी?
1: जी सर, भारत के संविधान को बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका थी श्री भीमराव अंबेडकर जी की।
10: शाबाश मीना। रजनी बहन जी आपकी क्लास की लड़कियां तो बहुत होशियार हैं।
4: जी वो कभी कभी मैं जो पढ़ाती हूँ इन सबको, होशियार तो होंगी ही।
10: बच्चों रोशनी और मीना के लिए जोरदार तालियां। बहन जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ?
4: जी कहिए।
10: मैंने एक बात देखी।

0: रखी है। आप अपनी क्लास की लड़कियों को बोलने का मौका क्यों नहीं देती?
1: जी वो ऐसी तो कोई बात नहीं है।
2: कोई बात नहीं है, झूठ बोल रही है।
0: बहन जी, लड़के हों या लड़कियां, सबको पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का, अपनी बात कहने का, हर काम करने का एक समान अधिकार है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर बचपन में आपके टीचर आपको स्कूल में बोलने या अपनी बात कहने का मौका ना देते तो क्या आज आप यहाँ होती?
1: आप मुझे माफ कर दीजिए सर, आज से मैं लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करूँगी और दोनों को अपनी अपनी बात कहने का बराबर मौका दूंगी।
0: बहुत अच्छी बात है मीना। रोशनी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बहन जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अपनी बात उनके सामने रखी। लड़कियों को क्लास में ऐसे ही करना चाहिए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ वो नाम जिन्हें एक खास इनाम दिया जाएगा, और वो बच्चे हैं रोशनी और मीना।
3: आज रजनी बहन जी की आंखें खुल गई। उन्हें जहां अपनी गलती का एहसास हुआ, वहीं मीना और रोशनी के इनाम जीतने की खुशी भी। और अब तो रजनी बहन जी हर बच्चे से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक समान व्यवहार ही करती हैं। अब सुनते हैं मीना और मिठू की नई कविता।
4: बात है बिल्कुल सीधी, इसमें नहीं जरा भी शक।
2: क्लास में लड़के और लड़कियों के बराबर हक।
3: भाई वाह, अब एक मजेदार गाना भी सुन लिया जाए।

0: गाना सुन के तो वाकई मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। तो आज का शब्द है कुर्सी। चलो अब कुर्सी के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
2: बहन जी कुर्सी का पहला अक्षर है क और क से होता है कोतवाल यानी कि पुलिस अफसर।
1: शाबाश दीपू। और कोतवाल से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
3: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
4: बहन जी इस मुहावरे का मतलब होता है गलती करके भी उसे ना मानना।
1: बिल्कुल ठीक रोशनी। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
2: क के बाद कुर्सी में आता है र और र से होती है रस्सी।
1: सही जवाब गोलू। और मुहावरा?
2: रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मतलब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी घमंडी का घमंड ना जाना।
1: शाबाश।
4: बहन जी अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ मीना बताओ।
2: क और र के बाद कुर्सी में आता है स और स से होता है सांप।
1: शाबाश मीना। और सांप से जुड़ा मुहावरा?
2: सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इस मुहावरे का मतलब है अपना नुकसान किए बिना किसी मुश्किल को हल करना।
1: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
5: बहुत मजा आया।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का खत्म हो जाए तो, पृष्ठ 110। बस का सफर। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ियों को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थीं। क्री चक। हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ पौ पौ का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। पृष्ठ 111। यहाँ पर रेड लाइट पर खड़े हुए ट्रैफिक का चित्र दिया गया है। चित्र देखकर लिखो कौन कौन सी गाड़ियां सड़क पर दिखती हैं। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है। क्यों? जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलते हैं ये बताओ। वाहन के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है बताओ। क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो? तुम स्कूल किस तरह जाते हो? तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? क्या गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफी देर में आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहां पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। पृष्ठ 112। एक पोस्टर था, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से ही पूछते हैं। अब्राहम ने पूछा, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया ने बताया, जमीन के बहुत नीचे से। मंजू बोली, जमीन के नीचे वहां कैसे बनता है? भैया बोले, यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम ने पूछा, तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया बोले, यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। पृष्ठ 113। पता करो भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए। सोचो क्यों? आगे की बातचीत। दिव्या बोली, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा है कि भंडार सीमित हैं। भैया बोले, हम जितनी तेजी से निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम बोला, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ी कैसे चलेंगी? मंजू बोली, सीएनजी से मैंने टीवी पर देखा था, इसमें धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए बोले, अरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमित ही है। दिव्या बोली, बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे? दिव्या बोली, अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी, वे कहती हैं, तौबा चीटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू बोली, हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो लोग ही बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम बोला, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू बोली, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। पृष्ठ 114, जमीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है, इसमें घुली मिली और छिपी होती हैं बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल।

इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा। लिखो, अगर किसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफर क्यों नहीं करते? बताओ। बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फायदे हैं? सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ। पृष्ठ 115। पता करो और लिखो, कितना तेल लगे? बताओ, ये वाहन एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भर पाए? स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। अब बताओ, ये वाहन 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से कितनी दूर जाए? स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। पेट्रोल सन 2000 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 29 रुपए 91 पैसे। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर में है 43 रुपए 52 पैसे। और सन 2014 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 67 रुपए 86 पैसे। इसी प्रकार डीजल सन 2002 में 1 लीटर डीजल की कीमत अक्टूबर के महीने में है 18 रुपए 91 पैसे। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 30 रुपए 48 पैसे। और इसी तरह सन 2014 में 1 लीटर की कीमत है अक्टूबर के महीने में 58 रुपए 97 पैसे। अब बताओ, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी और डीजल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी। सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था? पता करो। तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है? किस किस काम में? बताओ। पृष्ठ 116। यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है, मैं छिपा हूं कहाँ कहाँ। तेल की बचत आपकी आदत। इसमें है, हैंगर में कुछ कपड़े सूख रहे हैं और एक लालटेन है। बताओ, मैं छुपा हूं कहाँ कहाँ, रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में। यहाँ पर हवाई जहाज, मोटर गाड़ियां और ट्रैक्टर हैं। लिखा है, मैं छिपा हूं कहाँ कहाँ, पेट्रोल, डीजल और वायु या ईंधन के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर गैस सिलेंडर और जनरेटर है। लिखा है, मैं छिपा हूं कहाँ कहाँ, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में। यहाँ पर है मोटर पंप और रंग रोगन का सामान। लिखा है,
मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, मशीनों में, प्लास्टिक, रंग रोगन में। पोस्टर को देखकर बताओ, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। पृष्ठ 117। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन जाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार, जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। सोचो और चर्चा करो। तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा, तेल बचाने के तरीके सुझाओ, घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है, दिन में कई घंटे उसके चूल्हे की लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं, उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी है, सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। चर्चा करो, क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं, उपले कैसे बनते हैं, क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं। पृष्ठ 118। तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी, क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकती है, क्यों नहीं। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियां आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी, घर के अलग अलग कामों के लिए और चीजों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, LPG यानी खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में एक चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। चार्ट में दिया गया है 20 साल में बदलाव। यहाँ पर दिखाया है कि सन 1976 में उपले और लकड़ी 84% खर्च होते थे और 1986 में 75%। 1976 में LPG गैस और केरोसिन 10% खर्च होता था और सन 1996 में 18%। सन 1976 में 5% कोयला खर्च होता था और सन 1996 में 2%। सन 1976 में बिजली 1% खर्च होती थी और सन 1996 में 5%। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था। पृष्ठ 119। 1976 में LPG और केरोसिन का इस्तेमाल रिक्त स्थान घरों में था, जो 1996 में बढ़कर रिक्त स्थान हो गया, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल रिक्त स्थान प्रतिशत बढ़ा। 1996 में
100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था? 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था? अपने घर में बड़ों से पता करो। जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था? पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किस चीज का घटा है? अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा? हम क्या समझे? किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिजाइन बनाने का मौका दिया है। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो। बस का डिजाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा? बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जो लोग देख नहीं पाते। तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ। उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार भी लिखो। तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो। पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे? खत्म हो जाए तो। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 12वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: तो आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में। अच्छा, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन है?
2: मेरा नाम है अर्शिता, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम है अमिक्षा, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम है अनुष्का, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम है कृषाली राणा और मैं 4 में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम है शिवन्या, मैं 2nd में पढ़ती हूँ।
1: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
7: मेरा नाम रूहानी है और मैं क्लास 8th में हूँ।
1: और आज हम करेंगे बच्चों की दुनिया में बच्चों से बातें। और आज बच्चों की दुनिया में हम मोबाइल रील्स वगैरह इसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो चलो बताओ कौन कौन फ़ोन में क्या क्या देखता है।
8: मैं फ़ोन में कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स देखती हूँ, कभी कभी रील्स, वीडियोस, मूवीज और बहुत कुछ देखती हूँ।
1: और आप लोग नहीं देखते?
3: हम लोग देखते हैं, अपन बहुत कम देखते हैं।
1: अच्छा, आप लोग फ़ोन नहीं चलाते?
9: मैं चलाती हूँ।
1: अच्छा, तो फ़ोन में क्या देखते हो?
9: मैं कार्टून देखती हूँ।
1: कौन सा कार्टून देखते हो?
9: वी।
1: अच्छा लगता है आपको? कितना अच्छा लगता है?
9: 500।
1: इतना ज़्यादा अच्छा लगता है? फेवरेट कार्टून है आपका। अच्छा, और क्या देखता है कोई? बताओ क्या देखते हो?
9: मैं डोरेमोन कार्टून देखती हूँ।
1: अच्छा, और आप नहीं देखते अमिक्षा? आप नहीं देखते कुछ? अच्छा, तो आप बताओ।
6: मैं तो रील्स देखती हूँ।
1: हाँ, कौन से रील्स देखते हो?
6: आ जाती है, देखते हैं कोई।
1: अच्छा, खुद से नहीं लगाते?
6: कभी कभी खुद से लगा लेते हैं।
7: अच्छा, तो कभी मोबाइल में कुछ काम की चीज देखी है किसी ने?
3: हाँ, मैंने देखी।
8: हाँ, मैंने भी देखी है।
7: बताओ अपनी अपनी।
8: मैं ना कभी कभी ग्रामर देखती हूँ, कुछ समझ में नहीं आती, एजुकेशनल वैसे वीडियोस में कभी कभी देखती हूँ।
7: और अमिक्षा, आप?
3: मैं कभी कभार, मुझे अगर आर्ट सीखनी होती है तो मैं आर्ट की वीडियो लगाती हूँ। कभी कभार वैकेशन होते हैं उसमें मैं मेहंदी की वीडियोस देखती हूँ।
7: और कोई देखता है? क्या देखते हो?
6: किरण करते हैं,
7: साइंस के एक्सपेरिमेंट्स।
9: और मैं टेबल पढ़ने के लिए टेबल लगाती हूँ वीडियो।
7: वाह, बहुत अच्छे एजुकेशन के देखते हो रील्स। और अनुष्का, आप?
6: मैंने तो अभी कोई ड्राइंग अगर टीचर ने बोला है वो हमको नहीं आते तो हम वो फोन में देख के थोड़ा बना लेते हैं।
7: मतलब मोबाइल से सीखने की भी चीजें दिखती है ना?
1: हाँ। अच्छा, कितनी देर तक फोन चलाते हो?
8: मैं तो सिर्फ आधा घंटा चलाती हूँ।
1: आधा घंटा चलाते हो? आधे घंटे तक फोन में रील्स ही देखते हो बस?
8: नहीं, हम कभी कभी वीडियोस देखते, कभी कभी एजुकेशनल वीडियोस और बहुत कुछ।
1: अच्छा, आधे घंटे से ज्यादा भी हो जाता होगा कभी कभी तो?
8: कभी कभी 45 हो जाता है, फिर बाद में मम्मी डांटती है मुझे।
1: अच्छा, और कितने कितने टाइम तक देखते हो सब लोग?
3: और मैं तो बस 5 मिनट मोबाइल देखती हूँ।
1: बस 5 मिनट में हो जाता है? अच्छा, और आप लोग?
9: मैं 8 घंटे के लिए।
1: 8 घंटे के लिए? 8 घंटे क्या देखते हो 8 घंटे में?
9: रील्स।
1: बस रील्स ही देखते जाते हो 8 घंटे तक? नींद नहीं आती? अरे, इतना फोन चलाते हो आप लोग?
9: मैं 1 घंटा चलाती।
1: 1 घंटा?
9: 1 घंटे में मैं ड्रॉइंग ही देखती हूँ और कुछ रील देख।
1: और आप?
6: मैं आधा घंटा।
1: आधा घंटा? हाँ, अच्छी बात है वैसे, पर ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए। फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं।
8: वो तो बराबर है, पर आधे घंटे से एक दिन में क्या होने वाला है?
1: ऐसे तो आप डेली चलाते होगे।
8: डेली मतलब जब स्कूल से आते कभी कभी लेट हो जाते तो फिर पढ़ाई करते, फिर रात को जितनी टाइम मिलता है उतनी टाइम चला लेते।
7: थोड़ा मोबाइल देखना तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा नहीं देखना चाहिए। कौन कौन देखता है ज्यादा?
8: मैं तो आधे घंटे से ऊपर नहीं देखती, कभी कभी हो जाता है।
7: कभी कभी
8: मतलब कभी कभी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर मम्मी बहुत डांटती है।
7: सिर्फ 5 मिनट में डांट?
8: फिर।
7: और अमिक्षा, और कितना देखती है?
3: मैं तो बस अगर एजुकेशनल की वीडियो देख रही हूँ तो मैं बस 5 मिनट और एक्स्ट्रा करती हूँ।
7: अच्छा, तो एजुकेशनल के अलावा और क्या क्या देखते हो?
8: एजुकेशन के अलावा ऐसे बोले तो फिर हम कभी कभी गूगल पे सर्च करते कोई चीजें, कोई अगर क्वेश्चन होता है तो फिर हम गूगल पे सर्च कर लेते।
7: रील्स?
8: रील्स में नहीं, मतलब अगर सपोज मेरे को अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो चैप्टर मैम ने सिखाया नहीं और मुझे इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं गूगल में सर्च कर लेती हूँ।
7: और अमिक्षा, आप?
3: एजुकेशनल के अलावा अगर हमारे स्कूल में अगर कोई होमवर्क दिया है तो मैं वो गूगल में से कर लेती हूँ।
7: और अनुष्का, आप?
6: हमको कोई अगर चीज़ रियल में वो होती है कि नहीं, अगर उनको विश्वास नहीं होता तो हम गूगल से
7: पूछ। अच्छा मतलब न्यूज वगैरह।
9: और आप लोग? मैं कुछ वगैरह वगैरह देखती हूँ, ड्राइंग का, वैसे कार्टून का, जो कुछ बनाते हैं ना सीमेंट से, कुछ मिट्टी से, वो देखती हूँ।
7: और आप?
10: मैं जैसे कि रील्स देखती हूँ।
7: रील्स में क्या देखते हो?
10: क्या क्या? रील्स में रील का कार्टून रील्स।
1: अच्छा आप लोग फनी वीडियोस भी देखते होंगे?
2: हाँ।
1: फनी वीडियोस किसको अच्छे लगते हैं?
2: मुझे।
1: सबको अच्छे लगते हैं फनी वीडियोस?
2: हाँ।
1: अच्छा बताओ फनी वीडियोस कैसे देखते हो?
2: फनी वीडियोस में ना मैं IUPU का चैनल देखती हूँ ज्यादातर, उसमें ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं।
1: अच्छा आपको चैलेंजेस देखना पसंद है?
2: हाँ ऑफ कोर्स, वो ट्विन टेलीपैथी चैलेंज करते हैं, बहुत बहुत कुछ।
1: अच्छा तो आपको तो चैलेंज कोई दे तो मजा आएगा करने में।
2: हाँ जरूर, वो तो एक्शन ट्विन टेलीपैथी चैलेंज भी मैंने देखा हुआ है, उसमें सब जन एक्शन करते हैं और वो एक्शन सेम होनी चाहिए भाई बहन की।
1: अच्छा यानी कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है।
2: हाँ।
1: और आपको?
3: मुझे हेयर स्टाइल देखना बहुत पसंद है।
1: अच्छा आपको फनी चीजें नहीं पसंद?
3: पसंद है।
1: अच्छा मतलब आप हेयर स्टाइल, एजुकेशन वगैरह ऐसा ही देखते हैं?
3: हाँ।
1: आप?
6: वो तो जो रील्स होती है उसके अंदर जो कैट होती है उसको पता नहीं कैमरे से कैसे डांस करती है वो कैट, उसको बहुत बार बार देखने में मजा आता है।
1: अच्छा आपको वो कैट देखने में मजा आता है, आपको कैट्स पसंद है? अच्छा
6: कैट डॉग।
1: अच्छा आपको एनिमल्स पसंद है, आपको?
9: मुझको डॉग पसंद है।
1: अच्छा आपको डॉग पसंद है, फनी वीडियोस नहीं पसंद?
9: नहीं फनी वीडियो में वो डॉग आते हैं ना और बिल्ली भी आती है, वो कभी कभी ऐसा कुछ करती है।
1: अच्छा आपको फनी एनिमल्स पसंद है जो रील्स में आते हैं?
9: एनिमल्स।
1: हाँ आपको?
10: मुझे हर एनिमल से डर लगता है।
1: डर क्यों लगता है, एनिमल्स तो कितने क्यूट होते हैं।
10: मुझे डर लगता है क्योंकि वो काट लेते हैं।
1: अच्छा काट लेते हैं इसलिए डर लगता है। अच्छा होता है किसी किसी को डर भी लगता है, पर एनिमल क्यूट होते हैं।
7: अच्छा तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कभी मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिला?
2: कभी कभी स्कूल में एग्जाम होती है या फिर कभी कभी होमवर्क का इसका उसका लोड आ जाता है, तो उस टाइम में मोबाइल देखना बिल्कुल नहीं होता।
7: टाइम निकालते हो उसके लिए?

0: मिलता है।
1: और अमित साहब,
2: मैं तो एग्जाम के टाइम पे फोन ही नहीं चलाती।
1: किसी के मम्मी पापा मना करते फोन देखने का?
3: मेरे पापा और मम्मी मना करते हैं, और मेरी नानी मना।
1: तब भी आप देखते हो?
3: हाँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ।
1: कोई डांटता है किसी को कभी?
3: मेरे पापा डांटते हैं।
1: फिर भी देखते हो?
3: हाँ,
1: 8 घंटे?
3: नहीं, 8 घंटे नहीं, थोड़ा सा देख लेती।
1: और आप?
4: मेरे पापा कुछ नहीं कहते, ऐसे ही मोबाइल दे देते हैं, और मम्मी चिल्ला चिल्ला के मारती है।
1: तो 8 घंटे मोबाइल देखते हो, तो स्कूल कब जाते हो?
4: 7 बजे।
5: अच्छा, एक बात बताओ, किस किस को लगता है मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है? किसी को नहीं लगता मोबाइल इम्पोर्टेंट है?
6: बिल्कुल नहीं,
7: मैं बिल्कुल नहीं,
8: मुझे लगता।
5: अच्छा, क्यों लगता है कि मोबाइल इम्पोर्टेंट है?
3: क्योंकि हमको कुछ क्वेश्चन जो स्कूल में से मिलते हैं ना, तो हमको नहीं आते, तो उसमें फोन में रिसर्च करके हम लिख सकते हैं उसमें।
5: लेकिन वो तो स्कूल में टीचर भी बता सकते हैं।
3: हाँ, कभी कभी टीचर नहीं पढ़ाती तो हमारा रह जाता है, तो हम देख लेते हैं।
5: अच्छा, आप हमेशा
2: फोन में और भी एजुकेशन की वीडियोस होती है, जैसे कि नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए एजुकेशन की वो होती है, वीडियोस होती है, उससे देख के हम लर्न भी कर सकते हैं।
9: पर फोन में अगर कभी कभी हम ऐसे ही चलाते बैठे तो 2-3 घंटे ऐसे आराम से निकल जाते हैं, इसलिए फोन कभी भी उसको टाइमर सेट करके चलाना चाहिए। और जब एग्जाम होती है, कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है, तब पहले फोन चला लो, फिर बाद में कर लूंगा, वैसे करना नहीं चाहिए।
5: अनुष्का, आपको नहीं लगता फोन इम्पोर्टेंट है?
10: लगता है।
5: क्यों लगता है?
10: क्योंकि उसमें कुछ जो हमको नहीं आता है वो बता देते हैं।
5: अच्छा, इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है फोन। अच्छा, तो यानी कि फोन होना चाहिए सबके पास।
1: यस। और किसको लगता है फोन हार्मफुल भी है?
9: मुझे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोन चलाते चलाते आराम से टाइम बीत जाता है, इसलिए आपको टाइमर सेट करके चलाना चाहिए।
1: हार्मफुल क्यों है?
9: हार्मफुल इसलिए क्योंकि अगर हम ज्यादा देर फोन चलाएंगे तो पहले बात तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी पढ़ाई नहीं होगी, और हमारी आंखें भी खराब होगी, उसको चश्मा भी लग सकता है।
1: हाँ अनुष्का, आप बताओ।
10: फोन चलाने से ज्यादा आंख तो खराब ही होती है, साथ में वो जब ज्यादा चलाते हैं तो आंख में कुछ धुंधला दिखता है।
1: हाँ, और आप?
3: मैं कभी कभी ज्यादा देख लेती हूँ, इसलिए मुझे कुछ यहाँ पे डार्क सर्कल हो जाते हैं आंखें नीचे।
1: अमीषा, आप कहना चाहते हैं?
2: हाँ, अगर हम फोन चलाते हैं ना, तो हमारी आंखें दर्द होती है, और हम आंखों को मसलना चालू करते हैं, और मसलते तो हमें चश्मा लगता है।
1: और फोन से एडिक्शन नहीं होता?
9: हाँ, जरूर होता है। बहुत सारे बच्चों को अपने मम्मी पापा ऐसे ही फोन दे देते, और वो चलाते बैठते, शांत बैठने के लिए मम्मी पापा फोन देते, और फिर क्या, वो चलाते, उनको एडिक्शन हो जाता है। मेरे भाई को भी गेम की बहुत एडिक्शन है।
1: तो उसको दूर कैसे कर सकते, कोई आइडिया है?
9: हाँ, है ना, जरूर। मम्मी पापा की मतलब फिंगरप्रिंट जो होती है फोन का लॉक करने के लिए, वो वैसे कर देते, इससे वजह से उसका कंट्रोल थोड़ा बहुत रहता है। अगर उसका कंट्रोल वैसे नहीं रहता तो फिर वो दिन भर फोन चलाता, 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे से वो चलाते बैठता, अगर उसका कंट्रोल नहीं होता, उसकी मम्मी का अगर फिंगरप्रिंट नहीं होगा।
1: लेकिन आजकल के बच्चे तो कुछ ऐसे भी है कि उनसे मोबाइल ले लो तो भड़क जाते हैं।
9: हाँ, ऑफ कोर्स बहुत भड़कते हैं, मेरा भाई भी तो भड़कता है, वो मम्मी पापा भी नहीं भड़कता ऐसे, मम्मी वो बोलता है मम्मी दो ना मुझे 2 मिनट देख रहे हैं, भड़क जाता है। और उसकी वजह से उसका जो छोटा भाई है 2 साल का, उसको भी फिर लगता है कि भैया फोन में देख रहा है, फिर वो क्या देख रहा है, तो मुझे भी देखना है, वो भी फिर 2 मिनट मांगता है मम्मी से।
3: और मेरा भाई दिन भर गेम खेलता है फोन में, उनसे मम्मी ले लेती है ना, तो ऐसे जीत करता है, तो मुझे दे दो, क्यों लिया?
1: तो आप उसे समझाते नहीं हो?
3: नहीं, मेरी मम्मी इसको कहती है ते मारूंगी, सीधा बैठ जा, पढ़ाई करने बैठ जा, एग्जाम आ रहे हैं।
10: मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं है, मेरी मम्मी जब बाहर जाती है तो वो चलाता है, फिर मेरी मम्मी आती है तो अंदर उसको कुछ नहीं बोलती, अगर कोई ज्यादा देर हो जाती है तो चिल्लाती है, पर मारती नहीं मेरी मम्मी।
2: कोई कोई बच्चे तो अपनी मम्मी को मारना चालू कर देते हैं कि मुझे फोन दो नहीं तो मैं मारूंगा।
1: हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद को ही हार्म करना शुरू कर देते हैं।
9: हाँ, वो कभी कभी ऐसे चिड़चिड़ हो जाते, फिर ऐसे खुद को ऐसे सिर पे मारने लगते जो छोटे बच्चे होते हैं।
1: हाँ, लेकिन फोन को लॉक कर देना तो सल्यूशन नहीं है ना,
9: फिर वो चिड़चिड़ करेगी ऐसा हो सकता है, पर मेरी बुआ तो वैसे ही करती है, या फिर उनके एडिक्शन ये करने के लिए उनको ऐसे कभी कभी फोन के बिना रखने की उनको कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि फोन दूर ही रहे। वो जो बच्चे स्टडी करते ना, उनके लिए एक मतलब उस पे आप टाइमर सेट कर दोगे ना, तो 99 आवर्स वो फोन लॉक रहेगा, कितना टाइमर सेट करोगे उतना लॉक रहेगा। एक यूट्यूबर का वैसा ही हुआ था, उसे उस पे लॉक कर दिया, 99 आवर्स लॉक था, और उसका पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट बहुत हो गया, और उसने टॉप भी किया।
1: और आपका क्या ख्याल है?
4: जब मैं ज्यादा देर के लिए मोबाइल देखती हूँ तो फिर और देर के लिए देखने देते हैं।
1: और देर के लिए देखने देते हैं? बंद नहीं करते मोबाइल आपका?
4: एक दीदी थे उनने लॉक कर दिया था।
1: फिर आपने क्या किया?
4: मैंने छुपके से पासवर्ड देख लिया।
1: लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, फोन से एडिक्शन होता है।
5: अच्छा, कौन कौन फोन के लिए जिद करता है कि मुझे फोन देखना है?
0: मैं तो नहीं करती।
5: नहीं करती? नहीं, फोन मिले तो चलेगा, है ना ऐसा?
0: मतलब
5: आपको फोन नहीं मिले फिर भी आप रह सकते हो फोन के बिना?
0: हाँ, वैसे सब वाईफाई नहीं होता तभी कर सकते हैं। मतलब जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि फोन नहीं तो आप रह सकते हैं, और फिर कभी कभी मिलता है तो फिर हम थोड़ी देर देख लेते हैं, पर आधे घंटे से ऊपर नहीं जाता।
9: और अगर हमें फोन नहीं मिलता तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, या फिर और भी कोई चीजें कर सकते हैं।
6: हाँ, या फिर हम गेम्स खेल सकते हैं।
5: हाँ, और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। हाँ, फोन नहीं होगा फिर भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास कितने सारे गेम्स होते हैं। अच्छा, फोन में तो गेम्स भी खेलते होगे?
9: हाँ, फोन में गेम्स खेलते हैं, पर नॉर्मली फोन में लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो के लिए हम बोर्ड लूडो खरीद सकते हैं, उस पे खेल सकते हैं। बिजनेस खेलते हैं, बिजनेस हम घर पे भी खेल सकते हैं। जो भी चीज हम फोन में खेलते हैं ना, वो हम घर पे भी खेल सकते हैं।
5: और आप लोग भी फोन में गेम्स खेलते होंगे? हाँ, कौन कौन से गेम्स खेलते हो?
10: हम कार रेसिंग खेलते हैं।
5: हाँ, कार रेसिंग खेलते हो आप?
10: मैं जो बॉल आते है ना रंगीन, उसको वो कलर होता है ना, तो ब्लू वाला, तो ब्लू अगर मारने का।
5: अच्छा, और आप?
4: मेरे को मेकअप सेट पसंद है, इसलिए मेकअप वाला गेम खेलती हूं।
5: अच्छा, मेकअप वाला गेम खेलते हो? किसका मेकअप करते हो गेम में?
4: डॉल का।
5: अच्छा, डॉल का मेकअप करते हो? डॉल बहुत पसंद है आपको? अच्छा, बहुत सुंदर मेकअप करते होगे फिर तो। अच्छा, तो फिर हमारा भी मेकअप करना, ठीक है? अच्छा, तो यानी कि सबको गेम्स भी पसंद है फोन में, और सब लोग एजुकेशन की वीडियोस भी देखते हैं। और क्या क्या पसंद है फोन में आप लोगों को?
9: और ज्यादा कुछ नहीं, पर सिर्फ थोड़ी देर ये ही देखते हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं।
2: और मुझे ना, अगर हमारे पास कोई टाइम होता है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर सकते हैं।
5: अच्छा, फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं फोन
2: पे? हम बोर हो रहे हो तो।
5: अच्छा, आप लोग भी फ्रेंड से बात करते हैं?
4: मैं, मेरे स्कूल में एक फ्रेंड है, तो उसके पास से मैंने इसका नंबर ले लिया और फोन पे बात करती हूँ अभी।
5: अच्छा, आप भी फ्रेंड से बात करती हो?
4: बाहर मैं अपनी फ्रेंड से रोज जाती है, वहीं से मैं उससे मिलती हूँ, तो उसकी मम्मी क्या कि नंबर लेते तो मैं उससे बात करती हूँ।
5: अच्छा, आप भी फ्रेंड से बात करते हो?
10: नहीं, हम फोन पे नहीं करते, स्कूल में या फिर कभी घर पे आते हैं तब करते।
5: अच्छा, फोन पे नहीं करते हो बात?
9: हमने सुना है कि थोड़े बच्चे ना फोन पे ऐसे नंबर ले लेते और कॉल करके पूछते कि हाँ आज का होमवर्क क्या है, फिर वो होमवर्क ले लेते। कुछ से तो करते ना, फिर एग्जाम के टाइम मुश्किल होता है।
1: और आप लोग फोन के बिना कितनी देर रह सकते हो, ये बताओ। अपना अपना बताओ आप।
4: मैं 4 घंटे।
1: सिर्फ 4 घंटे रह सकते हो, बाकी और नहीं रह पाओगे? और आप?
4: मैं 10 दिन कर नहीं देखती हूँ। मैं
1: नहीं देखते हो?
4: नहीं, देखती नहीं हूँ, कभी कभी देखती हूँ फिर नहीं देखती।
1: और आप अनुष्का?
10: मैं तो 1 महीने तक भी नहीं देख सकती।
1: इतनी देर तक रोक सकते हो फोन को? और
10: टीवी तो है ही ना। टीवी तो है ही ना।
1: और अमीक्षा, आप?
9: मैं तो 2 महीने तक रह सकती हूँ
1: बिना फोन के।
9: हाँ, क्योंकि मेरी नानी अगर कहीं जाती है तो अगर 2 महीने के लिए जाती है तो मैं रह सकती।
1: और आप?
0: मैं 2 महीने के आसपास। वैसे
1: तो आप सिर्फ 4 घंटे के लिए रह सकते हो, क्यों? आपको मोबाइल में इतना क्या पसंद है?
4: वीर कार्टून पसंद है।
5: अच्छा, आप वीर कार्टून देखे बगैर नहीं रह सकते, इसका मतलब इतना पसंद है आपको। अच्छा, वीर करता क्या है?
4: वो वीर रोबोट है, तो उसके बाद सारे सूट्स है, एक का नाम है चोर है, एक का नाम है मैड मैक्स। वही एक रोबोट बना के वीर को खत्म करना चाहता है, लेकिन वीर उससे जीत जाता है।
5: अच्छा, आपको वीर को जीतते हुए देखना पसंद है? अच्छा, हम आपको वीर बना दे तो आप उड़ोगे अच्छे वीर के तरह, एक्शन करोगे? अच्छा, अच्छा लगेगा।
1: हाँ। और क्या क्या पसंद है सबको फोन में?
9: बस इतना ही, जो भी हमारे एजुकेशन के वीडियोस होते हैं। पर मुझे तो गेम्स खेलना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि गेम से मोबाइल कभी कभी गर्म भी हो जाता है, और फिर गेम खेलते खेलते इतना एडिक्शन उसमें ज्यादा होता है गेम में।
4: मैं फोन में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ कभी कभी, गाने अच्छे लगते हैं मुझे कभी।
5: अच्छा, गाने भी अच्छे लगते हैं, आप लोग गाने भी सुनते हैं?
9: हाँ।
5: अच्छा, कौन कौन से गाने सुनते हैं?
9: मैं कभी ना वो यमुना जी का, वो गंगा का, वो राधा रानी का जो गाना है ना, वो वाला देखती हूँ, वो बहुत अच्छा है।
5: अच्छा, आपको गाने सुनने से शांति मिलती है?
4: यस।
5: अच्छा, अच्छा लगता है गाना सुनना?
9: हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। और मेडिटेशन के टाइम पे भी हम सॉन्ग्स लगाते हैं, जो भी हमारे मेडिटेशन के सॉन्ग्स होते हैं उसमें भी अच्छे से मेडिटेशन होता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है।
1: अच्छा, तो आप सभी बताइए हमारे

0: जाता है ऐसे।
1: हाँ अच्छा आइडिया है। और आप?
2: मैं तो से वो लॉक कर देते हैं, जो पासवर्ड होता है ना उसमें उंगली लगाना फिर पासवर्ड ऐसे वो करना, तो वो ऐसे कुछ बता के नहीं है बच्चों को, ऐसे चुपके से लगा देते हैं।
1: मतलब पासवर्ड लगा देना।
2: हाँ पासवर्ड लगा देते।
3: मेरे को तो डाली नहीं लगता फोन देखने से।
1: नहीं मतलब फोन ना चलाने के लिए कौन सी टिप्स कर सकते हैं हम लोग?
3: मैं तो अगर मेरा मन ना हो तो मैं नहीं चलाती।
1: अच्छा मन ना हो तो चलाने का, ना हो तो नहीं चलाने का।
4: ऐसे तो मन हमारा पूरे दिन होगा तो हम क्या पूरे दिन वो फोन चलाएंगे?
1: तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को पहले बच्चों के साथ खेले, क्या पता बच्चे लोनलीनेस में फोन चलाते हो।
4: और पहले से जो बच्चे छोटे होते हैं उनको फोन से दूर ही रखना चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए कि फोन में क्या होता है।
1: हाँ, फिर बड़े होते होते एडिक्शन हो जाता है।
4: पर बड़े होने के बाद हम उनको बता सकते हैं कि फोन में क्या होता है, फिर उससे वो जो हम उनको बताएंगे कि बाद में फोन में इतना ही सर्च करना है, इतना ही करना है, वो कर सकते हैं। या फिर सपोज हम यूट्यूब को कैलकुलेटर से बदल सकते हैं, अगर वो यूट्यूब को खोले तो वो कैलकुलेटर आएगा, वैसे होता है भी है।
1: अब तो गुड बाय करने का समय आ गया है। आप लोग फोन देखते हो क्या? फोन देखते हो तो थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी चीजें भी आती है और बुरी चीजें भी आती है। आज के एपिसोड के लिए लेते हम इजाजत, अगले वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से। इस बार तो दीदी नहीं आई है लेकिन अगले एपिसोड में जरूर आएगी दीदी। आज के एपिसोड में नहीं मिले, अगले एपिसोड में दीदी से भी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं रंग बिरंगे कपड़े,
6: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

0: खेल कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, घर और बाहर के रोजाना काम करते वक्त भी। थोड़ी सी कोशिश और जरा सी कल्पना से हर चीज बन सकती है खेल, और यही खेल बच्चों के साथ हमारा रिश्ता मजबूत करने में मदद करता है। जैसे कल जब मैं अपनी शर्ट पर बटन लगा रहा था तो मैंने साथ साथ अपनी बेटी को शर्ट के बटन गिनने को कहा। उसने पहले मजे से बटन गिने, फिर उसने उस घर में रखी सारी चीजों के नाम लिए जो मेरी सफेद शर्ट के रंग से मिलती हैं, और देखते ही देखते काम भी हो गया और खेल भी। सबसे मजेदार बात तो ये है कि खेलते खेलते मैंने अपनी बेटी से बहुत सारी बातें की। आखिर बातों से ही हम अपने बच्चों को बेहतर समझ पाते हैं, है ना? लगता है आज एल्मो के घर में भी कपड़े धुले हैं। चलो सुनते हैं वहाँ आज काम के साथ क्या मस्ती होने वाली है।
1: एल्मो, जरा धुले हुए कपड़े अंदर लाने में मेरी मदद करोगे प्लीज?
2: एल्मो आ रहा है पापा।
1: मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू एल्मो। अब तुम जाकर वापस खेल सकते हो।
2: पर एल्मो तो कुछ नहीं खेल रहा था।
1: पर क्यों?
2: एल्मो को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो एल्मो बस बैठा हुआ था।
1: तो ये बात है। तो चलो फिर हम एक नई गेम खेलते हैं।
2: हाँ पापा, एल्मो को नई गेम खेलनी है। पर पापा को तो अभी कपड़े संभालने होंगे, तो पापा एल्मो के साथ कैसे खेलेंगे?
1: अरे काम के साथ साथ खेलने में अलग ही मजा है।
2: तो फिर चलो खेले पापा।
1: ये हुई ना बात। हम खेलेंगे कपड़े शपड़े गेम।
2: है? कपड़े शपड़े गेम? उसमें एल्मो को क्या करना होगा पापा?
1: तुम्हें इन सारे धुले हुए कपड़ों को इनके रंगों के हिसाब से छांटना है। एक रंग के कपड़े एक तरफ, दूसरे रंग के कपड़े दूसरी तरफ।
2: एल्मो समझ गया पापा।
1: तो फिर रेडी, गेट सेट गो।
2: ये शर्ट यहाँ जाएगी और ये पैंट यहाँ और ये यहाँ। हो गया पापा।
1: शाबाश एल्मो, तुमने तो बहुत अच्छे से कपड़े छांटे। अच्छा मुझे बताओ, तुमने कौन कौन से रंगों के ढेर बनाए?
2: लाल, हरा और नीला।
1: वेरी गुड। क्या तुम मुझे गिनकर बताओगे कि ढेर में कितने कपड़े हैं?
2: ओके पापा, लाल वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5।
1: बिल्कुल ठीक।
2: हरे हैं 1, 2, 3 और 4।
1: अरे वाह एल्मो, तुम तो कमाल की गिनती करते हो।
2: और नीले वाले 1, 2, 3, 4, 5।
1: अरे वाह, तुम तो गेम बहुत अच्छे से खेल रहे हो।
2: थैंक यू पापा, एल्मो को बहुत मजा आ रहा है।
1: मैं जरा गैस बंद करके आता हूँ, तब तक क्या तुम सोच सकते हो कि इन कपड़ों को रंग के अलावा और किस तरह से छांट सकते हैं?
2: ओके पापा। एल्मो कपड़ों को और कैसे छांट सकता है? आइडिया। एल्मो इसको करेगा यहाँ, ये वहाँ और ये यहाँ। पापा देखो, एल्मो ने कपड़े छांटने का एक नया तरीका ढूंढा।
1: अच्छा, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुमने कपड़ों को अब कैसे छांटा?
2: इस ढेर में है पापा के कपड़े, इस ढेर में मम्मी के कपड़े और इसमें एल्मो के।
1: वाह, तुम तो बहुत समझदार हो एल्मो। एल्मो, एल्मो कहाँ खो गए?
2: पापा, मम्मी की शॉल देख के एल्मो को मम्मी की याद आ गई। जब भी एल्मो को ज्यादा ठंड लगती है ना, तो एल्मो मम्मी की शॉल में छुप जाता है।
1: हाँ मुझे पता है एल्मो, मम्मी बस थोड़ी देर में काम से घर आती ही होगी। चलो तब तक ये कपड़े अलमारी में रख कर हम मम्मी के लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाते हैं।
2: पापा आइडिया, जैसे एल्मो ने कपड़े छाटे वैसे एल्मो सब्जियां भी छाटेगा। ये मिल गया एक और नया गेम।
0: क्या बात है लुई, कपड़े संभालने जैसे साधारण काम को भी आपने कितनी आसानी से एक मजेदार खेल बना दिया। एल्मो का मन भी लग गया और उसने चीजों को छांटना और गिनना भी सीख लिया।
1: हाँ, मैं अक्सर घर के काम करते हुए एल्मो के साथ खेलता हूँ, इससे मुझे एल्मो के साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाता है, हम मजे से खेल भी लेते हैं और एल्मो कई नई चीजें भी सीख लेता है। जैसे आज खेल खेल में कपड़े भी संभल गए और एल्मो की काउंटिंग की भी प्रैक्टिस हो गई।
0: यानी एक तीर से कई शिकार। वैसे बच्चों के साथ बातें करते करते खेलने का कुछ अलग ही मजा है, न जाने हमें उनके बारे में कितनी नई बातें पता चल जाती हैं।
1: हाँ, जैसे आज मुझे समझ में आया कि एल्मो अपनी मम्मी को मिस कर रहा था। पता है, जब एल्मो और मैं साथ में खाना बना रहे थे तो उसने मुझे ये भी बताया कि बड़े होकर वो हर तरह का स्वादिष्ट खाना बनाना सीखेगा और अपने मम्मी पापा को खिलाएगा।
0: वाह, आखिर हर खेल एक मौका है अपने बच्चों के साथ और गहराई से जुड़ने का और सीखने सिखाने का। जितना आप बच्चों के साथ समय बिताएंगे उतना ही आपका और बच्चों का रिश्ता मजबूत होता जाएगा। याद रहे, खेल हो सकता है कभी भी, कहीं भी और कोई भी काम करते हुए। तो चलो खेलें सब संग।
3: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।
4: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमाईचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक आकम खान

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: CIET, NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू. दूसरा पाठ, लंबा और छोटा, पृष्ठ 13. कितनी दूर है बिंदु? यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दो बच्चे दिखाए गए हैं और साथ ही हिंदी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं. किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ. दूरी कितने सेंटीमीटर है? एक स्केल से इसे नाप कर देखो. क्या तुम्हारा अंदाजा सही था? कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं? अपने उत्तर की जांच करो. कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास हैं? अपने उत्तर की जांच करो. शिक्षकों के लिए निर्देश, बिंदुओं को सफेद कागज पर बनाकर बच्चे इस खेल को दो दो करके खेल सकते हैं और बच्चे अपने साथियों से दूरी को बताने के लिए कह सकते हैं. इसको और आगे बढ़ाते हुए बच्चे फर्श पर खेलते हुए अधिक दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं. इस पाठ में लगी किनारी का उपयोग भी स्केल के रूप में किया जाना चाहिए. पृष्ठ 14. कौन सी छोटी रेखा? अकबर एक प्रसिद्ध राजा था. उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल. एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया. उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी. राजा बोला,
2: बीरबल, यहां एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो.
1: बीरबल ने कहा,
3: देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई.
1: यहां पर बीरबल और अकबर का चित्र है. अकबर की बनाई रेखा भी बनी है और साथ ही उसके नीचे बीरबल अपनी रेखा बना रहा है. इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया. क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो. सोचो, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? अब तुम कोशिश करके देखो. इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ. यहां पर एक बच्चे को सीधा हाथ करके दिखाया गया है. इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ. यहां पर एक कप का चित्र है. इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ. यहां पर एक झाड़ू का चित्र है. इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल और बनाओ. यहां पर एक चेहरे का चित्र है जिसके सिर पर एक बाल दिखाई दे रहा है. पृष्ठ 15. तुम कितने लंबे हो गए हो? क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? कितने लंबे? रिक्त स्थान सेंटीमीटर. क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं? पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो. यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं. पहले में लिखा है मित्र का नाम, दूसरे में पिछले वर्ष की लंबाई सेंटीमीटर, तीसरे में इस वर्ष की लंबाई सेंटीमीटर, और चौथे में लिखा है पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं. अब यहां दी गई तालिका में तुम अपने मित्रों का नाम लिखो और उनके पिछले वर्ष की लंबाई और इस वर्ष की लंबाई के साथ ये भी लिखो कि वो पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं. यहां पर सबसे नीचे बाईं तरफ एक बच्चे का चित्र बना है और दाईं तरफ एक छोटी लड़की का चित्र है. झुंपा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा. उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था. यह झुंपा की लंबाई से 2 गुना था. झुंपा कितनी लंबी है? रिक्त स्थान सेंटीमीटर. झुंपा ने कहा,
4: अरे इसकी लंबाई मेरी लंबाई से एकदम दुगनी है.
1: सोचो, क्या ये व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? अगर ये सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? रिक्त स्थान, उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 16। अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता दौड़। ये लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वो उससे लगभग 6 मीटर दूर है। उसके पीछे रेहाना है। कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। चित्र को देखो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। इस पृष्ठ पर अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता का चित्र है, जिसमें सबसे आगे अरुंधति को दिखाया गया है, जो समाप्ति रेखा से केवल 6 मीटर की दूरी पर है। उसके पीछे रेहाना दौड़ती दिखाई दे रही है और उन दोनों के पीछे कोंकणा और उमा दिखाई दे रही हैं। क, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? रिक्त स्थान, मीटर। ख, कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे है? रिक्त स्थान, मीटर। ग, कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर हैं? रिक्त स्थान, मीटर। क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है? इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दौड़ के लिए रिक्त स्थान किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 3000 मीटर की दौड़ के लिए रिक्त स्थान किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। पृष्ठ 17। क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। स्टेडियम के 10 चक्कर बराबर रिक्त स्थान किलोमीटर। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के रिक्त स्थान चक्कर लगाने पड़ेंगे। लंबी कूद, ये लड़कों की लंबी कूद है। यहां पर एक चित्र है जिसमें बच्चों को कूदते हुए दिखाया गया है। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। अब तुम स्वयं बताओ, गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी? रिक्त स्थान। कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो? रिक्त स्थान, मीटर। फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। रिक्त स्थान। पृष्ठ 18। नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। यहां पर एक तालिका है जिसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में लिखा है खेल, दूसरे हिस्से में विश्व कीर्तिमान और तीसरे में भारतीय कीर्तिमान लिखा हुआ है। खेल, ऊंची कूद पुरुष, विश्व कीर्तिमान जेवियर एस, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। भारतीय कीर्तिमान चंद्रपाल, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। खेल, लंबी कूद पुरुष, विश्व कीर्तिमान माइक पी, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। भारतीय कीर्तिमान अमृतपाल, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। खेल, ऊंची कूद महिला, विश्व कीर्तिमान स्टेफका के, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। भारतीय कीर्तिमान बॉबी ए, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। खेल, लंबी कूद, महिला, विश्व कीर्तिमान, गालिना सी, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। और भारतीय कीर्तिमान अंजू जॉर्ज, 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। दी गई तालिका से पता करो। 1. चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? 2. बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? याद रहे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आधा मीटर बराबर रिक्त स्थान। 3. गालिना की लंबी कूद लगभग क 7 मीटर है, ख 7.5 मीटर है और ग 8 मीटर है। 4. महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है? रिक्त स्थान। 5. यदि माइक पी रिक्त स्थान सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। 6. किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है? क स्टेफका के, ख चंद्रपाल, ग जेवियर एस और घ बॉबी ए। रिक्त स्थान। पृष्ठ 19, दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। वो कितनी दूर दौड़ा? यहां पर एक वर्गाकार खेत का चित्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 500 मीटर है। यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। यहां पर एक गोलाकार बगीचे का चित्र है जिसकी परिधि 400 मीटर है। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वो रिक्त स्थान किलोमीटर और रिक्त स्थान मीटर दौड़ा। कितने कमरे ऊंचा? यहां पर कुतुब मीनार का एक चित्र बना है। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है? अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे? रिक्त स्थान। बताओ कि तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? पृष्ठ 20, कोझीकोड से थैलसरी तक। सुबोध इस स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझीकोड जा रहा है। मंजनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थैलसरी जा रही है। कोझीकोड थैलसरी से कितनी दूरी पर है? रिक्त स्थान। यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सुबोध और मंजनी को दिखाया गया है, साथ ही उन दोनों को विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाया गया है। तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है? मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वो तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वो चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वो 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में वो स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। यहां पर एक स्कूल का चित्र, एक ताल का चित्र, एक सड़क का चित्र और साथ ही मोमन और उसके स्कूल का चित्र बना है। स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है? रिक्त स्थान। क्या ये 1 किलोमीटर से अधिक है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 21, पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। यहां पर एक तालिका बनी है जिसके दो भाग हैं। पहले में लिखा है दोस्त और दूसरे में घर से स्कूल तक की दूरी। इस तालिका को तुमने स्वयं पूरा करना है। तुम सब में से कौन स्कूल के सबसे पास रहता है? रिक्त स्थान। कौन स्कूल में सबसे दूर रहता है? रिक्त स्थान। कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? रिक्त स्थान। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर रहता है? वो स्कूल किस प्रकार आता है? रिक्त स्थान। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम इस तालिका को देखकर पूरा करो। अनुमान लगाओ और पता करो। एक रील में कितना लंबा धागा होता है? रिक्त स्थान। 2, पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है? क्या वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है? रिक्त स्थान। 3, अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को 1 किलोमीटर की सैर पर ले जाएं, जिससे कि उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी का अनुमान हो। यह अच्छा रहेगा कि यदि रास्ता बिल्कुल सीधा हो। पृष्ठ 22। काश ऐसा हो पाता। यहां पर एक चित्र बना है जिसमें हवाई जहाज, एक पक्षी और एक घर का चित्र है। साथ में एक बच्चे को पतंग के साथ दर्शाया गया है। यहां पर एक कविता भी लिखी है जो इस प्रकार है। काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उठ पाता, इस इमारत से भी ऊपर। काश मैं एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता, इस पतंग से भी ऊपर। काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता, इन चिड़ियों से भी ऊपर। काश मैं एक हवाई जहाज होता ताकि मैं बहुत ऊपर उठ पाता, बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। इस चित्र में एक बच्चे को पतंग उड़ाते हुए भी दिखाया गया है। पता लगाओ। 1, तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है? वो कितने कमरे ऊंची है? रिक्त स्थान। 2, एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है? क्या वो कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है? रिक्त स्थान। 3, एक हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ सकता है? क्या वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है? और 4, क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बहुत अच्छा रहेगा यदि बच्चों के अनुभवों की चर्चा की जाए, विशेष रूप से जब वो बादलों और उनकी ऊंचाई की बातें कर रहे हों, तो संबंधित ऊंचाई का अनुभव मन से करें और लंबी दूरियों का अनुमान लगाना शुरू करें। इसी के साथ दूसरा पाठ लंबा और छोटा यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदोह, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं 28 सितंबर की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। और विशेष आज चतुर्दशी है और पूर्व भाद्रपद है और अनंत चतुर्दशी गणेश उत्सव का विसर्जन कार्यक्रम शुरू हो रहा है और पूर्णमासी व्रत भी शुरू हो गया है। और आज के दिन बात करें शिरडी साई बाबा, भगत सिंह, राजेंद्र मल, लूडा, लता मंगेशकर, पी जयराज, अभिनव बिंद्रा, श्री नारायण चतुर्वेदी, राम हरक सिंह सहगल, विलियम जोस, क्रांति त्रिवेदी, कल्याण मल्डो लूडा, कमलेश जी पटेल, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही ब्रजेश मिश्रा, शिवप्रसाद सिंह, वीरेन डंगवाल, जयंती पटनायक, अकबर डिडटिया, इन सभी का पुण्य दिवस है। आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए कहते हैं, दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख मिलेगा। और दरअसल तुम जिस पर भी ध्यान देते हो वो चीज़ तुम्हारी सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है, कमाल की बात कही है। आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो 101 पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए 28 सितंबर की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और विशेष आप सभी को बताना चाहूँगा। आज लता मंगेशकर जी का भी जन्मदिन है, तो उनकी कहानी भी आपको सुनाने वाले हैं और बहुत सारे महान लोगों का जन्मदिन है। कुछ खास लोगों की बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। आइए भगत सिंह की बात करें तो आप विशेष अमर बलिदान सरदार भगत सिंह की बातें अगर कहें तो लयपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ और विशेष विश्व में 20वीं शताब्दी के अमर बलिदानों में बहुत ऊंचा नाम है भगत सिंह ने। देश की आज़ादी के लिए साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। वो आज के युवकों के लिए एक बहुत बड़ी आदर्श है और भगत सिंह अपने देश के लिए ही जिए और उसी के लिए बलिदान भी दे गए। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लैलपुर में बंगाव में जो अब पाकिस्तान में हुआ था और एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। और वक्त भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद कर दिए थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता ने चाचा को जेल में रिहा किया गया था, चाचा को भी रिहा किया गया था। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह की दादी ने बच्चे का नाम बंग वाला अच्छे भाग्य वाला रखा गया और बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। वे 14 वर्ष की आयु में ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे और DAV स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा पास की और 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारी होने लगी। वे लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। कानपुर में उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी का हार्दिक सहयोग भी प्राप्त हुआ और देश की आज़ादी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी दल का पुनर्गठन करने का श्रेय सरदार भगत सिंह को ही जाता है। उन्होंने कानपुर के प्रलाप में बलवंत सिंह के नाम से तथा दिल्ली में अर्जुन के संपादीय विभाग में अर्जुन सिंह के नाम से कुछ समय काम किया और अपने को नौजवान भारत सभा से भी संबंध रखा और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी और 1919 में रावल एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहा था। इसी तरह वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ और इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे। देश पर मर मिटने वाले बलिदानों के प्रति श्रद्धांजलि दी तथा रक्त से भीगी मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया जिससे सदैव ये याद रहे कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया और

0: पंजाब नेशनल कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना फूलने फलने लगी और इस कॉलेज में ही यशपाल भाव भगवती चरण सुखदेव तीर्थराम झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से इनका संपर्क हुआ। कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब भी बनाया था। इस क्लब में भगत सिंह ने देशभक्तिपूर्ण नाटक में अभिनय भी किया था। ये नाटक थे राणा प्रताप, भारत दुर्दशा और सम्राट चंद्रगुप्त। तो इस तरह के नाटकों के माध्यम से लोगों के जीवन में देशभक्ति की अगाढ़ प्रेम को जगाया जाता था। सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध भी इन्होंने किया। असेंबली बम कांड हुआ और फिर आखिर में फांसी की सजा इनको हुआ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सुनाए हैं रीनुमा दुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। ये बलिदान राम प्रसाद मिसमिल की कुछ पंक्तियों में इनका जो है याद किया जाता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में रंग के शिवा के, शिवा ने माँ का बंधन खोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये रंग हल्दी गाठी में खुलकर था खेला। नौ बसंत में भारत के हित वीरों का यह मेला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये गीत भगत सिंह के लिए विशेष रूप से सार्थक हो जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला।

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में आज जिनका जन्मदिन है। जी हाँ, 28 सितंबर एक विशेष याद दिलाता है, लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन है। भारत की भारत रत्न सम्मानित मशहूर गायिका, जिनकी आवाज़ से 6 दशक से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया के सुरों को नवाजा उन्होंने। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिल जाए। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा था। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें विरले ही जन्म लेती हैं। जी हाँ, कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में आज ही के दिन 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर का नाम विश्व के सबसे जाने माने लोगों में आता है। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहन आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमन अली खान साहिब और बाद में अमरनाथ खान के साथ पढ़ी, और लता मंगेशकर हमेशा से ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनके इस प्रतिभा को बहुत जल्दी ही पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से शुरू हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। लता जी का नाम पहले हेमा था, लेकिन जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने नाम बदलकर लता रख दिया था। तो आइए इस कहानी को आगे आपको सुनाने वाला हूँ। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर।

हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर सन 1929 में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिष्य थे। एक मरतबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी की आई से कहा कि अरे, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया तो हमारे घर में भी है। और उस दिन से घर में ही लता जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई।

बहुत छुटपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थीं। एक मर्तबा हुआ यूं कि एक नाटक चल रहा था जिसमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्ही से लता ने जाके कहा कि बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो अगर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा, कहाँ तू इतनी छोटी सी है और स्टेज पे तू मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा कि बाबा देखना, मैं वंस मोर लेकर आऊंगी, एक अवसर तो दे, और कोई चारा भी तो नहीं, वो अभिनेता और गायक अभी तक तो आया नहीं है। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीनन वंस मोर आया।

लता जी की आवाज के जादू ने फिल्म जगत में तो धूम मचाई, पर इस मकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि देख बेटी, तू आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही से लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि इनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया, पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आई, और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने

मास्टर विनायक की कंपनी में ये काम किया करती थीं। वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को ये कतई पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करें, और एक मर्तबा शूटिंग से ये लौटी और घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। जानती थी कि छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। पर जब इनकी माँ ने पूछा कि रोई क्यों, तो कहने लगी, यह बनावट मुझसे नहीं होती, मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। किस्मत ने इनकी बात सुनी भी। इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली, पर फिल्म इंडस्ट्री में इनको काम आसानी से नहीं मिला।

मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज को सुनकर ये कहा गया था कि आवाज इतनी पतली है ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं। और इनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने यह बात साबित करने का बीड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के जीवन में, ना ही सिर्फ बड़े ब्रेक दिलाए बल्कि ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज गूंजेगी, बाकी सारी आवाजें इसके आगे फीकी रहेंगी। और ठीक वैसा हुआ भी।

लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब, बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब

लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रहीं जिन्होंने कहा, गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग की पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है, उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ। और तब लता जी ने जवाब दिया था, राज साहब, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई। और अपनी बात लता जी ने मनवाई।

ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार भी काम कर चुकी हैं। जी, इनके ऊपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए और लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनके दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपने शुभचिंतकों की जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पाहुना और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को मंच पर बुलाया जा रहा था और वो वहां पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चढ़ रहा था। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता है और वही आनंद घन भी। पर लता जी को मंच पे जाना ही पड़ा और इस तरह से ये राज खुला। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मकाम हासिल कर चुकी थीं, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा था, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोईया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी, पर इनके बीमार पड़ते ही वो रसोईया भाग गया।

अवार्ड्स के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। यहाँ पर फिल्मफेयर अवार्ड्स की बात आती है तो लता मंगेशकर ने यह फैसला कर लिया था कि अब नए गायक गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए, इसीलिए एक वक्त के बाद इन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर बड़ी हसमुख प्रतिभा हैं और इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक। ये बात सही कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के ही तो बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की ट्यूनिंग खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे आर डी बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित और ए आर रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज से सभी का दिल जीता है।

जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ और बहुत सैनिक शहीद हुए, तब लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जिसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। ये बात भी मशहूर रही है कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका हैं जो गाने के लफ्ज सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती हैं। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती। गजलें रहीं या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, विशेष लता जी के बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और भारत की बहुत ही पॉपुलर गायिका जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। तो 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और 6 फरवरी 2022 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ था। तो चलिए, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, लेकिन मेरी आवाज़ ही पहचान है। ये गीत उनके लिए सार्थक हो रहा था तो वो गीत आपको भी सुनाया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और शख्सियत के बारे में, बात करते हैं अभी क्रांति त्रिवेदी के बारे में। जी हाँ, 20वीं सदी की हिंदी की सबसे प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से एक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक से बढ़कर एक कृतियाँ दी हैं। उन्हें लेखन और समाज के लिए अनेक पुरस्कार भी मिले और क्रांति त्रिवेदी जी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ला की पुत्री है। तो आई इनके बारे में, हिंदी की प्रख्यात लेखिका क्रांति त्रिवेदी जी का जन्म आज ही के दिन 1930 को अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर में हुआ था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ला की सबसे छोटी पुत्री थी। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्याम चरण शुक्ला और पूर्व मुख्यमंत्री रहे विद्याचरण शुक्ला की बहन थी। इनके पति धरनीधर त्रिवेदी उत्तर प्रदेश सरकार में आयकर आयुक्त थे और सहज रुचि जागने के साथ साथ पाठकों को हिंदी साहित्य और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए क्रांति त्रिवेदी ने सरल भाषा और दिलचस्प विषय वस्तु के माध्यम से साहित्य के विभिन्न रूपों में अपने लेखन कौशल का प्रदर्शन किया। क्रांति त्रिवेदी ने पहले 6 उपन्यास हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के साथ साथ हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में मील का पत्थर साबित हुआ। बाद में पौराणिक उपन्यासों में उन्होंने स्त्री की विविध भावनाओं को उजागर किया। शगुन पक्षी, कृष्ण पक्ष, अमृत घाट, मोहभंग, बनबूंद अमृत और आठवां जन्म उनके सशक्त सामाजिक उपन्यास हैं जिनमें महिलाओं की समस्याओं को बड़ी सहानुभूति के साथ उठाया गया है। और अपने जीवन काल के दौरान क्रांति त्रिवेदी ने 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की और 5 अप्रकाशित पंडुलिपियाँ छोड़ गई। ऐसे ही एक अप्रकाशित पंडुलिपि लता और वृक्ष थी जिसे 29 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा प्रकाशित और जारी किया गया था। तो आइए इनके बारे में और जानते हैं। जैसे कि सम्मान की बात करें तो इन्हें 2002 में हिंदी सेवा के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा 2002 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से इनको नवाजा गया। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय हिंदी सेवा मिलेनियम सम्मान भी इनको मिला। मध्य प्रदेश सरकार की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा नारी लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और उपन्यास में मन की हार, स्वयंवर, समर्पण, अंतिम, ओस की बूंद, इस तरह के कई उपन्यास इन्होंने लिखे। कहानी संग्रह में दीप्त प्रश्न, शायर का अंत, एक अनंतहीन प्यास, नारी मन की कहानियां, नारी तथा अन्य कहानियां, दीक्षा, ये सारी कहानियां संग्रह इनके साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ में क्रांति त्रिवेदी जी जो है अपनी साहित्यिक की सेवा करते करते 26 अक्टूबर 2009 को नई दिल्ली में इनका देवासन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें क्रांति त्रिवेदी के बारे में आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए, इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कम्फर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं और विशेष अभिनव बिंद्रा के बारे में। आप सभी जानते हैं अभिनव बिंद्रा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत के लिए विशेष सम्मान प्राप्त है और प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा ने 11 अगस्त 2008 को बीजिंग में आयोजित 29वें ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच डाला था। ओलंपिक में वैश्विक स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले वे भारत के पहले निशानेबाज बन गए। भारत को 28 साल बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था और 2004 में एथेंस ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। तो ये कुछ बातें हैं, आइए इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। अभी अभिनव बिंद्रा का जन्म 28 सितंबर 1982 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। MBA कर चुके अभिनव फ्यूचरिस्टिक कंपनी के CEO है। अभिनव बिंद्रा जिन्हें घर वाले प्यार से अभी कहकर पुकारते हैं, 1996 में अपने परिवार के साथ अटलांटा ओलंपिक देखने गए थे, तब उन्हें पहली बार शूटिंग रेंज देखी और उन्हें उसके प्रति आकर्षण हुआ और फिर उनके परिवार ने उन्हें इस खेल के प्रति आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अच्छी तरह सोच समझकर एयर राइफल प्रतियोगिता को चुना और उसमें भाग लेने लगे। इस प्रकार वह 15 वर्ष की आयु में निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने लगे थे और निशानेबाजी में सफलता की बात करें तो अभिनव बिंद्रा पहली बार उस समय दुनिया के खेल परिदृश्य पर चर्चा में आए थे जब 2001 में विशेष विश्व कप में उन्होंने 700.1 अंक लेकर 10 मिलीमीटर राइफल प्रतियोगिता के कांस्य पदक जीता था। अभिनव ने 60 शॉट लगाने के लिए निर्धारित 1 घंटा 45 मिनट की जगह मात्र 44 मिनट में ही सभी शॉट लगाकर सबको अचरज में डाल दिया था। इस प्रतियोगिता में विशेष रूप से उनका मुकाबला 67 देशों में 105 धुनाधार खिलाड़ियों के साथ था। उन्हें अंतिम 8 खिलाड़ियों में जगह बनाई, यद्यपि वो तब 7वें स्थान पर थे परंतु फाइनल में उन्होंने अविश्वसनीय रूप से 103.9 अंक बनाकर तीसरा स्थान बनाया। इस जीत के कारण वह ओलंपिक में पुरुष वर्ग की एकल प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने और निशानेबाजी के खेल की ओर इस कारण भी आकर्षित हुए क्योंकि उनके कोच ने शूटिंग खेलों में प्रसिद्धि पाने की सुंदर तस्वीर उनके मन मस्तिष्क में बिठा दिया थी, जिससे उनके मन में ऐसी अमिट तस्वीर बनी कि उन्होंने इन खेलों का खिलाड़ी बनने का ही सपना देखा। तो आइए इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन आप ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परीक्षण के दौरान अभिनव इंद्रा बताते हैं कि वे लगभग 9 घंटे रोज अभ्यास करते हैं, जिसमें वे 7 घंटे नियमित रूप से शूटिंग का अभ्यास करता है हुए और 2 घंटे की छाव वाले एक जॉगिंग ऐसे व्यायाम करता है। ये सब करने के बाद वे पूरी तरह थक चुके होते हैं, परंतु ये सब करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक शूटर की योग्यता उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अभिनय ने बहुत कम उम्र में प्रसिद्धि पाई और बहुत कम उम्र में बड़े बड़े पुरस्कार जीते। उनके पिता ने उनके लिए निशानेबाजी के सभी उपकरण जुटा रखे थे ताकि वह घर पर ही पूर्ण अभ्यास कर सके। और उन्होंने बताया, मेरे पास एयर कंडीशनर रेंज है जो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार कंप्यूटर आधारित टारगेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आधारित है। मेरे पास 7 बंदूकें, गोलियां, जैकेट व अन्य शूटिंग का सामान है। सुविधा व सामान के हिसाब से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अभिनव के जीवन पर उनके माता पिता का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। उनके राष्ट्रीय कोच गोबी बुलमान और सनी थॉमस है। अभिनव इंद्रा ने राइफल 3 पोजीशन मुकाबले में ISSF वर्ल्ड कप फोर्ट बेनिंग US प्रतियोगिता में 1161 का स्कोर बनाकर भारतीय सेना के सुबेदार सुभैया के कई वर्ष पुराने 1999 के रिकॉर्ड की बराबरी की। अभिनव ने राइफल मुकाबले में 2 महीने पूर्व ही भाग लेना शुरू किया था और उनके इस वर्ग की विश्व स्तर की पहली प्रतियोगिता थी। इस मुकाम को अभिनय के कोच स्टेनलेस इस मुकाम में अभिनव के कोच स्टैनिस्लेव लेपिडस काजिकस्तान थे, जो पहले भारतीय सेना के कोच थे। लेपिडस ने कहा, मैंने अपने 25 वर्ष के कोचिंग अनुभव में बिंद्रा जैसे शूटर नहीं देखा है जिसने 2 महीने के अभ्यास में इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो ये थी कुछ खास बातें और इनकी उपलब्धियों की एक लंबी लिस्ट है। और ये पूरा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे महान जो है सम्मान इनको प्राप्त है जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जीवन में खेल जो है हमेशा मजबूत बनाने के लिए भी खेला जा सकता है और साथ ही साथ जीवन में खुशी को प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ देश के लिए भी खेला जाता है और देश के साथ आप भी अपने लिए खेलते हो। आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के इस पड़ाव में एक छोटी सी कहानी के साथ कार्यक्रम पूरा करेंगे। और बहुत ही सुंदर कहानियां आप सुनते रहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। अहंकारी गुलाब की कहानी अभी आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था जिसे अपने सुंदर रूप गुलाब का फूल पर बहुत गर्व था। उसकी एकमात्र शिकायत ये थी कि एक बदसूरत कैक्टस के बगल में बढ़ रही थी। अब हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता था और उसके लुक्स पर उसका मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुप रहता था। आसपास के अन्य सभी पौधे ने गुलाब को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये भी अपने ही रूप से प्रभावित थी। एक चिलचिलाती गर्मी, रेगिस्तान सूख गया और पौधे के लिए पानी नहीं बचा। गुलाब जल्दी मुरझाने लगा, उसकी सुंदर पंखुड़ियाँ सूख गई, अपना रसीला रंग खो दिया। एक दिन दोपहर में गुलाब ने ये नज़ारा देखा कि गौरैया कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। ये देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच आया। हालांकि शर्म आ रही थी, फिर भी गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है। इसके जवाब में दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। गुलाब को पानी गलती की एहसास हुआ गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहीं उसने एक दूसरे का मदद किया इस कठिन गर्मी को पार करने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उनके दिखने के तरीके से मत आंकिए। तो है ना कमाल की कहानी। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और एक विचार के साथ पूरा करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता है, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत है। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और दोस्तों हम सब आ गए हैं आपके पास लेकर एक नए विषय और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है मोनिका. और दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज उस विषय के बारे में जो एक जीवन को कुछ इस तरीके से प्रभावित करता है कि समझ लें कि वो एक नया मोड़ ही ले आता है. हम बात कर रहे हैं कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन आ जाती है, एक बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है. कुछ मजबूरी होती है, कुछ चॉइस भी होती है, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस यानी हमें ये महसूसता नहीं होती कि

0: कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें इस मामले में जागरूकता नहीं है, और कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से वो स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में ही. और फिर एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में जब उन्हें लगता है कि हम क्या हम फिर से जा सकते हैं, क्या हम फिर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. तो उनके लिए आज ये हमारा सेशन है, राइट?
1: ओके. तो जैसा आपने कहा कि क्या हम एक शिक्षा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये मन में आता है, पर क्या रीज़न होते हैं, मतलब क्यों आपको लगता है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्या विश प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या लगता है आपको?
0: जी, सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि किसी कोई परिवार होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल वित्तीय प्रॉब्लम्स होती हैं. पर आजकल सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्लान अमेंडमेंट किया है, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलेंगे, 2009 में ही हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पास हुई थी, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया जाता है. तो ये प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, मतलब
1: सॉल्व करने का प्रयास तो हो रहा है बिल्कुल, लेकिन हम अगर गांव-गांव में देखते हैं, आज बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं. जब माता पिता दोनों काम पे जाते हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होता, तो कई बार बड़े भाई बहनों को स्कूल छोड़ना पड़ता है. कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें वो माहौल नहीं मिलता कि घर पे पढ़ाई के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि शायद पढ़ाई करके क्या ही फ़ायदा है. कई बार माता पिता को भी ऐसा लगता है क्योंकि इतनी नौकरियां अब कहाँ से गांव में दिखेंगी, गांव में खेती करनी है या वही काम करना है, तो माता पिता को भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो अभी कमाएं क्योंकि बाद में भी यही काम करना है और अभी भी यही काम करना है. एक ये भी सिचुएशन होती है. और कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि छोटी सी बात बड़ी बुरी लग जाती है किसी टीचर की, कोई टीचर डांटेगा या फिर उनसे डर लगने लगता है या किसी और बात से डर लगने लगता है और लगता है कि छोड़ो मेरे दोस्त भी तो नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जाता हूँ. और वो एक दिन एक महीना और एक महीना एक साल और एक साल न जाने कितने साल बन जाता है और स्कूल जाना ही बंद हो जाता है. कई बार एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आता उस चक्कर में ऐसा हो जाता है. कई बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि रास्ते में छेड़छाड़ के मामले हो जाते हैं और वो ना घर पे बता पाती हैं ना स्कूल में किसी की मदद ले पाती हैं, और ऐसे में किसी को पता चलता है तो मुश्किल का सामना लड़कियों को ही करना पड़ता है, उनका स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद करा दिया जाता है. ये सब समस्याएं हैं लेकिन हल नहीं है. स्कूल बंद करा देना हल कभी नहीं हो सकता, सल्यूशन कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पूरे जीवन का जो आधार है वो है शिक्षा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, कर रहे हैं. ये इतना आसान तो नहीं है लेकिन हम सभी के प्रयास से मिलकर हम कुछ सफलता हासिल ज़रूर कर सकते हैं. और मोनिका, और क्या लगता है, आपने आपने इस बारे में और पढ़ भी रहे थे, आप क्या पढ़ा आपने?
0: जी, कहीं कहीं पे लड़कियों के को शिक्षित करना एक समझा जाता है कि क्या ही करेगी पढ़ के, आगे जाके शादी करनी है और ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर वर मिलना, वो भी चीज़ें हो जाती है जो माता पिता सोचते हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची. और लड़कों के मामले में रहता है कि आगे जाके इसने हमारा ही बिजनेस संभालना है तो क्या फ़ायदा, मतलब पढ़ के
1: ऐसा भी सोच लेते हैं.
0: जी, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कोई कोई स्कूल्स में एक ही एक साथ बहुत काफ़ी बच्चों को बिठा देते हैं और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाते हैं, उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट भी चला जाता है. और कहीं पे जो सिखाते हैं स्कूल में वो ऑफ टॉपिक हो जाता है, जो बच्चों को लगता है कि इसका हमारे जीवन में रिलेशन नहीं है कुछ भी, इसका कहीं कहाँ उपयोग हो सकता है, तो हम क्या ही करेंगे पढ़ के
1: क्या फायदा है.
0: जी, तो इसके लिए शिक्षा इसका शिक्षा इस तरह से बनाई जानी चाहिए, नॉलेज एजुकेशन इस तरह का हो कि वो बहुत एंगेजिंग हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करे और
1: टीचर्स कुछ नए नए तरीके इस्तेमाल
0: नए तरीके होते हैं.
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी बात है.
0: जी, और जो लड़कियां होती हैं उन्हें वो क्यों, वो कभी कभी इस कारण से भी स्कूल नहीं जाती है कि स्कूल में शौच घर नहीं होता है, तो उस कारण से भी वो नहीं जाते हैं क्योंकि वो आजकल काफ़ी स्कूल्स में बनाया भी जाता है, अवेलेबल किया जाता है, पर कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो वो भी एक कारण है.
1: बहुत बड़ा.

0: कारण है। बिल्कुल
1: जी।
0: तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसा लगता है कि अभी उस समय महसूस नहीं होता कि कितना बड़ा ये हमारे जीवन पर असर डालेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, देखते हैं कि और उनके साथ के जो लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं या अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं या कुछ अपना कर रहे हैं, तो महसूसता होती है और फिर गिल्ट भी होता है, बुरा भी लगता है माता पिता को भी और बच्चों को भी। हाँ ये ज़रूर है कि भाई जिनका वो समय निकल गया, वो यूथ हो गए, बड़े हो गए, वो भी पढ़ सकते हैं हालांकि, लेकिन जो बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने किसी भी कारण से स्कूल छोड़ दिया है ना दोस्तों, तो उस कारण का दूसरा निवारण ढूंढ लीजिए, क्योंकि स्कूल छोड़ना सल्यूशन नहीं है। आपके जीवन के लिए स्कूल जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बारे में और भी बात करेंगे मोनिका, एक छोटा सा गीत हमारे दोस्तों को सुनाते हैं, लौट कर आएंगे। कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं युवा मंच, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, एविंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन नंबर 0882388647, ईमेल prabhudutt.sharma@nic.in या cisell-moib@nic.in।

0: सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों स्कूल ड्रॉप आउट कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। अब लेकिन कैसे और क्यों, मुझे लगता है सबके कारण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए शो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हमारे साथ मोनिका जुड़ गई है स्टूडियो में। मोनिका, और क्या कारण है, आपको क्या लगता है क्यों होता है स्कूल ड्रॉप आउट?
1: जी कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस में JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इन्हें टाइम इसके लिए तैयारी करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम इसमें देते हैं और उसकी वजह से वो स्कूल के जो क्लासेस होते हैं वो मिस करते हैं और फिर वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर वो छोड़ देते हैं स्कूल। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार फेल होते होते फिर उनका फिर वो छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करते, हम ऐसे ही कोई बिजनेस कर लेंगे। ये भी कारण है। और कुछ पेरेंट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इधर उधर वो शिफ्ट करती रहती हैं, जो बहुत सिटीज़ में जो डिफेंस फैमिलीज होती हैं और उसकी वजह से
0: भी होते हैं वो बहुत सारे जो मजदूरी करते हैं, भाई बहन बंजारे भी होते हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते तो उनका कहीं पे बच्चों की उनकी पढ़ाई एक जगह नहीं हो पाती है।
1: जी डिस्टर्ब हो जाता है उनका और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो भी उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। और जैसे कि हमने बुलिंग के बारे में भी बात की थी, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। और इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ में बैकग्राउंड ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं होता है और बच्चे जुआ और सट्टा ज़्यादा खेलते हैं,
0: गलत आदतों में पड़ जाते हैं।
1: जी तो वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं होता है तो इस वजह से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं।
0: और कई बार लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है मोनिका ना, कि लड़कियों स्कूल छोड़ने की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और कई बार तो शुरुआत भी नहीं हो पाती, उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता। कई बार भेजा जाता है तो उनकी पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता जितना लड़कों की पढ़ाई को समझा जाता है।
1: हाँ जी।
0: और कई बार तो छुड़वा भी दिया जाता है स्कूल।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: हाँ, किसी के पास अगर आर्थिक समस्या है, पैसे वित्तीय समस्याएं हैं तो उनकी शादी करवाई जाती है, तो इसलिए ये भी कारण है, खास करके जो लड़कियाँ होती है।
0: बिल्कुल। और कई बार लड़कियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अगर छोटा भाई बहन है घर में तो भले वो लड़की खुद बहुत छोटी है बट उसे खुद अपने छोटे भाई बहन को देखना संभालना होता है। दोस्तों परिस्थिति को हम समझ सकते हैं और अगर परिस्थिति इतनी बड़ी है ना कि नहीं हैंडल हो रही, तब भी मिलकर पूरा परिवार कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर वो छोटी बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी गई तो उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाएगा और उसके पूरे भविष्य में अगर वो कल को चाहेगी कि एक अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर पाए, या मान लीजिए आज हम देखते हैं घरेलू हिंसा, कितने लोगों को इस घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, कितनी लड़कियों को अत्याचार सहने पड़ते हैं शादी के बाद भी। तो अगर एक लड़की आत्मनिर्भर है, अगर वो पढ़ी लिखी है, फिर उसकी शादी होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने को इतना संभाल सकती है, अपनी केयर कर सकती है, बल्कि दूसरों की भी केयर कर सकती है, सिर्फ अपनी नहीं, उसको मदद मिलती है, उसको हौसला मिलता है। तो पूरे जीवन के लिए पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं चाहिए, पढ़ाई जीवन के लिए चाहिए। तो इसीलिए लड़कियों की पढ़ाई तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छुड़वानी चाहिए। आप अगर मिलके सोचेंगे, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन वो बच्चे अगर स्कूल के अगर रास्ते को भूल गए ना, तो कल को हो सकता है उसका भविष्य उतना अच्छा ना हो पाए जितना चाहते हैं या वो खुद चाहती है। तो बहुत दुख होता है कई बार जब बच्चियों को छोटे-छोटे देखते हैं और उनको स्कूल जाने को नहीं मिलता है।
1: जी एक बात मैं कहना चाहूँगी, एक्चुअली हमारे हम भी ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे बोलते थे कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं है और शादी करा देते हैं जल्दी, और हमें भी बोला जाता था कि क्या करोगे पढ़ के. और मतलब हमें ऐसे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे थे कि उनकी शादी करा देते थे पढ़ाई होने के बाद. फिर ऐसी सोच थी, पर आज हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षित किया है, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है. सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा का महत्व खाली वहाँ तक नहीं है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व बहुत बहुत विकसित होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स अच्छा दिख के आता है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जीवन जीने की कला हमें शिक्षा से मिलती है, शिक्षा में बहुत कुछ सिखाती है.
0: बिल्कुल, और कितनी सही बात की. अब देखिए, आपके घर वालों ने इस बात को समझा है ना,
1: जी
0: नहीं तो अगर समाज की, अड़ोसी पड़ोसियों की या कई बार रिश्तेदारों की बातों में भी आ जाते
1: जी
0: तो हो सकता है. अब कई बार ऐसा होता है उन लोगों की बातों में हम आ जाते हैं जिनकी हमारे जीवन से कोई लेना देना भी नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले ना हम उनके किसी काम आने वाले हैं भविष्य में, तो जो होना है वो होना है. लेकिन फिर भी उनकी बातों का असर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लड़की को
1: जी
0: तुमने इतना पढ़ा दिया, लड़की को तुमने इतनी छूट दे दी, अब
1: हाँ
0: है ना. तो इस तरह की बातें भी बहुत होती हैं. लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी कौन है? आपके बच्चे ज़रूरी हैं या लोग ज़रूरी हैं? और लोग तो बातें करते ही रहेंगे, कभी भी वो बातें खत्म नहीं होंगी. हाँ, जो बातें सही हैं, जो समाज को समाज बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी है, हम सब एक समाज में रहते हैं तो हम उनका पालन करें. लेकिन अगर एक बच्चे की पढ़ाई की कुर्बानी देनी पड़ रही है उन बातों को पूरा करने के लिए, अगर किसी का भविष्य खराब करना पड़ रहा है उन बातों को सही ठहराने के लिए, तो आपका निर्णय अपने बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी गलत होगा. क्योंकि हमें समाज भी ऐसा चाहिए, वो बच्चे जो कल का भविष्य है वो पढ़े लिखे चाहिए, है ना. तभी तो बदलाव होगा, तभी तो परिस्थिति बदलेगी.
1: जी
0: जो हम चाहते हैं कि बेटर हो हमारा, कल को पैसे ज़्यादा आए घर में, घर की कंडीशन बेहतर हो, सब कुछ बेहतर चाहते हैं, कोई तो नहीं चाहता और बिगड़ जाए चीज़ें, नहीं. तो वो सुधरने का बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा,
1: जी
0: बहुत ज़रूरी है.
1: जहाँ पे लोग पूछते हैं ऐसी बातें करते कि क्या करोगे, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं आपने क्या पढ़ाई की है,
0: बिल्कुल.
1: तो उन्हें जवाब देने के लिए भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी है.
0: कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें बोलने का.
1: कॉन्फिडेंस, हाँ जी
0: अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो लोग तो बोल रहे हैं इतने अच्छे से, हम डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता. उस चक्कर में हम जो टैलेंट है ना, जो हुनर है, वो भी दिखा नहीं पाते आप.
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के महत्व को समझना ही होगा. हाँ, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं पढ़े, जिन्होंने कार्य जल्दी शुरू कर दिया, अपने घर को संभाला, उनकी बहुत बड़ा त्याग है उन्होंने किया, और वो त्याग जाया ना हो इसके लिए आप आने वाली जनरेशन को पढ़ाइए, इस जनरेशन को पढ़ाइए. इनफैक्ट जो घर में लोग हैं, अक्षर ज्ञान तो वो भी ले सकते हैं ना. मम्मी को अपने, आप बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अपनी मम्मी को आप लिखना सिखाओ, अपनी मम्मी को ABCD क क क सिखाओ, और आप उनको साइन करना सिखाओ, ताकि वो कल को बैंक में जाते हैं या बस में बस लेने जाते हैं तो वो पढ़ पाए, उन्हें किसी को पूछना नहीं पड़े कि वो क्या लिखा है, कहाँ साइन करना है, कैसे साइन करना है. उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाए, उनके साथ कोई गलत नहीं कर पाए. तो आप अपनी माँ को भी पढ़ाइए, आप अपने बहन को भी पढ़ाइए, आपके घर में जो लोग नहीं पढ़े हैं, भले उम्र में बड़े हैं, अक्षर ज्ञान ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ना मोनिका.
1: जी बिल्कुल
0: तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस मुहिम को आप सब आगे लेकर जाएंगे हमारे साथ साथ. अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415. फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: लौट कर आ गए हम कार्यक्रम युवा मंच में और दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कूल को ही बीच में छोड़ देने से क्या होता है। वैसे अनुभव जो स्कूल छोड़ते हैं उनको भी है, उनके माता पिता को भी है, उनके अड़ोसी पड़ोसी और परिवार वालों को भी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत ऐसी बात है कि सब कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब भाई किसी के दोस्त सारे अगर स्कूल छोड़ के बैठे हैं खेल रहे हैं तो बच्चे को भी लगता है कि मैं भी खेलूं, मैं क्यों जाऊं, रोज़ मुझे टीचर मारती है डांटती है, ये करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्यों मैं, मेरे दोस्त कितना इन्जॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी अपना मस्ती कर रहे हैं, जो कर अपने दिन में खुश हैं, तो मैं भी क्यों ना खुश रहूं, मेरे साथ ये। लेकिन अब बात यह है दोस्तों, ऐसे में उस समय वो बच्चा तो नादान है, छोटा है, लेकिन माता पिता को उन्हें बहुत बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी ही है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम टॉप ही करो, एकदम परसेंटेज 90 आ जाए 80 आ जाए, लेकिन पढ़ाई करो, समझो और आगे बढ़ो। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा जीवन इससे अफेक्ट होता है। और मोनिका क्या लगता है आपको इस बारे में? और
1: जी बिल्कुल आपने सही कहा, जब मैं छोटी थी और ऑफ कोर्स जो भी बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई से छुटकारा हो जाना चाहिए, बस खेल कूद होनी चाहिए और मज़े होने चाहिए। लेकिन अभी हमें लगता है कि नहीं, पढ़ाई का, शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम देखते हैं हमारी एज के कुछ बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ विदेश में जाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, तो अभी हमें शिक्षा का महत्व पता चलता है। हम छोटे रहते हैं तो नादान रहते हैं, और एज अ पेरेंट हमें तो पता है इम्पोर्टेंस, तो हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर बच्चों का मोटिवेशन, बच्चे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।
0: पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और दोस्तों अगर हम बात करें कि कुछ आपको अगर डेटा आपके साथ शेयर करना चाहें, तो दोस्तों एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई जो कि डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने कराई, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2023 की। 2023 को 9 अगस्त को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जागरण में, और दोस्तों उसमें बताया गया कि उन्होंने एक स्टडी की थी और जिसमें उन्हें ये पता चला कि जो रूरल इंडिया है, अगर हम बात करें गाँव की बात करें, कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के माता पिता हैं 78% और लड़कों के 82 यानी 82%, यानी लड़कों के माता पिता अभी भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों के माता पिता हाँ अवेयर हैं, ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंपैरिजन में कम है। लड़कियों की पढ़ाई को अभी भी महत्व कंपेरेटिवली लड़कों से कंपेयर किया जाए तो कम मिलता है। और ये जो स्टडी हुई यानी जो रिसर्च हुई, ये ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने करवाई, और ये रिसर्च जो 6 से 16 साल तक के बच्चे होते हैं गांव में, रूरल कम्युनिटीज़ में, उनके माता पिता से पूछा गया था, बात की गई थी, और करीब 20 स्टेट में ये रिसर्च कंडक्ट की गई। तो दोस्तों जब ये रिजल्ट आता है तो एक ये भी एहसास होता है कि हाँ पहले से हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन अभी भी एहसास होता है कि अभी भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना लड़कियों की शिक्षा को मिलता है, है ना
1: जी।
0: तो दोस्तों ज़रूरी है कि हम ये बातें जानें, और अगर हम ड्रॉप आउट की इस वक्त बात कर ही रहे हैं, टोटल जो ड्रॉप आउट है, अब उसकी बात करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है कि लड़कियों के जो छोटी बच्चियां होती है उनमें ज़्यादा है, और इसी रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, 35%, आप सोचें 35%। और आप अगर लड़कों की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल ये रेट ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों में हो ही नहीं रहा, लड़कों में नहीं हो रहा, लेकिन लड़कियों में अभी भी ज़्यादा है। यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लड़की सिर्फ शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, बल्कि उसका जीवन भी उतना ही उम्र वो जीने वाली है, उतना ही वो ज़रूरी है, उतना ही वो समाज का हिस्सा है, उतना। और सोचिए एक लड़की, कहते हैं ना कि भाई एक लड़के को पढ़ाते हैं तो एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, ये कहावत है
1: जी।
0: और आप कुछ कहना चाहोगे, आपने जो पढ़ा, जो इस बारे में विषय में समझा?
1: जी वैसे आजकल लड़कियां लड़कों से आगे ही है हर क्षेत्र में। हम स्कूल में भी देखते थे कि जो टॉपर्स रहते थे और आजकल यूनिवर्सिटी टॉपर्स मोस्टली लड़कियां रहती है और लड़कियां किसी के मामले में कम नहीं है. कहीं कहीं पे लड़कियों ने दिखा दिया कि लड़कों से कम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी ऐसे लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है. हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम लड़कों वाले लड़कियों वाले दोनों काम कर लेते, तो एक अच्छा लगता है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं,
0: अपने माता पिता को भी संभाल सकते हैं, उनको कोई जरूरत पड़े तो हम मदद कर सकते हैं, चाहे ट्रेन का टिकट करना हो, कुछ सामान खरीदना हो, कुछ भी करना हो
1: जी.
0: तो लड़कियां गाड़ियां चलाती हैं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, तो अगर वो शिक्षित नहीं होती तो वो संबल कैसे होती
1: जी.
0: और दोस्तों जब भी बात शिक्षा की आती है तो मुझे लगता है एक प्रश्न सबके मन में आता ही है, और वो ये भी अभी भी हमें ये जरूर लगता है कि पढ़ा के क्या होगा. अगर मान लो काम वही करना है जो हमारे माता पिता कर रहे हैं तो पढ़ के क्या फर्क पड़ जाएगा.
1: नहीं, पढ़ने से तो बहुत फर्क होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं. सिर्फ पढ़ाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कमाई का साधन नहीं है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो पढ़ाई से बहुत फायदे होते हैं.
0: अब पता है मानेगा एक प्रश्न ये ना, छोटे छोटे बच्चे गांव में एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पास के ही, और उन बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल, अगर मान लो आपको स्कूल से क्या, स्कूल जाने से क्या होगा. तो उसमें से एक छोटी सी लड़की थी, वो लड़की ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 6-7 साल की थी शायद. तो उस लड़की ने बोला कि अगर मुझे खाना भी बनाना है तो अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगी ना तो मैं कुछ नया नया और बना पाऊँगी, मुझे पता चलेगा और कहाँ कहाँ क्या बनाते हैं, कैसे मैं पढ़ पाऊँगी, कैसे कैसे बनाते हैं. तो सिर्फ जो यहाँ बनता है, जो हम खाते हैं, हम कुछ और भी नया नया आपको बना के खिला पाएंगे. वहाँ एक छोटा बच्चा भी था, उसने कहा कि अगर मुझे खेती करनी है, मान लो मुझे अपने माँ बाप का जो काम है उसको आगे बढ़ाना है, अच्छे से खेती करनी है, अच्छा फार्मर भी तो देश की नींव है ना
1: जी.
0: तो उसने बोला कि मैं और तरीके से खेती कर पाऊँगा और स्टाइल अपना पाऊँगा इरिगेशन के, या फिर उसने मतलब इरिगेशन शब्द का उपयोग तो नहीं किया, परंतु उसने ये ज़रूर कहा कि मैं खेती के नए तरीके ढूँढूँगा, बेहतर करूँगा खेती को. तो अब ये कितनी बड़ी बात है, वो छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो जीवन जी रहे हैं उसी को बेहतर कर सकते हैं अगर वो शिक्षा हासिल कर लें तो.
1: जी, आपको एक बात बताऊंगी. एक्चुअली मैंने तो वैसे कॉमर्स किया है, पर अचानक से मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया कि साइंस की बुक होती है जो NCERT जो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी मैंने साइंस की बुक पढ़ी थोड़ी सी, और मुझे इतना सारा नॉलेज मिला उसमें से कि कौन सी चीज़ों में विटामिन्स मिलते हैं, कौन सी चीज़ में एनर्जी मिलती है, और जो जैसे कि आपने कहा जो खेती करते हैं उन्हें उस क्षेत्र में भी बहुत सारा नॉलेज मिला. तो मैंने एक ही किताब पढ़ी और इतना नॉलेज अगर मिल रहा है तो पूरी की पूरी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप कितने ज़्यादा शिक्षित हो जाओगे, और वो आपको काम में आएगा. आप कैसे जीना है, अच्छे से अपने आप को कैसे रखना है. आप हम पढ़ाई क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है ना. पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी करेंगे डिग्री मिल गई उसके लिए, हमें उसमें से सीखने को मिल रहा है. अगर वो प्रथा चलती आ रही कि पढ़ाना है तो उसमें से फ़ायदा हो रहा है, तभी हम पढ़ाई को, शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. और देखो आपने वो बुक पढ़ी इसलिए कि आपको जानकारी मिले, आपको एग्जाम नहीं देना था, वहाँ स्कूल की किताब नहीं थी आपकी. तो नॉलेज जहाँ से मिले आपको काम ही आएगी, इतना एक दिन आपको वो मदद ही करेगी, कभी ना कभी खाली नहीं जाती कोई भी चीज़ अगर आपने सीखी है तो. ये कहता है हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते आए हैं, कहते आए हैं इस बात को. और मोनिका, क्योंकि हमारे शो भी ख़त्म होने वाला है थोड़े समय में, आपने कुछ NIOS के बारे में भी पढ़ा है और उपाय सॉल्यूशंस की भी अगर बात करें तो आप क्या सोचते हो.
1: जी, जो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत साल हो गए और हमने स्कूल छोड़ दिया था, हमने 4th-8th पढ़ाई की थी, और हम क्या हम फिर से पढ़ सकते हैं, क्या हम फिर से स्कूल जा सकते हैं और कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए खुशखबर है कि हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हो. और उसका सॉल्यूशन ये है कि एक उसके सॉल्यूशन है कि एक NIOS, जैसे कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट है, सरकार भारत सरकार ने जारी किया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपन स्कूलिंग कहा जाता है. एक ये ऑप्शन है. उसके अलावा जिन बच्चों ने हाल ही में स्कूल छोड़ा है और अभी स्कूल जाने की एज में है, वो स्कूल जा भी सकते हैं तो वो रेगुलर स्कूल्स में जाके भी फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है वो NIOS के थ्रू जा सकते हैं. हर एक स्टेट का ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है. मैंने एक्चुअली सर्च किया था ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वो जनरल है, और
0: यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान
1: जी, और एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है,
0: इग्नू जिसे कहते हैं
1: जी. और उसके अलावा काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके अपने अपने NIOS हैं, ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बेंगलोर में भी अपने अपने ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. तो इतनी व्यवस्था आई है, मतलब आप कभी भी पढ़ना चाहो, कभी भी वापस शिक्षा प्राप्त करना चाहो तो बहुत इजी है. आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो. एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, टीचर्स होते हैं, उनसे.
0: जैसे आपने इग्नू वगैरह की बात करी या और ऐसे कॉलेजेस की बात की, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं. यूनिवर्सिटी वो होती हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी आप 12वीं कर चुके हैं, आप उसके बाद की पढ़ाई होती है. NIOS की बात कर रहे हैं हम, वो ओपन हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं. तो ड्रॉप आउट जिन्होंने स्कूल में किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो ओपन लर्निंग कर सकते हैं. मतलब आपको रोज़ स्कूल नहीं जाना है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह एडमिशन नहीं, लेकिन हाँ आप वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं और आपके पास वो डिग्री वो आपको आ जाता है कि एक क्लास आपने पास कर ली है. तो अगर आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो सबसे अच्छा है स्कूल जाना, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र निकल गई है, या कुछ और मुश्किलें अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सकते हैं. ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का. आप सोचें कितना बड़ा ये कार्य चल रहा है. और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के अंडर आता है. और आप अगर इस बारे में जानना चाहें तो दोस्तों आप nios.ac.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं. मैं फिर से दोहरा देती हूँ, nios.ac.in.
1: जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी. लोगों को कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत साल निकल जाएंगे पढ़ने में, लेकिन NIOS का ओपन स्कूलिंग का एक फ़ायदा होता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. आपकी आपको किस क्षेत्र में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, वो अपने उसके हिसाब से आपका प्लान बनाते हैं. और आपका पढ़ाई भी आपकी स्पीड आपके ऊपर है, आपको कितनी स्पीड से पढ़ना है. तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अगर आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए तो वो भी पॉसिबल है. इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है.
0: और दोस्तों अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर भी है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वो नंबर है 1800 1800 9393. नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 1800 1800 9393. तो ये नंबर भी है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं. और आप पढ़ाई अपनी पूरी ज़रूर कीजिए दोस्तों. जाते जाते भी हम यही दरख्वास्त करेंगे आप सभी से, अगर आपके आसपास कोई है जो स्कूली शिक्षा अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए तो उन्हें भी मोटिवेट कीजिए, उनको जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए. वैसे तो हम एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं ना, बर्थडे होता है तोहफा लेकर आते हैं, कुछ और उसको खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा का उपहार दिया है दोस्तों तो उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता. समझ लीजिए आपने उसे जीवन का नया उपहार दे दिया है. तो शिक्षा पूरी करने में किसी न किसी की मदद ज़रूर कीजिए. अगर हम एक एक की भी मदद करेंगे तो हम समझ लीजिए भारत की मदद कर रहे हैं, पूरे अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. और ये कर्तव्य तो हमें निभाना है मिलकर. आप जाते जाते मोनिका कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और कोई उम्र नहीं होती है शिक्षा सीखने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक मर्यादा नहीं रहती है. आप किसी भी उम्र में आप चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो फिर से, तो आप कभी भी कर सकते हो, वापस कंटिन्यू कर सकते हो.
0: जी, तो ज़रूर कीजिए आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई. और फिलहाल हम इतने आपसे इजाज़त.

हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर।

है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह

0: जरूर।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए हमारे विशेष कड़क सिंह हवलदार की बात जरूर सुनिएगा, लेकिन उससे पहले गुड इवनिंग नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन पर, और मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच समय की कीमत की ये कहानी छोटी सी सबसे पहले प्रस्तुत करने वाली हूँ, इसे जरूर लेकर आई हूँ। प्यारी सी कविता होगी, सवाल आज सोमवार को जरूर होगा। इसके साथ साथ और कहानियां आपके बीच जब लाएंगे तो उसके पीछे कारण भी समझिएगा, क्योंकि मूल्य हर कहानी के साथ जुड़ा होता है। तो हमारे कहानियों को सुनते, बातों को समझते और सवाल के पीछे छुपे राज को जानते हुए जुड़ने में अलग ही आनंद है। तो हमारे साथ जुड़िएगा, उड़ान सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रुके रुके रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: वेल दोस्तों, शुरू कर रही हूँ कहानी से समय की कीमत। वेल ये छोटी सी कहानी, घर में यही चर्चा थी कि गांव में दादाजी आ रहे हैं, गांव से दादाजी आ रहे हैं। घर में सामान को ठीक किया जा रहा था। पापा, अंकल, मम्मी और आंटियों को समझा रहे थे कि उन्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद। यही बात मम्मी और आंटी आगे बच्चों से शेयर कर रही थी। एक ने कमेंट किया, क्या वे ज्यादा गुस्सैल हैं? नहीं नहीं, पर वे चाहते हैं कि हर काम समय पर हो, एक मिनट की भी देरी उन्हें सहन नहीं होती। ये तो अच्छी बात है, उनके आने से हम भी कुछ सीख जाएंगे। दादाजी आ गए। सभी सावधान थे, इसलिए उनके काम समय पर होने लगे। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि अब हर छुट्टी वाले दिन किसी एक बच्चे के साथ सिनेमा, सर्कस, पार्क, चिड़ियाघर या घूमने जरूर जाया करेंगे। दिन के ठीक 3 बजे घर से निकला करेंगे। पहले ही दिन सिर मुड़वाते ही होले पड़े वाली बात हो गई। उस दिन राजू की बारी थी, उसे दादाजी के साथ सिनेमा देखने जाना था। जैसे ही दादाजी ने राजू को आवाज लगाई, वह बोला, दादाजी बस 5 मिनट रुक जाओ, मेरा वीडियो गेम अब बस पूरा होने वाला है। 5 मिनट? दादाजी ने 5 सेकंड भी इंतजार ना किया, 3 बजते ही घर से निकल गए। राजू उनके साथ जाने के लिए रह गया। इसी तरह एक छुट्टी वाले दिन दादाजी ने रिया को आवाज लगाई, रिया

रिया ने कहा कि वो तो बोली, उसने कहा मेरी सहेली आई हुई है ना दादाजी, बस 5-7 मिनट पर चले चलेंगे, तब आपके साथ चलूंगी। बस उस दिन भी दादाजी अकेले निकल पड़े। बंटी, केशु, पपलू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। किसी के मनपसंद टीवी सीरियल, किसी की वीडियो गेम, किसी का सोने, या ऐसी कोई ना कोई काम में व्यस्त होने से दादाजी के साथ घूमने जाने का प्लान हमेशा फेल हुआ। छुट्टी का एक दिन भी फिर आ गया। एक दिन आशु की बारी थी। दादाजी ने तेज बजने से 2 मिनट पहले आवाज लगाई, आशु तैयार हो जाओ, चलते हैं चिड़ियाघर देखने। मुझे पता चला है कि तुम्हें बंदर देखना बहुत अच्छा लगता है। दादाजी, आपने ठीक ही सुना, पर एक मुश्किल आ गई। मैंने सोचा था 3 बजे से बहुत पहले होमवर्क पूरा कर लूंगा, पर गणित के सवालों में ऐसा उलझा कि हल होने के में समय लग गया। मुझे लगता है अभी आधा घंटा और लगेगा। कल स्कूल में ये दिखाना तो जरूरी है ना, मैं तो 30 मिनट बाद भी आपके साथ चलूंगा। आशु के इस जवाब पर दादाजी कुछ नहीं बोले। सब सोचने लगे, रह गया आशु चिड़ियाघर देखने जाने से। दादाजी ने किताब उठाई और बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठकर उसे पढ़ने लगे। 10, 20, 30 और 35 मिनट हो गए। 36वें मिनट पर आशु बोला, दादाजी मैंने तो सोचा था आप निकल गए, पर आप तो यही हैं। लगता है कि आपके हाथ में जो किताब है वो बड़ी उपयोगी सी चीज है। किताब उपयोगी ही होती है। क्या तुम अब चलने के लिए तैयार हो? उसने कहा, जी दादाजी। आशु के जवाब ने ऐसा ही दिया। दोनों चिड़ियाघर के लिए तैयार निकल पड़े। सभी को आश्चर्य हुआ, है दादाजी आज लेट? वापस आने पर सभी ने दादाजी को घेर लिया। राजू ने तो पूछ ही लिया, आप मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं रुके और आशु के लिए आप 35 मिनट रुक गए, क्यों? हाँ पापा जी, बताइए, आशु पर ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से, आपके हाथ की किताब की रोचकता की वजह से, कौन सा कारण था? दादाजी गंभीरता से बोले, ये वजह नहीं है। राजू और आशु ने समय क्यों मांगा था? राजू ने वीडियो गेम देखने के लिए, टीवी या सोने जागने के लिए मांगा था। होमवर्क करने के लिए आशु ने समय नहीं मांगा था। आशु ने समय होमवर्क करने के लिए मांगा था, वीडियो गेम, टीवी, सोना जागने के लिए नहीं। चिड़ियाघर समय पर जाने से ज्यादा जरूरी था समय पर होमवर्क करना। उसके लिए मैं आशु के लिए 30 मिनट भी कम ही लगा। तक मैंने एक किताब के कुछ पृष्ठ भी पढ़ लिए। समय का सदुपयोग हो गया। समय की पाबंदी से ज्यादा अच्छा होता है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। जी दादाजी, आपने सही कहा। सब अपने काम में अब लग गए और सोच लिया, अगली बार हम तो समय पर ही दादाजी के साथ निकलेंगे, कोई लेट नहीं चलेगा दादाजी के साथ। खैर, ये तो छोटी सी हो गई कहानी, और अब सवाल। सवाल है चटपटी सी। जी हाँ, चटपटी सी सवाल है। इनमें से किस खाद्य पदार्थ को दिल्ली में गोलगप्पे के नाम से जाना जाता है? ओ माय गॉड, इतना आसान सा और टेस्टी सा, लजीज सा, चटपटा सा सवाल। इनमें से किस खाद्य पदार्थ को दिल्ली में गोलगप्पे के नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, भुर्जी, बी पानी पूरी, सी वड़ा पाव। झटपट जवाब देना, 9414151415 पर जवाब देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन पर।

0: आंचल के तुझे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हुए पुनः आज का सवाल दोहराते हैं, इनमें से किस खाद्य पदार्थ को, जी हाँ दोस्तों, इनमें से किस खाद्य पदार्थ को दिल्ली में गोलगप्पे के नाम से जाना जाता है? ए भुर्जी, पी पानीपुरी, सी वड़ा पाव। झटपट जवाब दो 9414151415 पर दो। तो चलिए प्यारी सी कविता, समय का तुम रखो ध्यान तभी मिलेगा जग में मान, समय का तुम रखो ध्यान तभी मिलेगा जग में मान, गवा दोगे जो समय अगर नहीं मिलेगी कोई डगर, समय का पहिया चलता जाए सरपट सरपट दौड़ लगाए, चाहे कितनी जोर लगा लो कभी किसी से रुक ना पाए, सफल अगर तुम होना चाहो, सफल अगर तुम होना चाहो जो पल बीता लौट ना आए, समय से अपनी चाल मिलाए जो समय, सफल अगर तुम होना चाहो समय से अपनी चाल मिला लो, जो पल बीता लौट ना आए हर क्षण हमको यह समझाए। चलिए दोस्तों हमारे बीच एक श्रोतागण भी है, बात कर लेते हैं। नमस्कार, रेडियो मधुबन पर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो,
1: हेलो।
0: चलिए दोस्तों इनसे बात ना हो पाई हमारी किसी कारणवश, मैं पुनः कोशिश कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि इनसे बात हो जाएगी। नमस्कार, तो सवाल का जवाब आप मैसेज के माध्यम से भी दे सकते हैं, हमारा नंबर यही है 9414151415 पर दे सकते हैं। आप सुन रहे उड़ान, रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: कर्ड क्यों होता है, फोन बार बार कर्ड हो रहा है।
0: हाँ ठीक है, आप आगे बता दीजिए। हाँ जी,
1: शुक्रवार को भी हमने फोन किया, शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ था। नेल पॉलिश का यूनिफॉर्म में समावेश नहीं होता है।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ, हाँ।
1: आज भी दीदी अभी पांचवी बार फोन लगाया। हाँ, तो आपसे बातचीत हो रही है और देखो समय के बारे में बहुत ही अच्छी बात चल रही है, उसका महत्व रखना चाहिए। दादाजी की चोरी हुआ और आज का सवाल का जवाब पानी पूरी है और आपको रूहानी वगैरह सभी दोस्तों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति।
0: थैंक यू सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के सवाल का जवाब भी दिया और साथ ही साथ हमारे साथ आप जुड़े रहे। कई कोशिशें की आप हमें फोन लगाने की, लेकिन किसी ना किसी टेक्निकल कारण से आपसे बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन फाइनली अभी बात हो गई। हमें खुशी है कि आप रेडियो मधुबन के साथ सदा वफादारी के साथ जुड़े रहते हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो चलिए हम गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, खूबसूरत डमरू वाले बाबा तुमको।

डमरू वाले बाबा तुमको आना ही तो होगा, लेकिन साथ साथ इस खाद्य पदार्थ दिल्ली में जो गोलगप्पे के नाम से जाना जाता है उसके विषय पर यदि कोई जानकारी है तो उसे भी तो बताना होगा। भाई आप कॉल कर सकते हैं 9414151415 पर, क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। अमेजिंग जानकारी हम सभी को, आपकी मैनी आप मैं हम सभी को पनीर बहुत पसंद है, लेकिन आजकल पनीर जो है वो एनालॉग पनीर के बारे में भी एक नई बात पता चली है। तो होता क्या है एनालॉग पनीर जो होता है, पनीर की तरह दिखने वाला एक फूड प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ दूध का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि दूध के कुछ घटकों कंपोनेंट्स के साथ साथ वेजिटेबल फैट प्रोटीन और अन्य खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये सामान्य पनीर से अलग होता है। एनालॉग पनीर स्पेशली पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच और दूसरे फूड प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और दिखने में तो पनीर जैसे लगते हैं, लेकिन इसकी सामग्री बनाने का प्रोसेस भी कंप्लीट अलग। असली पनीर और एनालॉग पनीर में बहुत अंतर है। पनीर मुख्यतः दूध को फाड़कर और उसके ठोस हिस्से को अलग करके बनाया जाता है। वहीं एनालॉग पनीर में दूध के कुछ हिस्सों की जगह खास तौर पर वेजिटेबल फैट को मिलाया जाता है, इसलिए पैकेट में लिखा रहता है। पढ़ना जरूरी है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्योंकि हो सकता है जो आप खा रहे हों वो एक सही चीज नहीं है और आप सोच रहे हो आप दूध वाला प्रोटीन हाई प्रोटीन पनीर खा रहे हो। इसीलिए एनालॉग शब्द देखकर ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ये जहरीला या खतरनाक है। पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रोटीन सैचुरेटेड फैट और सोडियम की मात्रा देखकर चुनाव करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि कुछ और को और चीज़ को सोच कर। इसीलिए एनालॉग पनीर यदि है तब भी उसको ध्यान से पढ़िए और सही चीज़ें नोट करिए। तो चलिए इसके साथ साथ सवाल पुनः एक बार और, इनमें से किस खाद्य पदार्थ को दिल्ली में गोलगप्पा कहते हैं? भाई पानी तो होता है इसमें, भुर्जी में होता है या पानी पूरी में या फिर बड़ा पाव में? झटपट जवाब दे दो 9414151415 पर दो। चलिए गीत है शर्मा बंधु की मीठी आवाज में, जैसे सूरज की गर्मी से, सुनते हैं अब उड़ान में।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, ओम शांति। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं साजिया बोल रही हूँ।
0: साजिया, कैसी हैं वो आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताओ क्या बता।
1: जो आपने आज प्रश्न पूछा है कि दिल्ली में पानी, दिल्ली में दिल्ली में पकौड़ी को क्या बोलते हैं? तो पानी पूरी।
0: तो आप लोग पकौड़ी बुलाते हो उसको?
1: हाँ।
0: तो क्या पकौड़ी बुलाते हो? तो पकौड़ी तो हम पकौड़े जो खाते हैं वो तो सब्जी डाल के होते हैं और वो उसको तेल में तलते हैं। हम लोग बेसन में जो बनता है वो उसको पकौड़े कहते हैं।
1: हम पानी, आप पानी पूरी कहते हो, हम पकौड़ी कहते हैं।
0: पकौड़ी कहते हो? वेल, ये एक नई बात पता चली, पकौड़ी। और हमने कहीं सुना था पानी पताशा, ये भी कहते हैं, और कहीं पर उसको फुचका भी कहते हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए साजिदा। अच्छी रहो, स्वस्थ रहो और मुस्कुराते जरूर रहो। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेडियो मधुबन पर ठग को ठगा चतुर बीरबल ने, ये कहानी आपके लिए बुरान।
2: बादशाह सलामत को हम सबका सलाम।
3: कहिए, क्या फरियाद है आप सबकी?
4: बादशाह सलामत, नगर में एक मशहूर ठग आया है जिसने सबको ठग लिया है।
5: हाँ जहाँ पना, उसकी ठगी से कोई भी नहीं बचा। किसी को कांच का टुकड़ा कोहिनूर बताकर बेच दिया, तो किसी को मामूली चिराग कीमती बताकर बेच दिया, और किसी को तो आसमान बेच दिया।
3: सिपाही, ये किस बदसलूक इंसान को बिना कपड़ों के हमारे सामने लेकर आए हो?
6: बादशाह सलामत, मैं तो एक कीमती पोशाक पहनकर ही निकला था घर से, लेकिन नगर में सब मुझे पागल, बेशरम और ना जाने क्या क्या नाम से पुकारने लगे। फिर किसी ने बोला, हे पागल, तूने कपड़े क्यों नहीं पहने?
3: तो क्या चलते चलते तुम्हारे कपड़े हवा में गायब हो गए, ये कहना चाहते हो?
6: नहीं बादशाह सलामत, पोशाक तो पहले से ही गायब थी। मुझे तो वो पोशाक पहले भी नहीं दिखी थी जब उस मशहूर ठग से खरीदी थी, लेकिन खरीदते वक्त ठग की दुकान के आसपास खड़े लोगों को वो शाही पोशाक दिख रही थी, इसलिए मैंने उस मशहूर ठग से वो कीमती शाही पोशाक खरीद ली।
3: ये सब क्या बकवास बातें हैं? आप सब लोग घास खाते हो या अनाज, जो उस ठग की बातों में आ गए? जो चीज खुद को दिखाई नहीं दे रही है उस पर भरोसा क्यों करना?
7: मुस्ताखी माफ जहापना, मैं भी उस ठग की ठगी का शिकार हुआ हूँ।
3: क्या?
7: जी हाँ, कुछ दिन पहले शबे रात में पड़ने वाली एक बूंद चांद की चांदनी की पहली ओस का पानी उस ठग ने मुझे बेचा था। उस ठग ने कहा था कि जो कोई इस पानी को पिएगा वो 300 साल तक जवान रहेगा। उस पानी को पीने से कोई रोग या बीमारी पास नहीं आएगी। उसकी ये बात सुनते ही मैंने वो पानी खरीद लिया था, लेकिन उस पानी को पीने के अगले दिन ही मुझे दिल का दौरा पड़ा और कुछ नए सफेद बाल भी दाढ़ी में आ गए।
3: मूर्खों आप लोग, इतना कुछ वो ठग कर रहा है और आप लोग ने दरबार में कभी शिकायत नहीं की?
7: वो ठग पहले ही सबसे ईमानदारी के दस्तखत लेता है। ठग कहता है उसका जो नुस्खा है वो यकीन पर चलता है, इसलिए उससे खरीदी हुई चीजों का असर सिर्फ उस पर होगा जिसके ईमान में उसके लिए यकीन होगा। अपना हर नुस्खा वही किसी न किसी अनजान ईमानदार इंसान खुदा के बंदे पर इस्तेमाल करके दिखाता भी है। तब तक नुस्खा काम करता है, किसी पर उसका नुस्खा काम करेगा या नहीं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती।
3: सबके सब मूर्ख हैं।
7: गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन वो ठग यकीन का ऐसा जाल बनाता है कि एक बार को आपको भी उस पर यकीन हो जाएगा।
3: खामोश, हमारी बुद्धि तुम्हारी तरह बेअक्ल नहीं है, और अगर ऐसी बात है तो हम देखना चाहेंगे कि वो कैसे हमें ठगेगा।
8: माफ करिए आलमगीर, अगर आप बादशाह हिंद शहंशाह आलम बनकर उसके सामने जाएंगे तो यकीनन वो अपना हुनर दिखा नहीं पाएगा, उसे अपनी जान का खौफ होगा।
3: लगता है आप इस मसले को दिलचस्प बनाना चाहते हो बीरबल।
8: बिल्कुल आलमगीर, उस ठग को तो आप सजा कभी भी दे सकते हो, पर उससे पहले एक बार उसके हुनर को देखिए जिसने बड़े बड़े बुद्धिमानों को मंद बुद्धि बना दिया।
3: लेकिन हम उसके झांसे में नहीं आने वाले बीरबल।
8: तो फिर आपको अकेले ही ये बाजी खेलनी होगी जहाँ पना, तभी मजा आएगा, और वो भी अपनी पहचान को गुप्त रखकर।
3: ठीक है बीरबल,
8: हम भी देखते हैं वो ठग हमें कैसे ठगता है।
9: काफी नायाब चीजें हैं तुम्हारे पास व्यापारी।
5: आपने ठीक कहा मुसाफिर, मेरे पास वो नायाब चीजें हैं जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मैं लोगों को नायाब से नायाब चीजें लाकर देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लोग ठग और झूठा समझते हैं।
9: भला ऐसा क्यों?
5: क्योंकि उनके अंदर खोट होता है, और जिनके अंदर खोट होता है उनको मेरी नायाब चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता। यहाँ के लोगों में ईमान की कमी है। पहले मैं अरब में सामान बेचता था, वहाँ कभी किसी को कोई शिकायत नहीं आई किसी भी चीज को लेकर।
9: ठीक है, जरा बताओ कोई ऐसी चीज जिसका मूल्य तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो चीज भी अनमोल होनी चाहिए।
10: ये शमशीर सुलेमानी और ताजे जहां, ये दोनों अपने आप में एक बेमिसाल मिसाल हैं। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल वही करेगा जिसके अंदर कुछ खास हो, जिसका मकसद दुनिया पर राज करना हो, जो ताकत और उसूलों का तारकदार हो। और ये हर किसी से नहीं होगा। तुम्हारे अंदर भी मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, तो कुछ और चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि इस शमशेर सुलेमानी का इस्तेमाल तुमसे नहीं होगा।
8: अपनी हद में रहो व्यापारी, तू नहीं जानता हम कौन हैं।
5: इस सोच में पड़ गए मुसाफिर, कहीं बादशाह बनने का ख्वाब तो नहीं देख रहे हो तुम?
11: हमें इस शमशेर की खासियत बताओ। क्या लगता है तुम्हें कि ये मामूली सी दिखने वाली तलवार इतनी खास और अनमोल है?
5: ये कोई मामूली तलवार नहीं है मुसाफिर। हजारों साल पहले नीलोफर तारे का टुकड़ा जमीन पर गिरा था। वहीं कुछ फकीर बैठकर दुआ पढ़ रहे थे। उन सात फकीरों ने उस टुकड़े को उठाया और उस पर दुआ पढ़ी, और उसी टुकड़े से आवाम की हिफाजत के लिए ये शमशेर बनाई, और कहा ये शमशेर जिसके भी हाथ में होगी वो बुलंद होगा।
9: लेकिन तुम्हारी बातों पर हम कैसे यकीन कर लें?

0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है, आज से पहले मैंने कभी तलवार नहीं चलाई, और तो और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तलवार को कभी हाथ भी नहीं लगाया है। पर ना जाने कैसे आज मैंने उन लोगों को इस तलवार के सहारे भगा दिया। मेरी जान बचाने का शुक्रिया, मैं चलता हूँ।
1: देख लिया तलवार का करिश्मा मुसाफिर, अब बोलो।
2: अब जरा इस ताज की भी खूबी बता दो।
1: खूबी तो हर आम चीज में मिल जाती है मुसाफिर, ये ताज तो रहमत है ऊपर वाले की। हारून जैसा शहंशाह भी इस ताज को पाने के लिए दुनिया का कोना कोना छान चुका था, क्योंकि इस ताज का राज उससे सपने में आए एक फकीर ने बताया था कि ये ताज सातवें आसमान से गिरा एक करम है। जो कोई इसको पहनेगा वो दुनिया पर शासन करेगा। लेकिन मैं ये ताज और तलवार तुम्हें नहीं दे सकता मुसाफिर।
2: और ना देने की वजह क्या है व्यापारी?
1: क्योंकि ये तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के लिए नहीं है।
3: तो ये हमें उकसा रहा है, इसको एक मौका देना चाहिए खुश होने का।
2: तुम इस चीजों का दाम बोलो व्यापारी।
1: ठीक है, मूल्य तो मिल जाएगा, बस अपने एक हाथ की छाप इस लाल स्याही में डुबोकर इस कपड़े पर छाप दो। मैं इसी में लिख दूंगा कि तुम ईमानदारी से ताज और तलवार का इस्तेमाल करोगे, और अगर इन दोनों चीजों ने चमत्कार नहीं दिखाया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3: ये कोई मामूली ताज और मामूली तलवार नहीं है बीरबल, ये तलवार नीलोफर तारे के टुकड़े से बनी है। जहाँ पना, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार इस तलवार को यहाँ भी परख लिया जाए। जरूर बीरबल।
4: हुजूर, मेरे बाप दादा ने भी कभी तलवार नहीं पकड़ी।
3: डरो मत कुथु जी, ये करामाती तलवार है,

0: मेरी मुझे।
1: बहुत खूब, आप हंस रहे हैं जहाँपनाह। आपने तो कहा था ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है।
2: ये हमने नहीं, उस ठग ने कहा था बीरबल।
1: हम जानते हैं वो ताज भी मामूली है। हम उस ठग की बातों के जाल में बहुत हद तक फंस गए थे, लेकिन आप तो तलवार और ताज खरीद लाए आलमगीर, तो आप पर भी उसकी बातों का जादू चल गया।
2: नहीं बीरबल, हम उस ठग के अल्फाजों की जादूगरी से खुश होकर ये तलवार और ताज खरीद लाए, और अब आप उसको अपने अल्फाजों की जादूगरी से ठग कर साबित करो तो हम मानेंगे कि आपकी बुद्धि उससे तेज है, और उस ठग को भी उसके किए की सजा मिले।
1: जैसी आपकी मर्जी आलमगीर, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है दरबार में बैठे सभी लोगों से कि जो भी कुछ हो उसे बस देखना, खेल खत्म होने से पहले कोई भी अपना पक्ष मत रखना।
2: ये पूरा धन उस ठग से वसूल किया है आलमगीर।
1: हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है बीरबल कि वो चालाक ठग इतना धन आपको दे सकता है।
3: तुम्हारा सुल्तान तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम बैठे हो। खड़े हो जाओ, मैं हूँ अब इस सल्तनत का शहंशाह।
4: व्यापारी, दोबारा अगर तुमने अपने आप को सुल्तान कहा तो हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे।
3: ये मेरा ही दरबार है और यहाँ की प्रजा भी मेरी है। ये तख्त भी मेरा है जिस पर आप इस वक्त बैठे हैं। इस नगर के बीच मेरा पुतला बना है। ये सब मैंने आपके मंत्रियों से खरीद लिया है।
4: चलो दिखाओ कहाँ है तुम्हारा पुतला और किसने तुम्हें यहाँ का राजा घोषित किया।
3: चलिए मेरे साथ।
5: हाँ?
3: अरे कहाँ गया मेरा पुतला? कहाँ गया? कुछ देर पहले तक तो यही था।
1: तुम्हें क्या लगता है लोगों को ठगना सिर्फ तुम्हें आता है व्यापारी?
4: हम हैं इस सल्तनत के बादशाह और ये हमारी सल्तनत है। उस दिन हमने जानबूझकर वो तलवार और ताज तुमसे खरीदा था।
0: क्या अपने शहंशाह वो मुसाफिर आप थे?
1: जी हाँ व्यापारी, तुम्हारे साथ भी वही हुआ है जो तुमने अब तक कई लोगों के साथ किया है।
4: सिपाहियों, बंदी बना लो से।
1: हमें फक्र है आप पर बीरबल। अब बताइए कैसे आपने उस ठग को ठगा और वो कैसे आपकी बातों में आ गया? कैसे उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई दौलत आपके हवाले कर दी?
2: आलमगीर, वो हुआ यूं कि व्यापारी, मैंने तुम्हारे चर्चे बहुत सुने हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी चालाकी से लोगों को ठगते हो, पर अब तक अपनी ठगी की वजह से तुम कभी भी फंसे नहीं। तुम्हारा हुनर काबिले तारीफ है। अगर तुम्हारी बुद्धि और मेरी राजनीति मिल जाए तो तुम हिंद के सुल्तान बन सकते हो।
3: मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। चलो, कोई तो ऐसा है जिसे मेरा काम पसंद आया। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे हुनर से मैं एक सुल्तान बन सकता हूँ? तो ये भी बता दीजिए वो होगा कैसे।
1: बादशाह हिंद का राजकोष खाली हो गया है, अब प्रजा उनके साथ नहीं है। अगर तुम चाहो तो सभी दरबारी मिलकर तुम्हें सुल्तान बना सकते हैं। सभी मंत्री मेरे साथ हैं और वो सभी तुम्हारे हुनर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कल बादशाह हिंद कुछ दिन के लिए देश से बाहर जा रहे हैं, तो उनके आने से पहले पहले हम सब मंत्री और उप मंत्री मिलकर तुम्हें बादशाह बना देते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे उसकी कीमत देनी होगी।
3: अगर ये सब आपके ही हाथ में है तो आप क्यों नहीं बन जाते बादशाह हिंद?
1: क्योंकि तुम एक कुशल व्यापारी हो, इसलिए राजनीति नहीं जानते।
3: मतलब?
1: मतलब अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो बादशाह हिंद के जितने भी वफादार मित्र देश हैं, वो मुझे सूली चढ़ा देंगे और कई देशों में युद्ध हो जाएंगे। लेकिन कोई अनजान इंसान बादशाह बनेगा तो वाकई राजनीति और रणनीति नगर का उद्धार माना जाएगा, लालच और राजद्रोह नहीं।
3: तुम ठीक कहते हो।
1: उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने ही हुआ आलमगीर।
2: वाह बीरबल, हम खुश हैं कि आप उन मूर्खों की कतार में नहीं हो।
6: बीरबल ने ठग को ठगी लिया। खैर, पुनः आज का सवाल दोहरा देते मजेदार ये कहानी के बाद। सवाल एक बार और, इनमें से किस खाद्य पदार्थ को दिल्ली में गोलगप्पे के नाम से जाना जाता है? ए भुर्जी, हप्पी पानी पूरी सेम मसल वड़ा पाओ। झटपट जवाब दे दो 9414151415 पर दो। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: को क्या होता है?
1: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
5: बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज से बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप सुन रहे थे उड़ान रेडियो मधुबन पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम भुर्जी को कैंसिल करते हैं। और वड़ा पाव, भुर्जी तो एक्चुअली सभी जगह पर होती है और ये किसी भी चीज़ की भुर्जी बन सकती है, पनीर की भी भुर्जी बनती है। लेकिन जब गोलगप्पे की बात आती है तो पानी भी होता है, आलू भी होता है, छोले भी होते हैं और इसे पानी पताशा, पकौड़ी और फुचका अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये खाद्य पदार्थ गोलगप्पा एक्चुअली दिल्ली में पानी पूरी के नाम से हम जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। गांव और अंचल को जब जाते बा सुनते नाम कितना खुशी लगता है, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल, जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं गाँव और अंचल, परिवेश प्रकृति। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका पास रखने जा रहे एक कार्यक्रम, जो कि बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट को, भाव और भावना को आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि, सामुदायिक का जो विशेषता जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है, वो चीज आज रख पा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते हैं, कमर्शियल रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स योर रेडियो, आपका रेडियो आपका द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो मधुबन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार में पहुंचे और बच्चों का आवाज भी बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर विद्यालय का आवाज को रखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के सहयोग से, मिलित भावना से आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे सभी बारी बारी। तो हमें खुशी है, इस तरह बढ़ चढ़कर बच्चे जब भाग लेते हैं और इसका श्रेय तो माता पिता और संस्था का, संस्था प्रधान का साथ सभी स्टाफ को जाता है, बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह दिलाते। तो देर किस बात की, पहले एक प्रार्थना के रूप में हमारा छात्राएं उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं नाम का साथ। वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कहाँ से, क्योंकि रेडियो में जब उनका आवाज सुनेंगे तो पता चला है किसका आवाज है। आवाज से कोई कोई पहचानेंगे, जिसको कोई सुना नहीं आवाज को, वो कैसे पता चलेगा। इसलिए उनका नाम बताएंगे, कौन सा क्लास, भले विद्यार्थी जीवन में अपना सहपाठी उनका आवाज को जानते जान लेंगे, लेकिन जो दूसरे बाहर लोग सुनते हैं, ऑल इंडिया में कहीं पर भी सुनते हैं, तो उनका आवाज सुनने के साथ साथ नाम और स्कूल का नाम जरूर ले। तो सभी को स्वागत करते हैं, अपना नाम और क्लास का साथ एक प्रार्थना शुरू कराएंगे।
1: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
2: मेरा नाम आफरीन है, मैं कक्षा 11 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
3: मेरा नाम विश्ना है, मैं कक्षा 12 से हूँ और चनार से हूँ।
4: मेरा नाम दक्षा और मैं कक्षा 11 से हूँ और चनार से हूँ।
5: मेरा नाम अस्मीन है, मैं कक्षा 10 में हूँ

उसे चुन लाऊ तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हम प्रभु के चरणों में, थाली में फल फूल

0: लिए।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भाव और भावना का साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रभु तक पहुंचाते हैं और अपना जो दिल का उद्गार और मन का बात प्रार्थना का रूप में हर विद्यालय में होता है। तो आज इस विद्यालय में भी बच्चे एक गीत का पूरा एक प्रार्थना सभी जगह में सभी विद्यालय में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर गाते हैं। बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब भाग लेते हैं। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा गुड़िया है, क्या नाम बताया?
0: खुशबू।
1: खुशबू, देखो नाम कितना खुशी लग रहा है नाम सुनते ही। खुशबू, खुशबू आज तो फैला रहे हैं, फूल का खुशबू आता है कि नहीं? तो आज खुशबू खुद नाम का खुशबू फैला रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, क्योंकि एक मंच जिसका आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बच्चे तरसते हैं, लेकिन आज ये तो सरकार का धन्यवाद है क्योंकि सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी बच्चों को देते हैं, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर सिर्फ सीमित अंचल में क्यों सीमित रखे, अपना क्लास में, अपना विद्यालय में, अपना गांव में, पूरा जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच देते हैं, जिसका चलते उनका सुर लय और ताल का साथ अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं। और जो आवश्यकता था आज मिल रहा, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में मैम हमारा सजा रहे हैं और सर भी सजा रहे, तो उनको भी धन्यवाद देंगे और उनका भी दिल का बात सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: सुंदर प्रस्तुति सुनने के पश्चात ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं। और खासकर बच्चे सच्चे होते और उनका भावना आज जन जन तक पहुंचाए रेडियो मधुबन द्वारा, और इसका श्रेय तो सभी बच्चों को, उनका माता पिता को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते, चाहे जो भी संसाधन जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमारा संस्था का प्रभारी वो भी उपस्थित है। मैम कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, हमें बहुत खुशी लगा अनुशासन में बच्चों को रखते, पूरा साइलेंस में बच्चे बैठे। तो मैम अपना परिचय देंगे, मैम अपना परिचय देंगे और खासकर बच्चों का मेन जो लक्ष्य है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये देखा मैंने, तो आप अपना परिचय देंगे। मैम आपका स्वागत।
1: थैंक यू, आपने हमारे स्कूल में मौका दिया इस बात के लिए।
0: जी मैम,
1: मेरा नाम सुमनलता मीणा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनार की प्रिंसिपल ना होके व्याख्याता हूँ, सेकंड इंचार्ज। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आदिवासी लोग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनमें अनुशासन का असर बहुत ज्यादा है।
0: जी।
1: वो ज्यादा बोल नहीं पाते, बट अनुशासन उनमें पढ़ते भी हैं, पर विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी वो स्कूल से आते हैं। उनके घरों के जो हालात है आप देखते होंगे इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें खुशी है कि हम इनको अपने ज्ञान से इनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम को धन्यवाद देते हैं और सर को भी लेंगे, सर भी बच्चों का साथ आज कुछ उमंगों से और वार्म अप करा देंगे, बच्चे थोड़ा सा जो थोड़ा पीछे रह रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए भी खुशी मिलेगा। सर से एक निवेदन है, सर बच्चों को ऐसे कार्यक्रम का माध्यम से देखते हुए वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, आज वो अपना आवाज में गीत सुनाएंगे हमारा श्रोता मित्र को और हमारा जो सामने बैठे सभी बच्चों को, और इस माध्यम से जो भी सुन रहे तो वो भी सर को जानते होंगे और जब सुनेंगे सर का परिचय तो उनको भी खुशी लगेगा, क्योंकि रेडियो कार्यक्रम में मंच कभी कभी मिलता, आज मिल रहा है। तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर।
2: जी।

0: मैं पीतम सिंह, वरिष्ठ अध्यापक जीएसएस चनार, जो ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए, मधुबन से आए हुए हमारे पवित्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ जीएसएस चनार में इन आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के सामने इस प्रकार ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन बच्चों की जो खूबी है, इनमें प्रतिभा बहुत, प्रत्येक बच्चे में अपनी खूबी होती है। कहते हैं ना कि मछली जल की रानी होती है, वो कभी भी जंगल की रानी नहीं बन सकती। शेर जंगल का राजा होता है, वो कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसका अर्थ कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, सिर्फ उसको निखारना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको निखारने के लिए हमको भी इतनी दूर से लगाया गया है। हम चाहेंगे कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और अपना हुनर सबको दिखाएं। ये आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, हमें पता है इनकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये हैं, उन परिस्थितियों से, ऐसी बात नहीं है, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम रखते रहें, तो इन बच्चों की भी उत्साह बढ़ेगा और इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद, लेकिन हम जो करते हैं, आप जो करते हैं, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को, भावना को और दिल का उद्गार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सभी का मोटिवेशन बच्चों का प्रति रहता है, सभी का लक्ष्य बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अच्छा बने, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करने का पहले खुद का नाम रोशन करें, परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन, सबका आस बच्चों का ऊपर रहता है। इन बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से भाग लेते हैं एक दूसरे को देखकर, तो हमें खुशी होता है। और सरकार का जो मंच है, एक लोकल के जो सिंगर हो चाहे उनका बस जो भाषण का कला हो चाहे गीत का जो कला है, वो जन जन तक पहुंचाए, इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक खुला मंच है, सभी अपना बात को रख सकते हैं। और सर ने जैसे बताया, बहुत कठिन परिस्थिति, जब परिस्थिति आता है तो स्वस्थिति को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि परिस्थिति का काम तो आएगा ही, सबका पास परिस्थिति आता है, परिस्थिति किसी का पास नहीं है। परिस्थिति आएगा तो आपका परीक्षा होगा, कितना आप स्थित रहते हैं, स्वस्थिति में कितना स्थित रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमारे हाथ में। हम वो परिस्थिति को, जैसे रास्ता में कोई पहाड़ गिर गया था, हमें पहाड़ को तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहाड़ को साइड होकर हम निकलना है, नहीं तो समय हमारा बर्बाद होता है। तो इस तरह परिस्थिति देखे, रामचंद्र का टाइम में जैसे आपने गीत के माध्यम से बोला, भाई हमें इतना राम चाहिए, तो राम के पास भी परीक्षा आया था, है कि नहीं, उनका सीता को चोरी कर रावण ले गया था, वो भी कहानी आपको है, उनका भी कितना परिस्थिति आया, जंगल में रहना पड़ा। परिस्थिति तो सबके लिए आता है, लेकिन हमें अपना स्थिति से, जैसे रामचंद्र अपना स्थिति बना के रखा, भले ये तो आया लेकिन वो तो जाएगा, कभी रहेगा नहीं, वो फिर सीता आपस आया कि नहीं, तो इसलिए बुद्धिमान कहते, इसलिए देवता कहते, भगवान कहते, इसलिए हमारे पास भी परिस्थिति आएगा, आता है कि नहीं, परिस्थिति सभी के पास परिस्थिति आता है कि नहीं, परिस्थिति आएगा, कि परिस्थिति आएगा तो आपको मजबूत कराएगा, ये ठीक है कि नहीं, इसलिए परिस्थिति को आने दो और हम अपना स्थिति में उसको पार करेंगे। पढ़ाई कर रहे तो परीक्षा आएगा कि नहीं, परीक्षा को डरेंगे नहीं, डरते बच्चे डरते परीक्षा जब समय आता डरते हैं नहीं, डरते तब तो उत्तीर्ण होगा आगे क्लास को, परीक्षा नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे तो अगला क्लास को जाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो हम परीक्षा को निमंत्रण करना चाहिए, आइए हम रेडी है मुकाबला करने के लिए, ऐसे साहस होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, इसलिए परिस्थिति अपना काम करे और हम अपना स्वस्थिति से मुकाबला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनकर एक कार्यक्रम, मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार का सभी का आवाज, खासकर हमारा आज स्टाफ भी इस कार्यक्रम को बच्चों का साथ मिलकर एक आवाज का गुलदस्ता बन गया। सर का आवाज, प्रीतम सर को धन्यवाद देते हैं और मैम को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते तो हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्ची उपस्थित है और स्कूल के नाम रोशन करने के लिए भले बहुत सारा बच्चे है लेकिन एक बच्ची काफी होता है। जैसे रात को बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन एक चांद पूरा रोशन कर देती है कि नहीं। हजारे तारे रहते हैं लेकिन फिर भी एक चांद होते हैं। जैसे हर स्कूल में इतने बच्चे होते हैं लेकिन एक दो बच्चे पूरा चांद का जैसे काम करते हैं। तो आज चांदनी का रात में जैसे चांद अपना प्रभाव विस्तार करते आज इस स्कूल के होबनहार बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो नाम फिर से बताइए।
1: मेरा नाम आफरीन, मैं कक्षा 11 से चनार से।
0: सुनाओ गीत।
1: ओ देश मेरे तेरी शान।

तुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूल

0: परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ऐसे बच्चे को जब मंच मिलता है तब कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, उनको एक मौका का आवश्यकता था। उनका जो हुनर है, जो टैलेंट है, इस तरह जब कंपटीशन हो, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन हो, चाहे कोई भी प्रतिभा को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह सहयोग मिलता है जिसका चलते वो आगे बढ़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। इसका बारे में क्या कहना चाहिए, इसका गीत का बारे में थोड़ा दो शब्द बताएंगे।
2: आफरीन हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो क्लास 11th में है,
1: जी
2: जिसने जो ये देशभक्ति गीत सुनाया है, वास्तव में कहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति प्रेम है ना, क्या
1: जी
2: होता है वो अपनी या तो आवाज से पता चलता है, या ऐसा नहीं है कि देश पे डटा हुआ जवान ही देश की रक्षा करता है।
1: क्या बात
2: देश की रक्षा करने के लिए हम सभी देश की रक्षा करते हैं।
1: जी
2: अगर मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, आपका काम, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी अपना काम, इनका काम जो है, इनका काम क्या है विद्यार्थी का, विद्या का
1: अध्ययन
2: अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, इसका मतलब इनको पढ़ना है, इनको इनका जो काम है वो पूर्ण रूप से कर लें। जो मेरा काम है मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूं तो अपना देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर जाएगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे किसान है, किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, फसल पैदा करता है और वो फसल पूरे देश के लिए काम आती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो या कलेक्टर, जिसका जो कार्य है
1: जी
2: वो अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर ले, है ना, कहीं हमें ना तो देश बॉर्डर पे जाने की जरूरत है ना। ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर ही हम देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात, सैनिक स्पष्ट रूप में बताया भाई, हम सभी एक एक सैनिक है। देश बॉर्डर में तो सैनिक हमारा भाई रहते हैं, लेकिन हम जो तो अंदर रहते हैं उनको सपोर्टिंग करते हैं, उनको जो चाहिए हम देते हैं। जैसे किसान सब कुछ देते हैं, शिक्षक एक अच्छा सैनिक बनाकर देते हैं, और उस शिक्षक को सरकार भी इतना सहयोग देते हैं, चाहे संसाधन भी मिलता है जिसका चलते वो आराम से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और बच्चे भी आराम से बढ़कर पढ़ते हैं क्योंकि संसाधन चाहिए, क्योंकि इसका चलते हमारा देश नाम रोशन करेगा और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब ईमानदार से अटेंशन होकर हर कार्य को श्रेष्ठता रूप में देंगे, तो जरूर कामयाब होंगे। और हम सब कामयाब होंगे ही, जरूर हुए थे और होंगे, कोई नया चीज नहीं है, हम भूल चुके हैं, लेकिन हम थे, अभी है और आगे भी होंगे। हम ही देश को आगे बढ़ाया था और आज हम ही आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे देश को। पहले हम खुद बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा ईमानदार से, है ना सर। तो ईमानदार एक अच्छा वैल्यू है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। ऐसे सभी बच्चों के पास विशेष गुण है, सब विशेष है, कोई किसका पास अवगुण नहीं है। अवगुण रहते भी एक विशेषता है जिसका चलते परमात्मा भगवान प्रभु आपको सिलेक्शन किया है मनुष्य जीवन में। भले हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे पास इतना विशेषता है जो विशेषता कहीं ना कहीं काम में आता है। इसलिए कभी खुद को छोटा नहीं सोचना है, मैं बाहर बाहर में ऐसे सोचना है, मेरे जैसे कोई संसार में नहीं, इतना लोग है, कितना लोग, करोड़ लोग है। आपका जैसे शकल, आपका जैसे आवाज, आपका जैसे विचार जोड़ा बच्चा भी होगा तब नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, अंक नहीं सर।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए खुद को महान सोच के ईमानदार से काम करेंगे तो हम महान आत्मा बन सकते। महान आत्मा बन सकते कि नहीं, महान आत्मा क्या, देवात्मा भी बन सकते हैं। दिव्य गुण रहेगा तो देवता बनते हैं। हर्षित मुक्तता, नम्रता, नियमितता, कौन कौन बच्चे नियमितता, नियमित स्कूल को आते हैं, विद्यालय में नियमित जो भी स्कूल खोलता है नियमित कौन आता है, रेगुलर। हाथ उठा देखी सर, हमारा देख रहे, मैम भी देख रहे, रेगुलर। विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता। क्या बोला,
3: नियमितता,
1: नियमितता, रेगुलरिटी, पूरा कभी भी छुट्टी नहीं, ऐसे होना चाहिए। जब नियमित आएंगे तो हमारा जो अध्यापक आपको अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, है ना सर।
2: बिल्कुल,
1: तो नियमित आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए,
2: ये तो है ही है,
1: आते ही। हाँ
2: बिल्कुल, पहला ही है विद्यार्थी का, पहला लक्षण ही है कि हमको रेगुलर आना है। विद्या अर्जित करने के लिए तो हमें रेगुलर रहना ही पड़ेगा।
1: अनुशासन में रहना है, तो इसका बाद रेगुलरिटी, हर रोज हम जब भी स्कूल खोलता है आना चाहिए, इसके बाद सभी गुण आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगा, सब आ जाएगा।
2: फिर भी सर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना
1: जी सर,
2: बहुत दूर से आते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से आते हैं, और इनको टाइम दे रखा है हमने 7:15 बजे, 7:20 तक ये लगभग लगभग 95% और अब तो 100% उपस्थिति हो जाती है 7:20 पे, 7:25 पर।
1: ये तो अनुशासन है,
2: ये है सबसे पहला अनुशासन इनका, यही है
1: समय से पहले आना।
2: आज इनकी उपस्थिति 7:20 पर, 7:30 का टाइम है, लेकिन हमने इनको टाइम दे रखा है 7:15 बजे का, और 7:25 तक सभी बच्चे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं। देख लो
1: देखो
2: कितनी परिस्थितियों से गुजर के आते हैं, इन्हीं को पता है
1: जी,
2: आगे हमको पता है इनकी परिस्थिति,
1: हम भी पढ़ते तो हमको भी पता है, हम भी तो ऐसे परिस्थिति में पढ़ते हैं तब जाकर आगे बढ़े, परिस्थिति आएगा इतना, हम तो 7-8 किलोमीटर जाते सर,
2: बिल्कुल
1: पढ़ाई हमारा समय में इतना नजदीक स्कूल नहीं था, हर ग्राम पंचायत भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारा गांव में नहीं रहता था उड़ीसा में सर, 9th क्लास से बस 7th क्लास पढ़ने के लिए हमें 5 किलोमीटर, मैट्रिक 10th क्लास तक हम 5 किलोमीटर, फिर कॉलेज 12वीं क्लास करने के लिए हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल हो चाहे साइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल उस समय नहीं था। और आप तो भाग्यवान है सभी, हमसे भी आप नजदीक है, एक ग्राम पंचायत का अंडर में रहते हैं, तो तब भी अभी का समय में आपको मुश्किल लग रहा है समय को, उस समय हमको मुश्किल लग रहा था, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो आएगा ही, लेकिन उसमें हमें पास होना है, पास होना है कि नहीं, पास होना है और पास रहना है, किसका पास, ऊपर वाला का पास, परमात्मा का पास, बुद्धि रहेगा ना तुम्हारा चार्जिंग होगा बैटरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति, वो भी हमारा सर ही कर देंगे लास्ट में।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बढ़ाते अगला प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति होगी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का जो मिलित सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है और सब सुन पा रहे सभी का आवाज को अंतिम की और हम चल रहे हैं और हमारा सर इस कार्यक्रम को सजाएंगे वंस मोर लास्ट सर स्वागत।
2: धन्यवाद सर आपका। हमारे जो एक आप पढ़ते आ रहे हो सर सिक्स क्लास से ट्वेल्थ तक सभी में पढ़ते हो या कबीर कबीर पढ़ते हो ना, कबीर का अर्थ क्या है पता है? कबीर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, सिर्फ हमने उसको नाम दे दिया गया। कबीर क्या है? का से करुणा, बा से बीज और रा से रम रहा। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का बीज रम रहा है वो व्यक्ति कबीर है, वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। करुणा, करुणा से ही हमें हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, है ना, प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वो कैसा भी है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा है तो हम कबीर हैं। तो कबीर साहब का एक भजन है, उससे इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर कबीर।

0: हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी। हम पंछी परदेश मुसाफिर। बोलो सतगुरुदेव की जय।
1: तो कितना सुंदर और भाव का साथ, दिल का साथ गाए सर ने और सभी को मन मुग्ध कर दिए। और पंछी आई और कभी भी जा सकती है। तो हम सब मेहमान है संसार में, आत्मा पंछी कभी भी उड़ सकती है और आई तो जाएगी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और मैंने सोचा नहीं था सर इतना सुंदर रूप में गीत गाते हैं और भाव और भावना का साथ सभी बच्चों को आत्मा साथ करा दिए, मन मुग्ध करा दिए। और वाणी में जो मधुरता वो विशेषता आज देखने को मिला कि कबीर का जो वाणी, कबीर वाणी जो कहते हैं वो वाणी में मधुरता सही में और गीत में भी मधुरता। और हमारा बच्चे भी मीठे बच्चे है, हमारा सभी बच्चे मीठे है, किन्तु गीत मीठे सुने और मीठे गीत गाए तो मीठा वाणी में सभी मन मुग्ध होगी। तो मैम को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ को, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी ने सजाया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सर भी अपना आवाज को रोक नहीं पाए, वांच मोर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी। और
2: धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप विद्यालय में आए,
1: मौका मिला तो सर मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया जैसे, तो चौका छक्का लगा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाए, हाँ कि नहीं बच्चा अच्छे गए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे सर, नमस्ते।

0: सफ़र का मज़ा लीजिए, मंजिल की फ़िक्र छोड़िए, दिल के तार जोड़िए, ज़रा मुस्कुरा कर मुस्कुराने की वजह ढूंढिए। रास्ते भले ही अनजान हो, पर हर मोड़ पर एक नई कहानी है। ये ज़िंदगी भी तो बस एक हंसी सफ़र की रवानी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की कैन हो, मैं हूँ आपका दोस्त केवल, और आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। और हम आ पहुंचे हैं आपका अपना चहेता शो लेकर के, खुशी के नग में, दिल की बात है। जी हाँ दोस्तों, अबरोड की इस बेहद खुशनुमा शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आज का दिन आप सभी का बहुत ही शानदार बीता होगा। तो बस अपने दिन भर की थकान को उतार दीजिए, चाय का कप हाथ में थाम लीजिए, या फिर जो भी कर रहे हैं बस अपने आप को आराम से बिठा दीजिए, और अगले कुछ वक्त के लिए हो जाइए सुरीले संगीत के इस हसीन कारवां में और जुड़ जाइए हमारे साथ। दोस्तों, आज जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में अरावली की हसीन पहाड़ियों पर गिरती शाम की धूप को देखकर दिल में ख्याल आया। अभी कल ही तो पूरा देश दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहा था, और वैसे घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता, है ना दोस्तों? आपको भी पसंद होगा घूमना फिरना? मुझे तो बड़ा पसंद है। मेरे को तो कोई बोले कि कल कहीं घूमने जाना है तो मैं तो भाई बिल्कुल तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। तो किसी को ऊंचे पहाड़ खींचते हैं, तो किसी को दरिया का बहाना बहता पानी सुकून देता है, कोई अपनों के साथ लंबी रोड ट्रिप पर निकल जाता है, तो कई अकेले ही अपनी धुनों में किसी नई जगह को नापने निकल पड़ता है। लेकिन जानते हैं सफ़र की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो जगह नहीं, वो यादें होती है जो हमें अपने साथ समेट कर लाती है। कभी ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखते हुए वो ढलते सूरज, कभी किसी अनजान शहर में मिली वो गर्म चाय की टपरी, या फिर सफ़र के दौरान पुराने गाने का साथ। सफ़र चाहे देश विदेश का हो या फिर अपनी ही पुरानी यादों में लौटने का, हर सफ़र इंसान को अंदर से थोड़ा बदल देता है। चलिए इसी बात पे आज हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, शायद नेटवर्क नहीं है तो फिर से शायद कॉल आएगा। तो चलिए अच्छा है, मुझे ज़रा बताइए आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा सफ़र है जिसे आप आज भी याद करते हैं तो एक चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है, और ये चीज़ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको पता है क्या करना है, कॉल उठाना है, फ़ोन उठाना है, हमें कॉल लगाना है 9414151415 पे कॉल करना है, और हमारे साथ आपकी कुछ ऐसी खास यादें, ऐसी कोई खास ट्रिप है जो आप हमें शेयर कर सकते हैं। मैं भी आपके साथ अपनी एक शेयर ट्रिप करूंगा, लेकिन वक्त है आगे बढ़ने का, और हमारे आज के दिन की, आज के इस कारवा के, आज का इस हमारे जो सफ़र है उस सफ़र की पहले गाने को सुनने का मैं आशा करता हूँ। जो भी कॉल हमें कर रहे थे उसका कॉल अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना तो अभी गाना चालू हो जाएगा तो फिर हम उसका कॉल ऑफलाइन में लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं अपने पहले गाने से। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने जो प्यार सा गाना सुना, उससे पहले मैं आपको बता दूं, गाने के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपसे आपको ये बता दूं कि अभी अभी हमारे सुभाष भाई जी उन्होंने हमें कॉल किया था और बहुत ही दिल से उन्होंने सभी को अपनी याद प्यारे दी है, नाम के सहित हमारे जो भी हमारे सुरेश भाई, बुरीलाल जी, बुरा राम जी, मदन लाल जी, भूपत भाई, फिरोज भाई, एक एक को नाम से उन्होंने याद दिया है, नमस्कार किया है। और उन्होंने आज के इस खास दिन पे कुछ जन्मदिनों की बधाइयाँ की बात की है। जैसे हमारे लता मंगेशकर जी के जन्मदिन है तो उनको भी हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे, चलिए करते हैं सबसे पहले उनसे बात। हेलो
2: जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। सुरेश भाई बोलता हूँ, थाना से।
1: सुरेश भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
2: बस अच्छा है। आज हमारे कोई मित्र की आवाज नहीं सुनाई रही, क्या बात है? मेरे लाल जी नहीं आए, हमारे कोई और मित्र नहीं है, तो मैंने सोचा क्या बात है, फोन बंद है या क्या है?
1: नहीं नहीं, फोन तो चालू है। बुरीलाल जी एक्चुअली आज नहीं आए, हो सकता है शायद बुरीलाल जी कहीं बिजी है, बट सुभाष भाई का कॉल आ गया था, सुभाष भाई के साथ बातें चल रही थी।
2: अच्छा, चलो हमारे बुरीलाल जी आएंगे शायद थोड़ी देर के बाद,
1: शायद आएंगे कुछ देर में।
2: जी बिल्कुल, और हमारे सभी मित्रों को भी आज पहला दिन है, सोमवार है
1: जी,
2: हफ्ते की शुरुआत है, तो सभी मित्र आ जाएंगे धीरे धीरे
1: जी।
2: तो सबको हमारी तरफ से भी नमस्ते। हमारे बुरा राम जी है, गुरीलाल जी है, किशन भाई है, हमारे फिरोज भाई है, सुभाष भाई है, हमारे मदन लाल जी है, सभी हमारे से दोस्त सुन रहे हैं
1: जी,
2: सबको हमारा नमस्ते सर। और चलो एक गाना मैं दे दूँ, फिल्म का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दो लाइन सुना दूँ कि मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में जारों में। कोई गाना है सर?
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना है। वैसे तो ये गाना मुझे भी बड़ा पसंद है, मेरा प्यार भी तू भी संसार,
2: बहुत अच्छा मीठा गाना है
1: जी।
2: और चलो आज लता जी का मेरे हिसाब से जन्मदिन भी है
1: जी,
2: जी। तो सारे लता जी का भी गाना हम आपकी तरफ से सुनेंगे।
1: बिल्कुल, आज काफी गाने हमने कोशिश किए प्ले करने की, तो आपको जरूर से हम सुनाएंगे उसको।
2: नमस्ते,
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच सुरेश जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ दोस्तों, तो हम यही कह रहे थे कि हमारे सुभाष जी का हमें कॉल था ऑफलाइन, और अभी अभी हमारे सुरेश भाई ने भी हमें फ़ोन किया है और सभी को नमस्कार और याद दी है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे इस गाने को, यानी कि अभी जो हमने गाना सुना मेरे मित्रे, जो गाना अभी हम सुन रहे थे।

रिश्ते की उस खूबसूरत दुनिया में, रिश्तों की इस खूबसूरत दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी पहचान या परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जब बात हो रही है 1970 के दशक की क्लासिक सिनेमा की, तो संगीत अपने आप में एक ऐसी भाषा बन जाता है जो सीधे दिल में उतर जाती है। आज के हमारे इस खास सेगमेंट में हम याद कर रहे थे साल 1970 की फिल्म गीत के एक बेहद प्यार और सदाबहार नगमे की, कल्याण जी आनंद जी के बेहतरीन संगीत और मोहम्मद रफ़ी साहब की वो रूहानी आवाज़। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अलग ही समा बन जाता है। यह गाना सिर्फ एक धुन ही नहीं बल्कि अपने किसी बेहद खास को, अपने मीत को शिद्दत से याद करने का एक खूबसूरत अंदाज है। जी हाँ, गाने के बोल थे मेरे मीत, और जी हाँ ऐसे लोग तो ऐसा लगता है मानो ये पुराना दोस्त बरसों बाद सामने आ खड़ा हुआ और पुरानी यादें ताज़ा हो गई हो, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगले नगमे की ओर। अगला नगमा और भी बहुत ही प्यारा है, लता मंगेशकर जी की ही आवाज़ में हम कोशिश करते हैं उसको सुनने की। तो चलिए बढ़ते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों। जब संगीत में सिर्फ एक स्वर ही नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून और दुनिया के कल्याण की प्रार्थना जुड़ जाए तो वो संगीत अमर हो जाता है। जी हाँ, अभी हमने जो गाना सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में, ईश्वर तेरो नाम, या आज की खुशी के नगमे दिल की बातों में हम जिक्र कर रहे हैं साल 1961 में आई एक नव केतन फिल्म्स की, हम दोनों का। इस फिल्म का एक एक गाना अपने आप में मास्टरपीस है, लेकिन जयदेव जी के संगीत निर्देशन में और साहिल लुधियानवी साहब की कलम से निकला यह भजन सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक शांत संदेश है। लता मंगेशकर जी की मखमली और दिव्य आवाज में गाया यह गीत अल्लाह तेरो नाम जब भी बजता है तो ऐसा लगता है जैसे मन की सारी बेचैनी और भागदौड़ एक पल के लिए थम गई हो। साहिल साहब ने इस भजन में कितनी सादगी से कितनी बड़ी बातें कह दी थी। जी हाँ दोस्तों, मुझे याद है जब भी हम जब छोटे थे तो बचपन में सुबह सुबह ये गाना बजता था बाहर रेडियो पे या फिर किसी के घर, मतलब जो टेप रिकॉर्डर होता था उसमें, दुकानों में, सुबह सुबह दुकानों में जब दुकान खोलते थे तब तो ये गाना बजता था अल्लाह तेरो नाम। और ये पंक्तियाँ हमें सिखाती है कि ईश्वर और अल्लाह अलग नहीं है, और सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि वो हम सबको सही बुद्धि और आपस में मिलकर रहने की सलाह दें। जी हाँ दोस्तों, फिल्म से कुछ बातें हैं। फिल्म में सदाबहार संग जो हमारे अभिनेता थे देवानंद जी के डबल रोल के बारे में मैं बात करता हूँ। एक उन्होंने रोल किया था आनंद नाम था और कप्तान महेश आनंद, ऐसे दो नाम निभाए थे। दोनों ही किरदारों की वेशभूषा, हाव भाव और बोलने का अंदाज इतना अलग था कि दर्शकों को उस दौर में यह देखकर यकीन नहीं होता था कि दोनों रोल एक ही कलाकार ने निभाए है। उस वक्त इतनी जो टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, डबल रोल निभाना कोई आसान नहीं था। यह फिल्म में जयदेव जी ने जो धुन तैयार की है वो आज भी, यानी कि 65 साल बाद भी इतनी ही ताज़ा लगती है। चाहे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, और एक और इसमें गाना है अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हाँ, ये गाने हैं कुछ ऐसे गानों का एक मिसाल है। इस भजन में लता मंगेशकर की आवाज़ की जो पवित्रता है उसने इसे भारतीय संगीत इतिहास का सबसे महान भजनों में शामिल कर दिया। जी हाँ, मैंने कहा ना आपको दोस्तों कि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम इन गानों को टेप रिकॉर्डर्स में दुकानों में सुनते थे पूरा दिन। सुबह जब किसी की आरती होती थी तो ये गाना बजता था। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो फिल्म है हम दोनों, इतनी बेहतरीन फिल्म थी कि 1961 में ये रिलीज हुई, 1962 के बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसे सराहाया गया था, यानी कि इसका नॉमिनेशन हुआ था उस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। जी हाँ, तो ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने हम सुनेंगे आज के दिन में। लेकिन एक और हमारी जो फरमाइश आई थी हमारे सुरेश भाई की तरफ से, तो चले सुनते हैं उसे। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों, और अभी हमने बहुत ही प्यारा गाना सुना, मेरा प्यार भी तू है ये।

जी हाँ दोस्तों, जब दो रूहें आपस में जुड़ती है तो दुनिया का हर रास्ता आसान लगता है। सच्चा प्यार वो एहसास है जो हर रिश्ते की बुनियाद बनता है, जहाँ साथ ही सब कुछ बन जाता है, दोस्त भी, हम सफ़र भी और मंजिल भी। जी हाँ दोस्तों, आज की खुशी के नगमे दिल की बातों में हम जिक्र कर रहे हैं साल 1968 की विंस पिक्चर्स की क्लासिक और भाव फिल्म साथी का, राजेंद्र कुमार जी और वैजयंतीमाला जी पर फिल्म आया गाना। ये गाना भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत और समर्पित रोमांटिक नगमों में गिना जाता है। संगीतकार जोड़ी नौशाद साहब का बेहद ही दिलकश संगीत, मजरूल सुल्तानपुरी साहब के लिखे लव्स और मुकेश साहब के साथ मखमली आवाज़ की मल्लिका लता मंगेशकर जी की जुगलबंदी इस नगमे को अमर बना देती है। ऐसा लगता है मानो दो दिल एक दूसरे में पूरी तरह ढल चुके हो। यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि अपने जीवन साथी का यह एहसास कराना का एक जरिया है कि तुम हो तो सब कुछ है, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। चाहे खुशी की धूप हो या गम की छांव, जब ऐसे हम सफ़र साथ हो तो ज़िंदगी का हर सफ़र खूबसूरत बन जाता है ना दोस्तों। चलिए, हमारे साथ अभी कुछ ही समय पहले फिरोज़ भाई भी जुड़े थे और फिरोज़ भाई ने भी अपनी एक प्यारी सी फरमाइश हमें सुनाई है और बहुत ही प्यारा जी ये गाना इन्होंने फरमाइश के रूप में दिया है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको ये गाना सुनाएं। तो चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर और फिर करते हैं इसके बारे में बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर आ। भाई क्या पहुँचा दोगे हैं? भाई कहाँ पहुँचा दोगे? भाई मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। भाई सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना क्या? और समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: हेलो,
4: लाइव ऑन एयर है क्या? ऑफ एयर है भाई जी?
3: अभी बिल्कुल से आप लाइव है सुभाष भाई, इस वक्त आपको सभी लोग सुन रहे हैं।
4: तो सुरेश भाई जी का आवाज नहीं आ रहा है, सुरेश भाई जोड़ाना वाले, दानेरा वाले, पिनवाला वाले, कहाँ गए? आ जाओ भाई, आपका आवाज सुनने को हम तरस रहे। मदन भाई का भी आवाज नहीं आ रहा है, बुरी राम भाई जी, बुरी लाल भाई जी, आप आओ कुछ फरमाइश बातचीत करो। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, और केवल भाई जी तो अच्छे अच्छे बातचीत कर रहे हैं, शेर सुना रहे, गीत सुना रहे। तो सभी को नमस्कार, ओम शांति।
3: सुरेश भाई, सुभाष भाई, आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं। सुभाष भाई, सुरेश भाई का भी कॉल था, सुरेश भाई ने भी हमसे बातें की, हमने उनको कहा कि सुभाष भाई का भी कॉल था, शायद आपने वो सुन नहीं पाए क्योंकि आपका कॉल रखने के बाद ही तुरंत उनका कॉल था, तो हो सकता है शायद आप वो सुन नहीं पाए हैं। तो सुरेश भाई का कॉल आ गया है, मदन लाल जी का भी अभी जस्ट ऑफलाइन में ही कॉल था, मदन लाल जी से भी अभी अभी जस्ट बात हुई है। हाँ, आज बुरी लाल जी और बुरा राम जी नहीं आए हैं, बट फिरोज भाई आ गए, हमारे मदन लाल जी आ गए, सुभाष भाई आ गए और सुरेश भाई।
4: फिरोज भाई से तो बातचीत हो गई, मैंने उनको बता, और ठीक है ऑफलाइन में आ गए तो भी अच्छा है, पर ऑन एयर में आ गए तो बहुत बढ़िया। मुझे भी समझता नहीं भाई जी, मैं आपकी बातचीत चालू है तब फोन करता हूँ, लेकिन वो ऑफ एयर वो कैसे जाता है कुछ समझ में आता नहीं।
3: जब भाई जी गाना बज रहा है, जब कोई गाना चल रहा है, उस वक्त अगर गाने के बीच में अगर किसी का कॉल आता है तो फिर वो ऑफलाइन में हमें उठाना पड़ता है, मतलब हम उसको लोगों के साथ शेयर सुना नहीं पाते हैं। तो जब कोशिश होती है कि जब गाना खत्म हो जाए उसके बाद कोई कॉल आता है तो हम उनसे बात कर पाते हैं और उनको हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं बातों को।
4: बात बराबर बोली भाई, पर हमारे मोबाइल में कुछ फॉल्ट होगा या कुछ बात होगी, हम ऑन एयर से जुड़ नहीं जाते, लेकिन ऑफ एयर होता है कुछ समझ में आता नहीं। आपका सही है, आप सही करते, पर इधर गड़बड़ हो जाती है।
3: हो सकता है कई बार ऐसा हो कि जब आपके तक गाना खत्म हो रहा हो, आपके पास जब गाना खत्म होता है कुछ सेकंड के डिफरेंस में आता है, तो हो सकता है कि आप कोशिश करते हो हमें ऑनलाइन कॉल करने के लिए, बट तब तक वो ऑफलाइन हो जाता है।
4: वो टेक्नोलॉजी अभी क्या बोल सकते हो। तो सभी को नमस्कार, बहुत अच्छे गीत सुनकर हम खुशी में ये बातचीत कर रहे हैं, हम खुशी में सभी को नमस्कार, ओम शांति भाई के, ओम शांति।
3: थैंक यू सो मच सुभाष भाई आपका कॉल करने के लिए। यहाँ दोस्तों वेलकम बैक, और अभी हमने बहुत ही प्यारा गाना सुना है, और गाना सुनने से पहले जो हमारे फ़ोन आए थे, हमारे मदन लाल जी का भी कॉल था, उनसे भी हमारी काफ़ी बात हुई, फिर से सुभाष भाई का भी कॉल आया, और देखिए ये प्यार, देखिए सुभाष भाई का, उन्होंने शायद सुरेश भाई की आवाज़ नहीं सुन पाए, फिरोज भाई का ऑफलाइन था, मदन लाल जी का भी ऑफलाइन था, तो उनकी आवाज़ नहीं सुन पाए, तो कितनी शिद्दत से उन्होंने, कितने प्यार से रिक्वेस्ट किया कि भाई सभी लोग आ जाओ और हमारे साथ जुड़ो, उनकी आवाज़ सुनना उन्हें पसंद है। आप जब सभी हमें कॉल करते हैं, जब आप हमसे जुड़ते हैं और सुभाष भाई या जो भी हमें सुनते हैं, उन सबको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ तो मुझे भी पसंद है कि आप लोगों के आने से जो ये रौनक बनती है, तो यही तो हमारे खुशी की बात है। और खुशी की जब बात ही होती है तो दिल के नगमे हम ज़रूर से पेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हमने गाना सुना उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा गाना सुना, अजी रूठकर अब कहाँ जाओगे। दोस्तों प्यार से थोड़ी बहुत नाजुक तकरार, टूटना और मनाना ही तो वो मसाला है जो रिश्ते को और भी गहरा और खूबसूरत बना देता है। जब कोई अपना प्यार से रूठ जाए तो उसे प्यार से छेड़ने और अपने करीब लाने का मजा ही कुछ और होता है। आज की खुशी के नगमे दिल की बातों में हम चल रहे हैं 1965 की सुपरहिट फिल्म आरजू के सुहाने सफर पर, कश्मीर की हसीन वादियों में राजेंद्र कपूर, राजेंद्र कुमार जी और साधना जी पर फिल्माया गाया यह गाना हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे और सदाबहार रूठने मनाने वाले नगमों में से एक है। शंकर जयकिशन जी के मधुर संगीत, हसरत जयपुरी साहब के लिखे दिलकश लव्ज और लता मंगेशकर जी की रेशमी आवाज़ ने इसे नगमे को अमर बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज लता मंगेशकर जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी ने उन्हें बहुत सी नमन किया है, उनको याद किया है और बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे भी हमें सुना फरमाइश के रूप में दिए हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। और अभी हमारे मदन लाल जी भी थे, उन्होंने भी कहा कि काफ़ी गाने हमें सुनने की पसंद है। सुभाष भाई ने भी ए मेरे वतन के लोगों कहा और कई गाने हमें उन्होंने कहा कि हम लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुनना है। और ये गाने अमर है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ इतनी सुरीली थी और इतने उन्होंने अच्छे से गाना गाया है, या आप उनके बोल या उस वक्त की म्यूज़िक की हम बात करें, जैसा भी कहें, लेकिन ये गाने अमर हो गए। आप कभी भी उन्हें सुन लो, किसी भी वक्त उन्हें सुन लो, आपकी आंखों में से आंसू आ ही जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्यारा सा नगमा अभी हम सुनते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, जो हमारे मदन लाल जी ने हमें सजेस्ट किया है। तो चलिए सुनते हैं इसे, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों, और अभी अपने बहुत ही प्यारा गाना सुना, सत्यम शिवम सुंदरम मूवी से ही ये गाना। और हाँ, लता मंगेशकर जी की क्या कहें हम, सुनहरी आवाज़, स्वर कोकिला कहे, उनकी खास पेशकश कहे, जो भी जिस नाम से जिस चीज़ से हम इनको सम्मान दें वो कम है। इतने प्यारे प्यारे गाने, इतनी सुरीली आवाज़ उनकी। इस गाने को डायरेक्ट किया था, संगीतकार थे इसके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, संगीतकार थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी। और जी हाँ दोस्तों, ये भी एक ऐसा ही गाना है जो हम हर एक टेप रिकॉर्डर्स पे, रिकॉर्ड्स पे जब भी हमने सुना है इसको, ऐसे सुना है और जब भी सुना एकदम भावभक्ति से भजन के रूप में हमने इसको सुना है कि सत्यम शिवम सुंदरम। और इतने प्यारे प्यारे गाने जब हम सुनते हैं तो हमारा मन भी उतना ही शांत सा लगने लगता है, इतना ही शांत हमारा मन हो जाता है। और आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जब भी हम ऐसे कोई गाने सुनते हैं, जब आज हमने पहला वो गाना सुना, अभी ये हमने गाना सुना, ईश्वर सत्य है, अल्लाह तू ही ईश्वर, जो भी गाने हम सुनते हैं बहुत ही प्यारे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगले नगमे की ओर, और सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, जब भी 60 के दशक के किसी म्यूजिकल हिट फिल्म की बात होती है तो शम्मी कपूर साहब का नाम सबसे पहले जहन में आता है। उनकी एनर्जी, उनका अंदाज और गाने में उनका वो मस्त मौलापन आज भी हर पीढ़ी को झूमने पर मजबूर करते हैं। तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि शम्मी कपूर जी अगर किसी फिल्म में है तो उसका म्यूजिक जो भी बनाता है वो उसी तरह से बनाता है, उनकी एनर्जी को मैच करके ही बनाता है। मैंने कई बार देखा है उनकी सारी फिल्में, एक फिल्म नहीं बट काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका वो जो मस्त मौलापन डांसिंग का जो अंदाज है, जो वो जिस तरह से वो नाचते हैं उसी तरह की म्यूजिक भी उन पर वो बनते हैं। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था लेजेंडरी जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने और हसरत जयपुरी जी और शैलेंद्र साहब के लिखे बोल जब मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ पे ढले तो एक ऐसा गाना बना जिसने युद्ध को दीवाना बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये गाना उस दौर के रोमांस में छाए उस बेफिक्री और खुलेपन का प्रतीक है जहाँ दो दिल बिना किसी डर के दुनिया के सामने अपने प्यार का इकरार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं एक और ऐसे ही प्यार ऐसे अगले नगमे की और हम आपसे लेंगे इजाज़त। और आप इसी तरह से हमें हमारे शो को प्यार देते रहे, खुशियाँ बांटते रहिए, दिल के नगमे हम और आप सुनाते रहे और फिर से हम कल आपसे मिलने का करते हैं वादा। कल ठीक इसी वक्त 8 बजे फिर से हम हाजिर हो जाएंगे आपकी प्यारे प्यारे फरमाइशों को पूरा करने के लिए। आप सुनते रहे रेडियो, आज का अगला जो कार्यक्रम है वो है सहज स्वास्थ्य और हमें दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, कमा गई।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम को ले आने के पीछे एक बहुत ही मजबूत वजह यह है कि हम स्वास्थ्य को सिर्फ अस्पतालों में न ढूंढें, स्वास्थ्य को सिर्फ दवाइयों में न ढूंढें, स्वास्थ्य को सिर्फ चिकित्सकों या चिकित्सा कर्मियों के पास न ढूंढकर स्वास्थ्य की शुरुआत हमारे अपने घर से, हमारे अपने हाथों से और हमारे अपने ध्यान रखने के क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, यहां से शुरुआत करने के लिए की गई है ताकि स्वास्थ्य के प्रति हम स्वयं की जिम्मेदारी को समझें। जब भी स्वास्थ्य की बात कही जाती है तो प्रायः हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो यही है कि अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, इंजेक्शंस, किसी न किसी प्रकार के हम औषधियों के बारे में सोचते हैं। मगर क्या स्वास्थ्य औषधि और इन्हीं सारी चीजों का नाम है या कुछ और भी चीज है, ये सब समझने की कोशिश हम करते जा रहे हैं। आज स्वास्थ्य के विषय पर कुछ ऐसी ही ताजा जानकारियां हासिल करते हैं। हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य जगत के ही एक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं, जो भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, साथ ही स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात, जब स्वास्थ्य कहा जाता है तो प्रायः मन में जो ख्याल उठता है, जो चित्र बनता है, वो यही है कि स्वास्थ्य लाभ कहते हुए या स्वास्थ्य कहते हुए लोगों को या तो वैद्य या चिकित्सा कर्मी, अस्पताल या किसी प्रकार की दवाइयां, औषधियां, यही सारी चीजें याद आती हैं। क्या ये स्वास्थ्य कहते ही जो हमारे मानस पटल पे जो चित्र बन रहा है, क्या वो इमेज ये सही इमेज है या कोई और इमेज होना चाहिए?
1: श्री भैया, मैं इस इमेज को या इस पिक्चर को या इस चित्र को तोड़ना चाहूंगा। क्यों नहीं हमको स्वास्थ्य की बात सोचते ही एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन समझ में आता है? क्यों नहीं हमको स्वास्थ्य की बात सोचते ही खुला वातावरण दिखाई देने लगता है? क्यों नहीं हमको स्वास्थ्य की फोटो या इमेज हमारे मन में आती है तो हमको फल, तरकारी, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य हितकर भोजन समझ में आता है? हमको क्यों नहीं व्यायाम करते हुए लोग दिखते हैं? हमको क्यों नहीं सुबेरे उठ के घूमते टहलते लोग दिखते हैं? क्यों हमको स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ अस्पताल, डॉक्टर, बीमार व्यक्ति ही नजर में आता है? मैं सबसे बोलता हूं ना कि एक बड़ा पुरानी कहानी है कि एक बार एक बुद्धिस्ट मंक से किसी ने पूछा कि कैन यू हेल्प मी इन समथिंग। तो जो बुद्धिस्ट व्यक्ति थे तो उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने बोला, आई वॉन्ट पीस। तो उन्होंने बोला, आई मतलब मैं, अपने आप को तो अहम हटा दीजिए, आई वॉन्ट मतलब चाहत, उसको हटा दीजिए। तो कहा, जब आपने अहम और चाहत दोनों को हटा दिया तो पीस तो आपके अंदर है। ये सेम चीज स्वास्थ्य के साथ है। हम स्वास्थ्य को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हम अपने ऊपर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने साथ नहीं ढूंढ रहे हैं उसको। ये जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उसमें बहुत से लोग ब्रह्म कुमारी के आश्रम में या उनके किसी न किसी प्रोग्राम में आ चुके होंगे, लोकल लेवल पे या माउंट आबू में आ चुके होंगे। आप देखिए कि आपको क्या कराया जा रहा है। बड़ी पुरानी इंग्लिश कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपको अर्ली उठाया जा रहा है। आपका नाश्ता, लंच और डिनर तीनों सात्विक है। आपको अंकुरित मिलता है, आपको फल मिलता है, आपको बिना प्याज लहसुन का भोजन मिलता है, थोड़ा थोड़ा मीठा भी मिलता है, मगर आपको एक नॉर्मल सी जो रूटीन है, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन मिलता है आपको सवेरे जब 4 बजे मेडिटेशन के लिए उठाया जा रहा है। इसका मतलब 4 बजे का नहीं है, आप 3:15 उठ रहे हैं, आप फ्रेश हो रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं, नहा धो ले रहे हैं, पूरा दिन आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। और मैं सबको एक बात बोलता हूं कि आप अगर दिन में 12 बजे से जितने जल्दी उठेंगे, आइडियल टाइम लोगों ने 4 या 5 बोला, मैं 6 तक की बात बोल रहा हूं, अगर आप उठ जाएंगे तो आधा दिन आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा काम करने को, और वो आधा दिन आपको अपने शरीर पे इन्वेस्ट करना है। और अगर आपने ये कह दिया तो आपको स्वास्थ्य ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य आपके अपने अंदर है, आपकी अपनी दिनचर्या में है, आपके अपने भोजन में है। एक बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल।

0: चिकित्सालय से डिस्चार्ज होके गए तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इतना तरोताजा तो मैं बहुत दिनों बाद फील कर रहा हूं। तो बीमार पड़ना भी एक पॉजिटिव चीज है, जो शरीर के अंदर के सारे कीटाणु सारे विषाणु सारी गंदगी को जला के खत्म कर देती है और आप अपने शरीर को और ज्यादा साफ कर पाते हैं। तो मेरा सबसे सविनय निवेदन है कि जब भी स्वास्थ्य की बात हो तो योग वॉकिंग एक्सरसाइज जिम पिलाटीस जुम्बा डांस रनिंग स्किपिंग किसी भी चीज को सोचिए, स्पोर्ट्स को सोचिए, बैडमिंटन को टेबल टेनिस को लॉन टेनिस को क्रिकेट को फुटबॉल को, न कि कहीं बीमार पड़े हुए बेचारे के रूप में एक व्यक्ति जिसमें हाथ में और मुंह पे मास्क लगा हो, हाथ में कुछ उसके इंजेक्शन लग रहा हो, गोलियां उसके अगल बगल पड़ी हो, कि ऐसा काम ना मत करिए। अपने आप को स्वस्थ देखिए और स्वस्थ सोचिए।
1: आपने बहुत ही मजेदार बात कही कि हम अपने आप को स्वस्थ देखें। आज स्वस्थ देखने की कामना भी जब कही जाती है तो हमको लगता है कि हम जो चाहे वो खाएं तो हम स्वस्थ हैं, या हम जितनी देर सोना चाहें वो हमारा स्वास्थ्य है। हम ये सोचते हैं कि अरे भाई आज तो संडे, हम जितने बजे चाहे उठना चाहे उठ सकते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक्चुअल में कम्फर्ट है और ये एक प्रिविलेज के रूप में हम देखते हैं, मगर पता चल रहा है कि स्वास्थ्य के लिए जो दिनचर्या बनी हुई है वो दिनचर्या को फॉलो करना वो हमें हेल्दी बनाता है, वो चीज हमें स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। एक चीज जो प्राय स्वास्थ्य के साथ जोड़ी जाती है वो है बीमारी। लोग ये कहते हैं कि भाई बीमार पड़ गए, अरे उनको बीमारी हो गया, अरे वो अचानक वो बीमार हो गए ऐसे। और जब भी खासकर आम बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मौसम बदल गया उसकी वजह से सर्दी खांसी हो गई, ये बात कहते हैं। फिर लोग ये कहते हैं कि भाई उनको इन्फेक्शन हो गया, वो बाहर गए थे घूमने गए थे तो उनको कोई बीमारी उसने पकड़ लिया। और आज हम क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बीमारियों को समझने लगे हैं तो हम कहते हैं कि भाई इनको वायरल हो गया ये कह देते हैं, कभी कभार हम कह देते हैं कि इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में इन्फेक्शन हो गया। तो हम इन जीवाणुओं की बात करते हैं जो बीमारी ले आते हैं ऐसा हम समझते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: भैया अगर मैं कहूं कि अगर 1, 2, 3, 4 या 5, 6 जीवाणु न है या 1 लाख 2 लाख जीवाणु है, 1 करोड़ या 2 करोड़ जीवाणु है, हम गिनती नहीं कर सकते कि हमें जो जीवाणु है वो कितने हैं इस पूरे विश्व में। हर क्षेत्र में एक अलग तरह के जीवाणु हैं, हर वातावरण में एक अलग तरह के जीवाणु हैं। मतलब जैसे हमारा शहर अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, वैसे ही हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे त्वचा पे, हमारे वातावरण में, हमारे कमरे में करोड़ों अरबों जीवाणु घूम रहे हैं। और उन जीवाणुओं में से 80% हमको बीमार करने की क्षमता रखते हैं। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझा जाए कि एक राज्य है, उसका राजा बहुत मजबूत है, उसकी सेना बहुत मजबूत है, उस राज्य पे कोई भी आंख उठा के नहीं देख पा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक राज्य देखा जाए जहां की सेना कमजोर है, राजा कमजोर है, राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख रहा है, तो वहीं फूट हो जाएगी और उस राज्य पर बाहरियों का आक्रमण हो जाएगा और राज को अधीन कर लिया जाएगा। हम एक बड़ी सीधी बात ये समझें कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो जो कमजोर पड़ेगा उसको हरा दिया जाएगा। या हम लोग ये देखते हैं कि बराबरी में अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो ये देखा रहे यार इनकी लड़ाई छुटवाओ, क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, इसका कुछ कुछ नतीजा नहीं निकलना है। वहीं कोई कमजोर होता है तो कहते हैं अरे बैठाओ उसको खत्म करो, हाँ तुम हार स्वीकार करो अपने शांति से बैठ जाओ। वही चीज हमारे साथ है। हमारा शरीर ऐसे जीवाणुओं से रोज लड़ रहा है और हर समय लड़ रहा है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो हर समय हमारा शरीर

0: अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है बाहर से होने वाले हमलों से। जैसे किसी की हड्डी टूट गई और वो सड़क पे जा रहा था और उसके वाहन का किसी दूसरे वाहन से एक्सीडेंट हुआ, तो हमें दिखाई दिया कि सामने आ रहे वाहन ने हमें टक्कर मारी, तो हम गिर गए, उसी के उपरांत हमारी हड्डी टूट गई। पर जो छोटे जीवाणु हैं वो हमको दिखाई नहीं देते। और अभी तो हम सब जितने लोग इस रेडियो को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो कोविड-19 के उस महामारी से बच के बाहर आए। कोविड-19 भी एक बहुत छोटे वायरस जिसको हम नहीं देख सकते, इवन जब तक बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना हो वो उसको देखने की क्षमता रखते हैं। जो ये लोग बहुत समझ पा रहे हैं कि दूरबीन से उसे देख लेंगे या माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से और नॉर्मल जो बाजार में अस्पतालों में मिल रहे हैं उससे भी उसको नहीं देखा। इतना छोटा जीवाणु था मगर उसमें इतनी ताकत थी कि वो हम 5 फुट 10 इंच या नॉर्मल 5 फुट 5 इंच के जो हम भारतीयों की लंबाई है उस कद काठी को भी उसने इतना, उस छोटे जीवाणु ने बीमार कर दिया कि वैसे हम लोग उतने लंबे लोग बिस्तर पे लेते हैं। तो जीवाणुओं में बहुत ताकत है हमको बीमार करने की, मगर अगर हम मजबूत होंगे, हमारी जीवनी शक्ति मजबूत होगी, अंग्रेजी में कहें हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी, तो हम उस बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। पुराने जमाने में जब बात की जाती थी कि अरे इसको ये बीमारी हो गई मर गया, या अरे हैजा फैल गया, अरे कॉलरा फैल गया, अरे चूहों ने प्लेग फैला दिया, वो सारी देखिए चीजें एकदम अब सुनने में नहीं आ रही थी। तभी एकाएक एक दिन कोविड-19 का एक ऐसा बड़ा बीमारी है जिसने भारत नहीं पूरे विश्व को बंद कर दिया। हम लोग ने सुना नहीं था, कल्पना नहीं थी। अरे डॉक्टर छोड़िए, अधिकारी छोड़िए, नेता हुए, बुद्धिजीवी हुए, जिन्होंने 70-80 साल का जिनका जीवन, उन्होंने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा था कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज होगी। जो चीज जहां है वहीं रह जाएगी। बाप रे, ये तो किसी ने नहीं सोचा था भाई, और ये हो गया। हम सब लोग रोक दिए गए, हम सब लोग खड़ा कर दिया गया। और किसने खड़ा किया? एक ऐसा जीवाणु जिसको हम देख भी नहीं सकते। मतलब लोग कहा जाता है ना, महाभारत में कौरवों ने कहा नाम सुई की नोक के हिसाब की बड़ी जमीन, वो सुई की नोक से भी छोटा था भाई। और सोचिए उस सुई की नोक से भी छोटे जीवाणु ने हम सबको खड़ा कर दिया जहां हम थे, यथ स्थिति में खड़े। तो जीवाणुओं में बहुत ताकत है, पर वो ताकत एक स्वस्थ शरीर के सामने कुछ भी नहीं है। और अधिकतर वही लोग बचे जो स्वस्थ थे, जिनकी फिटनेस बेटर थी। कुछ लोग उसके अपवाद हो सकते हैं, पर अधिकतर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वही लोग इससे बचे।
1: ये बात समझ में आती है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर महामारियों की संख्या कम होती आई है, और विज्ञान की प्रगति के कारण हमने बहुत सारे वैक्सीन्स निकाल लिए, बहुत सारे ऐसे टीके लगवाए जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित हैं। और ये जो उदाहरण आपने कोविड का भी अभी दिया, उससे हमें पता चलता है कि कोई भी नई चीज प्रकृति में ऐसी आ सकती है और वो हम पर हावी हो सकती है अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा है, हम अंदर से अपनी इम्यूनिटी को, अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को हमने ठीक नहीं रखा है, तो फिर हम बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं और ऐसा कोई भी जीवाणु हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और हम इस आक्रमण को झेल नहीं पाएंगे, फिर हमारी हार हो जाएगी, यानी हम अपने स्वास्थ्य को खो देंगे, अपनी जीवन से भी व्यक्ति हाथ धो बैठता है। और कोविड में हमने ये चीजें देखी। अब ये चीज समझने की है कि क्या चीजें एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाती हैं, क्या चीजें उसके रोग प्रतिरोधक शक्ति को, उसकी जीवनी शक्ति को बेहतर बनाए रखती है ताकि वो ताकतवर बना रहे।
0: अगर बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छी एक्सरसाइज, मतलब अच्छा व्यायाम, अच्छा भोजन, और अच्छी नींद, ये तीन चीज अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। गोरखपुर में एक प्रेस है जिसका नाम है गीता प्रेस, और वो हमारे हिंदू साहित्य के लिए बहुत सारी किताबें छापता है, और महावीर प्रसाद पोद्दार जी ने उसकी स्थापना की। और गीता प्रेस, उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर श्रद्धेय विट्ठल दास मोदी जी की लिखी हुई किताब रोगों की सरल चिकित्सा, जो कि नेचुरोपैथी में सबसे ज्यादा बिकने वाली हिंदी में पत्रिका है, इसको इंग्लिश में नेचर क्योर फॉर कॉमन डिजीजेस के नाम से इसका ट्रांसलेशन भी हुआ, और ये विभिन्न भाषाओं में, इसका करीब 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। उन्होंने और मेरे बाबूजी ने एक बार परिचर्चा में कुछ पॉइंट्स लिखे कि मनुष्य बीमार पड़ता है और नित्य की मतलब, और जो चीजें उसको बीमार करती हैं वो, उसको कुछ पॉइंट्स में लिखा, तो मैं वो पढ़ना चाहूंगा हमारे श्रोताओं के लिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है उसमें है, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, हम नहीं जानते कि हमें कितना खाना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर भोजन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और अच्छा ये बात आज नहीं लिखी गई है, ये बात 1960 में लिखी गई थी, और 1960 में देखिए दो व्यक्तियों ने भोजन के बारे में बातचीत की, और आज हम अब 2025 में डाइट, फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं, और लोगों ने इसको बहुत पहले लिख, और एक सिंपल बात लिखी, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, हम गलत चीजें खाते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं। इसका मतलब फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हम कम खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं। हम किसी के घर गए, अरे आप क्या लेंगे, चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ नाश्ता करेंगे, वो खाना खाने का या लंच का या इवनिंग टी का टाइम नहीं, बट हम खा रहे हैं, बेमेल चीज खाते हैं, चबा कर नहीं खाते, दांतों से पूरा काम नहीं लेते हैं। हम लोग ने पहले भी भैया बात की कि अगर हम लोग चबा के खा ले तो हम लोग की आंतों का काम आधा हो जाएगा। जितना चाहिए उतना पानी नहीं पीते हैं, पूरा का पूरा भैया एक लेक्चर, मतलब कितने एपिसोड्स हमने आपने किए पानी को लेकर कि हमें पानी पीना चाहिए। आवश्यक श्रम नहीं करते हैं, अथवा जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से श्रम कर बैठते हैं। इसको एक सिंपल वे में कहा जाए कि हम जिम जाते नहीं, मगर कोई दोस्त अगर हमको लेके गया तो उस दिन हम खूब वजन उठा लेते हैं, आई अजब, या आज चलो दौड़ कराते हैं, आज कहीं देखा बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ले लिया, खूब खेला उस दिन, उस दिन खूब खेला कि पूरे शरीर में दर्द हो गया और अगले दिन कुछ नहीं खेला। तो एक मतलब कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, खुली हवा और धूप का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक से नहाते नहीं है, पूरी लंबी सांस नहीं लेते हैं, गंदी हवा और गंदे वातावरण में रहते हैं, व्यर्थ की चिंताओं और कामनाओं से मन को परेशान रखते हैं। वॉन्ट और नीड, जिस दिन हम वॉन्ट और नीड मतलब हमें क्या चाहिए और हमें क्या जरूरत है, इसमें अगर हम बैलेंस, या मुझे भाई अच्छे से याद है हमारे एक लेक्चर में, जब हम मैं बाउंड टाबू वाले उस फंक्शन में आया था, तो एक स्पीकर ने सबसे पहले ये बात बोला था, कंट्रोल योर वॉन्ट एंड आइडेंटिफाई योर नीड्स। इफ यू विल आइडेंटिफाई मींस, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं। फिर उन्होंने कहा था, मुझे एक महंगी गाड़ी चाहिए, ये बात फिर वॉन्ट पे आ जाती है, नीड से ऊपर उठ जाती है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों का उपयोग ठीक से न करना, कोई ना कोई नशा अथवा दूसरों की कोई बुरी आदत अपने पीछे लगाए रख। सोचिए भैया, इतनी बातों में उन्होंने पूरे हेल्थ को समेट के रख दिया, जिसमें नहाने से, ठीक से नींद से, अपने मन को कंट्रोल करने से, भोजन से, अब अगर हम ये सब ठीक कर लें तो हम शायद बीमार कभी ना पड़े।
1: ये बहुत ही सुंदर बिंदु हैं जो उन्होंने सागर को गागर में भर के, सिंधु को बिंदु में समाकर हमारे सामने रखे हैं। और मैं समझता हूं अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति अपने आप को उस सशक्त राजा की तरह बना सकता है जिसकी सेना शक्तिशाली हो, जो स्वयं शक्तिशाली हो, जिस पर कोई भी रोग आक्रमण नहीं करेगा। दोस्तों, आज की बातचीत में घड़ी इशारा करती है कि यहां रुकना होगा, मगर बहुत ही सुंदर आज की ये चर्चा रही है और मैं समझता हूं कि आज अपने स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो धारणा है, स्वास्थ्य कहते ही मन में जो चित्र उभर कर आता है, उसे बदलने की भी जरूरत हमें आज महसूस हुई है और आशा करता हूं कि आप सभी उस पर कार्य भी करेंगे। आज हमारे प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में इस बात को समझा है कि रोग कहां से उत्पन्न होते हैं। रोगों के लिए तो अनेक कीटाणु हैं, अनेक जीवाणु हैं जो हम पर आक्रमण करते ही हैं और शरीर उनसे लड़ता भी है। मगर अगर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी या हमारी जीवनी शक्ति अगर कमजोर हो जाए तो फिर ये रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। ये रोग ज्यादा दिनों तक हमसे लड़ते रहते हैं और इसके कारण हम बीमार पड़े रहते हैं। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अपने आप को शक्तिशाली, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, ये भी बात समझा। बिना भूख के खाना नहीं है, जितना खाना है उतना ही खाना है, बेसमय नहीं खाना है, बेमेल चीजें नहीं खानी है, अपने आबो हवा के बारे में ध्यान रखना, ये सारी चीजें स्पष्टता से आज समझ में आई हैं। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं लेकर आपका फेवरेट शो
2: सपनों की सैर।
3: तो बच्चों चलो बातें करते हैं फिर से परियों की।
1: अरे वाह परी, आप फिर से परी लोग की अच्छी अच्छी बातें सुनाने वाली हो।
3: हाँ मनी दीदी, बच्चों को बड़ा मजा आता है परी लोग की बातें सुन करके।
1: हाँ मुझे भी बड़ा मजा आता है। अच्छा तो अभी आप कौन सी परी के बारे में बताने वाले हो?
3: बच्चों आज नूर परी की बातें सुनाएंगे।
1: अच्छा
3: पता है बच्चों, एक सुंदर जादुई जंगल में नूर परी रानी रहती थी। एक रात आसमान से एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा टूटकर जंगल में गिर गया।
1: अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ?
3: बच्चों वो सितारा बहुत उदास था क्योंकि उसे अपने आसमान वाले घर का रास्ता नहीं मिल रहा था।
1: अच्छा तो वो सितारा अपना रास्ता भूल गया था।
3: हाँ मनी दीदी, फिर नूर परी ने पता है क्या किया? अपनी जादुई छड़ी से रास्ता दिखाने की उसे कोशिश की।
1: अच्छा तो जादू से तो उसे रास्ता मिल गया होगा।
3: नहीं बच्चों, वो जादू काम में ही नहीं आया।
1: अच्छा फिर क्या हुआ?
3: फिर नूर परी ने जंगल के सभी पक्षियों को तितलियों से मदद मांगी।
1: अच्छा फिर सबने मिलकर मदद की होगी है ना?
3: बच्चों हाँ, सबने मिलकर उस सितारे को पहाड़ी की चोटी तक पहुँचाया।
1: अरे वाह, और उसके बाद?
3: फिर वहाँ से सितारा फिर से आसमान में चमकने लगा।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई परी आपने। तो बच्चों इससे क्या सीख मिलती है कि मिलजुल कर जब मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है।
3: हाँ बच्चों, जैसे सभी ने उस सितारे को मदद की।
1: हाँ और उसे अपने घर का रास्ता दिखा दिया। अरे वाह, बहुत मजा आया परी ये बातें सुनकर। तो बच्चों ऐसे ही और भी बातें सुनेंगे हम यहाँ पे, बने रहिएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
3: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हाँ, मैं शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बच्चों चलो बैठो फिर से रेडियो के पास और वॉल्यूम लाउड कर लो। आज आपको एक कुत्ते की कहानी सुनाएंगे। एक बार दो गायें चारा खाने के लिए गौशाला गई तो वहां पहुंचने पर अपनी नांद पर उन्हें एक कुत्ता बैठा हुआ दिखाई दिया। गायों को देखकर कुत्ता तो जोर जोर से भौंकने लगा। उसे लगा भौंकने से गायें डरकर भाग जाएगी। उनमें से एक गाय ने कुत्ते को कहा, देखो भाई हमें भूख लगी है, हमें घास खा लेने दो, ये हमारा भोजन है। गाय की बातें सुनकर तो कुत्ता चिढ़ गया और वो जोर जोर से फिर भौंकने लगा। बिचारी गायें तो वापस लौट आई। और बच्चों सोचो क्या हुआ, बाद में एक गाय जाकर बैल को बुला लाई। बैल ने कुत्ते को कहा, अरे भाई तू तो घास खाता नहीं, ये गायों का चारा है, तू यहाँ से चला जा। बच्चों बैल की बात से तो कुत्ते को कोई असर नहीं हुआ, वो तो जमकर वहीं डटा रहा। ये देखकर बैल को बच्चों गुस्सा आ गया। सोचो उसने क्या किया, जोर जोर से डकारने लगा और अपनी सींग ताक कर वो कुत्ते पर वार करने के लिए तैयार हो गया। बच्चों ये देखकर कुत्ता तो डर गया। कुत्ते ने देखा बैल तो बहुत गुस्से में है, इसलिए वो तुरंत दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। देखा बच्चों कहानी हमें क्या सिखाती है, दूसरे की चीज पर अधिकार जताना अच्छा नहीं है, है ना बच्चों। हमें हमारे पास जो चीजें हैं उसी को यूज करना चाहिए, दूसरों की चीज बिना पूछे लेना भी नहीं, ठीक है ना। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। हम पढ़ रहे हैं तेनाली रामा की अनोखी दुनिया और उसमें भी एक कहानी जिसका शीर्षक है सप्तद्वीप नौखंड, जिसमें पहले हमने पढ़ा कि महाराज विचित्र भानु जो कि सप्तद्वीप नौखंड राज्य के राजा हैं, अपने पड़ोसी राज्य विजयनगर की समृद्धता को देखकर उनके मन में जलन की भावना आ गई है, ईर्ष्या की भावना आ गई है। और अचानक महाराज कृष्णदेव राय को ये संदेश मिलता है कि उनके गाँव में गायों की महामारी फैल गई है जिसमें बहुत सारी गायें मर रही हैं। अब इसके आगे क्या होता है बच्चों, मैं आपको बिना देर ये पढ़कर सुनाती हूँ। महाराज को उस दरबारी के पश्चात एक अन्य दरबारी ने कहा, महाराज इस तरह की चर्चा मेरे गाँव में भी हो रही है। फिर अन्य सभासदों से भी पूछा तो कईयों ने भी कहा, और फिर महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं भी दिखाई देती हैं, और जिसे तेनाली राम सक्रिय हो जाता है। और फिर तेनाली राम ने सभी से एक सवाल किया, बंधुओं क्या आप में से किसी ने महामारी से कहीं गायों को मरते देखा है? तो दरबार में सन्नाटा छा गया और किसी ने तेनाली राम के इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। तेनाली राम की मुख मुद्रा गंभीर हो गई और उस दिन दरबार के समापन तक महाराज और तेनाली राम दोनों गंभीर बने रहे। महाराज चिंतित थे कि उनके राज्य के मवेशियों पर किसी अनजाने संक्रामक रोग का खतरा मंडरा रहा है और तेनाली राम इस घटना में किसी षड्यंत्र की संभावना पर विचार कर रहा था। और दरबार के समापन के बाद जब तेनाली राम महाराज से बात करने लगा तो महाराज ने पूछा, तेनाली राम क्या तुमने कभी ऐसे रोग के बारे में सुना है जिसका प्रकोप केवल स्वस्थ और हृष्टपुष्ट गायों पर ही होता हो? इतनी अवस्था हो जाने के बाद मैंने पहले ऐसी महामारी के बारे में नहीं सुना, तुमने सुना हो तो बताओ, यह एक गंभीर समस्या है और इस समस्या को सुलझाना मेरा कर्तव्य है, राजधर्म है। तो महाराज की बातें सुनकर तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, इससे पहले मैंने भी नहीं सुना है। आज चिंता नहीं करें, शीघ्र ही सच्चाई सामने आ जाएगी और उसका निदान हमारे राज वैद्य निकाल ही लेंगे। तो महाराज ने भी कहा कि कब तक हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। और फिर तेनालीराम ने महाराज को भरोसा दिलाया कि महाराज मैं सक्रिय हो चुका हूँ, तभी तो मैंने निवेदन किया है। तो बच्चों अब तेनालीरामा पता लगाएगा क्या सच में ऐसी महामारी है या फिर कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो ये पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। तब तक बने रहिएगा, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मुन्नी दीदी और परी आ गए हैं कार्यक्रम की अंतिम कड़ी को लेकर के। और याद है ना, परी ने पिछली कड़ी में पूछा था, लाल रंग का रूप निराला, आकाश में दिखता मत वाला, धरती का पड़ोसी कहलाऊं, बताओ मैं कौन कहलाऊं?
3: हाँ बच्चों, तो धरती का पड़ोसी ग्रह कौन सा है? मंगल। वैसे तो और भी है मगर मंगल ग्रह है क्योंकि लाल रंग का दिखाई देता है दूर से, है ना? तो बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, सही सही जवाब दिया आप सभी ने।
2: हाँ बच्चों, तो चलो नोट कर लो फिर आज की पहेली। चार दिशाओं का ज्ञान कराऊं, बिना बोले राह दिखाऊं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बताऊं, बताओ मैं कौन कहलाऊं?
3: बच्चों इसके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है, और दिशा बताने वाला कौन सा यंत्र होता है? चलो चलो जल्दी से हमें 94 14 15 14 15 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
2: हाँ बच्चों, मनी दीदी ने तो बहुत अच्छी हिंट इसकी बता दी, और अब क्या करना है याद है ना?
3: भगवान जी को सॉरी करना है सारे दिन में हुई गलतियों के लिए,
2: और साथ में थैंक यू करना नहीं भूलना। तो हम भी करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुनते रहो,
3: मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन
3: 107.8 FM पर,
2: सपनों की।

सुनने जा रहे हो ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के कार्यक्रम की जानकारी आप सभी को देना चाहूंगी। आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार चलेंगे। सबसे पहले तो आपको एक सुंदर सा विचार सुनाएंगे, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे सविता जी के साथ, और नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही। लेकिन आज मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, मैं एक मेहमान से मिलूंगी, वो आपको सिखाएंगे कि आज की रेसिपी क्या है, और सामान्य जानकारी तो जरूर देंगे। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

बात करते हैं आज के दिन की, और आज का विचार इस प्रकार है, आत्मा है शरीर रूपी साइन बोर्ड में गुप्त ट्यूब। आत्मा है शरीर रूपी साइन बोर्ड में गुप्त ट्यूब। आइए आज के विचार का विस्तार करते हैं। शरीर और इसके अंगों का तेज और आकर्षण आत्मा की उपस्थिति के कारण है। आत्मा गुप्त रहकर भी एक बल्ब या ट्यूब की तरह अंगों को प्रकाशित करती है। हम रात के अंधेरे में दुकान पर जगमगाते साइन बोर्ड देखते हैं। उनकी सुंदरता हमारा ध्यान खींचती है और उन पर लिखे अक्षरों को हम पढ़ पाते हैं। इसका कारण यह होता है कि साइन बोर्ड के पीछे ट्यूब जल रही होती है, उसी की रोशनी बोर्ड के डिजाइन और अक्षरों को आकर्षक बनाए होती है। इसी तरह आत्मा भी शरीर रूपी साइन बोर्ड में गुप्त रूप से रोशन ट्यूब या बल्ब, जिसको हम अदृश्य और सूक्ष्म भी कह सकते हैं, तो है जो इसके हर अंग को, हर इंद्रिय को आकर्षण बनाए हुए है। तो ये तो हुआ आज का विचार। चलिए सुन लीजिए अब प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको घरेलू नुस्खे देते हैं. अगर टीबी की समस्या हो जाए तो क्या करेंगे, आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़े से परिचय दे रही हूँ कि टीबी के लक्षण थोड़े बता रही हूँ कि फेफड़ों की टीबी में खांसी, बलगम आना. टीबी भी देखिए कितनी तरह की होती है. सबसे अधिक टीबी का असर फेफड़ों पर होता है. फिर अन्य प्रभावित होने वाले अंगों में हड्डियां, आंतें, टॉन्सिल्स, चमड़ी, गुर्दे व प्रजनन अंग सम्मिलित है. चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो, सामान्य लक्षण एक से होते हैं. हरारत, हल्का सायंकालीन बुखार, भूख कम लगना, वजन गिरना टीबी के ये सामान्य लक्षण है. तो चलिए इस कंडीशन में मैं आपको नुस्खे दे रही हूँ. एक गिलास दूध में 5 पीपल डाल करके उबालिए, ठीक है, और फिर उसको ठंडा होने पर शक्कर डाल करके रोज सुबह शाम पीजिए. इससे खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी, आरंभिक टीबी के लक्षण, इन सभी में लाभ होगा. बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान से सुनेंगे. एक गिलास दूध में 5 पीपल डाल करके उबालना है, ठीक है, फिर ठंडा होने पर शक्कर डाल देनी है, मिक्स करके सुबह शाम इस तरह पीना है. इससे खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी और जो शुरुआत में टीबी के लक्षण होते हैं ना, तो इन सभी में लाभ होगा. टीबी होने वाली होती है तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो इन सभी में लाभ होगा, इसलिए आप इस नुस्खे को आजमाइएगा. अगला नुस्खा भी ध्यान से सुनेंगे. यक्ष्मा रोग में मक्खन मिश्री में घी मिलाकर खाइए, इससे क्षय रोग का नाश होकर के बल मिलता है. यक्ष्मा रोग में मक्खन मिश्री में घी मिलाकर के खाइए, इससे क्षय रोग का नाश होकर हिम्मत मिलेगी. लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे. यक्ष्मा में जिन्हें लगातार ज्वर रहता है, उन्हें 11 पत्ती तुलसी, नमक, जीरा, हींग, एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस 25 ग्राम मिलाकर 3 बार कुछ दिन पीना चाहिए. यक्ष्मा में जिन्हें लगातार बुखार रहता हो, उन्हें 11 पत्ती तुलसी, ठीक है, फिर नमक, जीरा, हींग थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, और ये सभी एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस 25 ग्राम मिलाकर 3 बार कुछ दिन तक पीना चाहिए. सुबह, दोपहर और शाम को इस तरह पूरे दिन में 3 बार पीना चाहिए, इससे काफी लाभ मिलेगा. तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, ये तो हुए घरेलू नुस्खे. अब सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। हमारी सखी सविता जी आज भी आप सभी के सामने हैं। सविता जी, आपका स्वागत है आशियाना में।
2: नमस्कार रेडियो मधुबन के श्रोताओं को, और रेडियो मधुबन को भी बहुत सारा प्यार।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता बंधु भी आपको याद करते रहते हैं और आपकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं। तो सविता जी, आपने जैसे कि देने लेने की बात कही है, उसी से मुझे याद आया कि कहीं कहीं मतलब इतना अहंकार होता है लोगों में कि एक दूसरे को नीचे गिराने की भावनाएं ज्यादा रहती है। जैसे फ्रेंड्स को ही समझ लीजिए, जब पढ़ाई करते हैं तो अच्छी फ्रेंडशिप होती है, फिर जैसे कि बहुत समय के लिए शादी हो जाती है या फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं ना, तो सब जैसे अपने फ्रेंड को देख करके उसको लगता है कि अरे ये क्या थी, क्या हो गई, और उससे अगर उसका स्टेटस हाई फाई हो गया तो फिर वो अहंकार झाड़ेगी कि अपनी फ्रेंड्स के साथ एक तो बहुत समय के बाद मिले और देख लिया कि हाँ मेरी फ्रेंड की कंडीशन, क्योंकि इंसान के कपड़ों से तरीकों से पता चल जाता है कि इसका स्टेटस कहाँ तक है, तो फिर इस तरह का अहंकार झाड़ने लगते हैं। इससे फ्रेंडशिप में दरार भी पड़ती है और वो फ्रेंडशिप टिक नहीं पाती है, क्या कहेंगे
2: जी? बहुत अच्छी बात की। वैसे दोस्ती की बात चली तो दोस्ती में स्वार्थ, अहंकार या दिखावा या नीचा किसी को गिराना, ये भावना होनी नहीं चाहिए। और ये सत्य कि जब हम छोटे होते स्कूल में पढ़ते हैं साथ में, तो हम वहाँ ये नहीं सोचते कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका क्या स्टेटस है, लेकिन बहुत प्यार से बच्चे सभी खेलते हैं। लेकिन ये बात भी मैंने देखा है कि जब बड़े हो जाते हैं हम लोग,
1: हाँ जी,
2: तो सच में जब शादी होने के बाद जो चेंज आता है लाइफ में, आना तो चाहिए अच्छा ही चेंज, लेकिन जो चेंज आता है लाइफ में तो उसके दरमियान ऐसा होता है कि कोई ऊपर चला जाता है, कोई थोड़ा नीचे हो जाता है। दुनिया के दिखावे में जो आज माना गया कि धन से ऊंचा और नीचा माना गया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मानव का जो गुण है वो उसका असली स्टेटस है, और वो ही उसकी ऊंचाई और नीचाई को प्रदर्शित करता है। लेकिन आज जो समाज में जो हम देख रहे हैं, जैसे एक चेंज आ गया है कि हाँ वास्तव में जिसके पास धन है, शोहरत है, अच्छी पोस्ट है, उसका वैल्यू बढ़ गया है। तो वहीं पर अगर कोई सहेली है और उसके हस्बैंड, मान लीजिए किसी के हस्बैंड थोड़ा नीची पोस्ट पे है, किसी की ऊंची पोस्ट पे, तो आ जाता है। जब दो सहेलियां मिलती हैं तो पहले तो थोड़ा लगता है इतने साल हम बाद मिले हैं, तो बहुत खुशी भी होती है, लेकिन उसी में वो खुशी थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, क्योंकि फिर वही बात आ गई, कपड़े लत्ते से पता ही चल जाता है
1: वो। और फिर एक दूसरे के घर पर आना जाना होता है, उसके बाद
2: शुरुआत हो जाती है। हाँ, किसी के पास गहने ज्यादा है तो किसी के पास कम है, किसी की साड़ियों का अहंकार, तो ये जो है ना ये होना नहीं चाहिए। दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए जैसे भी कृष्ण सुदामा की दोस्ती कितनी अच्छी, कहाँ द्वारकाधीश
1: जी
2: और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। तो हमारे जो दोस्ती है, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो या कहीं भी हो, जो प्रेम है वो उसके बीच में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। धन, वस्तु, वैभव, ये आना ही नहीं चाहिए। जैसा हमारा पहले प्यार था बचपन में आपस में सहेलियों में, वैसे ही बना रहना चाहिए। और ये सिर्फ क्षण भर की बात है, उसके बाद तो फिर एकदम बेकार ही हो जाएगा। तो हम इस चीज का क्या अहंकार दिखाएं, आज है कल चला भी जा सकता है। और धन तो ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रातों रात अमीर से गरीब और गरीब से अमीर हो जाएंगे,
1: वो तो राई का रंग को रंग का राई बनने में समय नहीं लगता है। लेकिन जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और वो सामने वाले को जैसे तुच्छ नजर से देखता है। जैसे आपने सहेलियों की बात कही है, तो बस मैंने भी देखा है कि जब एक ज्यादा पैसे वाली है तो वो हर चीज में अपने खुद का बड़ा चढ़ा करके बताएगी, अरे तुम्हारी ये चीज है, मुझे तो लोकल चीज पसंद ही नहीं, मैं तो ब्रांडेड यूज करती हूँ।
2: भाई अपने अपना सिस्टम है, पसंद भी है, और सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। मान लीजिए बहुत हमारी इच्छा है कि हम ब्रांडेड चीज पहने, लेकिन हमारी क्षमता ही नहीं है पहनने की, तो क्या कर सकते हैं। हजार व्यक्ति वही होता है जो अपनी जैसी परिस्थिति रहे उस अनुसार ढल जाए, वो व्यक्ति अच्छा भी होता है, समझदार भी होता है, और उसी को कहते हैं जीतने वाला। अब अगर हमारी परिस्थिति उस लायक नहीं है और हम बहुत ज्यादा सोचे तो ये भी बेवकूफी है। जितनी चादर उतना ही पांव पसारिए कहा गया है।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि दूसरों का महल देख करके अपनी झोपड़ी नहीं तोड़नी चाहिए।
2: अपने चादर को देखकर ही हमें पांव फैलाना चाहिए। अगर हम उससे ज्यादा फैलाएंगे या तो चादर फट जाएगी या फिर हमारा पांव खुल जाएगा।
1: बिल्कुल सविता जी, मुझे इससे एक बात याद आ रही है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जैसे दो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा संबंध उनमें, दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और शुरू से जैसे एक लंगोटिया यार हम कह सकते हैं, इस तरह दोनों के अंदर अच्छी फ्रेंडशिप थी और इसी तरह शादी के बाद एक की स्थिति डाउन और एक की अच्छी। तो जैसे एक दूसरे के यहाँ आना जाना हुआ क्योंकि दोनों के हस्बैंड सर्विस वाले थे और एक ही शहर में सर्विस हो गई तो फोन कॉल से कभी कभी वो बात कर लिया करते थे, तो पता चला कि अच्छा एक ही शहर में है तो फिर एक दूसरे के यहाँ स्वाभाविक है आना जाना। तो एक बार जिसकी की थोड़ी परिस्थिति कम है वो अपने उस सहेली के यहाँ गई जो ज्यादा पैसे वाली है, तो उसका सारा जो चकाचौंध देखा तो उसको तो लगा कि अरे हम दोनों ने साथ साथ में पढ़ाई की और इससे और मेरे 5 नंबर ज्यादा आते थे लेकिन कम नहीं, और आज देखो ये कितनी ठाट से रह रही है। तो वो घर पे आकर के अपने हस्बैंड से झगड़, वहां से मतलब देख करके आई और हस्बैंड से झगड़ने लगी कि तुम तो मतलब तुमको तो कुछ नहीं आता है, तुम तो बेकार हो, तुमने क्या किया इतने दिन एक ही पोस्ट पर टिके हुए हो, तुम्हारे परमिशन नहीं होता है। तो देखिए सविता जी ये भी बात गलत है।
2: नहीं ऐसा भी नहीं है, होना है ना, और सबका अलग अलग तरीका होता है, जरूरी नहीं कि सबकी पोस्ट सेम हो जाए। और यहाँ भी एक भाग्य की बात आती है, हर व्यक्ति का अलग अलग भाग्य होता है, हमें किसी को देख के ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए ना बराबरी करनी चाहिए।
1: जी क्योंकि गए तो वो दोनों साथ में थे लेकिन अब इसमें तो सभी का देखो कहते हैं कि आप बरोबरी किस में करोगे, पढ़ाई में कर सकते हो,
2: अच्छाई में आप
1: बरोबरी कर सकते हो लेकिन भाग्य में आप नहीं कर सकते हो। भाग्य किसी का देखो ये सब अपने अपने कर्मों का पुण्य होता है,
2: पिछले है ना, कुछ ऐसा
1: तो
2: होता है।
1: वो बहन इस तरह आए दिन फिर झगड़ा करने लगी तो उसका
2: परिवार कलह में,
1: बिल्कुल, तो उसका हस्बैंड टेंशन में आ गया कि इससे तो अच्छा है कि इनके फ्रेंड इस शहर में आती नहीं और उनके घर जाना ही नहीं होता, तो रोज का ये झगड़ा करते है। एक दिन फिर उसके हस्बैंड ने उन्हीं को जाके कहा जिनके घर पर कभी कभी आना जाना होता था ना उनके फ्रेंड के, फिर उनको बताया कि इस तरह आपका जब से इसने चकाचौंध देखा है आकर के हमेशा मुझे झगड़ती है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितना पढ़ा हूँ उसके अनुसार ही मुझे सर्विस मिलेगी, प्रमोशन मेरा अभी नहीं हो सकता।
2: और कई बार इसी के
1: तो फिर उस सहेली ने उसको फिर प्यार से समझाया कि देख तू यहाँ सभी का भाग्य अलग अलग होता है, हमारे पहले बाप दादा का भी था और इनकी पोस्ट अच्छी है तो ये कोई कंपैरिजन नहीं करना है, और आज से तुम जीजाजी के साथ झगड़ा नहीं करोगी। बड़े प्यार से उसने समझाया तो फिर थोड़ा सा असर हुआ, पर कहने का मतलब यही है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब दूसरों के महलों को देखते हैं ना तो अपनी झोपड़ी से नफरत करते हैं लेकिन रहना हमें उसी में है तो नफरत नहीं करनी चाहिए। तो सविता जी चलिए अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, आपके साथ और भी बातचीत करेंगे लेकिन सुना देते हैं एक गीत, तो सुनते रहिए
2: मुस्कुराते रहिए।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। सविता जी हमारे साथ हैं। सविता जी, गीत सुनाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह अहंकार के वश अच्छे संबंधों में भी दरार आ रही है ना।
2: हाँ, तो अभी हम पिछले लिंक में हम बात ही कर रहे थे उषा बहन कि वो झगड़ रही थी अपने हस्बैंड से अपने फ्रेंड को लेकर।
1: बिल्कुल।
2: अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है इस समय।
1: हाँ,
2: मैं
1: तो
2: कहानी भी अभी आपको थोड़ा सा दो मिनट के लिए सुनाऊंगी और एक बात याद है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
1: हाँ,
2: जो हमारे देश में आज जो करप्शन इतना बढ़ा है जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार
1: जी,
2: आज हमारे प्रधानमंत्री उसको मिटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने लोग उससे डिस्टर्ब भी हो रहे हैं
1: जी,
2: लेकिन खैर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इसकी वजह से भी बहुत करप्शन बढ़ा, आपको बता दूं। जिसके पास कम रहते हैं ना, वो दूसरे पोस्ट वालों को देख के उनकी पत्नियां घर में पतियों को कभी कभी कहती हैं आप और लेके आओ, तो उनको कभी कभी गलत ढंग से धन कमाना पड़ता
1: जी,
2: है
1: जी, इस वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है
2: बहुत ज्यादा। मुझे तो लगता है शायद 90% यही चक्कर है
1: जी। जी बिल्कुल,
2: इस देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो 90% रीजन यही
1: बस,
2: है
1: एक दूसरे को देखकर
2: दूसरे से ऊपर जाना चाहता है, सिर्फ धन के मामले में
1: जी,
2: वैभव के मामले में, गुणों के मामले में नहीं जाना चाहता कि देखो भले हमारे पास पैसा कम है लेकिन क्वालिटी है। अभी दोस्त की बात चली तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई कि एक बार ऐसे ही था, हालांकि आपने जो अभी काम बताई कि उसकी सहेली ने उसे अच्छे से समझाया, ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि जो सहेलियां होती है ना समझाती नहीं बल्कि वो नीचे गिरा देती है
1: जी।
2: वो तो उसकी दोस्त अच्छी थी तो उसने उसको समझाया। तो ऐसी मिलते जुलते एक कहानी थी कि एक दो सहेलियां थी, वो भी बचपन से थी और बहुत आपस में प्यार था और उनकी भी ऐसी शादी हो गई जैसे आपने बताया, एक बहुत बड़े घर में और एक छोटे घर में। अच्छा, तो जो बड़े घर वाली थी उसके पास बहुत पैसा था और बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी और अच्छे घरों में रहती थी। तो जो थोड़ा नीचे घर में जिसकी शादी हुई थी वो बहुत सुंदर थी, तो उसे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था और वो सोचती थी कि मैं जो पहनूं वो कोई ना पहने। लेकिन उसके पति एक साधारण से मामूली क्लर्क थे जो कि घर का खर्चे बमुश्किल चलता था और किसी तरह से गुजारा होता था। तो एक बार उसके ऑफिस में कोई पार्टी थी, उसके पति के जो क्लर्क थे उनके ऑफिस में कोई पार्टी थी और कोई बड़े मिनिस्टर आने वाले थे। तो उसने पत्नी से कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, मतलब हमें जाना है पार्टी में। थोड़े दिन बाद थी पार्टी, तो बोला अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, हमें पार्टी में जाना। तो उसने अपने पति से झगड़ा किया कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, कुछ नहीं, मैं कैसे जाऊं। फिर उसने बहुत कहावा बोला, अगर कितने पैसे लगेंगे तुम्हें लिए साड़ी के लिए ये वो ऐसे पूछा। तो उसने बताया मुझे इतना अमाउंट चाहिए साड़ी और चप्पल और पर्स सब खरीदने के लिए बताया। पति ने किसी तरीके से अपना इधर उधर करके उसमें से थोड़े पैसे ऐसे अरेंज कर दिए तो उसका सब काम हो गया, पर ज्वेलरी का काम नहीं हो पाया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी काम नहीं हो पाया, मतलब पैसे कम थे उनके पास। तो उसने सोचा मेरी सहेली के पास तो बहुत सारे जेवर हैं, क्यों ना मैं मांग लूँ। और उसकी सहेली अच्छी भी थी, मतलब इस पर विश्वास करती तो देने के लिए राजी हो गई। फिर वो गई, उसने बहुत सारे सेट उसको दिखाए, दिखाती गई और अच्छे से अच्छा उसने चूज किया। उसने पूरा खजाना अपनी फ्रेंड के लिए, देखिए ऐसी भी एक दोस्त से खोल दिया,
1: होते हैं।
2: उसने बहुत महंगा, मतलब उसे लगा ये बहुत महंगा नेकलेस है और उसने लिया, पहना, पार्टी में गई, अच्छे से घूम फिर के आई, लोग उसको देख रहे थे क्योंकि बहुत सुंदर थी वो और ड्रेस भी उसकी अच्छी थी और ज्वेलरी भी अच्छी पहन रखी थी। लेकिन आते वक्त शायद कहीं हार गुम गया
1: जी।
2: और गुम गया तो उसके बाद उसे बहुत अफसोस हुआ, क्या करें। फिर उसके पति ने उसे बोला, ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर उसके पति पहले बेचारे गरीब थे, लेकिन अब चूंकि हम लाए हैं दूसरे का हार, हमें वापस भी करना है, तो ज्वेलर्स के पास गए और डिब्बा विब्बा दिखा के वैसे ही हार बनवाया जैसे खो गया था, वैसे बनवा के उन्होंने दिया। अब उसका बाद में जब दे दिया तो कई साल बाद, बहुत साल बीत गए, फिर ये लोग दोनों मिले तो जो जिसने हार गुम कर दिया था, गरीब वाली जो सहेली थी, और गरीब हो गई
1: जी,
2: और गरीब हो गई। तो जब उसकी बड़े घर वाली सहेली मिली बहुत दिन बाद, मतलब कई साल गुजर गए, तो उसने पूछा तुम इतनी गरीब कैसे हो गई, बल्कि और बढ़ना चाहिए। तो उसने बोला तुम्हारे कारण मैं गरीब हूँ, तुम्हारा हार मुझसे गुम हो गया था लेकिन मुझे बनवा के देना पड़ा। तो इतने पैसे मेरे पति ने कर्ज लिए कि उसका लोन हम लोग आज तक भर रहे। तो उसने बोला अरे वो तो आर्टिफिशियल था और तुमने तो असली बनवा के मुझे दे दिया वो जेवर। अब अपनी इच्छा को नहीं दबा पाई या कंट्रोल नहीं कर पाए कि हम देखिए अपने को सुंदर दिखाने के लिए या अच्छी ज्वेलरी पहनने के चक्कर में हमने क्या किया, दूसरे का लिया,
3: ये भी गलत देना पड़ गया।
2: और लेकिन दिया क्या, उसने सोचा ये तो हमेशा असली पहनती बड़े घर की, लेकिन वो नेकलेस जो था वो नकली था, आर्टिफिशियल था, और इसने असली हीरो का बनवा के दिया। खैर उसकी फ्रेंड अच्छी थी, जब उसको इतने सालों बाद पता चला कि मेरी फ्रेंड परेशान और कर्जा अभी तक भर रहे हैं, वो दोनों पति पत्नी, उसने वो नेकलेस वापस कर दिया। वरना कोई करता है उस समय,
3: वो फिर तो बेईमानी आ जाती है।
2: लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड कितनी अच्छी थी।
3: जी बिल्कुल,
2: बताइए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि देखिए, एक तो पहली गलती थी कि किसी की चीजों को मांग कर अपनी इच्छा कभी नहीं पूरी।
3: कहते हैं कि संतुष्ट रहिए अपने आप से,
2: जो है जितना है
3: उसमें समाइए, उसी में रहिए।
2: बताइए,
3: कहते हैं कि हम चादर से बाहर जो पैर करेंगे ना तो फिर हवा लगेगी।
2: तो ये तनाव तो नेचुरली आएगा, सारा जीवन वो पति पत्नी तनाव में रहे, उन्होंने अपने बच्चे भी नहीं पैदा किए, लोन भरने में जीवन बिता दिया। बताइए,
3: देखिए
2: ऐसा तो होता है कई बार,
3: एक छोटी सी गलती का हमको कितनी बड़ी सजा मिलती है,
2: भुगतना पड़ा। इसलिए इच्छा कभी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे हम ना, बस एक जैसे हैं वैसे रहिए, उसमें बहुत आनंद आता है।
3: क्या दिखाना है, क्या दिखाना है लोगों को
2: दुनिया में।
3: वो कहते हैं कि जो भी हम पहनते हैं हमें तो नहीं दिखाई देता है, है ना, तो सामने वाले को दिखाने के लिए इतना मेकअप करना।
2: और उषा बहन कितनी भी बराबरी कर ले, हमसे भी ऊंचा कोई ना कोई है, हम यहाँ पहुंचेंगे फिर लगेगा अरे इससे भी ऊंचे जाए।
3: बिल्कुल,
2: कब तक हम ऐसा करते रहेंगे, कभी
3: नहीं,
2: कोई
3: नहीं।
2: सीमा नहीं है,
3: बस इससे अच्छा है कि स्वयं से, जब तक स्वयं से संतुष्ट नहीं रहेंगे हमारे मन में हलचल होती रहेगी, हमारा मन तनावग्रस्त रहेगा और न हम खुश रह पाएंगे, न हम अपने परिवार को खुश रख सकेंगे, और जो भी हमारे संपर्क में आएंगे वो भी किनारा करने की कोशिश करेंगे कि ये तो हर वक्त फालतू की बातें करती रहती है, हर वक्त इसका मुंह फुला ही रहता है। तो बहुत अच्छा आपने बताया है।
2: कई बार बहनों में आदत होती साड़ियां से मांगेंगे, तो बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आदत अगर है किसी में तो इसको बिल्कुल खत्म कीजिए। हमारे पास जो है जितना है हम उसमें संतुष्ट रहे।
3: बिल्कुल, जैसे शादी ब्याह में जाते थे एक दूसरे की ज्वेलरी मांग के ले जाना, जैसे आपने कहा, बिल्कुल
2: गड़बड़ हो ही जाता है।
3: कपड़े हल्का सा कहीं खरोच या हल्का सा तार खींच गया तो दूसरों के कपड़ों को कितना संभाल के रहना पड़ता है, उसके बावजूद भी कहते हैं जितना संभालते ना ज्यादा कुछ न कुछ हो ही जाता है, कई दाग लग गए, धब्बे लग गए, तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा और फिर रिलेशन में भी थोड़ी दरार
2: आती है।
3: तो इससे अच्छा है जितना हो उसमें संतुष्ट रहिए और इसी के आधार पर खुश रह सकेंगे, बाकी जितना हम दिखावा करेंगे उतना ही हम तनाव में रहेंगे। तो चलिए सविता जी, अभी समय हो रहा है गीत सुनाने का, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने बताया है कि किस तरह हमको अपने आप में समेट कर रखना है, संतुष्ट रहना है। तो सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन

0: गायक कलाकार रामशंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो चंदा जी पांडे, आप बिहार के रहने वाले हो और अभी वर्तमान में आबू तलेटी में रहते हैं। तो चंदा जी आज हमको बिहारी आइटम सिखाएंगे। चंदा जी आपका स्वागत है आशियाना में।
2: नमस्कार।
1: अच्छा चंदा जी, आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सिखाएंगे?
2: आज हम गाजर का मुरब्बा सिखाते हैं। हलवा तो सभी बनाते हैं।
1: हाँ जी,
2: लेकिन ये गाजर का मुरब्बा बिहार में ज्यादा, गाजर हो बेल हो, इसका हम लोग मुरब्बा ज्यादा बनाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, वैसे तो मुरब्बा सभी तरफ खाते हैं, लेकिन सभी का अपना अपना अंदाज होता है बनाने का। तो बताइएगा सामग्री क्या क्या लेनी होगी मुरब्बा के लिए।
2: गाजर के मुरब्बा के लिए 1 किलो गाजर लेते हैं और 1 किलो चीनी और 1 गिलास पानी। अब इसको गाजर को साफ करके,
1: 1 किलो गाजर, हाँ, और शक्कर कितनी लेनी है?
2: 1 किलो।
1: अच्छा, 1 किलो गाजर के अंदर 1 किलो ही शक्कर,
2: हाँ,
1: और 1 गिलास पानी।
2: 1 गिलास
1: पानी तो चाशनी के लिए।
2: पानी चाशनी के लिए।
1: अच्छा, तो सामग्री बस इतनी सी है, खाली शक्कर और गाजर।
2: बस शक्कर और गाजर, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें।
1: जी, और इसको बनाएंगे कैसे?
2: इसकी बनाने की विधि है, गाजर को छिलकर साफ कर लेंगे पहले पानी से धोके, उसके छिलके भी उतार लेंगे और छोटे छोटे गोल गोल इसको काट लेंगे।
1: अच्छा, गाजर की धुलाई करके इसको स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके फिर इसका छिलके उतारने हैं।
2: हाँ, छिलके उतार।
1: छिलके उतार करके इसके गोल गोल पीस करने हैं।
2: हाँ, थोड़े छोटे छोटे जाके चम्मच से उठाने के खाने में आए।
1: अच्छा, तो कोई ऐसे लंबी चीरी भी करनी चाहते हैं तो
2: अपनी
1: कर सकते
2: हैं? हाँ, अपनी पसंद से।
1: तो लंबी चीरे भी कर सकते हैं, गोल पीस भी कर सकते हैं, या जैसे सब्जी काटते हैं वैसे भी काट सकते हैं,
2: अपने
1: वो आपकी इच्छा पर आधार है। तो प्यारे श्रोता बंधु, इस तरह आप मुरब्बा बनाने के लिए गाजर को आपकी इच्छा के अनुसार काट लीजिए, फिर
2: और फिर इसको हल्का से उबाल लीजिए, 5 मिनट, ज्यादा नहीं गाजर को।
1: जी जी बिल्कुल, आप पानी का उबाला आए और गाजर डाल दीजिए, और अच्छा उबाला लेने के बाद निकाल दीजिए। बस गाजर हल्की सी दब जानी चाहिए, इतनी सी बॉईल करनी है, ज्यादा सब्जी की तरह लचपच नहीं करनी है।
2: तो हाँ, फिर नहीं तो खराब हो जाएगा वो।
1: जी,
2: अब इसमें एक चीनी और पानी जो हमने पहले बताया उसको आप गैस पे चढ़ा दीजिए और फिर 2 तार की चाशनी हो जाएगी चीनी की।
1: अच्छा, तो शक्कर की 2 तार की चाशनी लेनी है, क्योंकि चाशनी बनाना भी आप सभी को सिखा चुके हैं। तो शक्कर डालिए, शक्कर के अंदर जितना पानी का समावेश हो उतना पानी डालिए, बस वो शक्कर डूब जानी चाहिए, इसलिए 1 गिलास पानी डालिए। और शक्कर का मेल निकालने के लिए आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, जब पानी उबलने लगे तो थोड़ा सा दूध डाल के जो चाशनी का मेल आता है उसको आप निकाल दीजिए, और इस तरह 2 तार की चाशनी बनाइए। और चाशनी बनाने के बाद क्या करना है?
2: चाशनी में जो हम गाजर पहले जो रखे हैं उसको छोटे छोटे काट के उबाल के रखे हैं, हल्का उबाल के, अब उसको छान के चीनी की चाशनी में डाल देंगे।
1: जी, उसके पानी को निकालना है, इसलिए गाजर को छानना है, उबली हुई गाजर को, और फिर चाशनी में डाल देंगे।
2: चाशनी में डाल देंगे, 5 से 10 मिनट उबल जाएगा उसमें, गाजर बिल्कुल गल जाएगा, बिल्कुल हलवे की तरह नहीं होगा, इसलिए उतना हो जाए, उसके बाद बस हो गया उसमें बस।
1: अच्छा, तो 2 तार की चाशनी, हाँ, तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इधर गाजर जो हमने उबाली है ना उसका पानी निकाल दीजिए, और गाजर को चाशनी में डाल करके आप गैस पर ही रखिए। जब गाजर का पानी जो हमने उबला हुआ था तो गाजर के अंदर थोड़ा सा पानी का रेसा रहता है, पानी बिल्कुल उसका खत्म हो जाए उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए और चाशनी में ही गाजर को रहने दीजिए। तो इस तरह मुरब्बा तैयार हो गया है। तो चंदा जी आपने तो बहुत ही अच्छा सिखाया है। मुरब्बा तो वैसे बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं, और माताएं भी जल्दी से बच्चों के टिफिन बनाती है, तो हाँ, तो परोठे और रोटी के साथ मुरब्बा रखा और छुट्टी, सब्जी का इतना नहीं करना पड़ेगा लपड़ा, और वैसे गाजर पौष्टिक, वैसे गाजर पौष्टिक भी रहती है। तो बहुत ही अच्छी चीज चंदा जी आपने सिखाई है, जरूर हमारी बहनें बनाएगी, क्योंकि गाजर का सीजन चल रहा है तो जरूर मुरब्बा बना के रखेंगे, और इसको हम लॉन्ग टाइम तक भी टिका सकते हैं। तो चलिए प्यारे श्रोता बंधु, अभी तो आपने गाजर का मुरब्बा सीखा है, अब आपको गीत सुना रहे हैं। गीत सुनाने के बाद और भी आपको कुछ सिखाने वाले हैं, इसलिए बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में गीत सुनाने से पहले बन रहा था गाजर का मुरब्बा। आइए और भी चंदा जी कुछ सिखाने वाले हैं, तो चंदा जी और क्या सिखाने वाले हैं आप?
3: रुमाली रोटी सिखाने वाले हैं।
2: ओके रुमाली रोटी। हाँ। अरे रुमाली रोटी से तो आज याद आया मुझे कि आज मैं ऑफिस में आई थी ना, तो मैंने अपना रुमाल टेबल के ऊपर ही रख रखा था कि जाते समय मैं पर्स और रुमाल लेके जाऊंगी, दोनों ही चीज भूल गई। तो चलिए, आपने रुमाली रोटी का नाम लिया तो मुझे अपना रुमाल याद आ गया। चलिए सुना दीजिए आप।
3: रुमाली रोटी के लिए एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा लेते हैं।
2: एक कप मैदा और एक कप
3: गेहूं का आटा
2: जी,
3: और आधा चम्मच नमक ताकि वो नमकीन लगे।
2: जी जी
3: हाँ। बस और उसको पानी से गूंथ लेंगे, आटा छान लेंगे। हाँ बस इतना ही चीज है
2: जी।
3: एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा और थोड़ा आधा चम्मच नमक और इसको पानी से गूंथ लेंगे, यही सामग्री में है।
2: गूंथना कैसे है, फिट या लूज?
3: फिट ही होते हैं।
2: अच्छा।
3: बाकी ऐसे नहीं कि वो उसमें आटे उटे डाल के बेलना नहीं पड़े, बिल्कुल सूखा सूखा बेलना चाहिए उसको
2: एकदम।
3: हाँ एकदम फिट
2: जी। शक्कर पाले का बांधते इस
3: हाँ,
2: तरह का।
3: हाँ इस तरह का। अभी आगे हम आपको विधि बता दें।
2: हाँ जी बिल्कुल बता दीजिए।
3: मैदा और आटे को छान लीजिए और छानने के बाद इसमें नमक डालते हैं और डाल करके आटा फिट गूंथ लेना है। ये तो हम आपको पहले बता ही दिए कि गूंथ लेने के लिए, और इसको पतली बिल्कुल छोटी छोटी लोई करके एकदम पतली पतली रोटी बेलनी है,
2: खाखरे की तरह।
3: हाँ जैसे खाखरे बनाते हैं खाखरे की तरह। और गैस ऑन करके तवा सीधा नहीं रखे, उल्टा रखना है।
2: और पीछे से काला होगा तो?
3: नहीं पीछे से, वो तो गैस पे बनाएंगे तो काला नहीं होगा तवा, अगर काला है तो पहले से धोके साफ कर लेंगे।
2: जी वो तो मैंने मजाक किया, वो तो हमारी बहनी होशियार है।
3: तो अगर तवा हो तो उसको साफ कर लेंगे, उसको साफ करके उस पे पतली पतली रोटी जो हमने बेल के रखी है उसके ऊपर रख देंगे तवा गर्म हो जाए तो।
2: जी
3: और इसे एक ही तरफ से सेकना होगा, दोनों तरफ नहीं सेकने के लिए।
2: अच्छा एक तरफ।
3: हाँ एक ही तरफ, इतनी पतली रोटी रहे कि दोनों तरफ ऑटोमेटिक सिक जाएगी।
2: जी जी
3: और ये पतली पतली पतली सिकने के बाद उतार लेंगे इसको।
2: अच्छा सेकते समय इसको दबाना है या कुछ नहीं करना?
3: नहीं कुछ नहीं,
2: वो कुछ नहीं करना नहीं, अपने आप सीख जाएगी।
3: हाँ,
2: और उसको हटा दो बस।
3: हाँ, हटा लेंगे
2: फिर दूसरी डाल दो।
3: हाँ फिर दूसरी डाल दी। इसी तरह आप सारी रोटियां बना सकते हैं जितने।
2: अच्छा,
3: भी आटा
2: तो इसको रुमाली रोटी कहते हैं।
3: हाँ, और जब आप इसको रोटी हाथ में पकड़ेंगे बिल्कुल रुमाल की तरह आपको महसूस होगा, वो मैदा और इसमें आटा जो गूंथते हैं ऐसे लगेगा आपने हाथ में रुमाल पकड़ रखे।
2: अच्छा क्या बात है, तब तो मैं आज ही ट्राई कर लेती हूँ।
3: जरूर ट्राई कर लीजिए, आज ये ट्राई कर लीजिए और खा भी लीजिएगा आराम से।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जल्दी भी बन जाएगा।
2: जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया है। रुमाली रोटी के लिए एक कप आटा और एक कप ही मैदा लेना है।
3: हाँ, मैदा लेना
2: और आधा चम्मच नमक लेना है और पानी से फिट बांध देना है, एकदम कठोर जो हम शक्कर पाले का बांधते हैं ना इस तरह कठोर गूंदना है, और गूंद करके फिर इसको 10-15 मिनट गलाना है।
3: हाँ 10 मिनट थोड़े ढक के रख देंगे ताकि वो मूस आटा जो है ना मुलायम हो जाए।
2: जी बिल्कुल, तो स्वच्छ कपड़े से 10 मिनट के लिए घला के रख दीजिए ताकि रोटी सॉफ्ट बनेगी। फिर आप 10 मिनट के बाद छोटे छोटे लुए बनाइए और पतली पतली एकदम रोटी, जैसे हम खाकरा बनाते हैं ना इस तरह पतली रोटी बनानी है। और क्या करना है, तवे को सीधा नहीं उल्टा रखना है।

0: पर आधार है कि आप किस तरह खाते हैं। तो चलिए, रुमाली रोटी तो चंदा जी ने सिखाई दी है और गाजर का मुरब्बा, क्यों ना हम गाजर के मुरब्बे के साथ ही रुमाली रोटी खा ले। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली और थाली में आप एक तरफ रख दीजिए गाजर का मुरब्बा, एक तरफ रुमाली रोटी रख दीजिए और तुलसी पत्र भी रखिए, जल के स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से ढकिए स्वच्छ थालपोश और आप अपने इष्ट देव को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आप अपने पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा रुमाली रोटी का। और साथ ही साथ चंदा जी को धन्यवाद देते हैं। चंदा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे रेसिपी सिखाई है हमारे श्रोता बंधुओं को।
1: धन्यवाद आप सभी को भी।
0: तो चलिए सुना देते हैं एक गीत, तो सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए
0: रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। हमारे शरीर में किन किन विटामिन्स की कितनी आवश्यकता रहती है और वो कहाँ से मिलेंगे, आज इस बारे में बताएंगे। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह आपकी हड्डियों, दांत, टिश्यू और त्वचा को मजबूत बनाता है। गाजर, तरबूज, कद्दू, टमाटर, अमरूद, ब्रोकली, पपीता, आड़ू, लाल मिर्च, पालक, दूध और फोर्टिफाइड अनाज में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी टू, यह शरीर की कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। इसकी कमी से होंठ और मुंह सूखने लगते हैं। इसकी कमी से गले में सूजन, त्वचा पर झुर्रियां, एनीमिया, थकावट, आंखों का भारी होना, नींद की कमी और कंपकंपी होने लगती है। विटामिन बी टू दूध और दूध से बनाई गई चीजें जैसे दही, पनीर, इन सभी में पाया जाता है। विटामिन सिक्स, मजबूत पाचन तंत्र के लिए विटामिन बी सिक्स जरूरी है। ये शरीर में हार्मोन्स और ब्रेन केमिकल बनाता है, जिससे आप डिप्रेशन, हृदय रोग और भूलने की बीमारी और जल्दी से थकने जैसी बीमारी से दूर रहते हैं। इसकी कमी आप अनाज, केले, दलिया, नट्स, बीज और किशमिश से पूरा कर सकते हैं। विटामिन बी नाइन, यह डीएनए संश्लेषण, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ब्रोकली, स्प्राउट्स, पालक, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, चना, ब्राउन ब्रेड, दूध और दूध से बने पदार्थ, चुकंदर, खजूर, इन सभी में अच्छे स्रोत है। विटामिन बी ट्वेल्व, यह विटामिन शरीर में भोजन से एनर्जी रिलीज करने का मुख्य स्रोत है। यह हमारे मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के कुछ तत्वों के निर्माण में भी सहायक है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, हीमोग्लोबिन बनाने और नर्वस सिस्टम में प्रोटीन की आपूर्ति कर स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, मावा विटामिन बी ट्वेल्व के अच्छे स्रोत है। तो इस तरह जिसमें भी जिस विटामिन की कमी है, वो आप उन विटामिन की पूर्ति इन चीजों के द्वारा करके स्वयं को स्वस्थ रखिए। चलिए अब आपको सुना देते हैं एक प्यारा सा गीत, तो सुन लीजिए। एक गीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलिए श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, चलिए मैं आपको अनमोल वचन सुना रही हूँ। आज के अनमोल वचन इस तरह है, एक बार अगर हम गलत राह पर चलना छोड़ देना तो सही राह अपने आप मिल जाती है। इसलिए गलत राह को छोड़ करके सही राह को अपनाइए। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी जो मेरा स्वरचित है, तो आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा गणी सा। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

रे सहारा संसार तुम हो, तुम्ही मेरे सहारा संसार तुम हो।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
1: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
1: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
1: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: चांदनी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, वीर वीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
1: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, घूम घूम घूम, तू कर।
3: घूम नहीं दादी, ग्रू।
1: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही, अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
4: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना।
1: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन में एक निकाल के, आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
5: और हम क्या है दादी?
0: इस सवाल का जवाब है किसी के पास? पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौड़ शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
8: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
9: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
8: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
9: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
8: अच्छा आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
9: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
8: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
10: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
8: हे राम मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है, इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
10: कम उम्र?
4: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
8: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाई सा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
10: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
4: लो आ गए वो।
11: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा घर में। हाँ, चलो
12: हाँ, बढ़िया
11: चलो,
12: बढ़िया
11: बहुत अच्छा।
12: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
11: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
13: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
11: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
13: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
12: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
11: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
13: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
14: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है।
13: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
14: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
13: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
11: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
4: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
9: हाँ जाती हूँ।
4: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
9: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
4: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
9: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
4: इसी बात का तो डर है।
9: हा? कुछ कहा आपने?
4: नहीं नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
9: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
4: क्या?
9: अरे मजाक कर रही थी।
4: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
15: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
4: चल ठीक है अब नाश्ता करने चलें।
0: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया? और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
10: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं। नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं। अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
16: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
17: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं ऑल इन वन लुई।
2: अब्बा दूध में इतनी अच्छी खुशबू।
3: अरे अब्बा का स्पेशल डबल फार्मूला है ये दालचीनी और इलायची, बस गड़गड़ पी जाइयो। एलमोर लुई चाचा आते ही होंगे, एक दो।
2: ये लो दूध का है अब।
4: शाही आपकी दूध वाली मुच्छी तो एल्मो से भी लंबी है।
2: एल्मो मैं अभी बैट बॉल निकालने ही वाली थी। आदाब लुई चाचा।
5: आदाब शाहीन, मुझे तो लगता है तुम दोनों आज काफी जबरदस्त मैच खेलने वाले हो।
4: हाँ, एल्मो भी तैयार है दूध पीकर।
2: अरे एक मिनट, एल्मो मैं जूते तो पहन लूं।
3: और कहो लुई भैया, भाभी बिना कैसी गुजर रही है?
5: सच पूछो तो एल्मो के संग वक्त तो आंख मीचते ही निकल जाता है, पर जब से मैं अपनी मम्मी से मिलने गाँव गई है घर और दफ्तर की डबल ड्यूटी पर हूँ।
3: हाँ भाई, भाभी को घर वालों से मिले हुए हो भी तो अरसा गया ना।
5: बिल्कुल, घर जाना तो बनता है पर उसके वापस आने तक तो चाय भी वैसे ही पीनी पड़ेगी जैसे हमारे बच्चे दूध पीते हैं।
3: मतलब घटा घट।
5: हाँ घटा घट, कभी दाल चढ़ाना तो कभी साफ सफाई, कभी दफ्तर तो कभी एल्मो। टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। बिजी रहने का भी अपना मजा है पर।
3: अरे मियाँ, माँ बाप की जिम्मेदारी तो कभी कभी इतनी भारी लगती है कि खली मियाँ भी ना उठा पाए।
5: हाँ भैया, ये सब एक ही दिन में करना ऐसा लगता है जैसे किसी टीवी सीरियल में ड्रेस बदल रहे हो।
3: थके हुए लग रहे हो, पहले हमारे हाथ की स्पेशल चाय पियो भैया तुम। तुमने आज हमें बिल्कुल अपने दादा जान की याद दिला दी।
5: मैंने तुम्हें दादा जान की याद दिलाई, वो कैसे?
3: हाँ, उनके जिस हाथ में सुबह पुलिस वाली सीटी होती थी उसी हाथ में शाम को बल्ला या कड़ची।
5: अच्छा।
3: हाँ, जब हम अपनी बिटिया शाहीन की उम्र के थे ना तो हमारे घर में दादा जान भी रहते थे। हमारे इलाके के हवलदार थे, हवलदार फारूकी। अब हवलदार ठहरे, सभी उन्हें नाम से बुलाते थे, पहचानते थे। अपने कड़क मिजाज के लिए तो जाने जाते ही थे, मगर घर पर उनमें छुपा एक दूसरा शख्स भी नजर आता था।
5: कैसा शख्स?
3: वही हवलदार फारूकी से खानसामा खान या किससे बाज काका।
5: अच्छा। मतलब ऑल इन वन थे तुम्हारे दादा जान।
3: अरे हमसे पूछो तो अब्बू और अम्मी के साथ साथ मानो एक और इंसान ने हमारी परवरिश करी। उनके हाथ की कड़ी चावल ओए ओए ओए ओए ओए, आज तक उसका डुप्लीकेट नहीं बना पाए भाई साहब।
5: वाह।
3: और कितनी दफा हमें अपने हाथों से खिलाते थे, और कहीं ऊपर कोई खिलौना फंस जाता ना तो बस हम आवाज लगा देते, दद्दू सीढ़ी पकड़ाना, और दद्दू दौड़े दौड़े आते हमें अपने कंधों पर चढ़ाकर खुद ही सीढ़ी बनकर वहां तक पहुंचा देते, पेड़ के तने से भी मजबूत।
5: सुनकर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं था जिसमें कड़क हवलदार फारूकी पीछे थे।
3: बल्कि मीलो आगे कहिए लुई भैया, ड्यूटी पर जैसे कड़क हवलदार रौब वाली आवाज, और घर पर पेठे से भी नरम मीठे मीठे बोल, हर जिम्मेदारी के लिए 24 घंटे रेडी।
5: भाई क्या बात, वाह।
3: इसीलिए तो जब तुमने कहा कि इन दिनों तुम डबल ड्यूटी पर हो तो मानो दद्दा जान की तरह ऑलराउंडर का काम कर रहे हो। गजब।
5: अरे इस तरह पहचाने जाना तो मेरे लिए काफी फक्र की बात होगी तौफीक भाई। पर हाँ, अपने बेटे की जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं चाहे कितना भी थक जाऊं, एक अलग सी खुशी महसूस होती है।
3: हम समझते हैं भैया, पहले पहले जब शाहीन ने होश संभाला तो हमें लगा कि बस अब बेगम और हम आपस में बच्ची संभालने की सारी जिम्मेदारी का बंटवारा कर लेंगे।
5: पर ऐसा हो नहीं पाया, क्यों?
3: भैया काम तो बांट सकते हैं पर माँ सिर्फ रसोई में और घर के बाहर सारे काम बाप करे। अब वो जमाने तो गुजर ही गए, क्यों भैया?
5: हाँ, बात तो तुमने पते की है। मेरा भी तजुर्बा कुछ ऐसा ही रहा है। एल्मो की मम्मी बल्ब बदलने में उतनी ही माहिर है जितना मैं कपड़े धोने में।
3: अरे हाँ, बनाओ। भैया हमें लगता है बच्चों को बढ़ती उम्र में संभालने का भार दोनों तरफ बराबर होता है, अब्बा हो या अम्मी।
5: शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। इस तराजू पर पड़ले दोनों तरफ उतने ही हल्के या भारी होने चाहिए, क्यों तौफीक भाई?
3: देखा आपने मेरी चाय कैसी असर कर रही है आप पे? क्या गजब डायलॉग मारा है आपने, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी भारी तो जरूर है।
5: बिल्कुल,
3: पर सच तो ये भी है, बिना वजन के खली भी पहलवान कैसा। वैसे भैया एल्मो तो काफी होनहार है, तो मेरी तरफ से एल्मो के डैडी हैं फर्स्ट क्लास, मान लो 9/10 नंबर।
5: हाँ देखो 10/10 कब मिलते हैं।
4: पापा, चाचा, देखो एल्मो ने ड्राइंग बनाई और शाहीन ने इसमें कलर भरे।
2: जल्दी एल्मो, नहीं तो पार्क में जगह नहीं मिलेगी।
5: देखें तो एल्मो ने क्या बनाया। वाह, ये तो कुछ पहचाना सा लग रहा है।
4: ये है टाटरा एल्मो के डैडी कूल, एक हाथ में बैट और दूसरे हाथ में करची।
3: हम ना कह रहे थे भैया, हमारे दद्दा जान के हूबहू कॉपी हो तुम।
5: शुक्रिया एल्मो, डैडी ने भी एल्मो से ही सीखा, क्योंकि एल्मो क्रिकेट भी खेलता है और ड्राइंग भी बनाता है।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। गांव और अंचल को जब जाते बा सुनते नाम कितना खुशी लगता है, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं गाँव और अंचल परिवेश प्रकृति। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका पास रखने जा रहे कार्यक्रम जो कि बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को भाव और भावना को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक का जो विशेषता जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है वो चीज आज रख पा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते हैं, कमर्शियल रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स योर रेडियो आपका रेडियो आपका द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो मधुबन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनार में पहुंचे और बच्चों का आवाज भी बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर विद्यालय का आवाज को रखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के सहयोग से मिलित भावना से आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे सभी बारी बारी। तो हमें खुशी है इस तरह बढ़ चढ़कर बच्चे जब भाग लेते हैं और इसका श्रेय तो माता पिता और संस्था का संस्था प्रधान का साथ सभी स्टाफ को जाता है, बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह दिलाते। तो देर किस बात की, पहले एक प्रार्थना के रूप में हमारा छात्राएं उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं नाम का साथ। वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कहाँ से, क्योंकि रेडियो में जब उनका आवाज सुनेंगे तो पता चला किसका आवाज है। आवाज से कोई कोई पहचानेंगे, जिसको कोई सुना नहीं आवाज को वो कैसे पता चलेगा, इसलिए उनका नाम बताएंगे कौन सा क्लास। भले विद्यार्थी जीवन में अपना सहपाठी उनका आवाज को जानते जान लेंगे, लेकिन जो दूसरे बाहर लोग सुनते हैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी सुनते हैं तो उनका आवाज सुनने के साथ साथ नाम और स्कूल का नाम जरूर ले। तो सभी को स्वागत करते अपना नाम और क्लास का साथ एक प्रार्थना शुरू कराएंगे।
1: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
2: मेरा नाम आफरीन है, मैं कक्षा 11 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
3: मेरा नाम विश्ना है, मैं कक्षा 12 से हूँ और चनार से हूँ।
4: मेरा नाम दक्षा और मैं कक्षा 11 से हूँ और चनार से हूँ।
5: मेरा नाम अस्मीन है, मैं कक्षा 10 में हूँ।
1: क्या

उसे चुन लाऊ तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हम प्रभु के चरणों में, थाली में फल फूल लाए।

0: लिए।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भाव और भावना का साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रभु तक पहुंचाते हैं और अपना जो दिल का उद्गार और मन का बात प्रार्थना का रूप में हर विद्यालय में होता है, तो आज इस विद्यालय में भी बच्चे एक गीत का पूरा ये प्रार्थना सभी जगह में सभी विद्यालय में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर गाते हैं। बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब भाग लेते हैं। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा गुड़िया है, क्या नाम बताया?
0: खुशबू।
1: खुशबू। देखो नाम कितना खुशी लग रहा है, नाम सुनते ही खुशबू खुशबू आज तो फैला रहे हैं। फूल का खुशबू आता है कि नहीं? तो आज खुशबू खुद नाम का खुशबू फैला रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, क्योंकि एक मंच जिसका आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बच्चे तरसते हैं, लेकिन आज ये तो सरकार का धन्यवाद है क्योंकि सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी बच्चों को देते हैं, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर सिर्फ सीमित अंचल में क्यों सीमित रखे, अपना क्लास में अपना विद्यालय में अपना गांव में पूरा जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच देते हैं, जिसका चलते उनका सुर लय और ताल का साथ अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं और जो आवश्यकता था आज मिल रहा। और इस कार्यक्रम को सुंदर में मैम हमारा सजा रहे हैं और सर भी सजा रहे, तो उनको भी धन्यवाद देंगे और उनका भी दिल का बात सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: सुंदर प्रस्तुति सुनने के पश्चात ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं, और खासकर बच्चे सच्चे होते और उनका भावना आज जन जन तक पहुंचाए रेडियो मधुबन द्वारा, और इसका श्रेय तो सभी बच्चों को उनका माता पिता को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं, चाहे जो भी संसाधन जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमारा संस्था का प्रभारी वो भी उपस्थित है, मैम कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, हमें बहुत खुशी लगा अनुशासन में बच्चों को रखते, पूरा साइलेंस में बच्चे बैठे, तो मैम अपना परिचय देंगे, मैम अपना परिचय देंगे, और खासकर बच्चों का मेन जो लक्ष्य है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये देखा मैंने, तो आप अपना परिचय देंगे मैम, आपका स्वागत।
1: थैंक यू, आपने हमारे स्कूल में मौका दिया इस बात के लिए।
0: जी मैम,
1: मेरा नाम सुमनलता मीणा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनार की प्रिंसिपल ना होके व्याख्याता हूँ,
0: जी
1: सेकंड इंचार्ज। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आदिवासी लोग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनमें अनुशासन का असर बहुत ज्यादा है।
0: जी।
1: वो ज्यादा बोल नहीं पाते, बट अनुशासन उनमें पढ़ते भी हैं, पर विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी वो स्कूल से आते हैं, उनके घरों के जो हालात है आप देखते होंगे इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमें खुशी है कि हम इनको अपने ज्ञान से इनके उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैम को धन्यवाद देते हैं और सर को भी।

0: लेंगे सर भी बच्चों का साथ, आज कुछ उमंगों से और वार्म अप करा देंगे, बच्चे थोड़ा सा जो थोड़ा पीछे रह रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए भी खुशी मिलेगा। सर से एक निवेदन है, सर बच्चों को ऐसे कार्यक्रम का माध्यम से देखते हुए वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, आज वो अपना आवाज में गीत सुनाएंगे हमारा श्रोता मित्रों को और हमारा जो सामने बैठे सभी बच्चों को, और इस माध्यम से जो भी सुन रहे तो वो भी सर को जानते होंगे और जब सुनेंगे सर का परिचय तो उनको भी खुशी लगेगा, क्योंकि रेडियो कार्यक्रम में मंच कभी कभी मिलता, आज मिल रहा है, तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर
1: जी।

0: मैं पीतम सिंह, वरिष्ठ अध्यापक जीएसएस चनार, जो ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए, मधुबन से आए हुए हमारे पवित्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ जीएसएस चनार में इन आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के सामने इस प्रकार ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन बच्चों की जो खूबी है, इनमें प्रतिभा बहुत, प्रत्येक बच्चे में अपनी खूबी होती है। कहते हैं ना कि मछली जल की रानी होती है, वो कभी भी जंगल की रानी नहीं बन सकती। शेर जंगल का राजा होता है, वो कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसका अर्थ कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, सिर्फ उसको निखारना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको निखारने के लिए हमको भी इतनी दूर से लगाया गया है। हम चाहेंगे कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और अपना हुनर सबको दिखाएं। ये आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, हमें पता है इनकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये हैं उन परिस्थितियों से, ऐसी बात नहीं है, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम रखते रहें, तो इन बच्चों की भी उत्साह बढ़ेगा और इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद, लेकिन हम जो करते हैं, आप जो करते हैं, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को, भावना को और दिल का उद्गार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सभी का मोटिवेशन बच्चों का प्रति रहता है, सभी का लक्ष्य बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अच्छा बने, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करने का पहले खुद का नाम रोशन करें, परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन, सबका आस बच्चों का ऊपर रहता है। बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से भाग लेते हैं एक दूसरे को देखकर, तो हमें खुशी होता है। और सरकार का जो मंचा है, एक लोकल के जो सिंगर हो चाहे उनका बस जो भाषण का कला हो चाहे गीत का जो कला है वो जन जन तक पहुंचाए, इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक खुला मंच है, सभी अपना बात को रख सकते हैं। और सर ने जैसे बताया, बहुत कठिन परिस्थिति, जब परिस्थिति आता है तो स्वस्थिति को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि परिस्थिति का काम तो आएगा ही, सबका पास परिस्थिति आता है, परिस्थिति किसी का पास नहीं है। परिस्थिति आएगा तो आपका परीक्षा होगा, कितना आप स्थित रहते हैं, स्वस्थिति में कितना स्थित रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमारे हाथ में। हम वो परिस्थिति को, जैसे रास्ता में कोई पहाड़ गिर गया तो हमें पहाड़ को तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहाड़ को साइड होकर हम निकलना है, नहीं तो समय हमारा बर्बाद होता है। तो इस तरह परिस्थिति देखिए, रामचंद्र का टाइम में जैसे आपने गीत के माध्यम से बोला, भाई हमें इतना राम चाहिए, तो राम के पास भी परीक्षा आया था, है कि नहीं, उनका सीता को चोरी कर रावण ले गया था, वो भी कहानी आपको है, उनका भी कितना परिस्थिति आया, जंगल में रहना पड़ा। परिस्थिति तो सबके लिए आता है, लेकिन हमें अपना स्थिति से, जैसे रामचंद्र अपना स्थिति बना के रखा, भले ये तो आया लेकिन वो तो जाएगा, कभी रहेगा नहीं वो, फिर सीता आपस आया कि नहीं। तो इसलिए बुद्धिमान कहते, इसलिए देवता कहते, भगवान कहते, इसलिए हमारे पास भी परिस्थिति आएगा, आता है कि नहीं, परिस्थिति सभी के पास परिस्थिति आता है कि नहीं, परिस्थिति आएगा, कि परिस्थिति आएगा तो आपको मजबूत कराएगा, ये ठीक है कि नहीं। इसलिए परिस्थिति को आने दो और हम अपना स्थिति में उसको पार करेंगे। पढ़ाई करें तो परीक्षा आएगा कि नहीं, परीक्षा को डरेंगे नहीं, डरते बच्चे डरते, परीक्षा जब समय आता डरते हैं नहीं, डरते तब तो उत्तीर्ण होगा आगे क्लास को। परीक्षा नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे तो अगला क्लास को जाएंगे नहीं, जा पाएंगे। तो हम परीक्षा को निमंत्रण करना चाहिए, आइए हम रेडी है मुकाबला करने के लिए, ऐसे साहस होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। इसलिए परिस्थिति अपना काम करे और हम अपना स्वस्थिति से मुकाबला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनकर है कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार का सभी का आवाज, खासकर हमारा आज स्टाफ भी इस कार्यक्रम को बच्चों का साथ मिलकर एक आवाज का गुलदस्ता बन गया। सर का आवाज, प्रीतम सर को धन्यवाद देते हैं और मैम को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्ची उपस्थित है और स्कूल के नाम रोशन करने के लिए भले बहुत सारा बच्चे लेकिन एक बच्ची काफी होता है। जैसे रात को बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन एक चांद पूरा रोशन कर देती है कि नहीं। हजारे तारे रहते हैं लेकिन फिर भी एक चांद होते हैं। जैसे हर स्कूल में इतने बच्चे होते हैं लेकिन एक दो बच्चे पूरा चांद का जैसे काम करते हैं। तो आज चांदनी का रात में जैसे चांद अपना प्रभाव विस्तार करते हैं, आज इस स्कूल के होबनहार बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो नाम फिर से बताइए।
1: मेरा नाम आफरीन, मैं कक्षा 11 से चनार से।
0: सुनाओ गीत।
1: ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके।

0: दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ऐसे बच्चे को जब मंच मिलता है तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, उनको एक मौका का आवश्यकता था। उनका जो हुनर है, जो टैलेंट है, इस तरह जब कंपटीशन हो, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन हो, चाहे कोई भी प्रतिभा को निकालने के लिए आगे बढ़ते, तो इस तरह सहयोग मिलता है जिसका चलते वो आगे बढ़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सर, इसका बारे में क्या कहना चाहिए, इसका गीत का बारे में थोड़ा दो शब्द बताएंगे।
2: आफरीन हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो क्लास 11th में है
1: जी,
2: जिसने जो ये देशभक्ति गीत सुनाया है, वास्तव में कहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति प्रेम है ना, क्या होता है वो अपनी या तो आवाज से पता चलता है, या ऐसा नहीं है कि देश पे डटा हुआ जवान ही देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करने के लिए हम सभी देश की रक्षा करते हैं। अगर मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, आपका काम, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी अपना काम, इनका काम जो है, इनका काम क्या है विद्यार्थी का, विद्या का
1: अध्ययन
2: अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, इसका मतलब इनको पढ़ना है, इनको इनका जो काम है वो पूर्ण रूप से कर लें। जो मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूं, तो अपना देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर जाएगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे किसान है, किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, फसल पैदा करता है और वो फसल पूरे देश के लिए काम आती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो या कलेक्टर, जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर ले, है ना, कहीं हमें ना तो देश बॉर्डर पे जाने की जरूरत है ना। ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर ही हम देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात, स्पष्ट रूप में बताया भाई, हम सभी एक एक सैनिक है। देश बॉर्डर में तो सैनिक हमारा भाई रहते हैं, लेकिन हम जो अंदर रहते हैं उनको सपोर्टिंग करते हैं, उनको जो चाहिए हम देते हैं, जैसे किसान सब कुछ देते हैं, शिक्षक एक अच्छा सैनिक बनाकर देते हैं, और शिक्षक को सरकार भी इतना सहयोग देते हैं, चाहे संसाधन भी मिलता है जिसका चलते वो आराम से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और बच्चे भी आराम से बढ़कर पढ़ते हैं क्योंकि संसाधन चाहिए, क्योंकि इसका चलते हमारा देश नाम रोशन करेगा और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब ईमानदार से अटेंशन होकर हर कार्य को श्रेष्ठता रूप में देंगे, तो जरूर कामयाब होंगे, और हम सब कामयाब होंगे ही, जरूर हुए थे और होंगे, कोई नया चीज नहीं है, हम भूल चुके हैं लेकिन हम थे, अभी है और आगे भी होंगे, हम ही देश को आगे बढ़ाया था और आज हम ही आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे देश को, पहले हम खुद बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा ईमानदार से, है ना सर। तो ईमानदार एक अच्छा वैल्यू है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे सभी बच्चों के पास विशेष गुण है, सब विशेष है, कोई किसका पास अवगुण नहीं है, अवगुण रहते भी एक विशेषता है जिसका चलते परमात्मा भगवान प्रभु आपको सिलेक्शन किया है मनुष्य जीवन में, भले हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारे पास इतना विशेषता है, जो विशेषता कहीं ना कहीं काम में आता है, इसलिए कभी खुद को छोटा नहीं सोचना है, मैं बाहर बाहर में ऐसे सोचना है, मेरे जैसे कोई संसार में नहीं, इतना लोग है, कितना करोड़ लोग है, आपका जैसे शकल, आपका जैसे आवाज, आपका जैसे विचार, दोबा बच्चा भी होगा तब भी नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, अंक नहीं सर,
2: बिल्कुल।
1: इसलिए खुद को महान सोच के ईमानदार से काम करेंगे तो हम महान आत्मा बन सकते, महान आत्मा बन सकते कि नहीं, महान आत्मा क्या, देवात्मा भी बन सकते हैं, दिव्य गुण रहेगा तो देवता बनते हैं, हर्षित मुक्तता, नम्रता, नियमितता, कौन कौन बच्चे नियमितता, नियमित स्कूल को आते हैं विद्यालय में, नियमित जो भी स्कूल खोलता है नियमित कौन आता है, रेगुलर, हाथ उठा देखी सर, हमारा देख रहे, मैम भी देख रहे, रेगुलर। विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, क्या बोला,
3: नियमितता,
1: नियमितता, रेगुलरिटी, पूरा कभी भी छुट्टी नहीं, ऐसे होना चाहिए। जब नियमित आएंगे तो हमारा जो अध्यापक आपको अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, है ना सर? तो नियमित आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
2: ये तो है ही है,
1: आते ही
2: बिल्कुल। हाँ। पहला ही है विद्यार्थी का पहला लक्षण ही है कि हमको रेगुलर आना है। विद्या अर्जित करने के लिए तो हमें रेगुलर रहना ही पड़ेगा,
1: अनुशासन में रहना है। तो इसका बात रेगुलरिटी हर रोज हम जब भी स्कूल खोलता है आना चाहिए। इसका बाद सभी गुण आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगा, सब आ जाएगा।
2: फिर भी सर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना,
1: जी सर,
2: बहुत दूर से आते हैं, ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से आते हैं, और इनको टाइम दे रखा है हमने 7:15 बजे, 7:20 तक ये लगभग 95% और अब तो 100% उपस्थिति हो जाती है 7:20 पे, 7:25 पर।
1: ये तो अनुशासन है,
2: ये है सबसे पहला अनुशासन इनका, यही है
1: समय से पहले आना।
2: आज इनकी उपस्थिति 7:20 पर, 7:30 का टाइम है, लेकिन हमने इनको टाइम दे रखा है 7:15 बजे का, और 7:25 तक सभी बच्चे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं। देख लो,
1: देखो
2: कितनी परिस्थितियों से गुजर के आते हैं, इन्हीं को पता है।
1: जी
2: आगे हमको पता है इनकी परिस्थिति,
1: हम भी पढ़ते तो हमको भी पता है, हम भी तो ऐसे परिस्थिति में पढ़ते हैं, तब जाकर आगे बढ़े। परिस्थिति आएगा इतना, हम तो 7-8 किलोमीटर जाते सर,
2: बिल्कुल
1: पढ़ाई हमारा समय में इतना नजदीक स्कूल नहीं था, हर ग्राम पंचायत भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारा गांव में नहीं रहता था उड़ीसा में सर। 9th क्लास से बस 7th क्लास पढ़ने के लिए हमें 5 किलोमीटर, मैट्रिक 10th क्लास तक हम 5 किलोमीटर, फिर कॉलेज 12वीं क्लास करने के लिए हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल हो चाहे साइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल उस समय नहीं था। और आप तो भाग्यवान है सभी, हमसे भी आप नजदीक है, एक ग्राम पंचायत का अंडर में रहते हैं, तो तब भी अभी का समय में आपको मुश्किल लग रहा है समय को, उस समय हमको मुश्किल लग रहा था, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो आएगा ही, लेकिन उसमें हमें पास होना है। पास होना है कि नहीं? पास होना है और पास रहना है। किसका पास? ऊपर वाला का पास, परमात्मा का पास। बुद्धि रहेगा ना तुम्हारा चार्जिंग होगा बैटरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति, वो भी हमारा सर ही कर देंगे लास्ट में।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बढ़ाते अगला प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति होगी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का जो मिलित सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है और सब सुन पा रहे सभी का आवाज को अंतिम की और हम चल रहे हैं और हमारा सर इस कार्यक्रम को सजाएंगे वंस मोर लास्ट सर स्वागत।
2: धन्यवाद सर आपका। हमारे जो एक आप पढ़ते आ रहे हो सर सिक्स क्लास से ट्वेल्थ तक सभी में पढ़ते हो या कबीर कबीर पढ़ते हो ना, कबीर का अर्थ क्या है पता है? कबीर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, सिर्फ हमने उसको नाम दे दिया गया। कबीर क्या है? का से करुणा, बा से बीज और रा से रम रहा। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का बीज रम रहा है वो व्यक्ति कबीर है, वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। करुणा, करुणा से ही हमें हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, है ना, प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वो कैसा भी है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा है तो हम कबीर हैं। तो कबीर साहब का एक भजन है, उससे इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर। कबीर

0: हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी। हम पंछी परदेश मुसाफिर। बोलो सतगुरुदेव की जय।
1: तो कितना सुंदर और भाव का साथ, दिल का साथ गाए सर ने और सभी को मन मुग्ध कर दिए। और पंछी आई और कभी भी जा सकती है। तो हम सब मेहमान है संसार में, आत्मा पंछी कभी भी उड़ सकती है और आई तो जाएगी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और मैंने सोचा नहीं था सर इतना सुंदर रूप में गीत गाते हैं और भाव और भावना का साथ सभी बच्चों को आत्मा साथ करा दिए, मन मुग्ध करा दिए। और वाणी में जो मधुरता वो विशेषता आज देखने को मिला, किन कबीर का जो वाणी, कबीर वाणी जो कहते हैं वो वाणी में मधुरता सही में, और गीत में भी मधुरता। और हमारा बच्चे भी मीठे बच्चे है, हमारा सभी बच्चे मीठे है, किन्तु गीत मीठे सुने और मीठे गीत गाए तो मीठा वाणी में सभी मन मुग्ध होगी। तो मैम को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ को, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी ने सजाया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सर भी अपना आवाज को रोक नहीं पाए, वांच मोर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी। और
2: धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप विद्यालय में आए,
1: मौका मिला तो सर मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया जैसे, तो चौका छक्का लगा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाए। हाँ कि नहीं बच्चा अच्छे गए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे सर, नमस्ते।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और आज का कार्यक्रम दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब हम संगीत से प्यार की बात करते हैं तो उन सभी का धन्यवाद करते नहीं थकते जिन्होंने उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया, जिन्होंने उसे नई पहचान दी, नई उड़ान दी। तो आज हमारे समक्ष ऐसे ही एक अतिथि हैं जिन्होंने संगीत को सच में जिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी की, जो कि प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है, शोध निर्देशक है, गुरु है। वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, विद्वानों की सराहना अर्जित की है। वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें या आगरा के ताज महोत्सव की, अनेक सम्मेलनों को उन्होंने अपने गीतों से सजाया है। वो राष्ट्रीय प्रसारण भी उनके कई गीतों का हुआ है, चाहे आकाशवाणी पर हो चाहे दूरदर्शन पर हो। और साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अनेक शोधार्थियों का सफलतापूर्वक उन्होंने PhD भी करवाया है। और आपके अगर जीवन की बात करें तो जैसे संगीत को आपने समर्पित कर दिया है अपना जीवन, तो ऐसी कलाकार हमारे समक्ष हैं। हम बेहद कृतज्ञ हैं कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पधारे। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मैं अमिता त्रिपाठी आगरा से आई हूँ और मैंने 42 वर्ष संगीत के शिक्षण का कार्य किया और सन 1981 में मैंने MA किया। उसके बाद ही मुझे तुरंत रिजल्ट मिलते ही मुझे
0: जी
1: शिक्षक का दायित्व निभाने का अवसर मिला
0: जी।
1: तो उस मामले में बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद है। और मेरे गुरुजी GL गुणे जी ग्वालियर घराने के बहुत मूर्धन्य कलाकार थे, उन्होंने मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा दी और इस बात से वो अति प्रसन्न होते थे कि आप प्रवक्ता हो गई हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा पद मिल गया है, फिर भी आप संगीत सीखना चाहती हैं। तो मैंने उसके बाद 81 में उनसे संगीत का शिक्षकत्व आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया, क्योंकि संगीत डिग्री से नहीं आता है, साधना है। और उनके चरणों में बैठ के मैंने ग्वालियर घराने की तालीम ली।
0: क्या बात है।
1: हाँ। और मेरे विद्यार्थी दूर दूर तक, कोई प्राचार्य हैं, कोई कमिश्नर हैं और अच्छे अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ, जब मिलते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, तो अक्सर पूछती हूँ तो कहते हैं, मैम आपने हमको इतना अच्छे डांट से, प्यार से ना सिखाया होता तो शायद उन बंदिशों को हम याद ना कर पाते। तो संगीत में साधना के साथ साथ एक प्रेरणा, अच्छा मार्गदर्शक और ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं।
0: तो
1: शिष्याओं के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मैंने शायद उन्हें अच्छा रास्ता दिलाया कि आज भी अवकाश प्राप्त होने के बाद भी वो मुझे याद करती हैं।
0: जी।
1: तो इस तरह से संगीत का सफर निरंतर, 8वीं क्लास में थी। हाँ। सन 19,
0: ये मैं जानना चाहती थी कि शुरू कैसे हुआ ये।
1: हाँ, 1973 से मैं संगीत से जुड़ी। मेरा जन्म 1961 में हुआ था, फिरोजाबाद में। तो मेरे पिताजी को, जो मेरे फादर, उनको संगीत का बहुत शौक था। हाँ, उन्होंने मुझे जो भी बचपन से जो तालीम दिलवाई, जहाँ भी जो शिक्षक होते थे, इसके साथ साथ तबले का भी मैंने कोर्स किया।
0: हाँ।
1: प्रभाकर विशारद, और डांस में भी मैंने पंचम वर्ष किया, सितार में भी पंचम वर्ष किया, क्योंकि वो संगीत की उस समय की उच्च कोटि सत्ताओं को समझते थे। उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम्हें अगर गाना गाना है तो उसके साथ तार

0: लय और इन विद्याओं का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने मुझे उस समय सुविधाएं दी, जबकि घर से लड़की का निकलना बहुत मुश्किल होता था। मैं फिरोजाबाद से आगरा संगीत सीखने के लिए आती थी।
1: क्या बात है, आपके
0: तो
1: पिताजी का बहुत
0: मेरे
1: महत्वपूर्ण रोल है
0: जी
1: इसमें।
0: मेरे पिताजी का बहुत योगदान है। उसके साथ ही उस समय, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। मेरे पति, मेरे दूसरे पिता जो मेरे ससुर साहब थे, वो मेरी संगीत की साधना में निरंतर मुझे उकसाते थे कि तुमको साधना करनी है, तुम हमारी बेटी हो तो मैं साधना करी। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बहुत भाग्यशाली थी और कि मुझे उसी तरह का वातावरण
1: मिला
0: ससुराल में भी मिला।
1: जी, क्या बात
0: तो
1: है।
0: मेरी संगीत की शिक्षा में मेरे मायके पक्ष के साथ साथ ससुराल पक्ष का भी बहुत अदम्य योगदान है।
1: क्या बात
0: मेरे
1: है।
0: ससुर साहब वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान,
1: अच्छा,
0: हाँ, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, जिनको कि पढ़ाया जाता है।
1: वाह
0: हाँ, एक पिक्चर आई थी दिल्ली की पिक्चर में,
1: जी,
0: पिताजी की किताब, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी किताब धर्मेंद्र लिए हुए हैं, उसमें उनका नाम भी है।
1: वाह क्या
0: जब भी
1: बात
0: आप
1: है।
0: देखेंगे दिल्ली की पिक्चर तो ध्यान से देखिएगा, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में जो बातचीत होती है, उसमें जो पुस्तक लिए हैं संस्कृत की, उसमें मेरे ससुर साहब का नाम है। मायके पक्ष से भी मैं पत्रकारों के परिवार की बेटी हूँ,
1: जी
0: तो मेरे अंदर थोड़ा सा नेतृत्व के भी गुण थे। तो मैं
1: जी
0: अपनी शिक्षक, जो हमारी यूनियन होती थी, उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैंने नेतृत्व भी प्रदान करने की कोशिश की। तो संगीत की साधना एक प्रकार का नेतृत्व ही है। उसमें जब अनुशासन के साथ हम बैठक करते हैं, साधना करते हैं, गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ संगीत की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होता है और एक कोशिश रहती है कि आप निरंतर उसमें साधना में रत रहें।
1: जी
0: और विद्यार्थियों को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ
1: जी
0: कि संगीत से, के अनुशासन से
1: जी
0: जीवन में समग्र विकास होता है। संवेदनाओं की आवश्यकता बहुत है, जो कि हमें संगीत कलाएं सिखाती हैं, और कलाओं को जब मंच मिलता है
1: जी
0: तो वो निश्चित रूप से प्रस्फुटित होती हैं।
1: क्या बात है। अमिता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने अपने सफर की शुरुआत तो की, तो अमिता जी, क्या हमारे श्रोताओं को कोई आपके ऐसी पंक्तियां हों या कोई भी ऐसे स्वर जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जिनको आप बहुत स्नेह से, वैसे तो आप सब कुछ गाते हैं, आपके पास बहुत खजाना है, लेकिन जो हमारे अगर श्रोताओं को कुछ अगर आप सुनाएं आज तो ये।
0: जी जरूर, कोशिश करती हूँ। मैं आपके समक्ष एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ जो कि राग यमन में है, और कोशिश करती हूँ कि आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेगी।
1: जी

0: अमिता जी, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की ना नॉलेज हो तब भी शायद ऐसा लगेगा कि ये चलता रहे, हम सुनते रहे और इसमें जैसे खो गए थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। ये जैसा जो गीत था यमन कल्याण में
0: जी,
1: इसकी ताल भी एक ताल थी
0: जी,
1: हाँ, जिसके बोल होते हैं धिन धिन धागे त्रिकृत तूना कत्ता धागे त्रिकृत धीना। तो ये इस लय में उस लय का कैसे गीत उसको बांधा गया था, ये मैंने अपने जीएन गुणे जी से, गुरु जी की इससे शिक्षा ली थी। तो मुझे उन्होंने कई बंदिशें सिखाई थी यमन कल्याण में, दस दस बारह बारह, कोई तीन ताल में, कोई एक ताल में, कोई रूपक में, वो विभिन्न तालों में सिखाते थे बंदिशें। तो उसमें से एक मुझे याद आ गई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिभूत हूँ कि आपको पसंद आई, थैंक यू।
0: बहुत सच में, बहुत शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं ना, तो कई बार एक आज हम देखते हैं कई तरह के संगीत हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी है और बहुत पॉपुलर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जब सुनते हैं तो वो जो महसूसता होती है वो बयां करना बहुत मुश्किल होता है, वो
1: दिल की उच्चतम अनंत गहराइयों से जो अनहद नाद की अंदर से अनुभूति होती है। ऐसे ही मैं वहाँ ज्ञान सरोवर में अभी गई थी, वहाँ पूरे टाइम मुझे इतना आध्यात्मिक वातावरण आकर्षित किया, क्योंकि मेरे संगीत की साधना करती तो वो सब ओम की साधना, वो सब तो मुझे बहुत इतना अच्छा लगा उस आध्यात्मिक पवित्र प्रांगण समारोह में, कि मैं बहुत हृदय से अभिभूत हूँ। ऐसे कार्यक्रम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे निरंतर अक्सर बुलाते रहे, ये मुझे मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद होगा। बहुत नमन करती हूँ, ओम शांति।
0: अमिता जी, यहाँ पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी।
1: जी जरूर।
0: क्योंकि जब संगीत की शिक्षा की बात होती है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, तो आप जब शिक्षा ले रहे थे वो कैसा था, मतलब क्या दिनचर्या होती थी या कैसा वो रिश्ता होता था गुरु के साथ, क्या वहाँ का कुछ उस समय के बारे में कुछ बताएं?
1: जी जरूर बताऊं। हम लोग सुबह उठते थे 4 बजे, हमारे फादर सुबह 4 बजे उठा देते थे, तो उस प्रकार से हम संगीत का रियाज करते थे। और हमारे गुरुजी का भी यही नियम था कि सुबह उठ के हमको 5 बजे स्वरों की साधना, स्वर गाते थे हम, फिर उसके बाद आकार ईकार उकार में स्वरों का अभ्यास करते थे, ओम की साधना करते थे, तो उससे स्वर पक्के होते हैं। और जितना आप, मैं अपने शिष्याओं को भी, मैंने अपने छात्रों, अभी भी मैं एक विद्यालय से जुड़ी, मेरे गुरुजी का जो विद्यालय था वहां मैं जाती हूँ रिटायरमेंट के बाद शाम को 3 घंटे, और कोई पैसा नहीं लेती हूँ, निःशुल्क वहाँ अपनी सेवाएं देती हूँ, क्योंकि इतना हमने समाज से लिया है तो अब हमारा समय है कि हम समाज को दें, उन विद्यार्थियों के माध्यम से, और या जो भी और कोई उच्च शिक्षा, कोई भी जानकारी जानना चाहे पीएचडी के मामले में को भी, तो मैं उसको जो भी हेल्प होती है, ये मेरा सौभाग्य है कि उन छात्राओं के, उन बच्चों के मैं काम आऊँ, समाज के काम आऊँ, तो मैं वहां जाती हूँ। तो नियमित जो एक विद्यार्थी और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो बिल्कुल माता पिता पुत्र पुत्री की भांति होता है, हाँ, और माता पिता गुरु, गुरु का स्थान भी समकक्ष ही होता है माता पिता की। तो उन बच्चों को बहुत जो सिखाना चाहिए हमको, बहुत प्यार से, लगन से, और जहाँ कुछ संचेतना उनको देनी हो वहाँ देनी भी चाहिए, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं तो हमको कहना पड़ेगा। तो पहले तो स्वयं अपने आचरण में गुरु को वो सब बातें लानी होती है, क्योंकि विद्यार्थी संगीत तो सीखता है लेकिन बाकी चीजें स्वयं देख के गुरु के आचरण से सीखता है। ऐसे पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी बच्चे हम बहुत कुछ कह के नहीं सिखाते हैं, हम स्वयं आचरण करें, सुबह सुबह खुद जल्दी उठें, टेक्नोलॉजी का प्यार प्रयोग एक साधन के रूप में करें, उस पर एकदम डिपेंड ना हो जाएं कि पूरे दिन व्हाट्सअप, ऐसे आजकल वहां भी चर्चा चली थी जैसे कि, तो मुझे यही लगा कि जो भी हमारे यहाँ ये व्हाट्सअप है, ये सशक्त माध्यम है, उनको हम सीमित साधन की तरह यूज करें, एक माध्यम की तरह यूज करें, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। वो अपनी अनुशासन हम करेंगे तो हमारा विद्यार्थी, चाहे वो शिष्य हो, शिष्या हो या पुत्र पुत्री हो, वो हमें अनुकरण निश्चित रूप से करेंगे। तो ये बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है, जैसे माँ का बेटे बच्चे से होता है, उसी प्रकार से अपने विद्यार्थियों से वही रिश्ता होता है।
0: तो आपको लगता है अमिता जी कुछ बदलाव आया है या अभी भी ये वैसा ही है?
1: मैम, बदलाव तो आया है, और थोड़ा सा ये अपने संस्कार और व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, हम किस परंपरा से आए हैं, क्या हमने घर में अपने देखा है, उस प्रकार के गुरु हैं तो वो फिर वही। हमारे गुरुजी ने कभी हमसे कोई पैसा या तो नहीं हमसे ली, हम उनकी सेवा करते थे वो बात अलग है, लेकिन एक ऐसा पवित्र उन्होंने हमें वातावरण दिया, वैसे को नहीं देखना है। मैं कमाती थी, प्रवक्ता हो गई, फिर भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया। आप आती हैं, अमिता जी आती हैं, सबको बताते थे अमिता जी फिरोजाबाद से आती थी, क्योंकि मैं, मेरे गुरु जी आगरा में थे, मैं फिरोजाबाद से नियमित आगरा आती थी, और 5 बजे से 7 बजे तक मुझे शिक्षण ग्रहण करती थी उनके चरणों में बैठकर, और फिर बस से अपने घर आती थी। अनमेरिड थी, अविवाहित थी, तो माता जी चिंता भी करती थी, लेकिन मेरे पिताजी का बहुत सहयोग था, मेरे को बहुत विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर, तो वो तालीम इस तरह चलती थी। और फिर जाके, क्योंकि मेरा जॉब 19 वर्ष में ही लग गया था।
0: अच्छा
1: जी, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि एक साथ मुझे चार चार जॉब मिले।
0: अच्छा,
1: जब मैं एमए पास किया तुरंत ही मेरे पास नौकरी एक जगह लोगों की नहीं रखती, उस समय एमए पास करके लग जाती थी एक तो। फिर थोड़ा सा मेरा इतना प्यार भरा रिश्ता रहा सबसे, जहां मैं पढ़ती थी वो मेरा इंतजार करते थे कब मैडम एमए करके आए, लड़की है तो हम इसको अपने विद्यालय में रख लेंगे। इस तरह से मुझे कॉलेज की जॉब 19 वर्ष पार किया था, मैंने 20वां लगा था सन 1981 में। मैं बरेली से मैंने अपना शिक्षक की यात्रा शुरू प्रारंभ की।
0: क्या बात है अमिता जी, मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं आजकल बहुत से लोग हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, टेंशन है, जीवन में डिप्रेशन भी आ रहा है कई, तो क्या कोई आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ये सुने या इस प्रकार का संगीत सुने जो मदद कर सके, या कुछ अगर आप ऐसा सुनाएं हमारे श्रोताओं को जो आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार का अगर आप संगीत सुनेंगे तो आप अपनी स्थिति को भी बेहतर कर पाएंगे?
1: जी, कई बच्चे आते हैं हमारे पास, कुछ तकलीफ में होते हैं, परेशान में होते हैं, लेकिन संगीत का हम प्रारंभ सरगम से ही करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रांतीय लोक संगीत है, भक्ति संगीत है, वो छोटे छोटे गीत जो होते हैं, जैसे मैं एक जैसे कहूँ, बच्चे का कुछ नहीं जानते, बच्चे जैसे राम का सब जीवन चरित्र सब जानते हैं, छोटा सा एक हम छोटी छोटी हम बंदिशों में बताएं उनको, राम

0: सीधा सीधा है इस तरह से, ज्यादा उसको टेक्निकल ना, शुरू शुरू में प्रारंभ में अवसाद इन सब चीजों से निश्चित रूप से दूर होता है, भक्ति संगीत है और जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उसके छोटे छोटे गीत बनाकर उनको, और सरंगम के माध्यम, जैसा मतलब विद्यार्थी हो, विद्यार्थी किस लेवल का है, डिप्रेशन का शिकार है, और थोड़ी सी हम उसको एक गाइडेंस भी देते रहे, समझाते रहे उसके मन की बातों को
1: जी।
0: क्योंकि सारा कुछ मन में है और किस परिस्थिति से वो आहत है उसकी बात को पूरी सुननी चाहिए, सुनने के बाद फिर संगीत के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सुनना भी एक मैडम लर्निंग प्रोसेस है
1: जी।
0: श्रवण की एक क्रिया है, बहुत सशक्त क्रिया है। सुनेंगे जितना सीखने से नहीं आता, ये सुनने आता है। हमारे गुरु जी के विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ जो आधा घंटा सीखता है वो पहले एक घंटा सुनता है, तो उससे काफी हद तक बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके अवसाद दूर होते हैं, क्योंकि सुनेंगे हम, सुनने की धैर्यता ही तो खत्म हो रही है वर्तमान में
1: जी।
0: वो सहनशीलता, वो धैर्यता, बड़ों के प्रति थोड़ा आदर सम्मान, तो जब बैठने की प्रक्रिया से एक अनुशासन आता है
1: जी,
0: तो उस प्रक्रिया से जब सुनेंगे तो फिर उतनी देर उनको समझने का मौका मिलेगा
1: जी।
0: है ना, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ, कोशिश करती हूँ।
1: बहुत सुंदर आपने बात कही, एक घंटा सुनते हैं तो आधा घंटा फिर आप सीखते हैं, गाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो सुनना बहुत जरूरी है जीवन में।
0: उसमें कई कई राग, उनको बच्चे डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, उन सबकी भी उनको समझ में आता है ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है, फिर इतना अच्छा गा रहा है, तो बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाती है,
1: प्रेरणा बन जाती
0: कि नहीं मुझे अपना धैर्य नहीं खोना है। हम धैर्य खो के ही तो अवसादग्रस्त हो रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो धैर्य, ये संगीत हमें बहुत धैर्यवान बताता है, हाँ, हमें संवेदनशील बनाता है संगीत की साधना,
1: संगीत से जुड़े तो
0: हाँ बिल्कुल, संगीत वो सशक्त माध्यम है जो हर अवसाद और वेदना का जो पूर्ण करने में सहयोग, सशक्त माध्यम है,
1: सशक्त माध्यम है, बिल्कुल
0: सशक्त माध्यम है।
1: अमिता जी, मैं आपसे एक और, अगर कोई ऐसी, जैसे आपने अभी जो राग सुनाया, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो या रिक्वेस्ट करते हो सभी सुनने के लिए, कोई ऐसा गीत या कोई एक राग अगर हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं।
0: इस समय मुझे याद आ रहा है बस थोड़े उसके राग दरबारी की एक बंदिश याद आ रही है
1: जी।
0: जो अक्सर पसंद की जाती है, माने जा, दरबारी के स्वर में गाधानी कोमल लगता है और ये रात्रि के प्रथम मध्य रात्रि कालीन गाया है, आशा भरी थाट से उत्पन्न होता है, तो इसकी मैं बंदिश सुनाती हूँ आपको।

0: मुझे ऐसा लगता है जब आप गा रहे होते हैं तो उसके बाद कुछ ना बोलूं या कुछ ना पूछूं आपसे।
1: बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपको पसंद आया।
0: इसके बाद शायद कुछ भी कहना कम लगता है, कुछ भी सुनने का मन और नहीं करेगा। आपकी आवाज में सच में जादू है और दिल गदगद हो जाता है सुनकर। अमिता जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ महसूस करती हूँ कि आज मैं आपको लाइव यहाँ सुन पा रही हूँ।
1: थैंक यू सो मच। मैं समस्त ब्रह्मकारी का बहुत हृदय से, भाइयों और दीदियों का बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम आगरा से, ईदगाह से अंशना दीदी हैं, उन्होंने हमको भेजा है और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ज्योति मैम के माध्यम से मैं आई। ज्योति खंडेलवाल आगरा से कथक नृत्य की डायरेक्टर हैं, वो मुझे लाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बहुत सारी सीख यहाँ से लेके, गाइडेंस लेके जा रही हूँ जिससे अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र में उनको वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।
0: अमिता जी, जाते जाते अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप ऐसे टिप्स या गाइडेंस उन्हें देना चाहें कि वो बेहतर गायक बन पाए, या जैसा आपने कहा कि गुरु से और भी चीजें सीखते हैं संगीत के अलावा, तो बेहतर इंसान भी बन पाए, बेहतर गायक भी बन पाए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं नए बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, एक तो उनको बहुत, जो भी मार्ग चुने उनके सामने खुला द्वार है। प्राचीन काल में जो हम लोग पढ़ते थे उससे पहले के काल में उतना साधन नहीं थे, आज तो बहुत अच्छे साधन हैं, इसलिए अपनी जो दिशाएं हैं वो स्वयं तय कर सकते हैं। एक उनके सामने खुला द्वार है, चाहे वो PhD करें, चाहे वो गायक बने, चाहे वो अच्छे कोरियोग्राफर बने, डांसर बने। तो आज तो बहुत ही ये बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो बच्चे अपना मार्ग आसानी से चुन सकते हैं अपनी टैलेंट के हिसाब से। बस वो अपने संस्कारों से बंधे रहे, जो घर का संस्कार है और जो गुरु से संस्कार लिया है उनसे विरत होकर कोई मार्ग ना चुने। और जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जब तबले का आया तो तबला करें। अब बच्चों को ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि मुझे तबला करना है, कि मुझे गाना करना है या कोई वाद्य करना है। जिस चीज की आपके अंदर अभिरुचि हो, अपने टैलेंट को, अपने गुणवत्ता को समझते हुए गुरु के निर्देशन में उस दिशा में अपने संलग्न होकर कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी।
0: जी, तो उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए या फिर क्या सीखना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई गाना गाना चाहते हैं तो वो गाना गाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: ये कहना चाहूंगी कि जो गाना है, कुछ भी आप गाइए, जड़ उसकी शास्त्रीय संगीत है। निश्चित रूप से उनको सरगम का अभ्यास करना पड़ेगा। सरगम का अभ्यास करने से जब स्वर पकड़ में होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के जो सरगमों का जो अभ्यास है वो बेसिक में वो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे विद्यालय में जो मैं जहाँ जाती हूँ वहां पर तानपुरे से गाते हैं सब लोग, नो हारमोनियम। हारमोनियम ध्यान भटकाता है, तो हारमोनियम को बहुत आगे जाके गए, तो विदेशी वाद्य है, शुशुर वाद्य है, लेकिन हम जो साधारण गाना गाते हैं उसमें हारमोनियम बहुत हमें सहायता करता है। लेकिन नींव में जाकर पहले तानपुरे से हमें स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। तानपुरा भी इलेक्ट्रिक तानपुरे चल गए आजकल तो, लेकिन वैसे उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा गुरु के सामने ही अभ्यास करें प्रारंभ में।
0: अच्छा,
1: फिर वो अच्छा लोकगीत भी गा सकते हैं, अच्छा फिल्मी संगीत भी गा सकते हैं, लेकिन स्वरों का अभ्यास गुरु के सामने बैठ के करें। जब पक्के हो जाए सरगम है उनकी, सारे रे गामा शुरू में, फिर ये डिफरेंट टाइप के हो गए, सारेगा सारेगा सारेगा सारेगा, इस तरह के जो छंद हैं, 3 के 2 के 4 के 5 के, तो उन छंदों में जब सशक्तता आ जाएगी, जब उनमें मौलिकता आ जाएगी, एक सुरीले हो जाएंगे वो, तब फिर जाके आगे उनको सीखना चाहिए। प्रारंभ में सरगम का अभ्यास करना चाहिए और गुरु के सामने करना चाहिए। ये तो बेसुरापन आ जाता है ना घर में, घर में भी अभ्यास करने का हम तभी अलाउ करते हैं जब उनका सामने स्वर अच्छा हो जाए।
0: अच्छा।
1: प्रैक्टिस जब भी करनी चाहिए जब आपका गुरु कह दे कि दिस इज ओके, आपका सही हो गया है,
0: तब उसका अभ्यास करें।
1: अभ्यास तब तक नहीं करना चाहिए था जब आपके शिक्षक हैं या गुरु जो भी है वो आपको आदेश ना दे, क्योंकि आप फिर गलत कर लेंगे अभ्यास। तो प्रारंभ में उसको संगीत को सुरीला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्वर में गाने के लिए सरगम को और गुरु के सामने, शिक्षक है या गुरु है जो भी है, क्लास में पढ़े या अलग से पढ़े, उनके सामने ही अभ्यास करना चाहिए। जब पक्का हो जाए फिर आप अपना अभ्यास भी करें घर में और फिर गुरु को सुनाए। यह एक सही तरीका है मैम, कोई भी विधा गाएं आप।
0: जी,
1: क्लासिक, बल्कि वाद्य लोग बजाते हैं सितार और वायलिन और वीणा वगैरह जो बताते हैं, उनके लिए भी, तंत्र वाद्यों के लिए, उसके लिए भी लोग पहले गाना सीखते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, NM राजन थी, इतनी अच्छी वायलिन वादिका, सब गाना बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, गाना सीखने से क्या होता है, वो मन में एक अंदर से तीन अवस्थाएं होती है ना सीखने में, चेतन अचेतन अवचेतन, उनमें संगीत जाता है तो वो फिर निकलने में भी उतना सुरीला निकलता है। तो गायन कला उच्च क्यों मानी गई, क्यों गायन कला सब चीजों की जननी है, गायन कला श्रेष्ठ है, तीनों कलाओं में गायन कला श्रेष्ठ क्यों है, कि हमें कोई साधन नहीं चाहिए, मैंने यहाँ बैठ के आपको गात्र वीणा से जो प्रभु ने मुझे दी है उस गात्र वीणा से मैंने आपको संगीत सुना दिया, मैं शब्दों को भी माध्यम ना बनाऊं फिर भी आकार के माध्यम से भी आपको, लता जी एक आकार लेती थी लोग गदगद हो जाते थे, तो हमें संगीत में गायन कला में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना तबला चाहिए ना हारमोनियम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी अपनी साधना कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गाना तो अपनी साधना के लिए होता है, वो ठीक है हम थोड़ा प्रदर्शन भी करते हैं क्योंकि मन की शांति के लिए, अपना अनहदनाथ अंदर का जगाने के लिए, आत्मा और परमात्मा का पूजा करने के लिए, तो संगीत वो सशक्त साधना है जिसमें गायन कला बहुत उच्च कोटि की है, क्योंकि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है,
0: आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: माता जी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, आपके पसंदीदा?
1: मेरी फेवरेट सिंगर से तो फिल्मी में तो आशा जी है
0: जी।
1: और वैसे जो शास्त्रीय संगीत में मेरे गुरु जी के अलावा बहुत से कलाकार हैं जिनको मैंने सुना है, मुझे किशोरी मुनकर जी बहुत पसंद है, बेगम अख्तर जी बहुत पसंद है, ये अच्छी गजल गायिका थी बहुत अच्छी, किशोरी मुनकर जी का क्लासिकल गाना हे गोविंद हो गोपाल आंसू से ऐसे रुला देता था, बहुत भावुक गाना उनका था, ये मेरी पसंदीदा गायक है।
0: आपको गजल का भी शौक है?
1: गजल का शौक है मुझे, शौक है तो बहुत ज्यादा नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ कोई अवसर आता है तो मुझे कोई कहे तो मैं कोशिश करती हूँ गाने की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वैसे तो मैं शास्त्रीय संगीत की कोशिश में रही हूँ, पर मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर शास्त्रीय संगीत हमने अच्छी विधि विधान से सीखा है तो हम कोई भी गाना कोशिश कर सकते हैं गाने की, तो मैं क्या नाचीज हूँ तिनका मात्र हूँ।
0: आपने इतनी जगह जो परफॉर्मेंस आपने दी, आगरा के ताज महोत्सव की बात करें या वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें, बहुत सारे राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, कोई जैसे आपने गजल की बात कही आपको शौक है, क्या तो पंक्तियां आप गुनगुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
1: थैंक यू, मैं गुनगुना कोशिश करती हूँ। अभी ये गजल का कार्यक्रम हुआ था आगरा में, आशा जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, तब भी मैंने उनके उनको गा के ही श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि संगीतकार की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि उन्होंने जो काम किया है अपनी जिंदगी में उसको गाकर हम उनको सम्मान दें। उनको उनकी प्राइवेट एल्बम से एक गजल मुझे याद आ रही है जो अभी मैंने आगरा में कुछ एक डेढ़ महीने पहले गाई, कोशिश की थी गाने की।

0: आपने श्रद्धांजलि दी और इस
1: श्रद्धांजलि मैंने दूसरे गाने को की।
0: अच्छा,
1: जैसे मैंने अभी गजल का परफॉर्मेंस हुआ था तो मैंने आशा जी की एल्बम से ये गजल गाई थी।
0: अच्छा जी, जी
1: वो उनका श्रद्धांजलि दूसरे से गीत थी। वो उनका बड़ा दर्द भरा गीत है जो मैंने गाया था। आप कहेंगी तो मैं दो लाइन सुनाऊंगी। उनका बहुत पसंदीदा, और जब वो बहुत तकलीफ में थी तब उन्होंने वो गाना गाया था जो मेरे दिल को छू गया। जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो उनका इतनी महान कलाकार को भी इतना कष्ट, कितना कष्ट उनको, पारिवारिक कष्ट उनको हुआ, तब उन्होंने वो गीत गाया था।
0: जी।

0: हमको कभी। ये आशा जी का बहुत दर्द भरा गीत है और इसमें जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी मैंने तो आंखों से आंसू की धारा बैठी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके गीतों को और ध्यान से मैंने सुना, कितनी महान कलाकार को कितनी समस्याओं से गुजर के उन्होंने बहुत संघर्ष से संगीत को
1: संघर्ष किया
0: सीखा सीखा बहुत
1: जी जी
0: अपने
1: जी
0: को सेव करते हुए बचा के। कैसे एक लड़की का जीवन किस प्रकार के होता है, जब उनकी उस सब मैंने जीवन परिचय पढ़ा तो फिर मुझे याद आया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे परिवार ने हमको इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमको सहयोग किया हमारे फादर ने।
1: जी जी
0: माता जी बहुत नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर को संभालने से मुझे जो सहयोग दिया और पिता ने मुझे आगे, मेरे फॉर्म मेरे फादर भरते थे। तो
1: अच्छा
0: कितने ये देख के मुझे लगा कि हम बहुत लकी हैं, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है, बाबा जी का बहुत आशीर्वाद है
1: जी, ऐसे पिता ऐसे माता पिता ऐसे घर
0: जी।
1: मिला। मुझे लगता है जैसा आपने कहा आशा जी की बायोग्राफी शायद हम सबको पढ़नी
0: पढ़नी
1: चाहिए,
0: चाहिए, बहुत
1: बहुत
0: प्रेरक है,
1: प्रेरक है,
0: हर लड़की को तो पढ़नी ही चाहिए, सबको पढ़नी
1: सबको
0: चाहिए
1: पढ़नी
0: जी।
1: चाहिए जी। जैसे कि अमिता जी आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी 19 साल की उम्र में ही आपने शिक्षा का क्षेत्र अपनाया और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया। करीबन 40 से ज्यादा तो आपके शोध पत्र ही प्रकाशित हुए हैं, अनगिनत शोधार्थियों को आपने सफलतापूर्वक पीएचडी भी करवाई
0: जी
1: है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं किस प्रकार के शोध किए, किस प्रकार के टाइटल्स थे या क्या अनुभव
0: जी जी
1: था आपका?
0: जी बहुत अच्छा। शोध कराने में जब मैं 96 में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई तो जैसे ही डिग्री मेरे हाथ में आई या वो लेटर मिला तो विश्वविद्यालय ने कहा अब आपको शोध विशेषज्ञ बनना है, आपको गाइड बनना है। ये देखिए क्योंकि उस समय बहुत कम लोग कराते थे पीएचडी, तो बहुत विद्यार्थी मेरे पास अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए। मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में, एक से एक अच्छे कलाकार, एक आईटीसी से पढ़ी हुई थी डॉक्टर रूबी मलिक
1: जी
0: जो कि लताफत हुसैन खां की शिष्या थी। अब जब वो इतनी बड़ी कलाकार मेरे पास आई तो मुझे लगा मैं ही उनके आगे कुछ नहीं हूँ, पर कहती है नहीं मुझे आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने अपने गुरु जी के योगदान के ऊपर जो कि आगरा घराने के विशिष्ट बहुत उम्दा उच्च स्तरीय कलाकार भी थे और शोध मर्मज्ञ भी थे संगीत के, उनके ऊपर उन्होंने काम किया। लताफत हुसैन खां का संगीत में
1: जी
0: योगदान, मीडियम उनका इंग्लिश था तो बहुत अच्छे से काम किया। फिर उनको एक फेलोशिप मिली तो वो ट्रिनिटाड में चली गई थी जैसे
1: अच्छा
0: अवार्ड हुई,
1: जी
0: और फिर उनका यहाँ पर दाऊदयाल कॉलेज फिरोजाबाद में नियुक्ति में भी मैं ही विशेषज्ञ थी, मेरा ही पद था और मैं ही विशेषज्ञ थी। तो उनको रूबी जी बहुत अच्छा गाती थी आगरा घराने की गायकी, शोध उनकी जो परख थी गुरु के प्रति इतना समर्पण था, तो मुझसे बोली कि मैं इस तरह उनके ऊपर ही कुछ काम करना चाहती हूँ। उनकी जो विशिष्ट गायकी थी उनके ऊपर उन्होंने उनकी विशेषज्ञता के परतों से शोध के निष्कर्ष निकाले। उन्होंने उनकी गायकी कैसी थी, उनकी बंदिशें कैसी थी, आधुनिक संदर्भ में उनकी क्या क्या और विशेषताएं परख हो सकती थी,
1: जी
0: तो उन्होंने उनकी बंदिशों के ऊपर काम किया
1: क्या
0: अपने
1: बात
0: गुरु
1: है
0: जी की गायकी के ऊपर, और बहुत अच्छा उनका काम हुआ। आगे जाके उनको फेलोशिप भी मिली और वो फिर ट्रिनिटाड में सेटल हो गई
1: क्या बात है
0: जी। अब तो रिटायर हो गई हैं, आ गई हैं।
1: जी
0: दूसरा मुझे एक मिली शोभी माथुर ने आगरा की, बहुत उच्च स्तरीय शोरमणि प्राप्त है उनको, कलाकार हैं, उन्होंने भी बंदिशों के ऊपर काम किया, बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें बनाती थी वो। तो
1: अच्छा
0: जिस विद्यार्थी के अंदर जो गुणवत्ता हो, आगरा कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत प्रोफेसर ने मेरे साथ काम किया, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ मुझे अच्छे विद्यार्थी मिले। कुछ ऐसे भी मिले जिनके साथ मैंने बहुत मेहनत की, एक ने किया संगीत के माध्यम से, मतलब मीडिया एक सशक्त माध्यम है
1: जी
0: संगीत के प्रचार प्रसार में, उस
1: बिल्कुल
0: लड़की ने भी बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले। जैसे हम पहले कहते थे ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो संगीत से हर चीज बहुत आसानी से याद हो जाती थी, उसको कहने में उसका प्रचार प्रसार करने में
1: जी
0: एक सशक्त माध्यम था।
1: जी बिल्कुल
0: और भी विद्यार्थी आए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तबले का योगदान पर काम
1: अच्छा
0: किया, क्योंकि मैं तबले में भी मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो
1: बिल्कुल
0: तबले के विद्यार्थी भी मेरे पास आए, क्योंकि संगीत में तीनों ही चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मैं प्रोफेसर हुई तो उसके बाद फिर मेरे पास तबले के भी विद्यार्थी आए, जिनको पांच विद्यार्थियों ने ऐसे किए जिन्होंने नेट क्वालिफाइड थे, हाँ
1: अच्छा
0: उनको JRF मिलती थी।
1: जी
0: हाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने काम किया, बहुत मेहनत की और अच्छा मुकाम हासिल किया। अभी
1: जी
0: एक का तो पीलीभीत में अपॉइंटमेंट हो गया है, नियुक्ति हुई है।
1: जी
0: एक रचना गुप्ता जी हैं, वो नवोदय विद्यालय है, उनका भी आगरा में कुंडों में जगह वहां उनका हुआ है।
1: क्या बात है
0: तो और एक मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी जिंदगी में बहुत यादगार विद्यार्थी हैं,
1: जी
0: विद्यार्थी मुझसे उम्र में बड़ी थी, वो चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र की डायरेक्टर हैं,
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी
0: तो
1: क्या
0: काफी
1: बात
0: ओल्ड है, और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक की डांसर है।
1: वाह
0: वो जब मेरे पास आई तो मेरे मैंने कहा दीदी आप तो कितनी गुणी हैं, आपको क्या कुछ करना नहीं। अमिता जी मैंने सुना है पीएचडी तो आपके निर्देशन में करनी है, क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हैं, आपके अंडर में कोई विद्यार्थी कभी परेशान नहीं होता है। तो ये मेरी, मुझे उनके मुंह से सुन के लगा शायद मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ, कि इतनी दूर से चंडीगढ़ से आके उनको ये लगा कि मैं ही उनको करा सकती हूँ। तो ये मेरे, मुझे लगा शायद मेरा इस, मेरा जो मार्ग है वो ठीक चल रहा है, मेरा लोगों का जो स्नेह है, तो मैं उससे धन्य हुई और मैंने उनको फिर ग्रहण किया। रातों रात हम दोनों ने मिलकर सिनॉप्सिस बनाई और दीदी का काम किया उन्होंने, लोक पंजाब के लोक संगीत पर, उन्होंने कथक में
1: जी,
0: कथक की थी वो
1: जी,
0: डॉक्टर शोभा कौसर
1: जी।
0: हाँ, तो कथक की अंतरराष्ट्रीय ख्याति पर मॉरिशस वियतनाम सब जगह जाती थी प्रोग्राम देने, और बहुत अच्छा मुकाम है उनका कथक क्षेत्र में
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे अंडर में काम किया, तो तीन चार विद्यार्थी तो ऐसे लगे जिनको मुझे देख के ये लगता था ये तो खुद ही इतने अभीष्ट कलाकार हैं, इनको मैं क्या गाइडेंस दूंगी, लेकिन उनको लगा कि नहीं आपके साथ ही करना है। तो एक रिसर्च करते समय एक टॉपिक होता है शोध प्रविधि, है ना, शोध प्रविधि, और सेकंड में हम डालते हैं उपलब्ध साहित्य का सिंगालोकन, जो भी आपने टॉपिक लिया उससे संबंधित कितनी बुक्स पढ़ी आपने। अक्सर विद्यार्थी उनको छोड़ देते हैं, संगीत में खास तौर से जो रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजी और इनका वो ऐसे विवरणात्मक ज्यादा टॉपिक होते हैं, क्योंकि संगीत में अभी रिसर्च का मार्ग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि कोई कराता नहीं था, होते थे आप देखें
1: बहुत गिने चुने,
0: हाँ गिने चुने होते थे और विवरणात्मक ज्यादा लिख देते थे, उसमें विवेचनात्मक या रिसर्च मेथोलॉजी डाल के उसके अच्छे शोध की संभावनाएं क्या है, वो उस तरह की तुलनात्मक। तो रिसर्च का मतलब तो ये होता है, मतलब रिसर्च जो सर्चेज हुई है उनको हमें फिर से पढ़ के कुछ नए मार्ग लोगों के सामने प्रशस्त करने होते हैं। तो इस तरह की रिसर्च मुझे कराने का मुझे मौका मिला, जिसमें विद्यार्थी का भी बहुत सहयोग होता है और मेहनत तो गाइड को ज्यादा करनी पड़ती है,
1: गाइड की बहुत मेहनत होती है। ये रिसर्च फील्ड में कहते हैं अगर आपको अच्छा गाइड मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाता है।
0: सही कह रही, ये तीनों लोग इसीलिए आए थे, अच्छा गाइड का मतलब है कोई सहयोग भी करे कोई व्यपना। आजकल गाइड का आप जानती हैं जैसा है वातावरण, तो वो तो उस मामले में मुझे सुन के ये अच्छा लगता था कि पैसा सब चीज नहीं होती, वैल्यूज भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले काम करने के, और अभी मैंने जो मेरे अंडर में जमा हुई है दिव्यांगता के ऊपर,
1: अच्छा।
0: दिव्यांग बच्चों के ऊपर मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कराए, तो उस बच्ची को मैंने संगीत के माध्यम से दिव्यांगता की भागीदारी, एक सशक्त माध्यम,
1: अच्छा।
0: दिव्यांग है
1: जी,
0: और
1: जी।
0: उसने संगीत सीखा है
1: जी, जी।
0: तो उस माध्यम से वो अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं, नहीं तो कोई कहता अरे ये ऐसे है वैसे, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने दिव्यांग शब्द जो दिया उससे बड़ी इज्जत मिलती है। तो उसमें काम किया उस लड़की ने कि

0: भी ठीक ठाक काम है, उसने जमा कर दिया उसको, अब देखते हैं आगे एक और वायवा होगा तो उसमें भी कुछ और अच्छी गाइडेंस देकर उसको परिमार्जित करने की कोशिश कर।
1: मतलब संगीत के क्षेत्र के अलग अलग जो
0: आयाम है,
1: हाँ, और बहुत ही विभिन्न, मतलब ऐसे जो विषय है वो एक दूसरे से बड़े अलग है। और वैसे संगीत सागर है, कितने गोते लगाए जाए उसमें, लेकिन शोध का माध्यम बड़ा
0: ये होता है, विद्यार्थी भी सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी निरंतर सीखते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें शिक्षक का भी लाभ है, गुरु का भी लाभ है और विद्यार्थी। इससे पहले समय था उसमें उत्तर गायन शैली से ही गुणवत्ता मानी जाती थी, कौन कितना बड़ा कलाकार है, लेकिन वर्तमान समय में रिसर्च करें आप, पेपर लिखें आप अभ्यास भी करें, अच्छे कलाकार भी, एक अच्छे शास्त्रज्ञ भी बने, तो ये अलग अलग मार्ग हैं, इन सब में महारत हासिल करते हैं।
1: आपने शोध पत्र भी लिखे
0: जी,
1: 40 से ऊपर आपने शोध पत्र लिखे, उसमें किन विषयों पर आपने काम किया?
0: जी, मैंने उसमें एक दो तीन पेपर निकाले थे, मीराबाई जो मध्यकालीन संगीतज्ञ थी, क्योंकि मेरे रिसर्च का टॉपिक मीराबाई थी, मध्यकाल भक्ति गीत संगीत की परंपरा एवं मीराबाई, तो मैंने उनकी जो उनका संगीत तत्व था, मीराबाई का जीवन आपने देखा हो तो मीरा के भक्ति गीत संगीत के प्रयोग कैसे, कौन कौन से अभिनव प्रयोग थे, है ना, और ये मनोविज्ञान के ऊपर भी मैंने लिखा।
1: अच्छा।
0: संगीत और मनोविज्ञान जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं संगीत के शिक्षण प्रशिक्षण में, ये तीनों अवस्थाएं हमारी काम करती हैं मनोविज्ञान की, इस पर भी मैंने पेपर लिखे, कोशिश की। और मध्यकाल में भक्ति संगीत के कौन कौन से प्रयोग हुए, मध्यकालीन कवियों ने संगीत को क्यों सशक्त माध्यम बनाया, संगीत को क्यों माध्यम बनाया, उसमें मीरा कैसे सबसे सशक्त हो गई, क्योंकि वो स्वयं प्रेयसी हो गई, उनके और प्रभु के बीच में कोई नहीं था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई माध्यम ही नहीं था, सूरदास जी ने उद्धव को माध्यम बनाया, लेकिन मीरा जी तो स्वयं प्रेयसी हो रही, तो ये कैसा समर्पण, एक लगन और कैसा प्रेम था अलौकिक, कि इसी एक लाइन से समझ आता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो मीरा एक सशक्त माध्यम थी, उन्होंने उस समय की नारी को एक जो नेतृत्व प्रदान किया, तो मीरा जी का जीवन मुझे बहुत अंदर से आकर्षित करता है, उनके नेतृत्व को देख के, उनके संगीत और समर्पण को देख के, उसमें त्याग तपस्या और बहुत कुछ था।
1: जी, समर्पण की बात आती है तो मीराबाई का नाम ना लिया जाए ये तो संभव ही नहीं होता।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: थैंक यू
1: जी। क्या आप कोई ऐसा, जैसे आप भक्ति संगीत की बात कर रहे हैं, मीराबाई जी की बात कर रहे हैं, तो क्या दो और पंक्तियां आप हमारे श्रोताओं को?
0: जी जरूर, थैंक यू मैम।

हर भी दो लाइन में मैं एक आपको एक और उनका समर्पण का प्रेम जो गीत मैंने बताया उसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, वो छोटी सी ताल में है और बड़ा अच्छा, वो मैं ज्ञान सरोवर में गा के भी आई हूँ, पसंद आया सबको।

0: ये उनका बड़ा समर्पित गीत जो मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कोई है नहीं, तो कितना समर्पण, ये प्रेम की अभीष्ट पराकाष्ठा आप देखती हैं इसमें। और वर्तमान नारी के लिए भी उन्होंने एक संदेश भेजा कि जिस रिश्ते में रहो प्रेम, प्रेम सर्वोत्कृष्ट हर रिश्ते में, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, त्याग और उसमें बलिदान, तो ये रखेंगी भाव तो हर रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप भी आनंदित रहेंगी और आपके साथ जो रहेगा वो भी आनंदित रहेगा। जी, ये जीवन का, जीवन जीने की कला मैं वहाँ भी सीख के आई हूँ, यही और ज्यादा प्रबल हो गई और तो मुझे वहाँ इसीलिए बहुत अच्छा लगा। जी, आनंद, आनंद मतलब पराकाष्ठा आनंद, चंद्रकांता दीदी वगैरह सबका, सारी दीदियों का बहुत उत्प्रेरक। हालांकि मैं इतनी ऐसी हतप्रद हो गई वहाँ सुनकर, अभिभूत हो गई कि मैं वाणी, ऐसा लगा मैं निशब्द हो गई आपके सामने, मैं अच्छी बातचीत कर रही हूँ, ऐसा लगा मैं प्रेम में आनंदित हो गई, अभिभूत हो गई, निशब्द नहीं हो जाता है व्यक्ति, उस तरह का मुझे लगा।
1: हम अभी निशब्द हो गए आपको सुनकर, सच में मुझे लगता है हम और हमारे श्रोतागण सभी इस वक्त भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि हम आपको सुन पाए। आपकी आवाज है ये हमारे दिलों में बसाकर हम रखेंगे। मुझे लगता है
2: जैसा आपने कहा कि संगीत बहुत मदद करता है हमारे जीवन शैली में, आपने बताया डिप्रेशन या स्ट्रेस भी होता है तो संगीत किस प्रकार से हमें खींच कर बाहर निकाल लेता है। और हम सभी, मैं फिर से ये कहूंगी, बहुत भाग्यशाली है कि हम आनंदित होने का ये अवसर मिला, आपको सुनने का ये अवसर मिला। बहुत बहुत दिल से आभार है आपका अमिता जी।
0: थैंक यू, मैं भी बहुत आह्लादित हूँ आपसे, आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करके गायन के माध्यम से या अपनी जो भी जीवन की जो अनुभव था उससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सादर के साथ अंदर से अभिभूत हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। ओम शांति,
2: ओम शांति। तो दोस्तों, आपने सुना प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी, उनकी साधना को जाना, उनके सुरों को अपने दिल में आज हमने समा लिया और एक प्रेरणा स्रोत हमें और मिले जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, अमिता जी का हम दिल से आभार तो व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ जो प्रेरणा मिली उसे जीवन में साथ लेकर चलते हैं ये वादा भी करेंगे। पर फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। तो आज बाबा कहते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते कि भगवान जिसको शमा कह पुकारते हैं वो कौन है। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ महिमा गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। बाबा कहते ये उन्हें पता नहीं कि भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहां बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, महफिल में खाना पीना आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको तो क्या मिल रहा है? बाबा कहते इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा ऐसे कहे हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। तो बाबा कहते बाप जैसे कि हलवा खिलाते हैं और दुनिया में सस्ते से सस्ती वस्तु है चना, तो वो चना खिलाते हैं। कहां हलवा कहां चना, दोनों में कितना फर्क है। बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान इस वक्त दे रहे हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को कितना प्यार से बेहद के बाप को याद करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं, बेहद के बाप को देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस समय उन्हें गरीब बच्चों को गोद में लेकर के उन्हें राजाओं का राजा बनाना है, और वो भी दैवी राजा। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर है, जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। बाबा कहते अपनी जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, हम बाबा के बन गए हैं, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो, जन्म जन्म सुनते आए हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है, प्रेजेंट को भी अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है भविष्य में, जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट को जाना है, प्रेजेंट को अनुभव किया है, बाकी फ्यूचर को बाबा कहे अभी तक प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ उसका अनुभव किया है, बाप ने ही समझाया है, बाप बिगर कोई समझा ना सके। अथाह मनुष्य है परंतु वो कुछ भी नहीं जानते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत में कुछ भी नहीं जानते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते हैं। अभी कलयुग का अंत है यह भी मनुष्य नहीं जानते, हाँ आगे चल अंत को जानेंगे, आगे चल के फ्यूचर को जानेंगे, अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे। हाँ, इस सृष्टि
कल्प वृक्ष का जो मूल है उसको भी जानेंगे, अंत को भी जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। इसको कहा जाता है कि ये पढ़ाई है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी न आसुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं, जिन्हों को आसुरी राजाएं पूछते हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं है। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते हैं, महिमा सिर्फ गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहां बहुत इकट्ठे हो, महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अथवा ऐसे कहे कि हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाबा कहते दुनिया की महफिलों में सौगात का आदान प्रदान नहीं होता है, यहां तो बाप हमें सौगात देने आए हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? ये रात दिन का फर्क है। मनुष्य क्या देते हैं और बाप हमें क्या देते हैं? बाबा कहे बहुत अंतर है। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चना खिलाते हैं। हाँ, बाबा एक प्रकार से जैसे कंपैरिजन करते, कहां हमको बाबा इस महफिल में राजाओं का राजा बनाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, शराब आदि पीकर एकदम नशे में हो जाते हैं। तो वो जैसे चना खाते हैं, हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते हैं, बाबा कहते एक दो को चने खिलाते रहते हैं, कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है ना ये तो चने चबा रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। बाबा आकर के हमें नई दुनिया की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं, परंतु वह क्या आकर करते हैं किसको भी पता नहीं है। वह बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं देते हैं। मात पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तुम भी जानते हो वह मात पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। बाबा कहे तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने के हकदार बन चुके हैं। गोद ली है, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं। मात पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, लौकिक मात पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं। समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहां बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं, बाबा कहते ये बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यह भी बच्चे बनते हैं, कहते हैं हम आपके हैं, तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना, परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्म अष्टमी, अपनी जन्म जयंती बाबा कहे
उसको जन्माष्टमी, अपनी जन्माष्टमी तो बड़े

कोई तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती है। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े। कौन सा जन्मदिन? ये मर जीवा जन्मदिन। बाबा कहे मर जीवा जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं। आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए, फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है। हमारी अपनी जन्माष्टमी जिस दिन हमको निश्चय हुआ उस दिन शुरू होती है। तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूं। यहां कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो, ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे, याद न पड़ने का सवाल भी नहीं उठता है। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते ही है। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। ये भगवान वाच ही है कि मेरे सब बच्चे हैं, भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं ये सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एजेड हो गए हैं, काम चिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर वन गोरा था सो पुजारी सांवरा बन गया है। भावक है जो नंबर वन था वही अब पुजारी नंबर वन भी बन गया, सांवरा बन गया है। सुंदर सो श्याम, यह काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। वैकुंठ में सांप आदि नहीं होते हैं जो किसको डसे, ऐसी बात हो न सके। बाप कहते पांच विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते बाबा हम मानते हैं यह है ही कांटों का जंगल, एक दो को डस कर सब भस्मीभूत हो गए हैं। बच्चे भी इस बात को स्वीकार करते हैं। भगवान वाच, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नक्शेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो, कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं, नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं, हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती है, हमने क्या क्या किया, आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता न सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ उनको समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी ही स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूं, इसलिए बाप कहते नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाने चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं ले जा सकते हैं, सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास ये युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बिगर तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है, यह तो हो नहीं सकता, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है, वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे,
नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी।

पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहां का नहीं है, अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो समझ में आता है यहां का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितना मारा मारी आदि होती है। सतयुग में ये नहीं होगा, अभी कलयुग है ये तो सब मनुष्य मानेंगे। ये कलयुग है ये तो सब मानेंगे। सतयुग त्रेता गोल्डन एज सिल्वर एज और भाषाओं में भी कोई नाम कहते जरूर होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है, तभी तो गाते हैं भजन कि आप सर्व गुण संपन्न, हमारे में कोई गुण ना है। बाबा आप आकर रहम करो। तुम जानते हैं मानते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं, कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूं, जहां माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके वहां मैं आता ही नहीं हूं। शिव बाबा कहे वहां मैं आता ही नहीं हूं। जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूं। कितनी महानता है कि बाबा नई दुनिया में जहां 36 प्रकार के भोजन मिलते वहां नहीं आते हैं, लेकिन कहां आते हैं, जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती है उन्हों के पास आकर उन्हों को गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता। शाहूकारों को गोद में नहीं लेता, तो देवताएं तो इतने शाहूकार हैं, उनको गोद में लेकर करेंगे भी क्या, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। यहां इस पतित दुनिया में भी आकर के किसको गोद में लेते हैं? बाबा कहते मैं शाहूकारों को गोद में नहीं लेता, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहां ही है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर ये नर्क हुआ ना। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बाबा कहते बच्चों ने डाला नहीं है, बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते वह ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राजयोगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना, सन्यासियों की पवित्रता से ही ये भारत थमा है। तो बाबा कहते भारत को चाहिए था ये पवित्रता, इसलिए ड्रामा ने उनसे घर बार आदि छुड़ाया। फिर भी अच्छा है, अभी तो पवित्र भी नहीं रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सिवाय बाप के कोई ले नहीं जा सकते। अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे, बहुत पाप किए हुए हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, यह इज्जत किसकी गवाते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देना तो ये इज्जत किसकी गई? शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते हैं, अब रिपोर्ट किसको करें? कौन से थाने में जाके रिपोर्ट लिखाए? बाप कहते मैं ही समर्थ हूं,
मेरे साथ धर्मराज भी है, ये सबके लिए कयामत का समय है। सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे, ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खानी ही है जरूर। यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने यह काम किए हैं, फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहां सन्मुख आकर ये सब बातें तुम्हें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है, दुख फील होता है ना, गर्भ में दुख फील होता है। वहां सतयुग में दोनों जेल नहीं होती, जहां सजाएं खाए, न गर्भ जेल होती है न वो स्थूल जेल होती। अब बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, ये तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। बाबा कहते यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं, 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अभी फिर मैं राय देता हूं। शिव बाबा आकर अभी फिर से हमें राय देते हैं। क्या राय देते हैं? मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का ये फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे, कितना समझाएं? बाबा हमें कितना समझाएं जो हम जाकर औरों को समझाएं? बाबा ने इतनी बातें आज हम बच्चों को समझाई है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, कर्म योगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठयोगी नहीं। दूसरी पॉइंट, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारा कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदाकाल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहां स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। जहां स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। आज का स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर करना है तो साकार में कर्म करते हुए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते आप बच्चों के पास अनुभूतियों का खजाना संपन्न है।
तो आप संपन्न मूर्तियां मास्टर दाता बन सबको अनुभूति कराते चलो। दाता अर्थात सेवाधारी, दाता देने के बिना रह नहीं सकते। वे अपने रहमदिल के गुण से किसी को हिम्मत देंगे तो किसी निर्बल आत्मा को बल देंगे। वह मास्टर सुखदाता होंगे, वह मास्टर सुखदाता होंगे। अच्छा, ओम।